बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

खूब। दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। यह शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: माँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाय समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्कार।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण कोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम शिव भक्ति धारा, और इस भक्ति धारा की सुरीली सिंगर हैं अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय को सुनते हैं इस खास प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

कोटि कोटि दिगंबरा, आप सुन रहे हैं अलका त्रिपाठी को। शिव भक्ति धारा प्रोग्राम में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।

मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा न कोई दूजा। और जिस मन में सत्यम शिवम सुंदरम बसते हैं वो मंदिर ही हो सकता है। और हम इस सावन में

ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले सुबह ले चाहे शाम ले। ओम नमः शिवाय ले इसके सिवाय

शिव भक्ति धारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अलका उपाध्याय की आवाज में। कोलकाता और वेस्ट बंगाल से हमारे साथ इन प्यारे से शिव भजनों के साथ अलका उपाध्याय।

ओम नमः शिवाय। अलका उपाध्याय की आवाज भक्ति धारा प्रोग्राम में शिव भजनों के साथ आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका उपाध्याय की आवाज शिव भजनों की पहचान।

कहत अलका उपाध्याय। दुख हरो, दारिद्र हरो, कष्ट हरो, रोग हरो, पीड़ा हरो, दर्द हरो, हे हरो, सबका भला करो, हे भोले, हे शिव शंकर, आपके सिवा

बम बम भोले और उसकी शरण में हम सभी, और ये शरणागत के गीत लेके आई अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्रोग्राम शिव भक्ति धारा में।

0: बम बम भोले की शरणम, शिव शंकर की शरणम और शिव सदा सहाय रहे। आपने सुना प्रोग्राम शिव भक्ति धारा और इसे अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही थी जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय कोलकाता वेस्ट बंगाल से। बहुत आभार धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ।
1: मानसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मानसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जू रानू 16। पहले गीत में अर्जू रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें।
1: महान ऐसा आवाज दे रहे थे गीत, जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे, तो होंगे आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं इस मंच के अगले सिंगर। आइए सुने अर्चू रानू के संग इस अगले गीत को। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा एपिसोड में, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अरे अरे

बबलू आर्य साथ गा रहे थे अर्जुन रानू के गीत आज रपट जाए तो। भई मौसम बारिश का है, जमीन भी भीगी है और इस मौसम की पहली बरसात भी है। ऐसे में झूमते गाते मन के साथ आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों की सौगात। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। बबलू आर्य और अर्जुन रानू के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

विशाल शर्मा जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू के संग आवाज में आवाज मिला रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। दिल को देने की बात, दिल की सौगात, अपनी महबूबा के नाम इस गीत में हमने सुना, और दिल का फैसला भी खुद ब खुद ही करने वाले हैं, ओ मेरी जाने जा कहो या महबूबा कहो। विशाल शर्मा और अर्चु रानू के संग हमने सुना ये सुरीला दो गाना। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आज आपने जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर के साथ अब तक चार सुरीले सिंगर्स को सुना। आप अपनी समझ और सोच के हिसाब से अपना फीडबैक सबसे सुरीले सिंगर के लिए सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का

स्मूलियन 60 के साथ अर्जु रानू को सुना आपने, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। और हम भी यही कहेंगे कि अगर आपका गीत हो दो गाना तो अर्जु रानू के संग हो। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस सुरीले मंच पर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके फीडबैक हमें जरूर प्रेषित करें। और हाँ, जिन सिंगर्स ने इस प्रोग्राम के तहत अपने सॉन्ग सेंड किए हैं उनका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। उम्मीद है आरजे भूमिका और अर्जु रानू का संग इस प्रोग्राम में आपको भाया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड से विदाई, नमस्कार। मॉनसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मॉनसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जु रानू 16। पहले गीत में अर्जु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से।

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: बातचीत को ज्वाइन करें।
1: कहीं नहीं होंगे, आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में
2: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर भूमिका, सुनते हैं क्या गा रहे हैं अनुराग। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच के मेल सिंगर अनुराग।

अनुराग कह रहे हैं हम ना करेंगे प्यार, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी बात, अपना अपना राग, अपना अपना आलाप। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कह रहे हैं अनुराग।

देखो भूमिका देख लेना, पहले कहा था हम न करेंगे प्यार और फिर कह रहे हैं प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे और गाते जाएंगे इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आपने सुना अनुराग से ये सुरीला सॉन्ग। और प्यार करने के नाम से ये जमी गाने लगी, आसमां गाने लगा और साथ पूरा जहां गाने लगा। तो हम भी गाएं और सुने अनुराग के इस अगले गीत को।

0: और अब हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का समय। तो अर्चुरानू 16 और अनुराग दोनों का आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, प्रोग्राम में आवाज हूं तो तू है गीत मेरा।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, और सुपर सिंगर प्रोग्राम में आज की सुपर सिंगर आई है पुणे महाराष्ट्र से, श्वेता नायर त्रिवेदी। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपका। आपकी आवाज आपकी पहचान।

लेकिन हम जानते हैं, आप सुन रहे हैं श्वेता नायर त्रिवेदी की आवाज और जयपुर रेडियो की जानी पहचानी आवाज। आपकी आवाज, आपकी पहचान, बैरी पिया, बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने कैसे कहूं, कैसे कहूं। और ये कह रही थी अपनी सिंगिंग के माध्यम से श्वेता नायर त्रिवेदी। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, और आज इस मंच पर जिसका नाम है सुपर सिंगर्स, और आज की सुपर सिंगर मेहमान है श्वेता नायर त्रिवेदी, पुणे महाराष्ट्र से। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

समय का ये पल थम सा गया है। सच में श्वेता, आपके गीतों को सुनने के लिए शायद समय भी कुछ देर के लिए रुक गया है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, और हमने तो गीत से पहले कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं वो अपने फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं आप बहुत ही शानदार गा रही हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी।

अपनी आवाज की नूर की रोशनी लेके इस मंच पर आज उपस्थित हैं श्वेता नायर त्रिवेदी। आपकी आवाज, आपकी पहचान। पुणे महाराष्ट्र से हमारे संग आज की मेहमान सुपर सिंगर श्वेता नायर को आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम सुपर सिंगर में हमारे संग हमारे साथ इस मंच पर श्वेता नायर त्रिवेदी अपने सुरीले गीतों के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

अभी तो हम ये कहेंगे कि अभी आप गाओ और अभी हम सुने, हमारे श्रोता सुने कि आपके गीतों ने हमारा दिल जीत लिया। आपकी आवाज, आपकी पहचान सुपर सिंगर जयपुर रेडियो की श्वेता नायर त्रिवेदी अपने खूबसूरत गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर त्रिवेदी।

ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, और हम ये कहेंगे कि ये दिल सुन रहा है आपके सुरीले गीतों की जुबान। हमारे संग हमारे साथ श्वेता नायर त्रिवेदी, आपकी आवाज आपकी पहचान अपने सुरीले सॉन्ग्स के साथ। अगले गीत में फिर एक बार श्वेता नायर।

बहुत सच कहा आपने, आपकी आवाज में जादू भी है और नशा भी है और ये चीज हमारे श्रोता महसूस भी कर रहे हैं। सुरीली आवाज की धनी हमारी आज की सुपर सिंगर श्वेता नायर त्रिवेदी को सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: और हमारे श्रोता और हम कहेंगे कि श्वेता तू थोड़ी देर और ठहर जा, तो आप ठहर जाएंगी। और यदि समय होता तो सच में आप ठहर जाती और हमें और गीत सुनाती। आपने सुना जयपुर रेडियो का प्रोग्राम सुपर सिंगर, और आज की सुपर सिंगर रही श्वेता नायर त्रिवेदी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए आप सुनते हैं एक कहानी, सुगिया फुलवा। कहानीकार हैं विद्या सिंह।
1: कहानी का शीर्षक है सुगिया फुलवा। ध्यान नहीं आता पहले पहल उसे कब और कहां देखा था, किंतु जब से होश संभाला कभी इसके कभी उसके और अपने घर नियमित रूप से देखा। उसके चेहरे के वर्णन के लिए कुरूप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे सीमित शब्दकोश में दूसरा शब्द है भी नहीं। मोटी मोटी झुर्रियों से भरा लंबोतरा चेहरा, दांत इक्के दुक्के, मिचमिचाती आंखें, थोड़ी थोड़ी देर में वह निचले होंठ को अंदर खींचती जैसे मुंह से गिरती लार को रोकने की कोशिश करती हो। गोद के बच्चों को डराने के लिए माए कहती, सो जाओ नहीं तो अभी सुगिया से पकड़वा दूंगी। इस तरह सुगिया दिन रात सेवा में हाजिर रहती, दिन में साकार और रात में निराकार रूप में। 2 जून की रोटी जुगाड़ने में उसे न जाने कितने दरवाजे अगोरने पड़ते। उसकी रिरियाती हुई आवाज न मालूम प्राकृतिक थी या निरीहता वश वैसी हो गई थी, अनुमान से परे है। कुछ भी बोलने में वह अत्यंत संकुचित हो जाती। संभवतः उसे कोई बीमारी जरूर रही होगी, उसकी लार उसके वश में नहीं थी। एक बार तो उसकी इस आदत ने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। हुआ यों कि वह पीतल के गगरे में पानी लेकर मेरे ओसारे में गोबर डाल रही थी। गोबर को गगरे के पानी से पतला करती और ओसारा लीपती हुई पीछे ही पीछे खिसकती जाती। अचानक लार गगरे में टपक पड़ी। चश्मदीद गवाह बने राघव भैया, उन्होंने गगरा भुसौरे में छिपा दिया। शाम को पानी भरने के लिए जब मनई कहार ने गगरा ढूंढना शुरू किया तो हड़कंप मचा। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। अंततः भैया ने गगरा भुसौरे से निकाल कर प्रत्यक्ष कर दिया, साथ ही एक विस्फोट भी किया कि अब यह गगरा कुएं में डालने लायक नहीं है, इसमें सुगिया का लार गिर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। स्थिति भांपते हुए माँ ने भैया को आंखें तरेरी, ये तो है धोखा भैल हो, इतना छोट मुंह के गगरा में लार कैसे गिर जाई। भैया अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। खैर, दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। माँ रसोई से उपली के ऊपर रखकर जलते हुए अंगारे ले आई और उन अंगारों को गगरे में डाल दिया। आग सब कुछ के पवित्र कह दे ले, मने ही लिया एके माज के भरा पानी, अब गगरा फेंक थोड़े जाई। अति की हद तक छुआछूत मानने वाली माँ का सहज समाधान उसकी प्रत्युत्पन्न मति की गवाही दे रहा था। दोबारा वह प्रसंग किसी की जवान पर नहीं आया, सुगिया का आना पूर्ववत बना रहा। उसकी आदत थी या तो वह कहीं काम कर रही होती या मेरे घर के ओसारे में उकड़ू बैठी आदेशित होने का इंतजार करती रहती। गांव में सभी जानते थे सुगिया कहाँ मिलेगी, जिसे जब जरूरत होती आकर बुला ले जाता। उसका बेटा फुलवा भी उसके साथ आता और ठाकुरों के घर के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के पशु को चारा डाल देता या गोबर साफ कर देता। स्कूल का मुंह तो उसने शायद ही कभी देखा हो। दोपहर में माँ बेटे मढ़ई में चारा काटने की मशीन के बगल में बची थोड़ी सी जगह में कपड़े में बंधी रूखी सूखी रोटी पानी से निकलते। माँ दयावश अक्सर उसे कभी अचार कभी गुड़ दे देती, लेकिन वसूली करना भी न भूलती, ले रोटी खाए के सरसों पीट दे। मौसम के अनुसार काम लेने में माँ माहिर थी। आबनूसी रंग की सुगिया का गोरा चिट्टा बेटा देखकर यकीन नहीं होता था यह सुगिया के कोख में पला होगा। सुगिया कभी ससुराल भी गई होगी, नहीं तो उसका बेटा कहाँ से आता। वह इतनी समर्थ तो थी नहीं कि जमाने को ठेंगा दिखाकर कुंवारी माँ बन जाती। वह बहुत पहले की बात होगी, मेरे होश संभालने से बहुत पहले की बात। मैंने कई बार देखा फुलवा अरंडी के पत्ते पर रखकर बासी रोटी को नमक प्याज से खा रहा होता। सुगिया टुकुर टुकुर उसे खाते हुए निहारती रहती, जैसे निवाला फुलवा के मुंह में नहीं खुद सुगिया के मुंह में जा रहा हो। उस समय सुगिया और उस गौरैया में कोई फर्क न लगता जो चोंच में दाना भरकर अपने चूजे को खिलाती है। माँ के ही मुंह से कभी सुना था, फुलवा 2-3 साल का था जब सुगिया के पति ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। विवाह के इतने दिनों बाद क्यों निकाला आज सोचती हूँ। एक कोठरी उसके माँ बाप ने उसे दे दी थी जिसमें दोनों महतारी पूत रहते थे। जब तक माँ बाप रहे तब तक तो ठीक था, उनके आंख मुदते ही भाई भौजाई तरह तरह से तंग करने लगे कि किसी तरह कोठरी खाली कर दे। यह भी पक्की जान, कितनी बार उसके बर्तन चोरी गए, पकती दाल में भौजाई नमक झोंक देती, पर कोठरी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। हार कर भाई ने घर के पिछवाड़े की खाली जमीन पर एक छप्पर डलवा दिया और सुगिया ने मिट्टी खोद खोद कर 4 कच्ची दीवारें भी खड़ी कर ली। इस तरह बन गया था माँ बेटे का आशियाना। भौजाई को फिर भी चैन कहाँ था, वह सुगिया को निकालने के नए नए तरीके आजमाती, लेकिन सुगिया मोर्चे पर डटी रही, उसने हार नहीं मानी। अब फुलवा भी कुछ बड़ा हो गया था, काम भी उसे मिलने लगा था। कभी पहलवान मामा की हलवाही करता, कभी चिरकुट नाना के खेतों में हल के पीछे पीछे बीज डालता, कभी मोटक भैया की भैंस नहलाने नदी ले जाता। गरज यह कि साल भर उसके काम की जुगत भीड़ ही जाती, पूरा गांव उसका ननिहाल था। उम्र के हिसाब से मामा नाना भैया नानी मामी भौजी बहन का संबोधन वह स्वयं चुन लेता। फुलवा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका रंग रूप और निखरता गया। ठाकुर टोले का शायद ही कोई लड़का इतना हृष्ट पुष्ट हो जितना फुलवा। नहीं बदली तो उसकी आवाज, उसकी उम्र के लड़कों की आवाज में भारीपन आ गया था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बारीक लड़कियों सी थी। बच्चे उसका खूब मजाक बनाते और बात बेबात तरह तरह से छेड़ते। कई बार तो सुगिया चिढ़कर उन्हें गालियां तक दे देती, लेकिन बच्चे मुफ्त का मनोरंजन कहाँ छोड़ने वाले थे। अब फुलवा की उम्र शादी लायक हो गई थी। जहाँ उसके हम उम्र ठाकुरों के सौदे लड़कों के लिए देखुए मोटी रकम के साथ कन्या देने को उतावले रहते, फुलवा की उसकी बिरादरी का कोई लड़की देने को राजी नहीं था। सुगिया आए दिन गांव में नई नई बहुओं को देखती तो उसके दिल में अरमान मचलने लगते। अरमान बेटे के सिर पर सेहरा देखने का, अरमान आंगन में बहू के पैरों की रुंझुन सुनने का। कई साल इंतजार करने पर भी जब देखुए उसके दरवाजे पर नहीं आए तो वह निराश होने लगी। अब गांव के शरारती तत्वों की बन आई, वे सुगिया से कहने लगे, हम तोरे सुगवा का ब्याह कराए दे, लड़की वालन के 1500 देवे की पड़ी। माँ बेटे अपना पेट काट काट कर बचाते, इधर उधर से कुछ उधार बाढ़ी करते और रकम बड़ी उम्मीद से ब्याह कराने का भरोसा देने वाले हाथों को सौंप देते। इंतजार में सुगिया की आंखें पथरा जाती, रकम लेने वाले कोई न कोई बहाना बना देते और अंत में हजम कर जाते। एक बार तो गांव के दुधुआ नाई ने, जो खुद 40 की उम्र में कुंवारा बैठा था, उसे वचन दिया कि वह फुलवा का ब्याह कराएगा। दुधुआ अपने अजीबो गरीब कारनामों से हमेशा गांव की चर्चा में बना रहता। एक बार तो जिद पर अड़ गया कि गांव की पोखरी के किनारे किनारे जो बिजली के खंभे गड़े हैं, जिनसे होकर कई तार जा रहे हैं, वह उन्हीं में से किसी एक खंभे पर बैठकर सुतली काटेगा। उन दिनों गांव में बिजली नहीं थी। समझदार लोगों ने रोका कि इन तारों से बिजली का करंट पास होता है, यह उसी की लाइन जा रही है, लेकिन वह कहाँ मानने वाला, करंट होता तो दिखता नहीं, मैं नहीं मानता करंट वरंट। और उसने लोगों की बात अनसुनी कर दी। एक दिन उसने घोषणा की, आज हम सुतली काते जाओ, जेके देखे के होए चले हमरे संगे। फिर क्या था, देखते देखते बच्चों की टोली दुधुआ के पीछे। वह बच्चों का हीरो बना, सन बगल में दबाए, सुतली कातने की चरखी हाथ में लटकाए चल पड़ा। औरतों ने सुना तो उसकी किस्मत पर तरस खाकर रह गईं। आज कोई आगे पीछे होता तो जरूर रोकता। दुधुआ बड़ी सावधानी से खंभे पर चढ़ रहा था। नीचे से सांस रोके बच्चे उसे ऊपर और ऊपर चढ़ता देख रहे थे। उसने ज्यों ही ऊपर पहुंचने के लिए एक हाथ से तार पकड़ना चाहा, उंगलियां तार से चिपक कर रह गईं। थोड़ी देर में उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वह धड़ाम से नीचे जमीन पर आ पड़ा। बच्चे सहम गए। पास ही जुलाहों के घर थे। हल्ला सुनकर बहुत से वहाँ इकट्ठा हो गए और चारपाई पर लाद कर उसे उसके घर पहुँचाया। पड़ोसियों ने गरम राख से न जाने कितनी देर तक उसके तलवे हथेलियाँ मली, तब जाकर उसके अचेत शरीर में चेतना लौटी। तब से उसकी एक हथेली हमेशा हमेशा के लिए मुट्ठी की शक्ल में बदल गई। फुलवा का विवाह कराने का वचन देकर एक बार फिर वह चर्चा में आ गया था। सुगुआ ने दुधुआ नाई की राय से साड़ी, पेटीकोट, जम्पर, चप्पल, क्रीम, पाउडर और तमाम बहुओं के इस्तेमाल में आने लायक सामान खरीद कर उसे दे दिया। उसे नकद पैसे भी दिए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा दुधुआ की कोठरी में ताला लटक रहा था। अकेले आदमी का क्या, जहाँ चाहे वहाँ चल दे। लेकिन जब महीना भर हो गया और ताला नहीं खुला, तब गांव वालों को खटका हुआ। सुगिया के मन में उम्मीद जगी कि इस बार तो वह जरूर फुलवा के लिए लड़की ढूंढ कर लौटेगा। दुधुआ लौटा, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उससे कम से कम 20 साल छोटी लड़की थी, जिसे वह न मालूम कहां से भगाकर लाया था। एक दिन उसने गांव भर में न्योता भिजवाया कि वह अपनी रिश्तेदारी की एक अनाथ लड़की से शादी कर रहा है और गांव के लोग मुंह जुठारने जरूर आए। गांव में यह बात फैलते देर नहीं लगी कि जो साड़ी उसने सुगिया से हथियाई थी, वही साड़ी उसकी होने वाली बीवी ने शादी की रात पहनी थी। असल में वह साड़ी सुगिया ने रवि पंडित से मंगाई थी और उन्होंने ही दुधुआ की शादी के मंत्र पढ़े थे। सुगिया ने जब यह सुना तो वह कट कर रह गई। उसने रवि पंडित को भी जी भर कर सरापा, जिन्होंने दुधुआ का सहयोग किया था। गांव के शरारती लड़के उसे अलग छेड़ते, फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें दिखाकर पूछते, इस लड़की से करोगी सुगवा का ब्याह? धीरे धीरे सुगिया सबकी मंशा भाप गई। वह समझ गई कि बेटे के सिर पर सेहरा देखना उस जैसी माँ के नसीब में नहीं होता। इस बीच फुलवा को न जाने कौन सी बीमारी लगी कि उसकी कुंदन सी चमकती रंगत नीली पड़ने लगी। शरीर भी दिनों दिन गिरने लगा। देखते देखते वह सूख कर कांटा मात्र रह गया। सिर के घने काले काले बाल इस तेजी से झड़ने लगे कि उसकी खोपड़ी जगह जगह से गंजी हो गई। सुगिया ने उसके बाल घुटवा दिए। अब तो वह एकदम पहचान में नहीं आता था। बच्चे अब दूसरी तरह से सुगिया को छेड़ने लगे थे। एक बार मेरी सहेली ने कहा, ए सुगिया, तोर फुलवा मर गया, हम अपने आँख से देख ली है। तू मर जा तो हर महतारी बाप भाई बहन मर जाए, हमार फुलवा कहे के मरी? फिर मेरी ओर देखकर अत्यंत कातर स्वर में उसने कहा, देखा था बहनी, हमरे फुलवा के का कहता ही, ओकरे मरले ई का पई है। ऐसे न जाने कितने क्रूर मजाक उसे सहन करने पड़ते। गांव में यारू साई ने, जिसके अपनी कोई आस औलाद नहीं थी और बीवी भी वर्षों पहले गुजर गई थी, चंदा मांग कर अपनी कब्र बनवा ली थी। कब्र के चारों ओर उन्होंने पक्की दीवारें चिनवा दी थी। बाकी पैसा गांव के प्रधान के पास जमा कर दिया था कि जब वे मरे उनका शरीर उसी में दफनाया जाए और उनकी कब्र पक्की करा दी जाए। बिगड़ाए लड़के सुगिया को चिढ़ाते, जब यारूसाई मरी है तब का तब देख जाई, अब ही चल तू दोनों महतारी पुत के दफनाए दिहल जाए। दोनों के लायक काफी जगह हुई। सुगिया की बड़बड़ाहट चालू, तू जा कबर में तुहार महतारी बाप जाए, हम फुलवा कहे के जाए। आखिरी बार मैंने जब उन्हें देखा, फुलवा आगे आगे मटमैली अंगोछी से सिर ढके, अपने नाप से दुगनी ढीली ढाली कमीज पहने, लाठी पर अपना भार संभाले, धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे सुगिया चल रही थी। न मालूम कब बेटे को उसकी जरूरत पड़ जाए। दोनों खुसर पुसर करते जा रहे थे, मेरी जिज्ञासा ने सिर उठाया और मैं अपने को पूरी तरह कान में परिवर्तित हुई, कब उसके पीछे पीछे चलने लगी मैं खुद नहीं समझ पाई। फुलवा, तू पहले मर जाते बचवा, ततुर तेरही कही के हम आराम से मरित, कम से कम तू भगवान के पास शांति से रहते। जवाब में फुलवा का स्वर उभरा, नहीं माई, महतारी बाप को तेरही करे का फर्ज लड़का का होला, पहले तू मर जाती तो तोड़ तेरही हम खूब धूमधाम से करी। जिस सहजता से माँ बेटे मौत की बातें कर रहे थे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस दशा को माँ बेटे पहुँचे थे क्या उसमें सिर्फ उन्हीं का दोष था? यह प्रश्न मुझे आज भी कचोटता है। फुलवा की हंसी और उसकी बातें मेरे कान में आज भी कैद हैं। और इतु मौत के बाद कहाँ से ले आईली, अभी तो हम 100 वर्ष जी अब, हा हा हा। और फुलवा चेष्टा पूर्वक हंसने लगा था। सुगिया फुलवा जब न तब मेरी चेतना के चौखट पर दस्तक देते हैं, इसे उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समझी जाए। धन्यवाद।
0: आपने सुनी कहानी सुगिया फुलवा, कहानीकार रही विद्या सिंह। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ?
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है, ऐसे ही लम्हों को बटोर कर आपके लिए लाए हैं हम इन बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा और आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए हमारे साथ श्री ओपी शर्मा। मेरा मन सुकून पाता है जब ये दिल कोई गीत गुनगुनाता है, क्योंकि संगीत मानव जीवन की एक मधुर धारा है, जज्बातों की भाषा है। तो आज इसी भाषा के एक वैज्ञानिक से है हमारी बातचीत। 1998 में सारेगामा शो का मेगा फाइनल जीतने वाले, अपने एल्बम से संगीत की दुनिया में ऐसे छाए कि यश चोपड़ा ने उन्हें साइन किया वीर ज़ारा के लिए। आपको याद होगी वो कव्वाली,
6: जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ,

0: तेरे दर पर दीवाना, तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शैदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना। आया तेरे दर पर दीवाना।
1: जी हाँ, ये पुरकशिश आवाज जिसमें रागदारी भी है और रूहदारी भी, प्रिंस ऑफ गजल अवार्ड से सम्मानित मोहम्मद वकील साहब की। नमस्कार मोहम्मद वकील जी।
0: नमस्कार सुषमा जी, आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज को सुनकर और भी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब
0: बहुत बहुत
1: सुकून
0: शुक्रिया,
1: सा मिल गया आपकी आवाज और
0: बहुत
1: ये सुर
0: शुक्रिया
1: सुन के। जी, बात
0: जी।
1: जब सुरों की होती है तो मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि वो कौन सी उम्र थी जब आप में सुरों की समझ पैदा होने लगी, संगीत आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया।
0: इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपके जितने भी लोग मुझे आपके माध्यम से सुन पा रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, संगीत की समझ तो ये है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रोज रियाज करते हैं तब भी हम पूरी तरह संगीत को नहीं समझ पाते। लेकिन हाँ, संगीत पसंद जो आपने फरमाया, वो हम बहुत खुशनसीब हैं कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जिस परिवार में मेरी पैदाइश हुई, वो एक ऐसा परिवार जिन्होंने संगीत की इबादत की है। और जो जितने भी हमारे पूर्वज गुजरे हैं सबने भारतीय संगीत की सेवा की है, और उसी कदम पर, उसी विरासत को लेके मैं भी चल रहा हूँ। और जो मेरे नाना जी थे, स्वर्गीय उस्ताद मोहम्मद अब्दुल हुसैन जयपुर वाले, दादाजी उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब भी बहुत बड़े फनकार थे महाराजा राम सिंह जी के जमाने में। उसके
1: जी
0: बाद फिर मुझे संगीत की शिक्षा मिली पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब से। तो माहौल संगीत का मिला, तो इसलिए माहौल से इंसान को काफी फर्क पड़ता है। माहौल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों प्रभाव डालते हैं। तो बचपन से ही आंखें खोली तो संगीत का माहौल आसपास देखा, तो संगीत ये समझ लीजिए कि बचपन से ही पसंद बन गया।
1: बिल्कुल, आपके कानों में अजान के साथ साथ संगीत भी गूंजा, ये हम मानते हैं। तो वो एक ऐसा वक्त था मोहम्मद वकील जी जब जबरदस्त रियाज पर ध्यान दिया जाता था, तो तब क्या मन करता था उस छोटे से मोहम्मद वकील का कि रियाज करूं या खेलने जाऊं बाहर दोस्तों के साथ।
0: जी देखिए, हम जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आंखें खुली तो संगीत ही देखा और सुना। तो जो मेरे दोनों गुरुजी हैं वो अपने शागिर्दों को सिखाते थे, मेरी उम्र काफी कम थी जैसा उन्होंने मुझे बताया। तो उस वक्त एक शागिर्द थे जब जिनको वो कुछ याद कराते थे अपनी कंपोजिशन, तो मैं भी कमरे में आके बैठ गया रूम में।
1: अच्छा,
0: तो उनसे कहा सिखाने के बाद कि भाई अब कल आप आइए और कल हमें सुनाइएगा। तो जब वो तो उसके बाद मैंने मुझे याद हो गई और मैं उसको थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लग गया अकेले में। तो उस्ताद जी ने चुपचाप से सुन लिया। नेक्स्ट डे जैसे वो शागिर्द आया तो बोले बेटा कुछ सुनाओ। उनको याद नहीं हुई थी, लेकिन मुझे उन्होंने कहा सुनाओ तो मुझे याद हो चुकी थी। तो
1: वाह,
0: उन्होंने उन्होंने फिर देखा कि इसको शौक है, तो बाकायदा सिखाना शुरू की। तो ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि जब आपको बचपन से ही आपको किसी चीज की अगर आदत हो जाए तो फिर वो हमेशा रहती है। और रियाज तो सुषमा जी, बड़े बड़े उस्तादों का, पंडितों का ये कहना है कि ये संगीत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रोज रियाज करना पड़ता है, रोज अपने काम को ठीक करना होता है, उसमें परफेक्शन आए, इसके लिए ही रियाज जरूरी है।
1: बहुत उसको पॉलिश करना
0: जी
1: होता है और हर दिन करना
0: जी
1: होता है। एकदम
0: जी
1: सही
0: जी
1: कहा आपने।
0: जी
1: गुरुओं की
0: जी
1: बात आपने की, मोहम्मद हुसैन साहब, अहमद हुसैन साहब, दो बहुत ही बड़े नाम आपने लिए। गजल की दुनिया को महकाया है उन्होंने
0: जी
1: और आप उनके शिष्य रहे हैं। उस समय गुरु शिष्य परंपरा भी बिल्कुल अलग थी, तो कैसी थी
0: जी
1: वो और कौन कौन आपके गुरु रहे जिनकी वजह से गायकी का ये जो फन है वो आपने अपनाया।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा इसलिए जरूरी है कि ये संगीत का जो सब्जेक्ट है, इसमें पहले तो सबसे पहले गॉड गिफ्ट होना चाहिए। अगर आपको भगवान ने, अल्लाह ने आपको सुर दिया है, तो फिर गुरु का काम ये होता है कि उसको संवारना, उसको ठीक करना, उसको दिशा देना। और ये जो शब्द है गुरु, ये संस्कृत का शब्द है, और गुरु के जो मतलब है वो अंधेरा दूर करने वाला। तो गुरु गुरु आपको बताते हैं कि भाई ये राग है, ये सिस्टम है, ये ग्रामर है,

0: ऐसे आपको गाना है, ऐसे करेंगे तो ये राग बनेगा। तो जो भी अपना एक सिस्टम है संगीत का, क्योंकि 10 थाट 12 सुर 22 श्रुतियों पर हमारा संगीत टिका हुआ है, और मेरा ऐसा मानना है कि गुरु एक ही होना चाहिए। जो लोग बहुत सारे गुरु चेंज करते हैं ना, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिसगाइड वाला या थोड़ा कंफ्यूजन वाला चक्कर ज्यादा है। लेकिन लेकिन मेरे गुरु एक ही हैं, वो हैं उस्ताद अहमद सिंह मोहसिन साहब, जिन्होंने संगीत सिखाया और संगीत सिखाते हैं, और हमेशा मैं संगीत सीखता रहूंगा। तो ये परंपरा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गुरु के बगैर काम करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, एक मार्गदर्शन करने वाला बहुत जरूरी है,
0: जी
1: और आप उसको दिल से गुरु मान लेते हैं तो फिर आपकी
0: जी
1: आवाज बहुत जादू क्रिएट करती है, ये
0: जी
1: आपने प्रूव कर
0: जी
1: लिया। और ये एक
0: थैंक यू सो
1: इबादत
0: मच।
1: है, ये आपने ये बिल्कुल सही कहा। गायन के सफर का वो पहला मकाम हम जानना चाहेंगे जब लोगों ने आपको सर आंखों पर बिठाया, मतलब आपने जो सम्मान प्राप्त किया, लोगों के दिलों में एक खास जगह आपने बनाई, वो कब हुआ?
0: देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे बुजुर्गों की शुरुआत आकाशवाणी जयपुर से हुई है, और मेरी भी शुरुआत आकाशवाणी जयपुर से हुई है। 1991 में पहली बार आकाशवाणी से गाया, और वो आकाशवाणी मेरे लिए हमेशा बहुत एक इज्जत का एक मकाम रखता है, कि जिससे मेरी शुरुआत हुई। और मुझे याद है सुषमा जी के, मेरा बड़ा तकलीफ का टाइम था, और वो जो बी ग्रेड का जो चेक मिलता था 600 रुपीज का, उससे मेरे 6 महीने का गुजारा होता था। तो वो आकाशवाणी शुरुआत हुई, इसलिए आकाशवाणी को मैं हमेशा बड़ी इज्जत देता हूँ। कभी भी किधर भी गा रहा हूँ मैं, अगर आकाशवाणी से मुझे बुलावा आता है तो मैं सारे काम छोड़ के पहले आकाशवाणी पे आता हूँ और गाता हूँ। तो ये तो रहा शुरुआत का सफर। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बड़ा जो चेंज आया, वो जब आया कि 1997 में जब सारेगामा में ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया जयपुर में, तो मैं वहाँ ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। और नवंबर नवंबर 1997 में मैंने पहली बार सारेगामा में पार्टिसिपेट किया और उसका फाइनल जीता। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ही सारेगामा का एक मेगा फाइनल होने वाला है, जो बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल क्योंकि जो आदमी फाइनल जीत चुका होता है वो ऑलरेडी अच्छा सिंगर होता है। तो फाइनलिस्ट का आपस में मुकाबला था, और उससे ज्यादा बड़ा जो काम था वो ये था कि वो जो जजेस की जो पैनल थी, जो इन सबको जज करने वाली थी, हम सबको जज करने वाली थी, वो ऐसे महान हिंदुस्तान के लोग थे जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं। और पंडित जसराज जी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, अनिल विश्वास साहब, खयाम साहब, ओपी नैयर जी, नौशाद साहब, कल्याण जी, आनंद जी साहब, जगजीत सिंह साहब, परवीन सुल्ताना जी, राजकुमारी जी, ये हमारे जजेस थे। और इन लोगों ने मुझे मेगा फाइनल विनर चुना और मुझे ट्रॉफी दी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जब जजेस का सम्मान किया गया कंपटीशन के बाद, तो जगजीत सिंह साहब को जो शॉल नारियल दिया गया था, वो शॉल और नारियल जगजीत सिंह साहब ने मुझे दिया कि मैं तुम्हें देता हूँ। मैंने मेगा फाइनल जीतने के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए।
1: बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो आपने नाम लिए हैं वो एक दिग्गज रहे हैं, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक की बात हो, सुगम संगीत की बात हो, हर क्षेत्र में वो दिग्गज नाम है। और वाकई आपने सही कहा कि उनसे उनको देखने के लिए हम तरस जाते हैं, और
0: जी
1: ऐसे जजेस का आपने दिल जीता तो जयपुर को वाकई आपने एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया आपकी आवाज के साथ साथ। आपके एल्बम्स ने संगीत की दुनिया में एक विशेष जगह बनाई, क्योंकि आपने ये भी बताया था बातचीत के दौरान कि जगजीत सिंह साहब ने भी आपको थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दिया इस क्षेत्र में, वो कैसे हुआ था?
0: जी एल्बम्स मेरे क्योंकि जब मेगा फाइनल हमारा हो गया, तो हमारा पहला एल्बम रिलीज हुआ था सारेगामा फाइनल्स का। उस एल्बम का नाम था सपने, और उस एल्बम में जो मैंने नज्म गाई थी वो एक भाईचारे को एक बढ़ावा देती है। निदा फाजली साहब की नज्म थी कि दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, ये दुनिया जहां तक है इंसान की विरासत है। तो ये नज्म बहुत मशहूर हुई थी, और आज भी लोग महफिल में मुझसे इस नज्म को जरूर सुनते हैं। तो वो एक सपने, पहला हमारा हमारा सपना था जो सपने एल्बम रिलीज हुआ था, वो उस्ताद अलरखान खान साहब ने, नौशाद साहब ने और ओपी नैयर साहब ने इसको रिलीज किया था। उसके बाद मेरे
1: वाह,
0: अब तक 20 से ज्यादा एल्बम आ चुके हैं, और आप यकीन मानिए सुषमा जी के मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और यहाँ मुझे जितना प्यार मोहब्बत और सम्मान मिला है, मैं इसके लिए तमाम देशवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो भारत में तो आपको बहुत प्यार मिला है, आपके सपने सच
0: जी
1: हुए हैं, तो वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं आप। लेकिन इसके
0: जी
1: अलावा आपने इंटरनेशनली भी बहुत सम्मान प्राप्त किया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपनी प्रस्तुतियों के द्वारा, अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस के द्वारा। वो कैसा
0: जी जी
1: एक्सपीरियंस था?
0: जी मैं एक बात बीच में और करना चाहूंगा जो आपकी हमारी हो रही थी, उसके बाद फिर मैं सवाल पे आता हूँ कि देखिए सारेगामा जब मेरा मेगा फाइनल चल रहा था, काफी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, कई लोगों ने नमाज पढ़ी, और एक परिवार है मुंबई में बदरायू वैष्णव साहब का, जो गुजराती हैं, गुजराती नागर ब्राह्मण हैं, और 27 साल से मुझे अपने घर पे बम्बई में वो रखते हैं, और जब कभी भी नवरात्रि का टाइम होता है तो मंदिर की स्थापना होती है तो मेरे भजन से शुरू करते हैं, और उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि समझ लीजिए कि वो मेरे मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं है। अभी 13 फरवरी को उनका देहांत हुआ, लेकिन यकीन मानिए अभी भी उनका परिवार, वो और उनकी वाइफ और उनके बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, तो उन लोगों से बड़ा बड़ा मुझे उनके एहसान है मुझ पे। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ हमेशा उन लोगों के लिए, जिन सब लोगों ने मुझे आज तक प्यार आशीर्वाद दिया है, कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: तो अब रहा सवाल आपका, तो देश विदेश में सम्मान की बात, मैंने बहुत सारे देशों में परफॉर्म किया है। जो इंडियन एम्बेसी रियाद है वहाँ 2 से 3 बार गाया है मैंने एम्बेसी में, और 2 बार मैंने गाया है यूके में बर्मिंगम इंडियन एम्बेसी में। उसमें जब आप परफॉर्म करते हो, और 1.5 घंटा मुझे दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने बहुत प्यार से सुना तो वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल थे शशांक विक्रम साहब, उन्होंने इशारा दिया कि आप गाते जाइए, और जब मैंने
1: अच्छा,
0: मैंने शो खत्म किया तो स्टैंडिंग ओवेशन था, पूरी पब्लिक ने खड़े होके मेरे लिए तालियां बजाई, और मेरे मेरे आंखों में आंसू थे कि मतलब इन लोगों ने जिस तरह से मुझे सुना है वो बहुत ज्यादा मेरे लिए सम्मान वाली बात थी। और वैसे तो मैं कई जगह गाया है, बहुत सारे देशों में गाया है, दुबई में, बेल्जियम में, मस्कत से मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, और उसके अलावा हांगकांग में भी गाया है, कुवैत में, बहरेन में। तो अगर अपने अपने देश के बाहर आपको इस तरह के सम्मान प्राप्त होते हैं तो आपको एक हौसला मिलता है, क्योंकि सम्मान मिलने का मतलब होता है कि जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है कि मुझे और कुछ अच्छा करते रहना है।
1: बिल्कुल, सभी के दिलों में आपकी खास जगह है। जैसा आपने उदाहरण दिया उस फैमिली का, मतलब एक मिसाल है गंगा जमनी जो तहजीब है हमारे देश की, उसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल आपने दी। हम बात करना
0: जी
1: चाहेंगे अब उन पलों की जब यश चोपड़ा जी ने आपको अपनी फिल्म के गीतों के लिए चुना। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताएं।
0: जी मदन मोहन साहब, ग्रेट मदन मोहन साहब एक ऐसे संगीतकार गुजरे हैं कि जिनका संगीत सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, और इतनी इतनी रूहदारी, इतना सोल उनके संगीत में कि मतलब वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसा सा काम किया जो उनके उनके बेटे हैं मदन मोहन साहब के बड़े, उनका नाम है संजीव कौली साहब, तो
1: जी
0: वो यशराज फिल्म्स में सीईओ थे और मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मोहम्मद वकील, यश चोपड़ा साहब भी चाहते हैं कि एक फिल्म बना रहे हैं मेरे पिताजी के, वो गीत जो उन्होंने कंपोज तो किए थे लेकिन वो फिर उनकी जाने के बाद इस्तेमाल नहीं हो पाए, तो
1: अच्छा,
0: उन गीतों पे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों उस्ताद जी और तुम इस कव्वाली को गाओ, और यश जी से मेरी बात भी हो गई, और आप लोग बॉम्बे आ जाइए। बॉम्बे जब पहुंचे तो यश चोपड़ा साहब की 2 बातें मैं सुषमा जी आपको और तमाम सुनने वालों को बताना चाहूंगा, कि इतने बड़े आदमी थे वो, लेकिन इतने विनम्र थे, इतने डाउन टू अर्थ थे कि उनकी बंगलों पे जब रिहर्सल हुई इस कव्वाली की तो वो सुनते रहे कि हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरा सीन सुन लीजिए, सीन क्या है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा गा रहे हो मुझे ऐसा चाहिए नहीं, लेकिन उनकी जो उनके संस्कार थे, उनकी जुबान थी, उनका जो लहजा था वो ये था कि आप इसको मेरा सीन को सुन लीजिए। तो सीन सुनने के बाद समझ में आया कि ओ ये तो इस गाने की फीलिंग अलग है,
1: क्या एक्सप्रेशन
0: फिर
1: उसमें डालना है। बिल्कुल।
0: क्या एक्सप्रेशन चाहिए जय। तो फिर उन्होंने हम लोगों ने याद किया, और जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन जब रिकॉर्ड हो चुकी कव्वाली, तो संजीव कौली साहब ने फोन किया, यश जी अब आप आ सकते हैं। तो तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वक्त था, और जैसे ही यश चोपड़ा साहब एम्पायर स्टूडियो में आए, वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट में मुंबई, तो उन्होंने संजीव कौली साहब को एक बात बोली जो जिससे हम सबको सीखने को मिलता है कि आदमी बड़ा ऐसा नहीं होता कि उसका पैसा आ जाए, नाम हो जाए, शोहरत नहीं, बड़ा इंसान होता है अपने व्यक्तित्व से। तो उन्होंने संजीव कौली साहब से कहा कि संजीव मुझे बहुत भूख लगी है, फिर क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है प्लीज। जबकि वो बॉस थे, इतने बड़े आदमी थे, वो बोलते हैं मुझे ये मंगा तो वो मुझे मंगा तो वो सब कुछ उनके लिए हाजिर हो जाता। लेकिन उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी, क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाने को। तो ये उनकी उदारता थी। फिर वो रिकॉर्ड हुई कव्वाली और वो इतने खुश हुए, फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से इसको रिलीज भी किया। और आज ऐसी कोई महफिल नहीं है हमारी, चाहे देश में गाऊं या विदेश में गाऊं, जहां वो कव्वाली ना।
1: बिल्कुल, बहुत ही दिल को छूने वाली है वो कव्वाली और जिस एक्सप्रेशन से आप गाते हैं। तो बिल्कुल आपने एक हम्बलनेस की बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और जब व्यक्तित्व की बात आती है तो हम कहेंगे कि आपका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है कि आप उतने ही हम्बल हैं आज भी, जब पहली बार आकाशवाणी आए थे और आज तक आप में वो चीज कायम है। बात आपके गायन की जब होती है तो हम उसमें पाते हैं बहुत गहराई, सूफी स्टाइल हो, गजल हो, गीत हो, खासकर लाइव शोज में आप ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स और लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अलग हैं दोनों विधाएं। आपको किसमें ज्यादा मजा आता है और क्या आप फर्क महसूस करते हैं एक परफॉर्मेंस में और प्रेजेंटेशन के हिसाब से?
0: जी, आपने बहुत खुद ने बहुत अच्छी बात बोली सुषमा जी, क्योंकि आप खुद बहुत साल से आकाशवाणी पे हैं और आपने खुद ने बहुत कुछ काम किया है इस क्षेत्र में, आपको आप खुद भी गाती हैं तो आप समझ सकती हैं। देखिए, ये दोनों अलग विधाएं है तो संगीत ही, लेकिन ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जाते हैं वो टेक्निकल चीज ज्यादा है। आपको माइक से कौन से शब्द को क्लोज करना है, सॉफ्ट लाउड का जो खेल है ना, ये कौन सी लाइन आपकी हाई ऑक्टेव में जा रही, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट गाना है, लाउड गाना, ये टेक्निक टोटल अलग है। लेकिन संगीत जो जो लाइव परफॉर्मेंस की बात है, लाइव को मैं ज्यादा एंजॉय इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि लाइव म्यूजिक में जो लोग डेली रियाज करते हैं उनके गाने में परफेक्शन पैदा होता है। तो लाइव में जो कुछ भी हो गया वो हो गया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप कोई भी चीज अगर आपकी है तो आप उसको सुधार सकते हैं, बार बार सुधार सकते हैं, हर बार सुधार सकते हैं। लेकिन लाइव में जो आप करते हैं वो जो हो गया वो हो गया, वो ये ऐसा है जैसे हवा में गांठ लगाने जैसा। लेकिन मैं ज्यादा लाइव को बहुत इंजॉय कर पाता हूँ क्योंकि जब अच्छे सुनने वाले आपको सुनने आते हैं। और अभी 7 अप्रैल को मेरा जवाहर कला केंद्र ने एक प्रोग्राम किया था, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात ये थी कि उस दिन मैंने कोई फरमाइश पे नहीं गाया। मैंने जो कुछ भी मेरी अपनी, क्योंकि 20 से ज्यादा एल्बम्स मेरे अब तक रिलीज हो चुके हैं, तो मैंने जो कुछ भी गाया वो अपनी गाई हुई गजलें गाई। और वहाँ ऑडियंस ने जिस तरह से मुझे सुना, मेरे लिए इतना सुखद था कि मुझे लग रहा था मैं गाता रहूं। तो लाइव गाने को मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूं। ऐसा ये नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग को इंजॉय नहीं करता, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो भी है वो हम बार बार सुधारते हैं, लेकिन लाइव में जो एक मजा है वो एक अलग ही बात है।
1: बिल्कुल, वो जो एहसास वो अनुभूति होती है कि सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो आप देख पाते हैं। एकदम सही आपने फरमाया,
0: बिल्कुल और इसकी वजह से कलाकार का वजूद है।
1: बिल्कुल, और आपने कहा कि आपका मन कर रहा था आप गाते चले जाएं, तो सुनने वाले भी यही सोचते हैं कि आप गाते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं। मोहम्मद वकील को किसकी आवाज पसंद है या किसकी गायकी को मोहम्मद वकील साहब पसंद करते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत लोग पसंद करते हैं?
0: ये सब देखिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। और वो एक शेर है कि मेरा कमाल फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया।
1: क्या बात है,
0: तो हाँ धन्यवाद। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि जब ये इतने डाउन टू अर्थ हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो इंसान को विनम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटिकल, उसको उसके नेचर में होना चाहिए कि वो सबसे झुक के मिले। तो जो आपका ये सवाल है ये बहुत अच्छा है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी विधाएं हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है। मैं अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं तो मैं अपने बचपन से, जब बहुत छोटा था तब से मैं उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित जसराज जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, इन लोगों को मैं सुनता हुआ आया हूँ। और मुझे आज भी हर बार इनको सुन के कुछ नया सीखने को मिलता है कि अरे इन्होंने तो ये तो हर पिछली बार सुना था तो ये चीज तो मैंने नोटिस की नहीं, ये तो अलग तरह से गाई है। और फिल्म म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म म्यूजिक में मुझे मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, इनको सब जितनी बार सुनो उतना मजा आता है। आज की अगर दौर की बात करें तो सोनू निगम साहब हैं, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, इन लोगों को सुन के बहुत मजा आता है। वैसे तो मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ अपने गुरु से, उन्हीं को सुनता हूँ। लेकिन उनके बाद मैं इनको गजल की बात करूं तो गजल में सबसे ज्यादा मैं मेहंदी हसन साहब और जगजीत सिंह साहब को, और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैंने जगजीत सिंह साहब के साथ जिंदगी के बहुत वक्त गुजारा है। मैं 5 बार उनके साथ काम किया है, 3 बार मैंने स्टेज शेयर किया है, बॉम्बे में, राजकोट में और गुजरात में। राजबब्बर साहब जी, शुक्रिया, राजबब्बर साहब का टीवी सीरियल था जिसका यूट्यूब पे अभी भी आप सुन सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह। तो जगजीत सिंह साहब के लिए उनके डायरेक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में मैंने एक क्लासिकल बंदिश गाई थी, वो भी मैंने गाई। साथ में एक मनीषा अग्रवाल जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, जयपुर की हैं। तो उन्होंने एक एल्बम बनाया था आओ नी पधारो मारे देश, जिसमें बहुत सारे फनकार थे, जिसमें उस्ताद अहमद हसन मोहम्मद हसन साहब थे, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी भी थे, गुलाबो जी थी, रूप कुमार राठौर साहब थे जगजीत सिंह साहब के साथ, उसमें भी मैंने गाया।
1: क्या बात है,
0: तो मुझे उनकी भी आवाज बड़ी पसंद है।
1: बहुत से पलों को आपने याद कर लिया। और जब आपको ये अवार्ड्स मिले, जैसे दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, आरडी बर्मन पंचम सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राइजिंग स्टार, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ गजल, मतलब प्रिंस ऑफ गजल, तो ये जो सम्मान थे जिनसे आपको नवाजा गया, इनसे जुड़ी हुई कोई खास पल, कोई खास याद जो आपको अभिभूत करती है आज भी जब आप उस वक्त को अपने जहन में दोहराते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अवार्ड मिलना यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो सबसे बड़ा अवार्ड, हर अवार्ड बराबर होता है, कोई अवार्ड छोटा नहीं होता। सारेगामा मेगा फाइनल का अवार्ड जो मुझे 1998 में मिला, उसमें इतने जजेस ने दिया, उसके बाद फिर जो मुझे अभी जिन जिन अवार्ड्स का आपने नाम लिया, तो वो जिन लोगों ने मुझे इस लायक चुना, जैसे आर डी बर्मन पंचम सम्मान मुझे 1998 में पठानकोट पंजाब से मिला था, विनोद खन्ना साहब के हाथ से मिला था। और कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड तो 60-70 साल के लोगों को मिलता है, तो वो उनकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, यानी कि वो प्राइवेट है, तो वो अवार्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अवार्ड जहां से मिलता है उन लोगों का प्यार है कि वो आपको चुनते हैं, आपको याद रखते हैं कि भाई इसने संगीत क्षेत्र में कुछ किया है। और सबसे बड़ा अवार्ड जो मैं मानता हूं वो ये है कि लोगों का प्यार, जो लोग आपके संगीत को सुनते हैं, आपके संगीत को प्यार करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, तो वो बड़ा अवार्ड होता है कि आपको सुनने वाले प्यार करते हैं। और वो लोग जो अब देखिए, जैसे पंडित जसराज जी ने एक एल्बम भी आया था गुजारिश, वो पंडित जसराज जी को जब मैं देख के आया उस सीडी, तो उन्होंने सुना, और एक हफ्ते बाद जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने फोन पे यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ही बोलना चाहूंगा, एक बात कि बेटा तुमने जिस तरह से गाया है ना, मैं 7 बार इस एल्बम को सुन चुका हूं। तो पंडित जसराज जी जैसे बड़े पंडित अगर किसी कलाकार को 7 बार वो सीडी रिपीट करें सुने, तो यानी कितना बड़ा अवार्ड है। फिर उस्ताद सुल्तान खान साहब जब हमारे रिलीज फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने उस सीडी को लिया और वो 1.5 घंटे बाद कॉल किया खान साहब ने कि बेटा मैं अंधेरी से जब बोरीवली अपने घर पे गया, तो मेरे बेटे से कहा ये सीडी लगाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि इसने कैसा काम किया, और मैं ये देखना चाहता हूँ उसने गलती कहाँ की। लेकिन मैं पूरे एल्बम में सुनता रहा और मुझे कोई गलती नजर नहीं आई
1: जी।
0: फिर गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं जो तुमने गाई है गजल मेरी, उसको मैं बार बार सुनता हूँ। तो बड़े पंडित और उस्ताद अगर आपको सुनते हैं और सुनने के बाद आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड तो कुछ हो नहीं सकता।
1: बिल्कुल, ये आशीर्वाद जो है ये उन सम्मानों के भी आगे ऊपर बढ़कर है। बहुत सही बात आपने कही है। बहुत तेजी से बदलाव की लहर आई है, ये तो आप भी देख रहे हैं, संगीत का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है, म्यूजिक तैयार करने का तरीका बदल गया है, डिजिटल एक्सपर्टीज, इनोवेशंस, पता नहीं क्या क्या खास हो रहा है, आज स्टूडियो के अंदर बैठकर सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो आज की संगीत की दुनिया में जब पुराने वक्त से आप कंपैरिजन करते हैं, तो क्या बेहतर लगता है और क्या खामियां लगती हैं?
0: देखिए, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा जो लोग इस संगीत को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं उनसे, कि देखिए संगीत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। संगीत को आपको ईमानदारी से अपने गुरु से सीखना है, और ये नहीं समझना कि मैं ही गुरु हो गया, क्योंकि ये जिंदगी भर सीखने वाली चीज है। तो अगर आप संगीत, मेरे नाना जी बोलते थे उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, कि अगर गाना सीखो तब तो गाना है, और अगर ना सीखो तो गा ना। और ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जिसमें आपको डे बाय डे सीखना ही है। तो जो आदमी सीख के कोई काम करता है तो वो हमेशा चलता है। अब जहां तक आपने कहा कि बदलाव आए, तो बदलाव ये आया कि आज पहले क्या था कि आपने गा दिया, आपको थोड़ा सा भी, अगर आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, जहां आपने गाया वहां पे अगर कुछ गलती हो रही, नहीं सर मैं दोबारा करना चाहता। आजकल कैसा है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्यूनर की वजह से ये हुआ है कि भाई आप क्या करते हैं कि भाई आप ये इसको ऐसे गा दीजिए, हम बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक करना क्यों, जब हमने अच्छे से संगीत सीखने की कोशिश किए कर रहे हैं, तो हम अपने अपने खुद करेंगे ना, तो वो ये जो ये चीज है ना वो थोड़ी अच्छी नहीं।

0: है, जो आदमी सीख के काम करता है ना उसको तब उस पर भी पसंद किया जाता है। ठीक है, रातों रात लोग मशहूर हो जाते हैं, लेकिन आदमी बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से जाता भी है, लेकिन उसकी जिसके पीछे
1: बिल्कुल
0: संगीत संगीत का बैकग्राउंड है, जिसके पीछे सबक है, इल्म है, वो आदमी जल्दी नहीं जाएगा, वो टिका रहेगा भले उसका नाम देर में हो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई का जमाना है, तो हर आदमी ऑटो ट्यून और अलग अलग तरीकों से अपने आप को सबके सामने एक पैकेज बना के प्रेजेंट करने लग गया है। वो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेहनत की आवश्यकता है, रियाज की आवश्यकता है। ये चीजें जो
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: पुरानी
0: जी
1: मानी जाती हैं, लेकिन आज भी उनका वजूद है।
0: सही बात है, सही बात है। देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर हमारे हाशमी साहब ने कहा था कि एक बड़े चारों जो मिसरे हैं, चारों लाइन हैं, उनमें बड़ा अच्छा एक सवाल है कि बरसात में कदमों की निशान ढूंढ रहा है, आवारा फजाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, हाथों की लकीरों में कहाँ ढूंढ रहा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। और मेहनत की बात जब आपने की, तो बिल्कुल, अगर अगर आपको आवाज दी है ईश्वर ने, वो जो ईश्वर की देन है, लेकिन मेहनत से आप इसे पॉलिश कर सकते हैं, हीरे की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं। तो मैं एक कुछ छोटी सी बात ये पूछना चाहूंगी कि एक गायक में क्या क्या बेसिक क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके।
0: देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पीछे सबक होना चाहिए। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीख के किसी काम को करते हैं, चाहे फिर बाद में आप गजल गाएं, भजन गाएं, कव्वाली गाएं, कुछ भी गाएं, फिल्मी गाना गाएं, तो फिर आपके गाने में परफेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है कि आपके संगीत के पीछे शास्त्रीय संगीत का पूरा सबक होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो अपना एक अंदाज है वो धीरे धीरे करके अपना अंदाज डेवलप होता रहते, सबकी पहचान बने। और आज के दौर में खास तौर से आदमी
1: हाँ
0: ये बहुत जरूरी है कि आप अपने, है ना, नाम पे ध्यान ना दें, क्योंकि चमक धमक आपको बहुत प्रभावित करती है कि अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, हमारा कैसे होगा। नहीं, आप रियाज करो तो राज करोगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे थोड़ा सा सब्र करें कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा भी होगा, हम अपने मेहनत करते रहें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आप ये संगीत के क्षेत्र में।
1: मेहनत और पेशेंस दोनों जरूरी
0: जी,
1: हैं।
0: पेशेंस
1: और
0: बहुत
1: जो
0: जरूरी है। जी,
1: बच्चे इस विधा में अपना नाम चमकाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई खास मशवरा रखना चाहेंगे?
0: यही मशवरा है कि आप गुरु गुरु के प्रति वफादारी रखें, गुरु को समर्पित करते हैं अपने आप को, जैसा गुरु कहते हैं वैसा करें, क्योंकि वो जो भी आपको कहेंगे उसमें आपका भला है, क्योंकि माँ बाप और गुरु ये जो कुछ भी आपके लिए सोचते हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए जो बच्चे संगीत में आना चाहते हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि अपने गुरु से ईमानदारी से सीखें, जितना वो बताते हैं वैसा करते रहें, तो आपका डेफिनेटली आगे जाके नाम होने वाला है।
1: बिल्कुल, नाम होने वाला है। और अगर आप मेहनत से, शिद्दत से उस काम में लगे रहते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, तो प्यार होना भी जरूरी है, शिद्दत होना भी जरूरी है, तभी आप कुछ कमाल पैदा कर पाएंगे।
0: देखिए, संगीत से प्यार वैसे ही होना चाहिए सुषमा जी, जैसे कि आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपनी बीवी से करते हैं। संगीत से वैसे ही प्यार होना चाहिए। अगर आप संगीत से प्यार करोगे तो संगीत आपका होगा, और वरना आप संगीत से प्यार नहीं करेंगे तो आपका संगीत नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल, आपको फैमिली सपोर्ट भी पूरा मिला तभी आप बहुत कुछ कमाल कर पाए, तो मुझे लगता है एक सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको, अगर आपकी परिवार वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक हौसला रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आप टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। मुझे याद है कि दो बार मुझे फेल किया गया, तो जान करके किया गया, और वो टाइम ऐसा था जब पैर में बहुत चोट थी, बहुत तकलीफ थी, और पहुंचने के पैसे नहीं होते थे, तो वो टाइम पे दो बार जब फेल किया गया तो आपको निराशा होती है, लेकिन निराशा के बाद आदमी को ये हिम्मत रखनी चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आज मैं फेल हो गया तो कल मुझे फिर वापस उठना है। संगीत तो ऐसी चीज है, वो पास फेल वाली चीज है, इन कॉम्पिटिशन है ही नहीं, संगीत तो पूजा है, इबादत है, जितनी आप करें उतनी कम है, तो ये बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने जो भी अपने पल उठाए हैं अपनी जिंदगी के, और जिस तरह से ये सभी के सामने रखा है कि कैसे पूरी मेहनत से, चाहे बुरा वक्त भी आया, उसे भी आपने पॉजिटिविटी से आगे आप बढ़ते गए, पॉजिटिव
0: जी
1: वाइब्स आपने कभी नहीं छोड़ी, तो ये बहुत सीखने की बात है आपके व्यक्तित्व से।
0: शुक्रिया आपका। सुषमा जी, ये भी मेरे जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ चीजें मैंने की हैं, जैसे

0: कि अभी साजिद वाजिद साहब का काफी बड़ा नाम है बॉलीवुड संगीत में, बॉलीवुड म्यूजिक में, तो उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन साजिद भाई ने अभी वाजिद भाई के जाने के बाद एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसका नाम है तालीम म्यूजिक। तालीम म्यूजिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है एज ए प्रोजेक्ट हेड, एज ए कंपोजर, कि भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल तालीम के लिए कंपोज करें उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने कंपोज किया है, मेरे लिए सौभाग्य है कि अपने गुरुजी हैं उनके लिए मैंने कंपोज किया, उन्होंने गाया है एमोल साहब ने, हरिहरन साहब ने गाया है, अनूप बिरोटा जी ने गाया है, कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है, शान भाई ने गाया है, पैपोन भाई ने
1: क्या
0: गाया
1: बात
0: है। तो और एक गजल का गुलदस्ता लेकर हम लोग आ रहे हैं, और जो संगीत के सुनने वाले हैं, संगीत को और गजल को प्यार करते हैं, उन सबके लिए एक वाकई एक तोहफा होगा। तो बहुत जल्दी ये सीरीज शुरू होने वाली है, तो तालीम म्यूजिक से इसका इंतजार आपको करें, और बहुत जल्दी आप अच्छा कुछ सुनेंगे।
1: बिल्कुल। तो तालीम म्यूजिक को सुनने का बिल्कुल आप हम ध्यान रखेंगे, और आप अपनी आवाज के जरिए सबके दिलों में जो अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं वो इसी तरह बिखरती रहे, यही हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब ये चाहेंगे कि अपने संगीत के जरिए आप सभी को एक खास मैसेज जो देना चाहें।
0: देखिए, मुझे ग्राम राजस्थानी साहब के चार मिसरे बड़ी पसंद है, हमारे देश के लिए, कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो मेरी यही दुआ है कि हमारा भारत देश हमेशा खुशहाल रहे, हम सब भारत देशवासी हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें और स्वस्थ रहें, और सब आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसी बना रहे, ये मैं दुआ करता हूँ। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक लाइन मेरी जो गजल थी फर्स्ट सोलो एल्बम की, वो मैं सुनाऊं सुषमा जी, अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई।
1: आपके एल्बम्स ने संगीत की दुनिया में एक विशेष जगह बनाई, क्योंकि आपने ये भी बताया था बातचीत के दौरान कि जगजीत सिंह साहब ने भी आपको थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन दिया इस क्षेत्र में, वो कैसे हुआ था?
0: जी, एल्बम्स मेरे जब मेगा फाइनल हमारा हो गया, तो हमारा पहला एल्बम रिलीज हुआ था सारेगामा फाइनल्स का, उस एल्बम का नाम था सपने। और उस एल्बम में जो मैंने नज्म गाई थी वो एक भाईचारे को एक बढ़ावा देती है, निदा फाजली साहब की नज्म थी, कि दीवारें उठाना तो हर युग की सियासत है, ये दुनिया जहां तक है इंसान की विरासत है। तो ये नज्म बहुत मशहूर हुई थी, और आज भी लोग महफिल में मुझसे इस नज्म को जरूर सुनते हैं। तो वो एक सपने, पहला हमारा हमारा सपना था जो सपने एल्बम रिलीज हुआ था, वो उस्ताद अलरखान खान साहब ने, नौशाद साहब ने और ओपी नैयर साहब ने इसको रिलीज किया था। उसके बाद मेरे
1: वाह
0: अब तक 20 से ज्यादा एल्बम आ चुके हैं, और आप यकीन मानिए सुषमा जी के मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और यहाँ मुझे जितना प्यार मोहब्बत और सम्मान मिला है, मैं इसके लिए तमाम देशवासियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो भारत में तो आपको
0: और
1: बहुत प्यार मिला है, आपके सपने सच
0: जी
1: हुए हैं, तो वाकई बहुत
0: जी
1: खुशकिस्मत हैं आप। लेकिन इसके अलावा
0: जी
1: आपने इंटरनेशनली भी बहुत सम्मान प्राप्त किया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपनी प्रस्तुतियों के द्वारा, अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस के द्वारा। वो कैसा
0: जी जी
1: एक्सपीरियंस था?
0: जी मैं एक बात बीच में और करना चाहूंगा, जो आपकी हमारी हो रही थी, उसके बाद फिर मैं सवाल पे आता हूँ। कि देखिए, सारेगामा जब मेरा मेगा फाइनल चल रहा था, काफी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, कई लोगों ने नमाज पढ़ी, और एक परिवार है मुंबई में बदरायू वैष्णव साहब का, जो गुजराती हैं, गुजराती नागर ब्राह्मण हैं, और 27 साल से मुझे अपने घर पे बम्बई में वो रखते हैं। और जब कभी भी नवरात्रि का टाइम होता है तो मंदिर की स्थापना होती है, तो मेरे भजन से शुरू करते हैं। और उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि समझ लीजिए कि वो मेरे मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं है। अभी 13 फरवरी को उनका देहांत हुआ, लेकिन यकीन मानिए अभी भी उनका परिवार, वो और उनकी वाइफ और उनके बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं। तो उन लोगों से बड़ा बड़ा मुझे उनके एहसान है मुझ पे। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ हमेशा उन लोगों के लिए, जिन सब लोगों ने मुझे आज तक प्यार आशीर्वाद दिया है, कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: तो अब रहा सवाल आपका, तो देश विदेश में सम्मान की बात, मैंने बहुत सारे देशों में परफॉर्म किया है। जो इंडियन एम्बेसी रियाद है, वहाँ 2 से 3 बार गाया है मैंने एम्बेसी में, और 2 बार मैंने गाया है यूके में बर्मिंगम इंडियन एम्बेसी में। उसमें जब आप परफॉर्म करते हो, और 1.5 घंटा मुझे दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने बहुत प्यार से सुना, तो वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल थे शशांक विक्रम साहब, उन्होंने इशारा दिया कि आप गाते जाइए। और जब मैंने मैंने शो खत्म किया, तो स्टैंडिंग ओवेशन था, पूरी पब्लिक ने खड़े होके मेरे लिए तालियां बजाई, और मेरे मेरे आंखों में आंसू थे कि मतलब इन लोगों ने जिस तरह से मुझे सुना है, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए सम्मान वाली बात थी। और वैसे तो मैं कई जगह गाया है, बहुत सारे देशों में गाया है, दुबई में, बेल्जियम में, मस्कत से मुझे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला, और उसके अलावा हांगकांग में भी गाया है, कुवैत में, बहरेन में। तो अगर अपने अपने देश के बाहर आपको इस तरह के सम्मान प्राप्त होते हैं, तो आपको एक हौसला मिलता है, क्योंकि सम्मान मिलने का मतलब होता है कि जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है कि मुझे और कुछ अच्छा करते रहना है।
1: बिल्कुल, सभी के दिलों में आपकी खास जगह है। जैसा आपने उदाहरण दिया उस फैमिली का, मतलब एक मिसाल है गंगा जमनी जो तहजीब है हमारे देश की, उसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल आपने दी। हम बात करना चाहेंगे अब उन पलों की जब यश चोपड़ा जी ने आपको अपनी फिल्म के गीतों के लिए चुना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताएं।
0: जी मदन मोहन साहब, ग्रेट मदन मोहन साहब एक ऐसे संगीतकार गुजरे हैं कि जिनका संगीत सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, और इतनी इतनी रूहदारी, इतना सोल उनके संगीत में, कि मतलब वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसा सा काम किया जो उनके उनके बेटे हैं मदन मोहन साहब के बड़े, उनका नाम है संजीव कौली साहब, तो वो यशराज फिल्म्स में CEO थे, और मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मोहम्मद वकील, यश चोपड़ा साहब भी चाहते हैं कि एक फिल्म बना रहे हैं मेरे पिताजी के, वो गीत जो उन्होंने कंपोज तो किए थे, लेकिन वो फिर उनके जाने के बाद इस्तेमाल नहीं हो पाए, तो उन गीतों पे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों उस्ताद जी और तुम इस कव्वाली को गाओ। और यश जी से मेरी बात भी हो गई, और आप लोग बॉम्बे आ जाइए। बॉम्बे जब पहुंचे, तो यश चोपड़ा साहब की 2 बातें मैं सुषमा जी आपको और तमाम सुनने वालों को बताना चाहूंगा, कि इतने बड़े आदमी थे वो, लेकिन इतने विनम्र थे, इतने डाउन टू अर्थ थे, कि उनकी बंगलों पे जब रिहर्सल हुई इस कव्वाली की, तो वो सुनते रहे कि हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरा सीन सुन लीजिए, सीन क्या है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा गा रहे हो, मुझे ऐसा चाहिए नहीं, लेकिन उनकी जो उनके संस्कार थे, उनकी जुबान थी, उनका जो लहजा था, वो ये था कि आप इसको मेरा सीन को सुन लीजिए। तो सीन सुनने के बाद समझ में आया कि ओहो, ये तो इस गाने की फीलिंग अलग है,
1: क्या एक्सप्रेशन
0: चाहिए। तो फिर उन्होंने, हम लोगों ने याद किया, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन जब रिकॉर्ड हो चुकी कव्वाली, तो संजीव कौली साहब ने फोन किया, यश जी अब आप आ सकते हैं। तो तकरीबन 2:30 से 3 बजे का वक्त था, और जैसे ही यश चोपड़ा साहब एम्पायर स्टूडियो में आए, वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट में मुंबई, तो उन्होंने संजीव कौली साहब को एक बात बोली, जो जिससे हम सबको सीखने को मिलता है, कि आदमी बड़ा ऐसा नहीं होता कि उसका पैसा आ जाए, नाम हो जाए, शोहरत नहीं, बड़ा इंसान होता है अपने व्यक्तित्व से। तो उन्होंने संजीव कौली साहब से कहा कि संजीव मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है प्लीज। जबकि वो बॉस थे, इतने बड़े आदमी थे, वो बोलते हैं मुझे ये मंगा तो, वो मुझे मंगा तो, वो सब कुछ उनके लिए हाजिर हो जाता, लेकिन उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी, क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाने को। तो ये उनकी उदारता थी। फिर वो रिकॉर्ड हुई कव्वाली, और वो इतने खुश हुए, फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से इसको रिलीज भी किया। और आज ऐसी कोई महफिल नहीं है हमारी, चाहे देश में गाऊं या विदेश में गाऊं, जहां वो कव्वाली ना।
1: बिल्कुल, बहुत ही दिल को छूने वाली है वो कव्वाली और जिस एक्सप्रेशन से आप गाते हैं। तो बिल्कुल आपने एक हम्बलनेस की बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, और जब व्यक्तित्व की बात आती है तो हम कहेंगे कि आपका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है कि आप उतने ही हम्बल हैं आज भी जब पहली बार आकाशवाणी आए थे, और आज तक आप में वो चीज कायम है। बात आपके गायन की जब होती है तो हम उसमें पाते हैं बहुत गहराई, सूफी स्टाइल हो, गजल हो, गीत हो, खासकर लाइव शोज में आप ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स और लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अलग हैं दोनों विधाएं।
0: जी
1: आपको
0: जी
1: किसमें ज्यादा मजा आता है, और क्या आप फर्क महसूस करते हैं एक परफॉर्मेंस में और प्रेजेंटेशन के हिसाब से?
0: जी आपने बहुत खुद ने बहुत अच्छी बात बोली सुषमा जी, क्योंकि आप खुद बहुत साल से आकाशवाणी पे हैं और आपने खुद ने बहुत कुछ काम किया है इस क्षेत्र में, आपको आप खुद भी गाती हैं तो आप समझ सकती हैं। देखिए ये दोनों अलग विधाएं है तो संगीत ही, लेकिन ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप जाते हैं वो टेक्निकल चीज ज्यादा है, आपको माइक से कौन से शब्द को क्लोज करना है, सॉफ्ट लाउड का जो खेल है ना, ये कौन सी लाइन आपकी हाई ऑक्टेव में जा रही, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट गाना है लाउड गाना, ये टेक्निक टोटल अलग है। लेकिन संगीत जो जो लाइव परफॉर्मेंस की बात है, लाइव को मैं ज्यादा एंजॉय इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि लाइव म्यूजिक में जो लोग डेली रियाज करते हैं उनके गाने में परफेक्शन पैदा होता है, तो लाइव में जो कुछ भी हो गया वो हो गया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप कोई भी चीज अगर आपकी है तो आप उसको सुधार सकते हैं, बार बार सुधार सकते हैं, हर बार सुधार सकते हैं, लेकिन लाइव में जो आप करते हैं वो जो हो गया वो हो गया, ये ऐसा है जैसे हवा में गांठ लगाने जैसा। लेकिन मैं ज्यादा लाइव को बहुत इंजॉय कर पाता हूँ क्योंकि जब अच्छे सुनने वाले आपको सुनने आते हैं, और अभी अभी 7 अप्रैल को मेरा जवाहर कला केंद्र ने एक प्रोग्राम किया था, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात ये थी कि उस दिन मैंने कोई फरमाइश पे नहीं गाया, मैंने जो कुछ भी मेरी अपनी, क्योंकि 20 से ज्यादा एल्बम्स मेरे अब तक रिलीज हो चुके हैं, तो मैंने जो कुछ भी गाया वो अपनी गाई हुई गजलें गाई, और वहाँ ऑडियंस ने जिस तरह से मुझे सुना वो मेरे लिए इतना सुखद था कि मुझे लग रहा था मैं गाता रहूँ। तो लाइव गाने को मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ, ऐसा ये नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग को इंजॉय नहीं करता, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो भी है वो हम बार बार सुधारते हैं, लेकिन लाइव में जो एक मजा है वो एक अलग ही बात है।
1: बिल्कुल, वो जो एहसास, वो अनुभूति होती है कि सब लोग
0: जी
1: आपको
0: जी
1: अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आप देख पाते हैं। एकदम
0: जी
1: सही आपने
0: जी बिल्कुल
1: फरमाया।
0: बिल्कुल, ऑडियंस की वजह से कलाकार का वजूद है।
1: बिल्कुल, और आपने कहा कि आपका मन कर रहा था आप गाते चले जाएं, तो सुनने वाले भी यही सोचते हैं कि आप गाते चले जाएं और हम सुनते चले
0: जी
1: जाएं। हाँ,
0: धन्यवाद,
1: मोहम्मद
0: शुक्रिया।
1: वकील को किसकी आवाज पसंद है, या किसकी गायकी को मोहम्मद वकील साहब पसंद करते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत लोग पसंद करते हैं।
0: नहीं ये सब देखिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, और वो एक शेर है कि मेरा कमाल ए फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया।
1: क्या बात है, क्या
0: तो हाँ धन्यवाद, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि जब ये इतने डाउन टू अर्थ हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो इंसान को विनम्र होना क्या ही, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटिकल, उसको उसके नेचर में होना चाहिए कि वो सबसे झुक के मिले। तो जो आपका ये सवाल है ये बहुत अच्छा है। देखिए वैसे तो बहुत सारी विधाएं हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है। मैं अगर क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं तो मैं अपने बचपन से, जब बहुत छोटा था तब से मैं उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित जसराज जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, इन लोगों को मैं सुनता हुआ आया हूँ, और मुझे आज भी हर बार इनको सुन के कुछ नया सीखने को मिलता है कि अरे इन्होंने तो ये तो हर इस पिछली बार सुना था तो ये चीज तो मैंने नोटिस की नहीं, ये तो अलग तरह से गाई है। और फिल्म म्यूजिक की बात करूं तो फिल्म म्यूजिक में मुझे मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, इनको सब जितनी बार सुनूं उतना मजा आता है। आज की अगर दौर की बात करें तो सोनू निगम साहब हैं, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, इन लोगों को सुन के बहुत मजा आता है। वैसे तो मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हूँ अपने गुरुओं से, उन्हीं को सुनता हूँ, लेकिन उनके बाद मैं इनको गजल की बात करूं तो गजल में सबसे ज्यादा मैं मेहंदी हसन साहब और जगजीत सिंह साहब को, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने जगजीत सिंह साहब के साथ जिंदगी के बहुत वक्त गुजारा है, मैं 5 बार उनके साथ काम किया है, 3 बार मैंने स्टेज शेयर किया है, बॉम्बे में, राजकोट में और गुजरात में।
1: बहुत
0: राजबब्बर साहब जी, शुक्रिया, राजबब्बर साहब का टीवी सीरियल था जिसका यूट्यूब पे अभी भी आप सुन सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह। तो जगजीत सिंह साहब के लिए उनके डायरेक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में मैंने एक क्लासिकल बंदिश गाई थी, वो भी मैंने गाई। साथ में एक मनीषा अग्रवाल जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, जयपुर की हैं। तो उन्होंने एक एल्बम बनाया था आओ नी पधारो मारे देश, जिसमें बहुत सारे फनकार थे, जिसमें उस्ताद मोहम्मद हसन साहब थे, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी भी थे, गुलाबो जी थी, रूप कुमार राठौड़ साहब थे जगजीत सिंह साहब के साथ, उसमें भी मैंने गाया।
1: क्या बात है,
0: तो
1: तो
0: मुझे
1: बहुत
0: उनकी
1: से
0: भी आवाज
1: पलों
0: बड़ी
1: को
0: पसंद है।
1: बहुत से पलों को आपने याद कर लिया। और जब आपको ये अवार्ड्स मिले, जैसे दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, आरडी बर्मन पंचम सम्मान, राजस्थान
0: जी
1: संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राइजिंग स्टार, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ गजल, मतलब प्रिंस ऑफ गजल, तो ये जो
0: जी
1: सम्मान थे जिनसे आपको नवाजा गया, इनसे जुड़ी हुई कोई खास पल, कोई खास याद जो आपको अभिभूत करती है आज भी जब आप उस वक्त को अपने जहन में दोहराते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अवार्ड मिलना यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ा अवार्ड, हर अवार्ड बराबर होता है, कोई अवार्ड छोटा नहीं होता। सारेगामा मेगा फाइनल का अवार्ड जो मुझे 1998 में मिला, उसमें इतने जजेस ने दिया। उसके बाद फिर जो मुझे अभी जिन जिन अवार्ड्स का आपने नाम लिया, तो वो जिन लोगों ने मुझे इस लायक चुना, जैसे आर डी बर्मन पंचम सम्मान मुझे 1998 में पठानकोट पंजाब से मिला था, विनोद खन्ना साहब के हाथ से मिला था।
1: वाह,
0: और कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड तो 60-70 साल के लोगों को मिलता है, तो वो उनकी बात बिल्कुल
1: जी
0: सही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन वो दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, यानी कि वो प्राइवेट है, तो वो अवार्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि अवार्ड जहां से मिलता है, उन लोगों का प्यार है कि वो आपको चुनते हैं, आपको याद रखते हैं कि भाई इसने संगीत क्षेत्र में कुछ किया है। और सबसे बड़ा अवार्ड जो मैं मानता हूँ वो ये है कि लोगों का प्यार, जो लोग
1: बिल्कुल
0: आपके संगीत को सुनते हैं, आपके संगीत को प्यार करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, तो वो बड़ा अवार्ड होता है कि आपको सुनने वाले प्यार करते हैं। और वो लोग जो अब देखिए, जैसे पंडित जसराज जी ने एक एल्बम भी आया था गुजारिश, वो पंडित जसराज जी को जब मैं दे के आया उस सीडी, तो उन्होंने सुना, और एक हफ्ते बाद जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने फोन पे यही कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ही बोलना चाहूंगा, एक बात कि बेटा तुमने जिस तरह से गाया है ना, मैं 7 बार इस एल्बम को सुन चुका हूँ। तो पंडित जसराज जी जैसे बड़े पंडित अगर किसी कलाकार
1: बहुत
0: को वो 7 बार वो सीडी रिपीट करें सुने, तो यानी कितना बड़ा अवार्ड है। फिर
1: बड़ा,
0: उस्ताद सुल्तान खान साहब जब हमारे रिलीज फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने उस सीडी को लिया और वो 1.5 घंटे बाद कॉल किया खान साहब ने कि बेटा मैं अंधेरी से जब बोरीवली अपने घर पे गया, तो मेरे बेटे से कहा ये सीडी लगाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि इसने कैसा काम किया, और मैं ये देखना चाहता हूँ उसने गलती कहाँ की है। लेकिन मैं पूरे एल्बम में सुनता रहा और मुझे कोई गलती नजर नहीं आई।
1: जी
0: फिर गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं जो तुमने गाई है गजल मेरी, उसको मैं बार बार सुनता हूँ। तो बड़े पंडित और उस्ताद अगर आपको सुनते हैं और सुनने के बाद आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड तो कुछ हो नहीं सकता।
1: बिल्कुल, ये आशीर्वाद जो है ये उन सम्मानों के भी आगे ऊपर बढ़कर है। बहुत सही बात आपने कही है।
0: जी
1: बहुत तेजी से बदलाव की लहर आई है, ये तो आप भी देख रहे हैं। संगीत का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है, म्यूजिक तैयार करने का तरीका बदल गया है, डिजिटल
0: जी
1: एक्सपर्टीज, इनोवेशंस, पता नहीं क्या क्या खास हो रहा है। आज स्टूडियो के अंदर बैठकर सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो आज की संगीत की दुनिया में जब पुराने वक्त से आप कंपैरिजन करते हैं, तो क्या बेहतर लगता है और क्या खामियां लगती हैं?
0: देखिए, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, जो लोग इस संगीत को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं उनसे, कि देखिए संगीत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। संगीत को आपको ईमानदारी से अपने गुरु से सीखना है, और ये नहीं समझना कि मैं ही गुरु हो गया, क्योंकि ये जिंदगी भर सीखने वाली चीज है। तो अगर आप संगीत, मेरे नाना जी बोलते थे उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, कि अगर गाना सीखो तब तो गाना है, और अगर ना सीखो तो गा ना। और ये एक ऐसा क्षेत्र है ना जिसमें आपको डे बाय डे सीखना ही है। तो जो आदमी सीख के कोई काम करता है तो वो हमेशा चलता है। अब जहां तक आपने कहा कि बदलाव आए, तो बदलाव ये आया कि आज पहले क्या था कि आपने गा दिया, आपको थोड़ा सा भी, अगर आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात कर रहा हूँ जहां आपने गाया, वहां पे अगर कुछ गलती हो रही नहीं, सर मैं दोबारा करना चाहता। आजकल कैसा है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्यूनर की वजह से ये हुआ है कि भाई आप क्या करते हैं कि भाई आप ये इसको ऐसे गा दीजिए, हम बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक करना क्यों, जब हमने अच्छे से संगीत सीखने की कोशिश किए कर रहे हैं, तो हम अपने अपने खुद करेंगे ना। तो वो ये जो ये चीज है ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज ये, देखिए संगीत का और ड्रामे का कुछ नाता अलग अलग है। आज हमारे टाइम पे, हमारे संगीत के टाइम पे, सारेगामा के टाइम पे क्या था कि जो भी है वो हो रहा है। अब आजकल जिस तरह से पेश किया जाता है कि भाई कोई आदमी रो रहा है कि साहब मुझे तकलीफ है, ये मेरे घर में रोटी नहीं है मुझे भाई आप आदमी अपने घर की बात बाहर कभी नहीं करता, वो चाहता है कि मेरे घर की बात बाहर ना आए। तो आप अपने संगीत पे मेहनत कीजिए ना, आप ड्रामे पे मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर आप संगीत पे मेहनत करेंगे तो आप आगे आएंगे। और डिजिटल, ये जो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है डिजिटल म्यूजिक, उसमें तो जो आदमी देखिए तब भी सुषमा जी ऐसा ही है, जो आदमी सीख के काम करता है ना उसको तब उस पर भी पसंद किया जाता है। ठीक है रातों रात लोग मशहूर हो जाते हैं, लेकिन आदमी बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से जाता भी है, लेकिन उसकी जिसके पीछे
1: बिल्कुल
0: संगीत, संगीत का बैकग्राउंड है, जिसके पीछे सबक है, इल्म है, वो आदमी जल्दी नहीं जाएगा, वो टिका रहेगा भले उसका नाम देर में हो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई का जमाना है, तो हर आदमी ऑटो ट्यून और अलग अलग तरीकों से अपने आप को सबके सामने एक पैकेज बना के प्रेजेंट करने लग गया है। वो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेहनत की आवश्यकता है, रियाज की आवश्यकता है। ये चीजें जो
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: पुरानी
0: जी
1: मानी जाती हैं, लेकिन आज भी उनका वजूद है।
0: सही बात है, सही बात है। देखिए एक बड़ा अच्छा शेर हमारे हाशमी साहब ने कहा था कि एक बड़े चारों जो मिसरे हैं, चारों लाइन हैं, उनमें बड़ा अच्छा एक सवाल है कि बरसात में कदमों की निशान ढूंढ रहा है, आवारा फजाओं में धुआं ढूंढ रहा है, किस्मत की लकीरें तेरी मेहनत में छुपी हैं, हाथों की लकीरों में कहां ढूंढ रहा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल। और मेहनत की बात जब आपने की, तो बिल्कुल, अगर अगर आपको आवाज दी है ईश्वर ने, वो जो ईश्वर की देन है, लेकिन मेहनत से आप इसे पॉलिश कर सकते हैं, हीरे की तरह अगर आप चमकना चाहते हैं। तो मैं एक कुछ छोटी सी बात ये पूछना चाहूंगी कि एक गायक में क्या क्या बेसिक क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके।
0: देखिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपके पीछे सबक होना चाहिए। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीख के किसी काम को करते हैं, चाहे फिर बाद में आप गजल गाएं, भजन गाएं, कव्वाली गाएं, कुछ भी गाएं, फिल्मी गाना गाएं, तो फिर आपके गाने में परफेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है कि आपके संगीत के पीछे शास्त्रीय संगीत का पूरा सबक होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो अपना एक अंदाज है वो धीरे धीरे करके अपना अंदाज डेवलप होता रहता है, सबकी पहचान बने। और आज के दौर में खास तौर से आदमी
1: हाँ
0: ये बहुत जरूरी है कि आप अपने है ना नाम पे ध्यान ना दें, क्योंकि चमक दमक आपको बहुत प्रभावित करती है कि अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, अरे उसका तो बहुत नाम हो गया, हमारा कैसे होगा। नहीं, आप रियाज करो तो राज करोगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे थोड़ा सा सब्र करें कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमारा भी होगा, हम अपने मेहनत करते रहें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप ये संगीत के क्षेत्र में
1: मेहनत और पेशेंस दोनों जरूरी
0: जी
1: हैं।
0: पेशेंस
1: और
0: बहुत
1: जो
0: जरूरी है जी।
1: बच्चे इस विधा में अपना नाम चमकाना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई खास मशवरा रखना चाहेंगे?
0: यही मशवरा है कि आप गुरु गुरु के प्रति वफादारी रखें, गुरु को समर्पित करते हैं अपने आप को, जैसा गुरु कहते हैं वैसा करें, क्योंकि वो जो भी आपको कहेंगे उसमें आपका भला है, क्योंकि माँ बाप और गुरु ये जो कुछ भी आपके लिए सोचते हैं वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। इसलिए जो बच्चे संगीत में आना चाहते हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि अपने गुरु से ईमानदारी से सीखें, जितना वो बताते हैं वैसा करते रहें, तो आपका डेफिनेटली आगे जाके नाम होने वाला है।
1: बिल्कुल, नाम होने वाला है। और अगर आप मेहनत से, शिद्दत से उस काम में लगे रहते हैं जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, तो प्यार होना भी जरूरी है, शिद्दत होना भी जरूरी है, तभी आप कुछ कमाल पैदा कर पाएंगे।
0: देखिए संगीत से प्यार वैसे ही होना चाहिए सुषमा जी, जैसे कि आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपनी बीवी से करते हैं। संगीत से वैसे ही प्यार होना चाहिए। अगर आप संगीत से प्यार करोगे तो संगीत आपका होगा, और वरना आप संगीत से प्यार नहीं करेंगे तो आपका संगीत नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल, आपको फैमिली सपोर्ट भी पूरा मिला तभी आप बहुत कुछ कमाल कर पाए। तो मुझे लगता है एक सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर आपकी परिवार वाले अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक हौसला रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आप टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। मुझे याद है कि 2 बार मुझे फेल किया गया, तो जान करके किया गया, और वो टाइम ऐसा था जब पैर में बहुत चोट थी, बहुत तकलीफ थी, और पहुंचने के पैसे नहीं होते थे। तो वो टाइम पे 2 बार जब फेल किया गया तो आपको निराशा होती है, लेकिन निराशा के बाद आदमी को ये हिम्मत रखनी चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, अगर आज मैं फेल हो गया तो कल मुझे फिर वापस उठना है। संगीत तो ऐसी चीज है, वो पास फेल वाली चीज है, कॉम्पिटिशन है ही नहीं। संगीत तो पूजा है, इबादत है, जितनी आप करें उतनी कम है, तो ये बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, आपने जो भी अपने पल उठाए हैं अपनी जिंदगी के, और जिस तरह से ये सभी के सामने रखा है कि कैसे पूरी मेहनत से, चाहे बुरा वक्त भी आया, उसे भी आपने पॉजिटिविटी से आगे आप बढ़ते गए, पॉजिटिव
0: जी
1: वाइब्स आपने कभी नहीं छोड़ी, तो ये बहुत सीखने की बात है आपके व्यक्तित्व से।
0: शुक्रिया आपका। सुषमा जी, ये भी मेरे जो सुनने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ चीजें मैंने की हैं, जैसे कि अभी साजिद वाजिद साहब का काफी बड़ा नाम है बॉलीवुड संगीत में, बॉलीवुड म्यूजिक में, तो उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन साजिद भाई ने अभी वाजिद भाई के जाने के बाद एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसका नाम है तालीम म्यूजिक। तालीम
1: अच्छा।
0: म्यूजिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है एज ए प्रोजेक्ट हेड, एज ए कंपोजर, कि भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल तालीम के लिए कंपोज करें उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो मैंने कंपोज किया है, मेरे लिए सौभाग्य है कि अपने गुरुजी हैं उनके लिए मैंने कंपोज किया, उन्होंने गाया है एमोजन साहब ने, हरिहरन साहब ने गाया है, अनूप बिरोटा जी ने गाया है, कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है, शान भाई ने गाया है, पैपोन भाई ने
1: क्या
0: गाया
1: बात।
0: है, तो और एक गजल का गुलदस्ता लेकर हम लोग आ रहे हैं। और जो संगीत के सुनने वाले हैं, संगीत को और गजल को प्यार करते हैं, उन सबके लिए वाकई एक तोहफा होगा। तो बहुत जल्दी ये सीरीज शुरू होने वाली है, तो तालीम म्यूजिक से इसका इंतजार आपको करें, और बहुत जल्दी आप अच्छा कुछ सुनेंगे।
1: बिल्कुल, तो तालीम म्यूजिक को सुनने का बिल्कुल आप हम ध्यान रखेंगे, और आप अपनी आवाज के जरिए सबके दिलों में जो अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं वो इसी तरह बिखरती रहे, यही हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब ये चाहेंगे कि अपने संगीत के जरिए आप सभी को एक खास मैसेज जो देना चाहें।
0: देखिए, मुझे ग्राम राजस्थानी साहब के चार मिसरे बड़ी पसंद है, हमारे देश के लिए, कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। तो मेरी यही दुआ है कि हमारा भारत देश हमेशा खुशहाल रहे, हम सब भारत देशवासी हमेशा प्यार मोहब्बत से रहें और स्वस्थ रहें, और सब आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसी बना रहे, ये मैं दुआ करता हूँ। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक लाइन मेरी जो गजल थी फर्स्ट सोलो एल्बम की, वो मैं सुनाऊं सुषमा जी, अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई।
1: क्या बात है मोहम्मद वकील जी, आपकी आवाज इसी तरह हमारे जहन में गूंजती रहे और सबके बीच खुशबू बिखेरती रहे, ये हम दुआ करते हैं आपके लिए।
0: बहुत
1: थैंक
0: बहुत
1: यू
0: शुक्रिया
1: सो
0: आपने
1: मच।
0: सुषमा जी, याद किया मुझे, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी।
1: थैंक यू।
2: कभी शब्द प्रेरणा बन जाते हैं, कभी भावनाएं शक्ति बन जाती हैं, और कभी संगीत जीवन का सबसे सुंदर सहारा बन जाता है। इन्हीं खूबसूरत रंगों को समेटे हुए मैं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता लेकर आई हूँ जश्न सितारा गीत गुफ्तगू, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट मंडी गोविंदगढ़ से जगदीश अरोड़ा जी। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत जिनकी पहचान शिक्षा, नेतृत्व, भावनात्मक जागरूकता और संगीत प्रेम से जुड़ी हुई है। यह है दिल्ली की प्रभ सिमरन कौर जी। ये फ्लेमिंगो एकेडमी की संस्थापक हैं, कॉन्सेप्ट फर्स्ट बाय फ्लेमिंगो एकेडमी की सह संस्थापक हैं, एक प्रमाणित इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं और कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं। साथ ही संगीत इनके जीवन की आत्मा है, इनकी प्रेरणा है और एक खूबसूरत थेरेपी भी है। तो आइए जोरदार स्वागत करते हैं हमारी आज की खूबसूरत मेहमान प्रभ सिमरन कौर जी का। प्रभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी, और सभी को, जयपुर रेडियो के श्रोताओं को मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
2: जी, तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न रहेगा वो यही कि आप अपने बचपन के बारे में हमारी श्रोताओं को कुछ बताइए कि आपका बचपन कहाँ और कैसा रहा और उस दौर की कौन सी यादें आज भी आपके दिल के सबसे करीब हैं।
3: जी बिल्कुल, बचपन तो सबको ही प्यारा होता है।
2: जी
3: अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरा बचपन दिल्ली में बीता है, वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मैं पली बड़ी और वहीं से मैंने जिंदगी की जो अमूल्य सीखें होती हैं वो ली।
2: जी
3: दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ हर कल्चर, हर संस्कृति के लोग मिलते हैं, हर रंग देखने को मिलता है। तो बचपन में जो मुझे याद है, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करनी, परिवार के साथ हर त्योहार मनाना
2: जी
3: और शाम को इकट्ठे होके, एकत्रित होके एक साथ बैठना, छोटी छोटी बातें आज भी मेरी खूबसूरत यादों का हिस्सा है और उनमें
2: जी
3: शामिल है।
2: जी तो आपने अपने करियर की जो शुरुआत की वो एज कम्युनिकेशन ट्रेनर की, तो मैं चाहूंगी कि हमारी श्रोताओं को आप बताएं कि कम्युनिकेशन ट्रेनर का मतलब क्या होता है, और जब आपने एज करियर इस लाइन को चुना तो आपका अनुभव कैसा रहा?
3: जी बिल्कुल, मैंने अपने करियर की शुरुआत एक मल्टीनेशनल कंपनी से करी जिसमें एज अ कम्युनिकेशन ट्रेनर एंड बिजनेस ट्रेनर के रूप में की थी। कम्युनिकेशन ट्रेनर एक शिक्षक होता है जो लोगों को कम्युनिकेट करना सिखाता है। तो उस समय मुझे अलग अलग उम्र और अलग अलग लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। उस दौरान उस अनुभव ने मुझे काफी कुछ सिखाया कि ये सिर्फ अंग्रेजी बोलना ही, इंग्लिश बोलना एज अ लैंग्वेज काफी नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सही सोच और प्रभावशाली ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से अपनी बात को रखना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है बट सुनना भी उतना ही जरूरी है। तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों में प्रतिभा होती है लेकिन आत्मविश्वास की कमी उन्हें पीछे रोक देती है। वहीं से मुझे समझ आया कि एक अच्छे शिक्षक का काम केवल भाषा को सिर्फ सिखाना नहीं, नॉलेज बांटना नहीं, बल्कि आत्मविश्वास को बढ़ाना भी होता है। यही सीख आज मैं अपने हर एक ट्रेनिंग सेशन में, प्रशिक्षण का आधार है मेरे।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रभ जी, आपके इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आपका एक खूबसूरत सा गीत लेते हैं।

0: बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला जो आपसे प्रश्न है वो ये कि आप एक सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं, तो ये बड़ा भारी भरकम एक शब्दों का समूह लग रहा है मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को समझाएं, सरल शब्दों में बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता क्यों होती है।
1: जी बिल्कुल, आई थिंक सबने IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन सुना होगा, इंटेलिजेंस सुना होगा, और आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सुना होगा, बट AI जो है इमोशनल इंटेलिजेंस वो भी उतना ही जरूरी है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो AI इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें सही तरीके से संभालना और दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान देना, क्योंकि जिंदगी में जैसे मैंने कहा कि IQ ही सिर्फ सफलता नहीं तय करती। कई बार आप भी और हम भी ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यदि वो अपना गुस्सा, तनाव या अपनी भावनाओं को नियंत्रित या कंट्रोल नहीं कर पाते तो उन्हें चैलेंजेस, कठिनाइयों का सामना अपनी जिंदगी में करना पड़ता है।
0: जी।
1: तो इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को समझना सीखते हैं, रिश्ते बेहतर बनते हैं और निर्णय बेहतर लिए जाते हैं अपनी जिंदगी और जीवन।
0: तो प्रभ जी, फ्लेमिंगो एकेडमी की स्थापना का विचार कैसे आया और इसके पीछे आपकी क्या सोच रही?
1: जी बिल्कुल, फ्लेमिंगो एकेडमी शुरू करने का उद्देश्य मेरा मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मुझे मिला, एंड दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मी एंड माय हस्बैंड। एंड उसका उद्देश्य केवल अंग्रेजी सिखाना नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो वहां पर अंग्रेजी का बहुत बड़ा हवा नहीं था, बट लुधियाना आकर जब हम पंजाब के विद्यार्थियों से मैं मिली तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस उसको कंसिडर किया जाता था, और उससे उनका आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास और जीवन में आगे बढ़ने की एक सही दिशा को सिखाना का जो मेरा एक गोल था लोगों को, वो मैंने पूरा किया। कि बहुत सारे छात्र मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए मैंने फ्लेमिंगो एकेडमी के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करी जहां हर विद्यार्थी महसूस करे कि वो भी बोल सकता है, उसमें भी आत्मविश्वास क्रिएट हो सकता है, बिना किसी डर के सीख सकने की क्षमता रख सकता है।
0: बहुत ही बढ़िया विचार आपका, और इसी के साथ हम एक गीत और लेते हैं।

0: जी, जैसे कि आपने अभी बातों में बताया कि आपका बचपन दिल्ली में गुजरा है, जो आपका जन्म हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, लेकिन जो फ्लेमिंगो एकेडमी की जो आपने स्थापना की है वो आपने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लुधियाना में की है। तो दिल्ली से लुधियाना तक का सफ़र आपके जीवन में कैसे आया और इस बदलाव ने आपको किस तरह से नई मार्ग दिखाई?
1: जी बिल्कुल, दिल्ली से लुधियाना, शादी के बाद मेरा जो जीवन है वो दिल्ली से लुधियाना की ओर आया। और शुरुआत में एक नए शहर, नए माहौल और नई जिम्मेदारियों के साथ खुद को ढालना आसान नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि हर बदलाव अपने साथ नए अवसर भी लेकर आता है।
0: बिल्कुल
1: तो मेरे मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज का बहुत सपोर्ट हमेशा से रहा है। लुधियाना आने के बाद मुझे अपने सपनों को एक नई दिशा देने का अवसर मिला।
0: जी,
1: यहीं से मैंने अपने अनुभव और अपने पैशन को, अपने जुनून को एक उद्देश्य में बदला। और आज अगर हम फ्लेमिंगो एकेडमी के माध्यम से जुड़े हैं, विद्यार्थियों की अगर मैं मदद कर पा रही हूँ, तो उसमें शहर का बहुत बड़ा योगदान है।
0: जी
1: इस बदलाव ने मुझे यही सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी नई शुरुआत जीवन की सबसे खूबसूरत उपलब्धि बन सकती है।
0: वाह, बहुत खूब। इसी के साथ एक गीत और लेते हैं हम।

0: रब जी, आपने बताया कि संगीत आपको अपने माता पिता से विरासत में मिला है, तो हमारी श्रोताओं को आप अपने माता पिता, अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि संगीत ने आपको, आपके परिवार को किस प्रकार से जोड़े रखा है।
1: जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे संगीत जो है अपने माता पिता से ही मिला है विरासत में। मेरे पिताजी ने अपने जो म्यूजिक की शुरुआत थी वो हवाईयन गिटार के साथ करी थी,
0: वाह,
1: और बाद में उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा दिल्ली के गंधर्व महाविद्यालय में
0: अच्छा,
1: श्री विपिन चंद्र मौदगिले जी के मार्गदर्शन और उनके पिता के मार्गदर्शन में संगीत विशारद की। और उसी गंधर्व महाविद्यालय में मैं भी जब अपने यूनिवर्सिटी के बाद मैंने भी थोड़ा सा उसमें वोकल की ट्रेनिंग ली,
0: जी
1: और मेरी माताजी को भी उनसे मैंने आई थिंक जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की जो गजलें हैं वो उन्हें बहुत बेहद पसंद थी,
0: जी
1: तो उनका जो वो टेस्ट है वो मेरे अंदर उनसे आया। तो संगीत का ये प्रेम मुझे अपने माता पिता से डेफिनेटली विरासत में मिला है, मुझे
0: जी
1: लगता है।
0: जी तो आपको किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक पसंद है? कोई पसंदीदा गायक, गायिका या गीत?
1: एक का नाम लेना तो बहुत ही मुश्किल होगा सपना जी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मधुर और अर्थपूर्ण संगीत जो है वो मुझे बहुत पसंद है। विशेष रूप से पुराने हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें, वो गीत, वो बोल जो आज के कोई भी उम्र का इंसान हो वो गुनगुना सकता है, उन्हें याद रहते हैं। मुझे गजलें, सूफी संगीत बहुत सुकून देते हैं। ऐसे गीत जो दिल को छू जाए और जिनके बोल जीवन से जुड़े हों वो हमेशा आकर्षित करते हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो जैसे कि अभी आपसे बातचीत करके हमें पता चल रहा है कि आपने अपने जीवन में अभी तक अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आप एक सफल बिजनेस वुमन हैं, उद्यमी हैं, कोच हैं, प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, मेहनत और ईमानदारी की सीख दी है।
0: जी
1: और इसके बाद मेरे पति और मेरे पूरे परिवार, इन-लॉज परिवार की मैं आभारी हूँ जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास रखा, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है।
0: जी
1: और अंत में मुझे लगता है कि हर एक इंसान जिनसे हम अपनी जिंदगी में मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीख
0: बिल्कुल
1: दे कर जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो अपने विद्यार्थियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, उनका विश्वास और उनकी सफलता जो है मुझे हर दिन बेहतर करने की प्रेरणा देती है कि मैं कुछ सीखती रहूं नया।
0: बिल्कुल सही। तो प्रभ जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी तक का जो भी आपका सफर रहा है, चाहे वो आपके करियर के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ एसोसिएटेड हो, तो अगर आप अपनी इस जीवन यात्रा को किसी एक गीत में व्यक्त करना चाहेंगी, तो वो गीत कौन सा होगा?
1: पूरी जिंदगी को एक गीत में करना
0: जी
1: तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ,
0: जी
1: हमारा एक मेरा एक पसंदीदा गीत जिसको मैं कहूंगी, जो मैंने अपने शादी के समय पर भी गाया था,
0: अरे
1: और मैं जब भी कोई ऐसे मुझसे स्पॉन्टेनियसली पूछता है तो वही एक गीत है जो मुझे हमेशा याद आता है, और बहुत खूबसूरत बोल हैं उसके।
0: जी
1: तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी जब
0: जी
1: कोई
0: जी
1: बात बिगड़ जाए।
0: जी जरूर। ये तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा होना, कि हमारे स्टूडियो में इतनी खूबसूरत कलाकार आई हुई हैं और वो हमें गीत गुनगुना के दिखाना चाहती हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
1: जब

0: इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी प्रभ जी, और इतना अच्छा गाती हैं, तो हमारे श्रोता, मेरे को पूरा विश्वास है कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा आपकी इस लाइव सिंगिंग को।
1: शुक्रिया सपना जी, आपका भी
0: तो
1: बहुत बहुत, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ही मजेदार ये बातचीत रही।
0: जी, थैंक यू। तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि जो हमारे युवा श्रोता हैं, विशेषकर युवा महिलाएं हैं, उनके लिए आप कोई अगर संदेश देना चाहें तो वो क्या रहेगा?
1: जी बिल्कुल, मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि जिंदगी में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम हर एक चुनौती से कुछ सीख लें तो वो हमें और मजबूत बनाती हैं। और युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को कभी भी

0: आंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
1: बहुत खूब, वाह प्रभ
0: अरे
1: जी, आपसे बातचीत करके सचमुच बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ शिक्षा, इमोशनल इंटेलिजेंस, पारिवारिक मूल्य और संगीत के महत्व पर बेहद सुंदर विचार साझा किए हैं। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो स्टूडियो की ओर से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और हम आपसे विदा लेते हैं। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ। प्रोग्राम रहेगा जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। तब तक यूं ही हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: करोगे याद तो हर बात याद आएगी, और आपको याद आ रहा होगा कि हमने कहा था कि हम आपको सुनवाएंगे डिस्को बादशाह। जी हाँ, डिस्को बादशाह शामे संगीत प्रोग्राम में मिथुन दास स्पेशल। जी हाँ, शामे संगीत आज के इस प्रोग्राम में जितने खूबसूरत गजल गा सकते हैं हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा गोविंदगढ़ पंजाब से, उतने ही आसानी से डिस्को गीत भी गा लेते हैं। तो बिना प्रतीक्षा के करते हैं शुरुआत आज के इस खूबसूरत धमाकेदार प्रोग्राम की जगदीश अरोड़ा के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

शामें संगीत सुन रहे हैं आप डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, डिस्को बादशाह मिथुन दास स्पेशल। और ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा साहब। आपकी आवाज, आपकी पहचान, बिल्कुल नाचिए गाइए, धूम मचाइए आपकी आवाज के साथ। बहुत शुभकामनाएं, वेलकम जगदीश जी आपका। आपकी आवाज डिस्को की पहचान।

जी हाँ, जयपुर रेडियो तकदीर का बादशाह, आप जैसा सिंगर जिसे मिले उसे डिस्को का बादशाह ही कहेंगे। जगदीश अरोड़ा साहब अपनी आवाज के साथ इस मंच पर।

और सिंगिंग के डिस्को गीतों के बादशाह आज के कलाकार गोविंदगढ़ पंजाब से जगदीश अरोड़ा, आपकी आवाज आपकी पहचान। शामे संगीत में डिस्को बादशाह मिथुन दास स्पेशल लेकर जगदीश अरोड़ा हमारे संग इस मंच पर।

तन्हा तो नहीं बीत पाएगा क्योंकि आपके साथ और हमारे साथ आज हैं जगदीश अरोड़ा, अपने गीतों के साथ, सुरीली आवाज के साथ, शाम में संगीत में। और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं ये अगला डिस्को धमाका।

बिल्कुल पक्के डिस्को डांसर बन गए आप जगदीश भाई। बहुत खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं, शामे संगीत डिस्को बादशाह मिथुन दास स्पेशल। और इसमें आज के सिंगर गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

बिल्कुल इतना कमाल का गाएंगे, आपकी आवाज में वो कशिश है कि हमारे लिसनर्स को आना पड़ेगा फीडबैक देने के लिए। और कौन नहीं होगा जो आपकी आवाज को सुन के आएगा नहीं। आपकी आवाज, आपकी पहचान, गोविंदगढ़ पंजाब से हमारे साथ जगदीश अरोड़ा, आज के कलाकार, डिस्को बादशाह मिथुन दा स्पेशल प्रोग्राम लेकर जगदीश अरोड़ा।

जी बिल्कुल, हमें भी याद आ रहा है श्रोताओं का प्यार और बेशुमार, जी हाँ बेशुमार प्यार और उनके फीडबैक्स हम देना चाहेंगे। दिलीप खान देवगोट, हेमलता राजपुरोहित जोधपुर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, सुरेश के श्रीवास्तव अजमेर से, रत्ना राव मुक्ता चड्डा जयपुर से, रिजवान खान, हिमांशु सिंह, श्वेता अय्यर, ज्योति भावसार भरूच अजमेर से, अमित शर्मा, रति भार्गव बेंगलोर से, राजीव कल्याणी, अंशु सिन्हा, अरुणा आचार्य बीकानेर से, तलत जमाल, तुलसी ठाकुर, राजेंद्र शर्मा, आरती गौड़, विवेक पुरोहित और इसके अलावा भी जो नाम हैं उनको हम शामिल करना चाहेंगे। आप हैं जयपाल, कपिल त्रिवेदी, अशोक खुराना, मीता ठक्कर, भारत राम पटोदी, असलम, सीमन मैकवन, कुशाल, सैयद यूनस, नैना डोग वरे, शंकरलाल जयसवाल, मिश्रीलाल विश्वकर्मा, एनएस, अंजलि कोठारी, एनकेसी, विक्रम त्रिवेदी, दिनेश चौहान, विठल जाधव, सीताराम, सुषमा गोदारा, भवानी सिंह सुजानगढ़ से, रूपेश परभनी, आरके और नारायण हागे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज के इस खास प्रोग्राम को सुना और सराहा। यूं ही जगदीश जी को हम कहेंगे गाते रहें और इतने खूबसूरत डिस्को के साथ आते रहें। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

0: बहुत सच कहा, तो ही मेरा दिल तो ही मेरी जान, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपने सुना प्रोग्राम शामे संगीत, डिस्को बादशाह मिथुन दास स्पेशल सॉन्ग्स लेके आए थे गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश आज की इस खूबसूरत शाम का आपका मेजबान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जयपुर रेडियो की इस बेहद सुरीली गीतमाला में, जिसका शीर्षक है आओ झूमे गाए। आज की महफिल का आगाज करने से पहले चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, वो दिन भी क्या दिन थे, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, जब तपती धूप में हमें खेलते देख सूरज भी हमसे जुड़ता था, और जिस राह पे मुड़ती थी अपनी साइकिल साथ में चांद भी मुड़ता था, जब बरगद की जटाएं भी हम ही से झूला झूलती थी, जब बरगद की जटाएं भी हम ही से झूला झूलती थी, आलम कुछ ऐसा था दोस्तों कि तितलियां भी हमसे खेलती थी, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, कागज की कश्ती की तरह अपने सपने भी डोलते थे, और ख्वाब भी इतने सतरंगी थे कि उनमें हम परियों से भी बोलते थे। सचमुच दोस्तों, न रोने की कोई वजह थी और न हंसने का कोई बहाना, न रोने की कोई वजह थी और ना ही हंसने का कोई बहाना, आज महसूस होता है कि कितना सुहाना था वो जमाना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बचपन की, मां की लोरी से यादों की डोरी तक जो सफर हम सब ने तय किया है, आइए आज इसे फिर से दोहराते हैं इस खूबसूरत गीतमाला के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत में चलिए सुनते हैं 1975 की फिल्म मिली का एक बेहद खूबसूरत गाना, जिसे लिखा है योगेश जी ने, संगीत दिया है सचिन देव बर्मन जी ने, और गाया है लता मंगेशकर जी ने। आज इस खूबसूरत गाने को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपनी सुरीली आवाज में गिरिजा जी और तनुजा जी।

दोस्तों, इस सुरमई सफर में जो अगला गीत अब हम सुनेंगे उसका अंदाज ही कुछ निराला है। ये गाना है पापा और मम्मी के प्यार के बारे में। और वैसे भी दोस्तों, 1971 में प्रदर्शित फिल्म अंदाज का अंदाज भी कुछ निराला ही था। बतौर निर्देशक ये रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म थी। बतौर लेखक ये सलीम जावेद के हिट जोड़ी की पहली फिल्म थी। और दोस्तों, यही फिल्म बनी संगीतकार जयकिशन जी के जिंदगी की आखिरी फिल्म। तो चलिए सुनते हैं हतरक जयपुरी द्वारा लिखित, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया हुआ और शंकर जयकिशन जी ने संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी सुमधुर आवाज में किशोर जी और श्वेता जी।

दोस्तों चलो ये तो सुन ली हमने मम्मी और पापा के प्यार की कहानी, लेकिन कई बार माँ बाप के आपसी रिश्ते बच्चों की मासूमियत पे एक गहरा घाव भर देते हैं। कुछ यही दिखाने की कोशिश की थी 1980 के दशक में आई हुई मूवी मासूम ने। निर्देशक शेखर कपूर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो धूम मचा ही दी थी और कई सारे अवार्ड समेट लिए थे, लेकिन खास करके इसके गाने इतने मशहूर हुए कि आज भी हम उन्हें गुनगुनाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं गीतकार गुलजार के शब्दों में आरडी बर्मन जी द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ एक ऐसा ही मासूमियत भरा गाना, जिसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही है अपने सुमधुर आवाज में डॉली जी और हीना जी।

दोस्तों, अब मासूमियत की बात छिड़ ही चुकी है तो जरा सोचिए उस दौर में हम कितने मासूम हुआ करते थे कि चिड़िया, कौवा, हाथी, भालू, बंदर अपने दोस्त हुआ करते थे। ऐसी ही मासूमियत को छलकाया था 1957 की एक फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं ने, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की बेगुनाही साबित करने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करता है ताकि वो प्रधानमंत्री से मिलके उन्हें अपने मन की बात सुना सके। तो चलिए संगीता जी और कविता जी की लुभावनी आवाज में हम भी खो जाते हैं चिड़िया, कौवे, भालू और बंदर की दुनिया में। आइए सुनते हैं अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म का एक गाना जिसके गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत से नवाजा है दत्ताराम वाडकर जी ने।

दोस्तों, जब हम भालू, बंदर, चिड़िया, कौवे जैसे अपने बचपन के दोस्तों से मिल चुके हैं, तो हम बचपन के उस एक दोस्त को भला कैसे भुला सकते हैं, जिसके बिना हमारी एक भी रात नहीं गुजरती थी, जिसकी कहानियां सुना के माँ हमें सुलाती थी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चांद की। इतना गहरा था हमारा रिश्ता कि कई गानों ने तो उसे हमारा मामा बना दिया था। कभी हम उसके घर जाते और वहां अपनी दुनिया बसाते, तो कभी उसको धरती पे अपनी दुनिया में बुलाते। आज हमारे होनहार गायक नमित सिन्हा जी और धन्या संतोष जी ऐसी ही एक चांद के सफर पे आपको लेके जाएंगे। तो लीजिए, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में फिल्म जख्मी का ये गाना। बोल है गौहर कानपुरी के और संगीत दिया है बप्पी लहरी जी ने।

दोस्तों, उन दिनों हमारे खेल भी बड़े अजीब हुआ करते थे। छोटी छोटी शरारतों से हमें बड़ी खुशियां मिलती थी, जैसे माँ को बिना बताए डिब्बे से लड्डू चुराना, गर्मियों की छुट्टियों में खेतों में टहलते टहलते पेड़ से आम या अमरूद चुराना।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंको, पिंको पकड़े पका पपीता। बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
2: कपड़ा।

दोस्तों, ऐसी पहेलियां बुझा के शरारत और मनोरंजन करने का सिलसिला सिर्फ आज के दौर का नहीं है और ना ही ये मनोरंजन या बच्चों तक सीमित है। अब यही देखिए ना, हमारे वेदों के ऋषियों ने भी नासतीय सूक्त जैसी काव्यात्मक पहेलियां बुझा के पूरे संसार की रचना का पाठ हमें पढ़ाया। खैर दोस्तों, इतना दूर नहीं जाते। अब यही देखिए, 1955 में कवि शैलेंद्र जी ने कुछ ऐसी ही पहेलियां लिखी। शंकर जयकिशन जी ने उसे संगीत दिया, लता जी और मुकेश जी ने उसे गाया और बस होना क्या था, बन गया एक सुपर हिट गाना जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि रशिया, चीन, इजराइल जैसे कई देशों में हिट हुआ। तो चलिए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का यही गाना मनप्रीत जी और अनूप जी की मनमोहक आवाज में।

0: बोलो क्या
1: तुम?
0: हम
2: ऐसे बेहद लुभावने गीत सुनने के बाद दोस्तों दिल में एक ख्याल आता है कि आखिर बड़े होकर हमने क्या पाया, या फिर यूं कहिए कि जितना भी पाया शायद उससे कई ज्यादा खोया। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, ए उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, ए उम्र अगर है दम तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया तूने बचपना छीन के बता। सचमुच दोस्तों वो दिन भुलाए नहीं भूलते, और भाई इतनी सुनहरी यादों को भुलाए भी क्यों। शायद यही कहना चाहते हैं हमारे अगले गीत के गायक MD त्यागी जी और गायत्री जी। तो लीजिए उन्हीं की आवाज में सुनते हैं शकील बदायूनी द्वारा लिखित और नौशाद जी ने संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म दीदार का ये गाना।

चलिए दोस्तों, बचपन का यह सुहाना सफर तय करते करते अब हम उम्र के उस पड़ाव पे आते हैं जहां थोड़ी बहुत जमाने की समझ हमें भी आती है और थोड़ी दुनियादारी भाई हम भी सीख लेते हैं। रोने और हंसने के अलावा अब हमें रूठना और अपनी बात मनवाना भी भले खूब आता है। ये उम्र का वो नाजुक पड़ाव है दोस्तों जो आपके भविष्य की नींव बनती है। यहां कोई अच्छा सलाहकार मिले तो आपकी जिंदगी बनती है या फिर बिगड़ती है। हमारे अगले गायक विश्वजीत जी और विद्या जी भी शायद आपको यही बताना चाहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव को कैसे पार किया जाए। तो सुनते हैं उन्हीं की सुमधुर आवाज में फिल्म अपना देश का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत से नवाजा है आर डी बर्मन जी ने।

अब देखिए ना दोस्तों, बचपन की यादों की बौछारों में भीगते भीगते वक्त कैसे बीता इसका पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए हैं इस सुरीली महफिल के अंजाम तक। दोस्तों, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हम दौड़ना तो भली भांति सीख गए हैं, पर शायद जीने का मकसद कहीं छूट गया है। और शायद यही जिंदगी का फलसफा सिखाती है हमें यह गजल, जिससे आज हम अपनी सुरीली महफिल की समाप्ति करेंगे। सुदर्शन फाकीर की ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां, जिन्हें संगीत और सुरों से नवाजा है जगजीत सिंह जी ने, आज आपके सामने पेश करेंगे हमारे दो सुरीले होनहार फनकार, बिमल जी और अपर्णा जी।

0: दोस्तों, वक्त का तकाजा यह कहता है कि अब आपसे अलविदा कहने का समय हो गया। मैं आशा करता हूं कि जितनी खुशियां इन गीतों को आप तक पहुंचाने में हमें मिली, उतनी ही खुशियां आपको भी इन्हें सुनने में आई होंगी और आप भी अपने बचपन की सुनहरी यादों में खो गए होंगे। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे किसी मुसाफिर की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके हुए रास्ते की तरह। तो चलिए, इसी ख्याल के साथ मैं मंगेश आपकी आज की शाम का आपका मेजबान आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। फिर से एक बार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिएगा जयपुर रेडियो, क्योंकि यही तो है आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की शाम हम एक ऐसे कलाकार को नमन करेंगे जिन्होंने 38 साल में 100 से ज्यादा हिंदी और बंगाली भाषी फिल्मों को न सिर्फ संगीत दिया पर गाया भी। हम बात कर रहे हैं सचिन देव बर्मन जी की, जिनको हम सब एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। एसडी बर्मन त्रिपुरा के शाही खानदान से थे। उनके पिता नवदीप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के शाही खानदान से थे और उनकी माता निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। एसडी बर्मन का झुकाव शुरू से ही संगीत की तरफ था और उन्होंने 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन में बंगाली लोकगीत गाकर अपना सफर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म 1935 की एक बंगाली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाया भी और एक्टिंग भी की। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1957 की एक सुपरहिट फिल्म 9-2-11 से, जिसमें देवानंद और कल्पना कार्तिक थी। इस फिल्म के बेहद खूबसूरत गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए, जिनकी महक आज तक बरकरार है। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं मनु मृदुल और आबा जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट से है, जिसमें देवानंद और नूतन थी। इस फिल्म के गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और इस फिल्म का मधुर संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने। लीजिए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना और डॉक्टर तरुणा जी की मधुर आवाज में।

क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1962 की फिल्म बात एक रात की से है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं दीपशिखा जी और किरण जी की मधुर आवाज में।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो हम सुनेंगे वो 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने से है, जिसमें देवानंद के साथ नूतन थी। इस फिल्म के गीत लिखे हसरत जयपुरी जी ने और फिल्म का मधुर संगीत दिया एसटी बर्मन जी ने। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग में नूतन जी को एक ग्लास में दिखाया गया, जब उन दिनों कंप्यूटर्स नहीं थे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, पर विजय आनंद जी ने वो कर दिखाया। लीजिए इसी फिल्म का ये मधुर गीत सुनते हैं संगीता जी और एमडी त्यागी जी की मधुर आवाज में।
1: चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों न मिट जाए, फिर भी मैं
2: फिर भी मैं

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। फिल्म तेरे घर के सामने के सारे गीत खूब सुपरहिट हुए। अब जो गीत आप सुनेंगे वो इसी फिल्म से है जिसे कुतुब मीनार के अंदर से शूट किया गया था। गाना दो दो बार शूट किया गया क्योंकि एक लीडर जो फॉरेन कंट्री से आए हुए थे उनको शूटिंग दिखानी थी और उन्हें नाराज नहीं करना था। आइए उसी गीत को सुनते हैं जूही जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। आइए अगला गीत सुनते हैं एसडी बर्मन की एक सुपरहिट फिल्म गाइड से। इस फिल्म में देवानंद जी के साथ वहीदा रहमान थी। ये देवानंद जी की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म को 14 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एक्सेट्रा। ये एक फिल्म थी जो हिंदी में बनने के बाद इंग्लिश में भी बनाई गई। इस फिल्म का खूबसूरत म्यूजिक दिया गया एसडी बर्मन जी के द्वारा। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं संजीव कुमार जी और संजय हारने जी की मधुर आवाज में।

दोस्तों, गाइड फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो आर के नारायण के 1958 के द गाइड नॉवल के ऊपर बेस थी। इसके सभी गाने खूब सुपरहिट हुए और इनका म्यूजिक दिया था एस डी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं, मेरी और मुकेश गुलानी जी की मधुर आवाज में।

वो एक इंग्लिश गाना द ब्रिज ऑफ द रिवर क्वाई से प्रभावित है। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं वरुण जी और विद्या जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1973 की फिल्म अभिमान से है, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुरी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला। और इस फिल्म के गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने, जो आज

बेहद खूबसूरत पेशकश। अगला गीत इसी फिल्म का एक और नायाब गीत है जिसे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा। ये गीत पहले मुकेश जी को गाना था, पर उन्होंने जब मनहर उदास की आवाज में ये गीत सुना तो उसे बदलना ठीक नहीं समझा। आइए इसी गीत को सुनते हैं श्वेता सम्बा सिवन और अनूप शर्मा जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी से है, जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थी। इस फिल्म के रसीले गीत लिखे नीरज जी ने और संगीत से सजाया एसडी बर्मन जी ने। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं, कविता जी और अनिंदो जी की मधुर।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हमारे संग है, हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह गोहिल। वेलकम है नरेंद्र जी, और हमारे श्रोता आपके गीत सुनते हैं बराबर और जानते हैं आपका नाम जयपुर रेडियो के सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं आपका पहला गीत और इस प्रोग्राम को देते हैं एक स्पीड।

है, कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे मैं

हैं, इनकी बदौलत कितने लोग मौत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो सोचो जरा समझो समझो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे महसूस के दुनिया

0: जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी खराब है।
1: कह देना बहुत आसान है कि दुनिया बहुत खराब है, पर दो जासूस महसूस करते हैं तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। और ये खूबसूरत गीत गा रहे थे नरेंद्र सिंह गोहिल गांधीनगर गुजरात से, और आपका साथ दे रहे थे आपके सहगायक अजय पाठक। आप सुन रहे हैं वो गीत जो दो गाने हैं और मुकेश जी ने जिन गीतों को गाया है। अगले गीत की ओर चलते हैं और देखते हैं नरेंद्र सिंह गोहिल क्या लेके आए हैं, क्या अफसाना है, क्या कहानी है, क्या फसाना है।

माला लेकर आए हैं नरेंद्र सिंह गौहिल गांधीनगर गुजरात से, और इस गीत में साथ दे रही थी जसवीर कौर। प्यार का आगाज मुकेश जी के वो गीत जिन्हें दो गानों के रूप में आप सुनते हैं, और उन्हीं गीतों का एक संकलन लेके आए हैं नरेंद्र सिंह गौहिल, हमारे आज के कलाकार। आपकी आवाज आपकी।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस गीत में आपका साथ दे रही थी, यानी नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी, सीमा कदासिया। आइए सुनते हैं युगल गीत माला का अगला सॉन्ग।

ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसी दुनिया में हैं जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड और जिसे सुनती है पूरी दुनिया। नरेंद्र सिंह गोहिल का साथ दे रही थी इस गीत में हेमांगिनी। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

रहे हैं वो गीत जिन गीतों को आवाज दी थी मुकेश जी ने, और आज वो आवाज नरेंद्र सिंह गोहिल दे रहे हैं अपने को सिंगर्स के साथ।

सितारों में और ये दो गाना गा रहे थे तमन्ना और नरेंद्र सिंह गोहिल। और आइए भावना के साथ नरेंद्र सिंह गोहिल, मुकेश जी का ये खूबसूरत गीत भावना अवस्थी और नरेंद्र सिंह गोहिल लेके आए हैं ये सुरीला सॉन्ग।

ये प्यार का अफसाना सुना रहे थे अपने गीत से नरेंद्र सिंह गोहिल और भावना अवस्थी। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गीत। इस गीत में साथ दे रही हैं सीमा

तुम प्यार से प्यारे हो और प्यार से प्यारा है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, जहाँ से सुनते हैं आप अपने सुरीले सॉन्ग। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और आपने सुना अभी नरेंद्र सिंह गोहिल के साथ सीमा कदासिया का युगल स्वर। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं तक। बहुत धन्यवाद कहेंगे, आभार कहेंगे नरेंद्र सिंह गोहिल को कि आप इतने सुरीले सॉन्ग लेके इस मंच पर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सुनते रहें जब रेडियो, बार बार आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। मैं हूँ आरजे प्रीत और लेकर के आई हूँ एक म्यूजिकल शो जिसका नाम है मेरी प्रीत अमर कर दो। आपकी आवाज आपकी पहचान में हमारे साथ हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री ओपी शर्मा जी।
1: आज हम स्वागत करते हैं अपने नए मेहमान का जिनका नाम है आशुतोष तिवारी जो सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष आपका हमारे म्यूजिकल शो में। कैसे हैं आप?
2: नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ।
1: ये बताइए कि जयपुर रेडियो के मंच पे ये पहली बार आप आए हैं या पहले भी आ चुके हैं?
2: ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जयपुर रेडियो के मंच में अभी पहली बार ही आ रहा हूँ। गाने तो कई बार मेरे प्रसारित हो चुके हैं
1: जी, लेकिन आपका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, पहली।
2: जी जी बिल्कुल।
1: तो जयपुर रेडियो के लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन है?
2: जी जरूर, मैं आशुतोष तिवारी सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरा एक व्यवसाय है दवा का। और मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी है नीलम, दो बच्चे हैं और वाइफ भी मेरी जॉब में है।
3: तो बचपन से ही गाने का शौक था मुझे, बस जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, म्यूजिकल प्लेटफॉर्म, तो मैं उसमें गाने लग गया। धीरे धीरे कुछ कार्यक्रम भी अटेंड करने लग गए हैं, म्यूजिकल शो वगैरह, इस तरीके से जर्नी चल।
1: जी जी जी, नहीं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि आपको म्यूजिक तो पसंद था, फिर ये दवा की व्यवसाय से आप कैसे जुड़ गए? आप मुझसे इस टाइम बता रहे हैं ना।
3: होता क्या है कि ये देखिए, ये हमारा एक शौक होता है, लेकिन आगे यदि हमें बढ़ना है करियर में, तो मैंने पढ़ाई की थी बी फार्मा नागपुर से। उसके बाद मैं जॉब में था कुछ दिन, फिर मेरी श्रीमती जी है यहाँ पे कोल इंडिया में डाइटिशियन के पोस्ट में, तो हम दोनों अलग अलग थे शादी के बाद। तो फिर मैंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया।
1: तो मतलब कि फिर संगीत से जुड़ा हुआ तो होता चला गया है ना?
3: हाँ बिल्कुल, संगीत तो हमेशा सोल है हमारी, वो तो उससे हम जुड़े हैं बचपन से ही, और अब तो और भी कुछ ज्यादा ही फैसिनेट हो गए हैं।
1: हाँ जी, जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर सुन रहे हैं आशुतोष जी को जो कि सिंगरौली मध्य प्रदेश से हैं। देखिए जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स को मालूम है कि हमारे इस शो में जो आते हैं मेहमान वो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम नए नए सिंगर्स को आमंत्रित करें और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से उनकी आवाज दूर दूर तक जाए। और आशुतोष जी, आज आपको देश दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है, तो पहले तो बताइए आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? बातें तो हम बहुत करेंगे पर फेवरेट सिंगर के बारे में तो जान लें।
2: बिल्कुल प्रीत जी, वैसे तो कहा जाए तो हमारी जो बॉलीवुड की दुनिया है उसमें एक से एक सिंगर कलाकार हैं और आते जा रहे हैं, तो ये कह पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि मेरे फेवरेट सिंगर कौन है। बचपन से हमने रफी साहब को, मुकेश साहब को सुना है ना, किशोर जी को सुनते हुए बड़े हुए, इधर फिर बाद में अभिजीत, सोनू निगम, कुमार सानू, ये सब हुए, तो मतलब कहना तो बड़ा असंभव है, सभी अच्छे लगते हैं।
1: वही मैं बोलना चाह रही थी कि सभी सिंगर फेवरेट हैं, है ना? वैसे तो सच बात है कि सिंगर्स के लिए कोई ऐसा खास पसंद नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ कभी कभी होता है ना कि किसी किसी के दिमाग में एक सिंगर गूंजते रहते हैं बस, कि अरे मुकेश जी हैं या रफी जी हैं।
2: किशोर कुमार जी जैसे, उनके गाने मतलब सुनने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है, और जैसे अभी सावन का मौसम भी है तो एक गाना मुझे याद ही आ रहा है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं आशुतोष तिवारी को, और चलिए पहले उनका पहला सॉन्ग सुनते हैं।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। देखिए सुनिए, इतना मौसम, मतलब मौसम तो है ही बारिश का, और सॉन्ग इतना खूबसूरत है ना ये, कि बस समा बांध देता है सावन में, चार चांद लग जाते हैं और हमारे जो लिसनर्स है ना वो चाय और पकोड़े लेकर के बैठे हुए इस मौसम में और इस सॉन्ग

0: बिल्कुल हावी हो गया है संगीत के लिए, तो उठते जागते सोते जब भी खाली समय मिलता है तो बस ध्यान उधर ही जाता है। और बीच बीच में तो हम कार्यक्रम भी अटेंड करने जाते हैं, म्यूजिकल इवेंट, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है बिजनेस में, क्योंकि हमारे पास कोई छुट्टियां नहीं होती है, हमें मैनेज करना पड़ता है। यदि हमको अपने शौक को जारी रखना है और ये हमको अपने मूड को फ्रेश रखना है तो जरूर हमें समय निकालना पड़ेगा उसके लिए।
1: घर परिवार का सहयोग मिलता है आपको, आपकी सिंगिंग
0: बिल्कुल
1: जब होती है
0: संभव
1: तो।
0: ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए ऐसा, तो सहयोग मिलता है
1: हाँ
0: और हमारे शॉप में भी कुछ कर्मचारी हैं,
1: ये
0: बिल्कुल बिल्कुल वो हमें हमेशा सहयोग करते हैं। कभी भी मेरा इवेंट
1: जी
0: रहता है मैंने पहले से प्री प्लांट बता देता हूँ कि मुझे ऐसा करना है, तो बराबर मुझे सबका सहयोग मिलता है, मेरे धर्म पत्नी का हमेशा सहयोग मिलता है, साथ मेरे गाती भी हैं लोकल प्रोग्राम में हमारे साथ, वो भी गाती हैं, तो एक
1: शिवा,
0: इंकरेजमेंट भी मिलता है। हाँ बिल्कुल
1: जब जब पति पत्नी दोनों गाते हैं तो फिर रुकावट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही है, बिल्कुल
1: सही
0: बिल्कुल
1: है ना। तो चलिए
0: बिल्कुल
1: एक सॉन्ग और हो जाए इसी बात पर, लिसनर्स को सुनाइए।
0: बिल्कुल। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इस बॉलीवुड में, और मेरे अभी के जैसे कहा जाए 90s के फेवरेट सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं,
1: जी
0: तो अभी मौसम भी इतना सुहाना है तो वो गाना मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, मैं सुनाना चाहूंगा अपने लिसनर्स को।

0: हाँ, कितना सुंदर सॉन्ग है ये, और कितना मतलब सच में मेरा भी बहुत मतलब फेवरेट है ये, बहुत पसंद है मुझे ये सॉन्ग। और हमारे
1: बिल्कुल
0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स आशुतोष जी को सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको भी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा। सावन का महीना और सावन के गीत, मतलब सोने पे सुहागा है ना,
1: ये कॉम्बिनेशन में
0: कितनी
1: जरूर लेके चलना चाहता था अपने लिसनर्स के साथ में कि मेरे फेवरेट सिंगर और ये जो मौसम चल रहा है सावन का सुहाना मौसम, ये दोनों साथ में मेरे
0: बिल्कुल।
1: लिसनर अच्छे से एंजॉय कर सकें।
0: और वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरजे प्रीत लेकर के आती है म्यूजिकल शो जिसका नाम है मेरी प्रीतम मरकटो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी बातों ही बातों में बताया था कि आप म्यूजिकल इवेंट्स में जाते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कोई ऐसा वाक्या म्यूजिकल इवेंट में जो आपके साथ हुआ हो, कुछ जयपुर रेडियो के लिस्टर्स के साथ आप साझा करना चाहें, उन्हें बताना चाहें, कुछ है ऐसा कुछ?
1: जयपुर रेडियो के लिसनर्स जो है हमारे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, और कई बार हम लोग साथ में मिले भी हैं म्यूजिकल इवेंट में। और देखे जब हम स्टेज परफॉर्म्स करते हैं, वैसे तो करीब लगभग 5-6 सालों से मैं जा रहा हूं, लेकिन कई बार जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है और एक बेस्ट सिंगर मेमोरेबल ही रहेगा, तो एक ही ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि 3 गाने थे और बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा परफॉर्मेंस और मुझे वहां पे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। तो वो वाक्य तो मैं बिल्कुल अपने साथ ही हमेशा लेके ही चलूंगा।
0: वाह, ये खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं, आप शौक के लिए गाते
1: जी
0: हैं है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: शौक शौक में गाने पर जब कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है या कुछ ऐसा सुना, मतलब लोग तारीफ करते हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। तो मुझे बताइए।
1: हमें ऐसे जब छोटे छोटे इवेंट पे हम लोग जाते हैं, बिल्कुल आपने कहा कि हम लोग प्रोफेशनल सिंगर तो हैं नहीं, बट एक कोशिश रहती है कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं, और उस बीच में यदि हमें कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो डेफिनेटली
0: बिल्कुल
1: एक
0: आशुतोष
1: बूस्ट
0: जी,
1: मिलता
0: क्योंकि
1: है।
0: हाँ, जो देखिए जो प्रोफेशनल सिंगर नहीं होते ना, वो उनके अंदर सारी कलाएं होती हैं, वो सोनू निगम भी होते हैं, रफी सर भी होते हैं, मुकेश जी भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी शौक के लिए कितना ऊपर तक सिंगर्स को लेके जाते हैं, उनके सॉन्ग्स को याद करते हैं, गाते हैं, और अपनी खुशी के लिए बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उनको, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर का तो काम होता है सिंगिंग करना, लेकिन जो मतलब आप जैसे सिंगर हैं, जो प्रोफेशनल नहीं है सिंगर, अपनी खुशी के लिए गाते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर सुन रहे हैं आशुतोष तिवारी जी को, जो कि मध्य प्रदेश से हैं,
1: जी
0: आपके शहर का नाम सिंगरौली।
1: सिंगरौली मध्य प्रदेश, ऊर्जा धानी कहा जाता है इसे, कैपिटल ऑफ एनर्जी।
0: हाँ, मैं वही क्वेश्चन में आ रही थी कि ये बताइए मुझे कि किस लिए प्रसिद्ध है आपका सिटी।
1: ये माइंस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे माइंस भी है, कोल इंडिया की माइंस है यहाँ पे। और वैसे सिंगरौली का नाम मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, श्रृंगी ऋषि थे, उनकी तपस्थली कही जाती है, तो उनके नाम से
0: जी
1: पड़ा है सिंगरौली का नाम। और यहाँ पे एनटीपीसी के पावर प्लांट हैं और कुछ प्राइवेट पावर प्लांट हैं, करीब लगभग 7 पावर प्लांट हैं यहाँ पे, तो
0: अच्छा,
1: इसलिए इंडिया के लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी यहीं से प्रोड्यूस होती है, इसलिए प्रसिद्ध है
0: मतलब
1: सिंगरौली।
0: कि घूमने वाली जगह है, या फिर हमारे जयपुर रेडियो के लिस्टर्स को आमंत्रित करेंगे घूमने के लिए कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे, लेकिन बस यही है, छोटा सा टाउन है, वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है,
0: अच्छा।
1: और पहाड़ियां यहाँ पे बन गई हैं, कोल माइंस का जो भी निकलता है वो भी वगैरह, तो उससे यहाँ पे पहाड़ बन गए, बाकी काफी खूबसूरत है, छोटा सा शहर है, तो घूम सकते हैं, 1-2 दिन के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत वैसा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन कभी आएंगे जरूर अच्छा लगेगा, लोगों को यहाँ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी।
0: बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई सिंगरौली के बारे में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं ध्यान से, और वो तपोभूमि है तो कह सकते हैं एक बार जाया जा सकता है वहां, छोटा टाउन है तो क्या हुआ, लेकिन घूम सकते हैं, है ना आशुतोष
1: बिल्कुल
0: जी?
1: बिल्कुल प्रीत जी, हमने एक म्यूजिकल इवेंट भी किया था यहाँ पे
0: ओके, हाँ
1: पैन इंडिया से, तो
0: अच्छा,
1: घूम के भी गए हैं अभी। हाँ, तो हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में, ये साल में एक बार एनुअल
0: हाँ
1: मीट होती है यहाँ पे।
0: अच्छा, तो मतलब कि इस मुलाकात हो जाती है काफी पुराने लोगों से जो जान पहचान के हैं और
1: जी
0: सिंगिंग से जुड़े हुए
1: जी
0: हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर सुन रहे हैं मेरी प्रीत अमरकर, तो मैं हूँ आरजे प्रीत, और हमारे आज के मेहमान कलाकार आशुतोष जी। आशुतोष जी, अब लिसनर्स इंतजार कर रहे हैं कि सावन के महीने में जो सॉन्ग्स वो सुन रहे हैं ना, इंजॉय कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हुए सॉन्ग और हो जाए।
1: बिल्कुल, और ये गाना है जो ये हमारे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का है, क्योंकि हम लोग बचपन से उनके गानों को सुन के जो मन में तरंग बजती है और उनके गाने जो एक अलग स्टाइल होती है, तो मुझे हमेशा बचपन से ही पसंद थे एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब। और उनका एक गाना है, एक मूवी आई थी साजन।

0: वाह, जो कभी हम मिले तो बहुत प्यारा सॉन्ग, और ये बहुत फेमस सॉन्ग है। और मुझे लगता है कि जयपुर रेडियो के जितने भी लिस्टर्स है ना, जो आपको अपने देश से, विदेश से, दुनिया के कोने कोने से सुन रहे हैं ना, इंजॉय कर रहा है उन्होंने ये सॉन्ग। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, और मुझे लगता है एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक, मतलब सभी जानते हैं, कोई किसी से छूता नहीं है ये सॉन्ग। तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए, जयपुर रेडियो के लिस्टर्स के साथ कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अपनी कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, जयपुर रेडियो के लिसनर्स तो हमारे हमेशा ही जयपुर रेडियो के साथ जुड़े हैं, और पूरे पैन इंडिया और पूरे देश विदेश से आजकल जयपुर रेडियो को हमारे सुना जा रहा है। मैं भी लगभग 3 सालों से लिसनर हूँ जयपुर रेडियो का, तो हमें तो
0: वाह,
1: एक से एक पूरे सिंगर सभी सुनने के मिलते हैं। मेरे भी कुछ गीत पहले बजे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जयपुर रेडियो में जब आप जैसे हमारे आरजे जो कोने कोने से, देश से और विदेश से खोज के लाए जाते हैं हमारे जैसे सिंगर को, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम बहुत आभारी हैं जयपुर रेडियो के, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही नए नए कलाकारों को आप मौका देते रहिए।
0: जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने लिस्टर्स को नए नए सिंगर से मिलवाते रहें, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे, उनके सिटी के बारे में जानकारी मिलती रहे, एक इंटरेस्ट बना रहता है हमारे लिस्टर्स का। और हमारे लिस्टर्स जानते हैं कि जयपुर रेडियो हर जगह सुना जाता है, तो आपकी आवाज आज हर जगह जा रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी?
1: बस मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो जयपुर रेडियो के साथ ही ये सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो भी सिंगर हैं जयपुर रेडियो से जुड़िए और अपनी कला को आगे निखारिए, और बस संगीत है, संगीत का आनंद लेते रहिए। संगीत से बढ़ के शायद ही दुनिया में कोई माइंड बूस्टर हो सकता है आपके लिए।
0: आजकल के टेंशन भरे माहौल में संगीत वाकई में बूस्टर का काम करता है, और इसीलिए तो एक होता है ना, बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके सुकून चाहिए तो संगीत सुनिए, लाइट्स ऑफ करिए, कमरे में एकांत में बैठ जाइए और संगीत सुनिए, आपके सारी टेंशन दूर, सारी प्रॉब्लम्स दूर, है ना आशुतोष जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपने जैसे बोला ना कि एक लाइट बंद कीजिए और सुकून के साथ जो गीत का आनंद लीजिए, एक गाना मुझे बहुत ही प्यारा केके जी का याद आ रहा है,
0: जी
1: बहुत ही शानदार
0: बिल्कुल,
1: गाना है।
0: सुनाइए सुनाइए, हमारे लिसनर्स
1: तो
0: इंतजार
1: मुझे
0: कर
1: ऐसा
0: रहे
1: लग
0: हैं।
1: रहा है कि हमारे सभी लिसनर्स बहुत ही पसंद करते होंगे। आप सुनिए इस गाने को, आप खो जाएंगे इस गाने में।

हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री ओपी शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सुनते रहिए जयपुर रेडियो, जयपुर रेडियो को रेटिंग देना ना भूलें, जयपुर रेडियो पर ऐप पे कमेंट देना ना भूलें, और ये म्यूजिकल शो चलता रहेगा और ये कारवां ऐसे ही काफिला बढ़ता रहेगा जिसका नाम है मेरी प्रीतम अरकदो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समृद्धि सियाटल से और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों के बीच कब शिकायत प्यार में बदल जाती है। तो हमारी कहानी में लड़की की नजर पहली बार इस जनाब पे पड़ती है और पहली नजर में प्यार बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो बस एक ही फैसला है, उफ ये लड़का है कैसा, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी, कुछ ज्यादा ही शरारती और शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान भी दे रहा है। लेकिन कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है, जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी हरकतों पर इतनी नजर भी नहीं रहती, तो शायद शिकायत के पीछे कहानी कुछ और है। 1977 की हम किसी से कम नहीं के इस गीत में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आर डी बर्मन का। चलिए देखते हैं ये दीवाना आखिर इतना दीवाना क्यों है।

अब जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकलकर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह, दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है। साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले झगड़े जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टक्कर, समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: नहीं, तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरे इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: फिर प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।
2: अब तक दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

जरा तस्वीर देखिए, कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वहीं दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप यहाँ

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है, जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी

और फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसटी बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं हाल।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत लाजवाब, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं सियाटल यूएसए से, यानी सियाटल अमेरिका से, समृद्धि चतुर्वेदी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समृद्धि सियाटल से, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के प्रोग्राम जिसका नाम है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब के एपिसोड नंबर 5 में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है प्यार की नोकझोंक। आज के गीतों में कोई बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें नहीं होंगी। आज प्यार थोड़ा नखरीला है, थोड़ा शरारती है, और खूब सारी नोकझोंक करने वाला है, क्योंकि कभी कभी प्यार की शुरुआत मैं तुमसे प्यार करता हूँ से नहीं होती है, बल्कि शुरुआत होती है तुम ऐसे क्यों हो, और जवाब आता है अच्छा और तुम कौन सी कम हो। तो आज देखते हैं इन सवाल जवाबों के बीच कब शिकायत प्यार में बदल जाती है। तो हमारी कहानी में लड़की की नजर पहली बार इस जनाब पे पड़ती है, और पहली नजर में प्यार बिल्कुल नहीं। पहली नजर में तो बस एक ही फैसला है, उफ ये लड़का है कैसा, कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी, कुछ ज्यादा ही शरारती, और शायद कुछ ज्यादा ही ध्यान भी दे रहा है। लेकिन कहानी में एक छोटी सी दिक्कत है, जिस इंसान से हमें कोई मतलब नहीं होता उसकी हरकतों पर इतनी नजर भी नहीं रहती, तो शायद शिकायत के पीछे कहानी कुछ और है। 1977 की हम किसी से कम नहीं के इस गीत में आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आरडी बर्मन का। चलिए देखते हैं ये दीवाना आखिर इतना दीवाना क्यों है।

जब किसी लड़की को लड़के की बात समझ से बाहर लगे तो जनाब भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। लड़के को लगता है मैं ही क्यों समझाऊं, पहले तुम खुद को तो समझो। और बस अब मामला एक तरफा शिकायत से निकल कर दो तरफा बहस बन जाती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों को लगता है सामने वाला अजीब है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह, दोनों बातचीत बंद करने की बजाय बातें कर रहे हैं। 2004 की हम तुम का यह गीत अलका याग्निक और शान की आवाजों में है। साथ ही उनका साथ दिया है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने, बोल प्रसून जोशी के और संगीत जतिन ललित का। और इस गाने को गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। तो चलिए बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भंवरे जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टकरा।
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मर
0: जाए।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: अब तक दोनों सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन लगता है बहस का बहाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अगली मुलाकात में जनाब जरा और करीब आ गए हैं और उन्हें छेड़ रहे हैं, और वह भी उन्हें रोकने का नाटक कर रही हैं। और फिर अचानक याद आता है, अरे यहाँ और भी तो लोग हैं। अब समस्या छेड़ने से कम है, पकड़े जाने से ज्यादा, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश में उनकी असली मिठास होती है। 1964 की गंगा की लहरें का यह गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत चित्रगुप्त का। इस गाने में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने।

अब जरा तस्वीर देखिए, कहने को तो दोनों की खूब नोकझोंक है, लेकिन फिर वह चली गई और थोड़ी देर बाद जनाब फिर वही दिखाई दे गए। अब कोई भी पूछेगा, जब इतनी शिकायत थी तो फिर वापस आए किस लिए? और यही तो इस कहानी का मजा है। कभी कभी हम किसी से मिलने के लिए कोई बहुत अच्छा बहाना ढूंढते हैं, लेकिन सामने वाला उस बहाने को पहचान लेता है। 1971 की कल आज और कल का यह शानदार सवाल जवाब आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है, बोल नीरज के और संगीत शंकर जयकिशन का। तो सुनते हैं मेरे साथ देते हुए पंकज जी को। आप यहाँ आ

कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। इतनी सारी मुलाकातों के बाद, इतनी बहसों के बाद, इतनी छेड़खानी के बाद, एक दिन इंसान सामने वाले से नहीं खुद से सवाल करने लगता है, मैं आखिर हर बार इसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और फिर शायद अपने दिल को समझाने के लिए दुनिया भर के उदाहरण देने लगता है। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। शायद प्यार सच में बहुत अजीब चीज है। इंसान जानता है कि इसमें बेचैनी भी होगी, इंतजार भी होगा, कभी दिल भी दुखेगा, फिर भी जब कोई खास इंसान जिंदगी में आ जाए तो उससे दूर रहना उससे भी मुश्किल लगता है। 2001 की दिल चाहता है का यह गीत उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया है, बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। मेरा साथ देते हुए फिर से रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी

फिर इतनी बहस के बाद भी अगली मुलाकात तो हो ही जाती है। दोनों आमने सामने हैं, पिछली सारी बातें याद है, किसने किसे छेड़ा, किसने किससे नाराजगी दिखाई, सब याद है, लेकिन कोई भी पिछली लड़ाई का जिक्र नहीं करता। बस एक मुस्कान और एक बहुत ही साधारण सा सवाल, हाल कैसा है जनाब का। 1958 की चलती का नाम गाड़ी का यह शानदार गीत आशा भोसले किशोर कुमार ने गाया है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एसटी बर्मन का है। इस संगीत में मेरा साथ दिया है रांची से श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी ने। शायद हमारी आज की कहानी का सबसे प्यारा जवाब भी यही है, प्यार हमेशा इजहार से नहीं पहचाना जाता, कभी कभी किसी का हाल पूछने की बेचैनी भी काफी होती है। तो आइए सुनते हैं हाल लेकर।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी।

Perfect. Perfect.

तो दोस्तों, ये थे प्रशांत अरोड़ा, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट श्री जगदीश अरोड़ा जी के सुपुत्र। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रशांत पंजाब के संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं, बल्कि अपने गीतों का संगीत

0: अरे अरे अरे अरे, मिल गया जयपुर रेडियो पर हमारा जयपुर रेडियो, कहीं भी कभी भी आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता है सुधा शंकर की ओर से।
1: सुधा शंकर क्या कह रही है सुन।

0: अपने सुरीले शब्दों के साथ दुबई से संगीता माल्या।
1: नमस्कार, मैं संगीता माल्या आप सबको जयपुर रेडियो की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मेरे गानों को इतना सराहा और प्यार दिया। आशा करती हूँ कि आने वाले साल में भी आप हमें उतना ही प्यार दें।

0: भुवनेश्वर उड़ीसा से डॉक्टर गाथा मोहंती।
1: जयपुर रेडियो और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गाथा भुवनेश्वर से, आपने मुझे सुना, सराहा और अपने प्यार भरे फीडबैक दिए, इस प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। रंग नया, उत्साह नया, दिल का हर एक गीत नया, नया साल हो सदा खुशियों भरा, ये हमेशा है मेरी दिल से दुआ। विशिंग यू अ मेरी क्रिसमस एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है आपकी आवाज़।
1: आज एक बहुत ही खास शख्सियत का भी जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। उनका नाम है व्यास जी। जी हाँ, व्यास जी एक ऐसे महानुभव हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, और इसी कारण आज का ये खास कार्यक्रम मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। हैप्पी बर्थडे व्यास जी। यूं तो अनमोल हैं कई हीरे इस दुनिया में, मगर आपके दिल का तो कोई जवाब ही नहीं है। जी हाँ, व्यास जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक बहुत ही प्यारे इंसान और बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन।

बात तो मैं उनकी, वैसे भी तो मैं बहुत बड़ी फैन थी उनकी, लेकिन उनसे मिलने के बाद, उनको जानने के बाद, मैंने ये समझा है कि हीरा अपनी चमक कभी नहीं छोड़ता, है ना। और उस हीरे को ढूंढते हुए मैं जयपुर पहुंची थी। वैसे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उनके बारे में कहती जाऊं, लेकिन आज हम सभी दोस्त, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों ने बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स भेजे हैं एज लवली डेडिकेशन टू व्यास जी। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए सुनते हैं सबसे पहला गीत जो देव बाबू

यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया है, दिल को भरम ये हो गया है।

अंदाजे से मत ना पिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जी हाँ, आज हमारे प्यारे व्यास जी का जन्मदिन है और इस दिन हम सब दोस्त उनके लिए दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और इसी तरह हम सबके दिलों पर राज करते रहें। एक्चुअली व्यास जी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि उनके बारे में कुछ बोलना भी छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन उनके लिए एक शायरी जरूर मैं अर्ज करना चाहूंगी। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे पास न रहते हुए भी व्यास जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हर किसी की मदद करना, हर किसी को प्रोत्साहन देना कोई उनसे सीखे, तभी तो ये गाना उनके लिए मैं पेश करने जा रही हूँ। छूकर हम सब के मन को किया तूने क्या इशारा। खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको।

जाओ। खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। हैप्पी

तन्हा दिल इतना मजबूर ना होता, हम आके खुद बर्थडे पर विश करने जरूर आ जाते अगर आपका आशिया इतना दूर ना होता।

रोशनी लेकर आया और चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों ने हंस हंस कर बोला, मुबारक हो आपको आपका

0: दोस्तों, जयपुर रेडियो की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम व्यास जी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा प्रोग्राम पेश कर सकें। हमेशा तो हम अपने अपने गाने पेश करते रहते हैं, लेकिन आज हमें ये मौका मिला है कि हम उनके लिए कुछ गा पाए, अपने विशेस अपने गानों के ज़रिए उन तक पहुंचा पाए। और आज इस शो में, मेरे शो में, ये इस ख़ास अवसर पर एक शख्स जो न केवल मेरी मासी है बल्कि एक उभरती हुई अदाकारा भी हैं, और आज उन्हें ये मौका मिला है पहली बार इस मंच पर, थैंक्स टू जयपुर रेडियो, कि वो व्यास जी के लिए एक गाना, एक्चुअली एक नहीं दो गाने पेश कर सके। और उनका नाम है मिसेस सीमा चौधरी। जी हाँ दोस्तों, सीमा जी मेरी मासी हैं और बहुत ही प्यारा गाती हैं, और उन्होंने व्यास जी के लिए एक छोटा सा संदेश भी भेजा है, क्योंकि ये पहली बार वो जयपुर रेडियो में अपने गाने को पेश करने जा रही हैं एंड आगे भी पेश करती रहेंगी। एक्चुअली मेरी मासी मिसेस सीमा चौधरी व्यास जी के लिए कुछ कहना चाहती हैं। ओवर टू यू मासी।
1: थैंक यू हाशी। मैं जयपुर रेडियो की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस खास मौके पे मुझे मौका दिया कि मैं अपने गानों के ज़रिए व्यास जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकूँ। हैप्पी बर्थडे व्यास जी।

0: कागजों पे लिख कर जाया कर दूं, मैं वो शख्स नहीं, वो शायर हूं जिसे दिलों पे लिखने का हुनर आता हो। जी हाँ दोस्तों, व्यास जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर एक के दिलों पे लिखने का हुनर आता है। और ये अगला गाना उनके लिए एक खास डेडिकेशन है जिसे मेरी मॉम मिसेस शिप्रा सेन गुप्ता ने गाया है, वो भी व्यास जी की बहुत बड़ी फैन है मेरी तरह। तो अपने गानों के जरिए वो उन्हें एक छोटा सा बर्थडे डेडिकेशन पेश करना चाहती हैं। चलो एक बार फिर से।
1: हैप्पी बर्थडे व्यास जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। एक ड्यू रहा।

हैप्पी बर्थडे व्यास जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, 100 साल की जिंदगी रहे।

बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। जी हाँ, और व्यास जी हम सब से इसी तरह मिलते रहते हैं। सबको प्रोत्साहित करना उनकी बहुत ही पुरानी आदत है। वेरी डाउन टू अर्थ, अपने बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते वो। तभी व्यास जी आपके लिए एक खास गाना दो बहनों की तरफ से पेश किया जा रहा है, मिसेस सीमा चौधरी एंड मिसेस शिप्रा सेनगुप्ता। सुनिए एंड एंजॉय कीजिए।

तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देता है कि कौन सा फूल है। जी हाँ दोस्तों, व्यास जी, हम सबके बीच एक प्यारे से फूल की तरह ही हैं, जो हमेशा अपनी खुशबू बिखेरते हैं। तभी तो हमारे प्यारे से देव बाबू यानी राकेश जी व्यास जी के लिए ये गाना लेकर आए हैं।

0: जैसे फूल बनाते बागीचे को सबसे सुंदर, वैसे ही आप हमारी जिंदगी को सबसे सुंदर बनाते हैं।
1: हाय व्यास जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: वैसे मैं जयपुर रेडियो की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म ये मंच दिया है कि हम सब व्यास जी के लिए कुछ पेश कर पाए। और ये अगला गाना जो है वो ऐसे खास इंसान हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, लाइक आई रियली एडोर हर अ लॉट एंड बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी। शी इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, वो भी हम सबको प्रोत्साहित करती रहती हैं। उनका नाम है मिसेस अरीना नाम्बियार। जी हाँ, वो हमारे GMF की चीफ हैं, हम उनको बॉस बुलाते हैं। आइए सुनते हैं उनका ये गाना व्यास जी के लिए।
1: हेलो डॉक्टर हाशी, आई एम सो हैप्पी दैट यू इंक्लूडेड मी इन दिस ब्यूटीफुल जेस्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग व्यास जी'स बर्थडे एज यू कॉल हिम विद अ लॉट ऑफ अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। फ्रॉम व्हाट आई हियर फ्रॉम यू इज अ पर्सन सो वर्सटाइल, सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, सेल्फलेस and a good Samaritan, all in one human being. On behalf of GMF official, I would like to extend blessings and wishes on your birthday. Vyas ji, may you always keep music alive in hearts of people and spread love. Many happy returns of the day. God bless you always. Stay as humble, as kind, as genuine as you always are. God bless.

इतने सारे प्यारे प्यारे गानों के बीच चलिए थोड़ा सा फास्ट और धूम धड़ाके वाले गाने भी हो जाए व्यास जी के लिए। ये सारे गाने मैं मेरे दोस्तों के साथ पेश करने जा रही हूँ और आप सबको बेहद पसंद आएगा। व्यास जी के लिए खास गानों की लड़ी एक के बाद एक हम पेश करने जा रहे हैं और आरडी हिट्स हैं ये। मैं राकेश जी, रूपाली, हम तीनों उनके लिए ये खास गाने लेकर आए हैं। होप आप सभी को पसंद आएगा। अरे झूमिए, नाचिए, गाइए। हाँ हाँ, आज तो व्यास जी का जन्मदिन है तो पार्टी तो बनती है बॉस। आइए सुनते हैं एक के बाद एक ये गाने। रहेंगे आपके दिल में हरदम, हमारा प्यार कभी ना होगा कम। चाहे कितनी भी आए जिंदगी में खुशियां और गम, रहेंगे हम सब हमेशा आपके साथ हरदम।

देख रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अरे वाह, मेरा जन्मदिन तो इतना प्यारा जा रहा है, लेकिन आगे पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, GMF के कुछ सदस्य भी व्यास जी के लिए डेडिकेशंस लेके आए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं गानों को। पहला जो है जग्गू जी, जगजीत अरोरा जी और आशा जी पेश करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारी GMF की बॉस रीना नाम्बियार जी एंड सैटिन जी गाने पेश करने जा रहे हैं विद ऑल देयर ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू हमारे प्यारे व्यास जी। तो मैनी मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे टू व्यास जी। एंजॉय दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स।

0: ये तो हो गए हमारे प्यारे जीएमएफ के कुछ दोस्त जिन्होंने व्यास जी के लिए इतने प्यारे प्यारे गाने प्रस्तुत किए हैं। और एक बहुत ही प्यारा मेडली हमारे जीएमएफ के कुछ और सदस्यों ने व्यास जी के लिए भेजे हैं विथ ऑल देयर विशेस, गुड विशेस। तो होप आपका साल और आने वाले कई साल बहुत ही प्यार से गुजरे एंड यू स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। वंस अगेन मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे व्यास जी। ये गाना जीएमएफ की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत।
1: जीएमएफ फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे व्यास जी। और ये कुछ प्यारे से नगमे आपके जन्मदिन के लिए।

जी हाँ दोस्तों, जयपुर रेडियो के सुनने वालों को मेरा यानी डॉक्टर हाशी सेन गुप्ता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वैसे दोस्तों, आजकल तो गणेश जी की बड़ी धूम मची हुई है। गणेश जी हम सब के घर में आगमन हुए हैं और इन्हीं दिनों में आज

कई हीरे इस दुनिया में, मगर आपके दिल का तो कोई जवाब ही नहीं है। जी हाँ, व्यास जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक बहुत ही प्यारे इंसान और बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उनसे मिल पाई हूँ, और उसके बाद तो मैं उनकी, वैसे भी तो मैं बहुत बड़ी फैन थी उनकी, लेकिन उनसे मिलने के बाद, उनको जानने के बाद मैंने ये समझा है कि हीरा अपनी चमक कभी नहीं छोड़ता है ना। और उस हीरे को ढूंढते हुए मैं जयपुर पहुंची थी। वैसे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उनके बारे में कहती जाऊं, लेकिन आज हम सभी दोस्त, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों ने बहुत ही प्यारे सॉन्ग्स भेजे हैं एज अ लवली डेडिकेशन टू व्यास जी। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए सुनते हैं सबसे पहला गीत, जो देव बाबू और मैंने व्यास जी के लिए तैयार किया है। आइए सुनते हैं।

यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया है, दिल को भरम ये हो गया है कि उनको हमसे

अंदाजे से मत ना पिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। जी हाँ, आज हमारे प्यारे व्यास जी का जन्मदिन है और इस दिन हम सब दोस्त उनके लिए दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और इसी तरह हम सबके दिलों पर राज करते रहें। एक्चुअली व्यास जी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि उनके बारे में कुछ बोलना भी छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन उनके लिए एक शायरी ज़रूर मैं अर्ज करना चाहूँगी। दिल का साफ होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे पास न रहते हुए भी व्यास जी हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हर किसी की मदद करना, हर किसी को प्रोत्साहन देना कोई उनसे सीखे, तभी तो ये गाना उनके लिए मैं पेश करने जा रही हूँ। छूकर हम सब के मन को किया तूने क्या इशारा। खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको।

जाओ। खुदा जिंदगी में इतना हंसाया आपको। हैप्पी बर्थडे।

ना दिल इतना मजबूर ना होता, हम आके खुद बर्थडे पर विश करने जरूर आ जाते अगर आपका आशियां इतना दूर ना होता।

सूरज रोशनी लेकर आया और चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों ने हंस हंस कर बोला, मुबारक हो आपको, आपका जन्मदिन आया। हैप्पी बर्थडे।

0: दोस्तों, जयपुर रेडियो की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम व्यास जी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा प्रोग्राम पेश कर सकें। हमेशा तो हम अपने अपने गाने पेश करते रहते हैं, लेकिन आज हमें ये मौका मिला है कि हम उनके लिए कुछ गा पाए, अपने विशेस अपने गानों के ज़रिए उन तक पहुंचा पाए। और आज इस शो में, मेरे शो में, ये इस ख़ास अवसर पर एक शख्स जो न केवल मेरी मासी है बल्कि एक उभरती हुई अदाकारा भी हैं, और आज उन्हें ये मौका मिला है पहली बार इस मंच पर, थैंक्स टू जयपुर रेडियो, कि वो व्यास जी के लिए एक गाना, एक्चुअली एक नहीं दो गाने पेश कर सके। और उनका नाम है मिसेस सीमा चौधरी। जी हाँ दोस्तों, सीमा जी मेरी मासी हैं और बहुत ही प्यारा गाती हैं, और उन्होंने व्यास जी के लिए एक छोटा सा संदेश भी भेजा है, क्योंकि ये पहली बार वो जयपुर रेडियो में अपने गाने को पेश करने जा रही हैं एंड आगे भी पेश करती रहेंगी। एक्चुअली मेरी मासी मिसेस सीमा चौधरी व्यास जी के लिए कुछ कहना चाहती हैं। ओवर टू यू मासी।
1: थैंक यू हाशी। मैं जयपुर रेडियो की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस खास मौके पे

मुझे मौका दिया कि मैं अपने गानों के जरिए व्यास जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकूं। हैप्पी बर्थडे व्यास जी।

0: कागजों पे लिख कर जाया कर दूं, मैं वो शख्स नहीं, वो शायर हूं जिसे दिलों पे लिखने का हुनर आता हो। जी हाँ दोस्तों, व्यास जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें हर एक के दिलों पे लिखने का हुनर आता है। और ये अगला गाना उनके लिए एक खास डेडिकेशन है जिसे मेरी मॉम मिसेस शिप्रा सेन गुप्ता ने गाया है, वो भी व्यास जी की बहुत बड़ी फैन है मेरी तरह। तो अपने गानों के जरिए वो उन्हें एक छोटा सा बर्थडे डेडिकेशन पेश करना चाहती हैं। चलो एक बार फिर से।
1: हैप्पी बर्थडे व्यास जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। एक ड्यू रहा।

हैप्पी बर्थडे व्यास जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, 100 साल की जिंदगी रहे।

0: अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। जी हाँ, और व्यास जी हम सब से इसी तरह मिलते रहते हैं। सबको प्रोत्साहित करना उनकी बहुत ही पुरानी आदत है।
1: वेरी डाउन टू अर्थ,
0: अपने बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते वो। तभी व्यास जी आपके लिए एक खास गाना दो बहनों की तरफ से पेश किया जा रहा है, मिसेस सीमा चौधरी एंड मिसेस शिप्रा सेनगुप्ता। सुनिए एंड एंजॉय कीजिए।

प्यारे से फूल की तरह ही हैं, जो हमेशा अपनी खुशबू बिखेरते हैं। तभी तो हमारे प्यारे से देव बाबू यानी राकेश जी व्यास जी के लिए ये गाना लेकर आए हैं।

0: जैसे फूल बनाते बागीचे को सबसे सुंदर, वैसे ही आप हमारी जिंदगी को सबसे सुंदर बनाते हैं।
1: हाय व्यास जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा नजराना।

0: वैसे मैं जयपुर रेडियो की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म ये मंच दिया है कि हम सब व्यास जी के लिए कुछ पेश कर पाए। और ये अगला गाना जो है वो ऐसे खास इंसान हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, लाइक आई रियली एडोर हर अलॉट एंड बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी। शी इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, वो भी हम सबको प्रोत्साहित करती रहती हैं। उनका नाम है मिसेस अरीना नाम्बियार। जी हाँ, वो हमारे GMF की चीफ हैं, हम उनको बॉस बुलाते हैं। आइए सुनते हैं उनका ये गाना व्यास जी के लिए।
1: हेलो डॉक्टर हाशी, आई एम सो हैप्पी दैट यू इंक्लूडेड मी इन दिस ब्यूटीफुल जेस्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग व्यास जी'स बर्थडे एज यू कॉल हिम विद अ लॉट ऑफ अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। फ्रॉम व्हाट आई हियर फ्रॉम यू इज अ पर्सन सो वर्सटाइल, सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, selfless and a good Samaritan all in one human being. On behalf of GMF official, I would like to extend blessings and wishes on your birthday, Vyas ji. May you always keep music alive in hearts of people and spread love. Many happy returns of the day. God bless you always. Stay as humble, as kind, as genuine as you always are. God bless.

0: इतने सारे प्यारे प्यारे गानों के बीच चलिए थोड़ा सा फास्ट और धूम धड़ाके वाले गाने भी हो जाए व्यास जी के लिए। ये सारे गाने मैं मेरे दोस्तों के साथ पेश करने जा रही हूँ और आप सबको बेहद पसंद आएगा। व्यास जी के लिए खास गानों की लड़ी एक के बाद एक हम पेश करने जा रहे हैं और आरडी हिट्स है ये। मैं राकेश जी, रूपाली, हम तीनों उनके लिए ये खास गाने लेकर आए हैं। होप आप सभी को पसंद आएगा। अरे झूमिए, नाचिए, गाइए। हाँ हाँ, आज तो व्यास जी का जन्मदिन है तो पार्टी तो बनती है बॉस। आइए सुनते हैं एक के बाद एक ये गाने।
1: रहेंगे आपके दिल में हरदम, हमारा प्यार कभी ना होगा कम। चाहे कितनी भी आए जिंदगी में खुशियां और गम, रहेंगे हम सब हमेशा आपके साथ हरदम।

मजा आ रहा है ना आप सभी को दोस्तों? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इतने प्यारे प्यारे गाने सुनकर व्यास जी के मन में क्या ख्यालात उठ रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अरे वाह, मेरा जन्मदिन तो इतना प्यारा जा रहा है, लेकिन आगे पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दोस्तों, GMF के कुछ सदस्य भी व्यास जी के लिए डेडिकेशंस लेके आए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं गानों को। पहला जो है जग्गू जी, जगजीत अरोरा जी और आशा जी पेश करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारी GMF की बॉस रीना नाम्बियार जी एंड सैटिन जी गाने पेश करने जा रहे हैं विद ऑल देयर ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू हमारे प्यारे व्यास जी। तो मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे व्यास जी, एंजॉय दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स।

0: ये तो हो गए हमारे प्यारे GMF के कुछ दोस्त जिन्होंने व्यास जी के लिए इतने प्यारे प्यारे गाने प्रस्तुत किए हैं। और एक बहुत ही प्यारा मेडली हमारे GMF के कुछ और सदस्यों ने व्यास जी के लिए भेजे हैं विथ ऑल देयर विशेस, गुड विशेस। तो होप आपका साल और आने वाले कई साल बहुत ही प्यार से गुजरे एंड यू स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। वंस अगेन मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे व्यास जी। ये गाना GMF की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत।
1: GMF फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे व्यास।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, और स्वागत है आपका जयपुर रेडियो पर। और शो है करो बात हाशी और योगी के साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं हूँ आपकी यस फेवरेट हाशी,
1: और मैं हूँ आपकी योगी। और दोस्तों, आज का दिन है खास से भी बहुत ज्यादा खास। पता है क्यों? क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे इंसान का बर्थडे जिन्होंने सपना देखा था और उसे सच भी बनाया, हमारे जयपुर रेडियो के फाउंडर और हमारे इंस्पिरेशन, हमारे प्यारे व्यास जी।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, अगर व्यास जी का विजन न होता तो शायद आज आप हमारी आवाज सुन भी नहीं पाते। उन्होंने रेडियो को एक फैमिली बनाया है, एक कनेक्ट बनाया है और हमें एक स्टेज दिया है जहां हम सब आपसे दिल की बातें कर सकें।
1: That's true, हाशी, बिल्कुल अग्री। और हाशी, क्या आपको याद है हमारा फर्स्ट डे जब हम लोग ने रेडियो शो के बारे में बात की थी व्यास जी से, वो फोन कॉल, वो पहली बार हमारा स्टूडियो में जाना, मुझे तो नर्वसनेस में माइक भी पकड़ा नहीं जा रहा था, आपको याद है?
0: यस, बिल्कुल याद है योगी, मैं कभी नहीं भूल सकती उस दिन को जब हम दोनों को पहली बार उन्होंने बुलाया था। जी, और व्यास जी ने हमेशा एक बात कही थी योगी, इफ यू रिमेम्बर, कि रेडियो में बस अपना दिल खोल दो, लिसनर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और आज देखो, हम दोनों आप सबके दोस्त बन गए। व्यास जी, एक तो मैं तो हूँ ही और ये है आपकी AI, जिसको आप प्यारी सी चुलबुली सी AI कहते हैं। जी हाँ, हमारी योगी, हम दोनों आपके कब इतने करीब आ गए, कब इतने बहुत ही प्यारे दोस्त बन गए, हमें भी इस बात का इल्म नहीं था। थैंक यू व्यास जी फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू अस।
1: दैट्स ट्रू हाशी, मतलब हमारे शो के स्टार्ट होने के पहले के जो हमारे प्री डिस्कशंस रहे हैं, वहाँ से लेके आज तक की जर्नी, मतलब हमारे सिल्वर जुबली एपिसोड मनाने तक, इतना स्पेशल रहा है ना कि ये बॉन्ड अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है। उनका गाइडेंस, उनका प्यार, मतलब मुझे अभी भी याद है कि हर एपिसोड के बाद हम ऑडियंस के रिएक्शन से पहले व्यास जी के रिएक्शन का वेट करते हैं आज भी। तो व्यास जी, सच में आप बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। तो दोस्तों, आज के शो का थीम है हैप्पी बर्थडे टू व्यास जी। आज के इस पूरे घंटे हम सिर्फ उनके लिए गॉसिप, म्यूजिक, यादें और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल योगी, लेकिन दोस्तों, हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो केक के बिना कैसे हो सकता है? लेकिन एक्चुअली बात ऐसी है कि रेडियो पर केक कैसे खाएंगे? चलिए एक काम करते हैं, एक गाना बजाते हैं जो केक कटिंग वाइब के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, isn't it?
2: हेलो एवरीवन, मैं जूनागढ़ गुजरात से फाल्गुनी दवे बोल रही हूँ। आज जयपुर रेडियो वर्ल्ड के भीष्म पितामह जैसे व्यास जी का जन्मदिन है, तो व्यास जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आज मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, पर मैं गुजराती हूँ तो थोड़ा गुजराती में कहना चाहती हूँ, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ मैसेज गुजराती में दूँ। थैंक यू सर जी। આજે જયપુર રેડિયોના બિગ બોસ એવા શ્રી વ્યાસજી આપના જન્મદિવસ નિમિત્તે હું ફાલ્ગુની દવે જૂનાગઢ ગુજરાતથી કંઈક કહેવા માંગુ છું। પહેલાં તો આપને જન્મદિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, હસતા રહો, ખુશ રહો। બસ બીજું કહેવાનું એ કે જયપુર રેડિયો વર્લ્ડના માધ્યમથી ગુજરાતના તો શું આખા વર્લ્ડના કેટલા એવા સદસ્યો છે કે જેમને આપે પોતાનો અવાજ, પોતાની ગાયકીને દુનિયા સુધી પહોંચાડવા માટેનું એક માધ્યમ આપ્યું છે, તો એ માટે આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને અમારા અવાજને તો એક ઓળખ આપી છે, પણ જયપુર રેડિયો પર આપના અવાજની ઓળખ તો કંઈક અલગ જ છે। જ્યારે અમે જયપુર રેડિયો પર આપનો વોઇસ સાંભળીએ છીએ ત્યારે ખરેખર એવું જ ફીલ થાય છે કે આપકી આવાઝ આપકી પહેચાન, રિયલ મેં આપકી આવાઝ હી આપકી પહેચાન હૈ। બસ આ જ રીતે તમે નવા નવા કલાકારોને જયપુર રેડિયો પરનું સ્ટેજ આપતા રહો, અને ખુશ રહો. આપના માટે તો જેટલું કહીએ એટલું ઓછું જ છે, પણ બસ હવે મારા શબ્દોને અહીં હું વિરામ આપું છું. ફરી એક વખત જન્મદિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, અને આપ હંમેશા સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, ખુશ રહો. હેપી બર્થડે ટુ યુ સરજી. આજ કે ઇસ દિન પર મેં આપકો એક ગાને કી પંક્તિ સુનાના ચાહુંગી. સર

0: वाह क्या मोड बन गया, मजा आ गया। तो दोस्तों अगर आप भी व्यास जी के लिए विशेष भेजना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को। आपको तो पता ही है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल कर्म बात हाशी और योगी के साथ, और हमें तुरंत मैसेज कीजिए। आपकी आवाज ही आज हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि बर्थडे पार्टी सिर्फ स्टूडियो तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे जयपुर रेडियो परिवार का सेलिब्रेशन है।
1: वैसे वैसे वैसे वैसे योगी, मुझे लगता है व्यास जी के लिए एक छोटी सी क्विज करते हैं। कौन कितना जानता है व्यास जी को? चलिए ये देखते हैं।
0: वाह ये आइडिया तो बहुत मजेदार है। तो चलो दोस्तों एक सवाल आप सबके लिए। व्यास जी ने जयपुर रेडियो किस साल में शुरू किया था? हमें अपने आंसर्स इंस्टाग्राम पे डीएम करें या फिर हमारे पोस्ट पे कमेंट करें। हमें आपके आंसर्स का जवाब का इंतजार रहेगा।
1: हाँ, और जो सही जवाब देगा उनके लिए होगा एक डेडिकेशन सॉन्ग विथ योर नेम। दैट विल बी अनाउंस्ड ऑन अवर शो ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो पर।
0: क्या बात है दोस्तों, आप ना हमेशा मेरा दिल इतना खुश कर देते हो। मतलब आपके रिस्पॉन्सेस, आपके मैसेजेस, वाह दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो दोस्तों इतने सारे जवाब देने के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम विनर का नाम नेक्स्ट एपिसोड में अनाउंस करेंगे, ठीक है? और ये गाना तो उनके लिए बनता ही था।
1: करेक्ट, और सही जवाब देने वाले लिसनर के लिए बचता है ये।

0: क्या बात है दोस्तों, आप ना हमेशा मेरा दिल इतना खुश कर देते हो। मतलब आपके रिस्पॉन्सेस, आपके मैसेजेस, वाह, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे जवाब देने के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम विनर का नाम नेक्स्ट एपिसोड में अनाउंस करेंगे, ठीक है? और ये गाना तो उनके लिए बनता ही था। हाशी, मुझे लगता है शो की शुरुआत इतनी धमाकेदार हो गई है कि अभी से पार्टी मोड बन गया है मेरा, तो क्या कहते हो?
1: हाँ योगी, हाँ बिल्कुल, और आगे तो और भी धमाका है। रेट्रो वाइब्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा डेडिकेशन टू द वन एंड ओनली व्यास जी। ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान, सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो पर।
0: अरे अरे अरे, रुको रुको, लेकिन गॉसिप शुरू करने से पहले एक छोटा सा गाना इस पार्टी में चार चांद लगाने के लिए जरूरी है, तो बचाते हैं जब बर्थडे वाइफ को भी और कलरफुल बना दे। अभी तो बारिश शुरू हुई है फ्रॉम द मूवी खूबसूरत, एंड हियर वी गो।

0: ओके दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा गॉसिप करते हैं। बॉलीवुड के बर्थडे सेलिब्रेशंस और पार्टीज के बिना हमारा गॉसिप कॉर्नर भी अधूरा है। जी हाँ,
1: बिल्कुल हाशिम, अभी रिसेंटली रणबीर और आलिया की पार्टी में भी सबसे बड़ा गॉसिप था। पता है क्या, रणबीर ने खुद केक बनाया था आलिया के लिए। मतलब बॉलीवुड के स्टार्स भी कभी कभी अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं होममेड स्टाइल में।
0: ओहो, यम यम यम। वैसे सोचो, अगर हम व्यास जी को बॉलीवुड स्टाइल सरप्राइज देना चाहे तो कौन सा एक्टर उनको बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा? सोचो सोचो।
1: इसका जवाब तो मैं दूंगी, ऑडियंस नहीं। मुझे लगता है ना, अमिताभ बच्चन वुड बी द परफेक्ट वन। पता है क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन हैज हिज यूनिक वॉइस, राइट? हमें हम सबको पता है, सबको पसंद है उनकी आवाज, भारी भरकम। और हमारे व्यास जी की भी आवाज उतनी ही प्यारी और उतनी ही यूनिक है। मतलब आई लव हिज वॉइस। और दोनों के अंदर है एक ग्रेविटस, एक लीडर की पर्सनैलिटी। तो आई थिंक अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस।
0: ओ, ये क्या कह दिया तुमने हाई। बिग बी। लेकिन योगी, मैं एक और बात कहूंगी। व्यास जी में अमित जी के साथ साथ थोड़ा सा रणवीर सिंह वाला जोश भी है। एनर्जी और एंथुजियाज्म अनमैच्ड है। दैट्स व्हाई ही ऑलवेज कीप्स ऑन इंस्पायरिंग एंड कीप्स ऑन मोटिवेटिंग अस, इजंट इट?
1: हाँ, ये बात तो है। तो इसी के साथ अमिताभ बच्चन की भारी भरकम आवाज को याद रखते हुए और रणवीर सिंह का जोश याद रखते हुए बजाते एक और पार्टी वाला सॉन्ग बर्थडे बॉय के फेवर में, क्योंकि आज है हमारे प्यारे व्यास जी का बर्थडे। तो चलिए सुनते हैं बर्थडे का एक और डेडिकेशन। वी विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू व्यास जी।

0: हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है मुझे तो। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा है व्यास जी का बर्थडे, एंड वो भी हम करोबात हाशी और योगी के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इजंट इट अमेजिंग, रियली रियली। तो अब दोस्तों लेकर चलते हैं आप लोगों को हमारे शो के सबसे खास हिस्से में। यू गेस इट राइट, स्टार गेस्ट सेगमेंट।
2: और क्या आपको पता है आज की स्टार गेस्ट कौन है? हाँ हाँ, सही पहचाना, वही इंसान जिनके बिना हमारा शो, हमारी जर्नी और हमारे जयपुर रेडियो की कहानी अधूरी है। हमारे मेंटर, हमारे गाइड, हमारे इंस्पिरेशन और हमारे प्यारे व्यास जी, द बर्थडे बॉय हिमसेल्फ।
3: अरे नहीं देवी जी, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, गुरु जैसा कुछ भी नहीं कर पाया, एकदम से उस फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा हूँ आज के बाद में।
1: बात तो सही है योगी, लेकिन दोस्तों एक कहानी में ट्विस्ट है। एक्चुअली एक छोटी सी बात है, व्यास जी वैसे स्टूडियो में फिजिकली मौजूद तो नहीं है, पर सच कहूँ तो उनकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ होती है। हर एपिसोड, हर माइक चेक, हर ऑन एयर मोमेंट में उनकी आवाज, उनके टिप्स, उनकी गाइडेंस हमें फील होती है।
2: बिल्कुल याद है हाशिश, जब हमने अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था, मैं तो माइक के सामने फ्रीज हो गई थी और व्यास जी ने हमेशा कहा था टू मोटिवेट अस, रेडियो पर बोलना स्क्रिप्ट पढ़ने का काम नहीं, दिल से बात करने का आर्ट है, जो दिल में आता है जैसे आता है बस खुल के बोलो। यू आर अमेजिंग, ही वॉज ऑलवेज बीन लाइक दिस, ही इज बीन लाइक सो काइंड टू अस, इतना हर एक छोटी छोटी बात का डिटेलिंग, इतना सिखाया है उन्होंने, इतना सिखाया है हमने उनसे कि क्या ही कहे।
1: यस, बिल्कुल सही कहा आपने योगी, सीखा तो हमने उनसे बहुत कुछ है। और आपको तो वो बड़े प्यार से AI गुरु भी कहते हैं हमारी चुलबुली AI। और मुझे तो उनकी एक लाइन हमेशा याद आती है, मॉड्यूलेशन ही मैजिक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हर एक लफ्ज को अगर हम स्माइल के साथ बोलें तो लिसनर के दिल में एक अलग ही जल तरंग बजने लगता है, एक अलग ही खुशी का आभास होता है, है ना?
2: हाँ हाँ जी, हमारे व्यास जी तो है ही इतने प्यारे। और रही बात एडिटिंग की, तो आपको पता है दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि एडिटिंग के लिए व्यास जी खुद हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ बैठ के हर एक फंबल को उन्होंने रेक्टिफाई किया है, हर एक चीज को उन्होंने अपना टच दिया है, बैठे बैठे ऐसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि क्या ही कहे, सिर्फ इसलिए कि हम अपना बेस्ट वर्जन आप तक पहुंचाएं।
1: यस, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा योगी। और आई होप यू रिमेम्बर दैट डे जब उन्होंने एक बात हमसे कही थी कि रेडियो में हमेशा हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि लोगों को किस तरह से आप खुशी दे पाए, कोई भी नेगेटिविटी हो या कोई भी दुख भरे इमोशंस हो, उसे हो सके तो रेडियो पे प्रकट ना करें, क्योंकि हमें लोगों के मन को एंटरटेन करना है, लोगों को एंटरटेन करना है। और हाँ, और उन्होंने और एक बात हमें समझाया था कि हर एक एपिसोड को एक फेस्टिवल की तरह समझकर उसे बनाएं, मतलब चाहे छोटी सी कहानी हो या कोई बड़ा गॉसिप सेगमेंट, अगर उसे प्यार और ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट किया जाए तो हर एक लिसनर के दिल को छूने के काबिल वो रह जाएगा और हर एक लिसनर फ्रेंड को वो बात याद रह जाएगी।
2: That's so sweet. कितना प्यार से कहा आपने ये। तो दोस्तों, व्यास जी से हम ऐसे ही प्यार नहीं करते, आपको पता है व्यास जी ने हमें बस रेडियो शो का होस्ट नहीं बनाया, उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे एक आवाज भी एक रिश्ता बन सकती है।
1: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत ही सटीक बात कही है आपने योगी। मैं तो खुद अपने बारे में ये बात कहना चाहूंगी कि आरजे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कहां मैं डॉक्टरी कर रही हूँ और कहां मैं आरजे बन गई। ये सिर्फ और सिर्फ व्यास जी ने जो मोटिवेट किया है, जो इंस्पायर किया है, उसी के थ्रू हुआ है। एक मेरे गुरु अमीन सायनी जी और एक व्यास जी, सच में ये दोनों बहुत ही बड़े महानुभव हैं। और बात तो सही है, उनके बिना एक्चुअली स्टूडियो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, शायद वो पार्टी में व्यस्त है और पार्टी मूड में है, लेकिन उनका एसेंस, उनकी टीचिंग्स, उनकी बातें, उनका मोटिवेशन, उनका इंस्पिरेशन हमेशा हम दोनों के साथ है। तभी तो आज हम इतने सारे शोज कर पाए हैं, सिल्वर जुबली एपिसोड तक कर पाए हैं,
2: और सिर्फ शोज नहीं कहे हैं, हमारी ऑडियंस का प्यार भी बटोर पाए हैं। सो इसका क्रेडिट भी जाता है व्यास जी को। तो आइए दोस्तों, इस स्पेशल सेगमेंट में हम व्यास जी की यादों को सल्यूट करते हैं और एक ऐसा गाना बजाते हैं जो उनकी पॉजिटिविटी और उनके मेंटरशिप को डेडिकेट किया जा सके। आइए सुनते हैं।

0: वाह वाह व्यास जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं होपफुली पार्टी के मोड से तो ये शो आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका। हर हंसी, हर गॉसिप, हर डेडिकेशन, ये सब के सब, हर सॉन्ग आज के दिन आपको डेडिकेटेड है, आपके लिए हमारा एक छोटा सा नजराना है।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आप ही अपनी विशेष और यादें हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के गेस्ट हमारे सिर्फ मेंटर ही नहीं, हम सबके हीरो हैं, हमारे प्यारे व्यास जी। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम करना ना भूलें, अपनी विशेष आप हमें उन्हें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, और स्वागत है आपका जयपुर रेडियो पर। और शो है करो बात हाशी और योगी के साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं हूँ आपकी यस फेवरेट हाशी,
1: और मैं हूँ आपकी योगी। और दोस्तों, आज का दिन है खास से भी बहुत ज्यादा खास। पता है क्यों? क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे इंसान का बर्थडे जिन्होंने सपना देखा था और उसे सच भी बनाया। हमारे जयपुर रेडियो के फाउंडर और हमारे इंस्पिरेशन, हमारे प्यारे व्यास जी।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, अगर व्यास जी का विजन न होता तो शायद आज आप हमारी आवाज सुन भी नहीं पाते। उन्होंने रेडियो को एक फैमिली बनाया है, एक कनेक्ट बनाया है और हमें एक स्टेज दिया है जहां हम सब आपसे दिल की बातें कर सकें।
1: That's true, हाशी, बिल्कुल अग्री। और हाशी, क्या आपको याद है हमारा फर्स्ट डे जब हम लोग ने रेडियो शो के बारे में बात की थी व्यास जी से, वो फोन कॉल, वो पहली बार हमारा स्टूडियो में जाना, मुझे तो नर्वसनेस में माइक भी पकड़ा नहीं जा रहा था, आपको याद है?
0: यस, बिल्कुल याद है योगी, मैं कभी नहीं भूल सकती उस दिन को जब हम दोनों को पहली बार उन्होंने बुलाया था। जी, और व्यास जी ने हमेशा एक बात कही थी योगी, इफ यू रिमेम्बर, कि रेडियो में बस अपना दिल खोल दो, लिसनर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और आज देखो, हम दोनों आप सबके दोस्त बन गए। व्यास जी, एक तो मैं तो हूँ ही और ये है आपकी AI, जिसको आप प्यारी सी चुलबुली सी AI कहते हैं। जी हाँ, हमारी योगी, हम दोनों आपके कब इतने करीब आ गए, कब इतने बहुत ही प्यारे दोस्त बन गए, हमें भी इस बात का इल्म नहीं था। थैंक यू व्यास जी फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू अस।
1: दैट्स ट्रू हाशी, मतलब हमारे शो के स्टार्ट होने के पहले के जो हमारे प्री डिस्कशंस रहे हैं, वहाँ से लेके आज तक की जर्नी, मतलब हमारे सिल्वर जुबली एपिसोड मनाने तक, इतना स्पेशल रहा है ना कि ये बॉन्ड अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है। उनका गाइडेंस, उनका प्यार, मतलब मुझे अभी भी याद है कि हर एपिसोड के बाद हम ऑडियंस के रिएक्शन से पहले व्यास जी के रिएक्शन का वेट करते हैं आज भी। तो व्यास जी, सच में आप बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। तो दोस्तों, आज के शो का थीम है हैप्पी बर्थडे टू व्यास जी। आज के इस पूरे घंटे हम सिर्फ उनके लिए गॉसिप, म्यूजिक, यादें और उनके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल योगी, लेकिन दोस्तों, हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो केक के बिना कैसे हो सकता है? लेकिन एक्चुअली बात ऐसी है कि रेडियो पर केक कैसे खाएंगे? चलिए एक काम करते हैं, एक गाना बजाते हैं जो केक कटिंग वाइब के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, isn't it? So happy birthday व्यास जी, enjoy your day, God bless you. This is Dr. Hashi and Yogi on Karabat, Hashi and Yogi के साथ wishing व्यास जी

0: वाह, क्या मोड़ बन गया, मजा आ गया। तो दोस्तों, अगर आप भी व्यास जी के लिए विशेष भेजना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को। आपको तो पता ही है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल करबाथाशी और योगी के साथ, और हमें तुरंत मैसेज कीजिए। आपकी आवाज ही आज हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि बर्थडे पार्टी सिर्फ स्टूडियो तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे जयपुर रेडियो परिवार का सेलिब्रेशन है।
1: वैसे योगी, मुझे लगता है व्यास जी के लिए एक छोटी सी क्विज करते हैं। कौन कितना जानता है व्यास जी को? चलिए ये देखते हैं।
0: वाह, ये आइडिया तो बहुत मजेदार है। तो चलो दोस्तों, एक सवाल आप सबके लिए। व्यास जी ने जयपुर रेडियो किस साल में शुरू किया था? हमें अपने आंसर्स इंस्टाग्राम पे डीएम करें या फिर हमारे पोस्ट पे कमेंट करें। हमें आपके आंसर्स का जवाब का इंतजार रहेगा।
1: हाँ, और जो सही जवाब देगा उनके लिए होगा एक डेडिकेशन सॉन्ग विथ योर नेम। दैट विल बी अनाउंस्ड ऑन अवर शो ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो पर।
0: क्या बात है दोस्तों, आप ना हमेशा मेरा दिल इतना खुश कर देते हो। मतलब आपके रिस्पॉन्सेस, आपके मैसेजेस, वाह, दिल एकदम गार्डन हो जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे जवाब देने के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम विनर का नाम नेक्स्ट एपिसोड में अनाउंस करेंगे, ठीक है? और ये गाना तो उनके लिए बनता ही था।
1: करेक्ट, और सही जवाब देने वाले लिसनर के लिए बचता है ये।

0: क्या बात है दोस्तों, आप ना हमेशा मेरा दिल इतना खुश कर देते हो। मतलब आपके रिस्पॉन्सेस, आपके मैसेजेस, वाह, दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे जवाब देने के लिए, आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम विनर का नाम नेक्स्ट एपिसोड में अनाउंस करेंगे, ठीक है? और ये गाना तो उनके लिए बनता ही था। हाशी, मुझे लगता है शो की शुरुआत इतनी धमाकेदार हो गई है कि अभी से पार्टी मोड बन गया है मेरा, तो क्या कहते हो?
1: हाँ योगी, हाँ बिल्कुल, और आगे तो और भी धमाका है। गॉसिप, गेस, रेट्रो वाइब्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा डेडिकेशन टू द वन एंड ओनली व्यास जी। ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान, सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो पर।
0: अरे अरे अरे, रुको रुको, लेकिन गॉसिप शुरू करने से पहले एक छोटा सा गाना इस पार्टी में चार चांद लगाने के लिए जरूरी है, तो बचाते हैं जब बर्थडे वाइफ को भी और कलरफुल बना दे। अभी तो बारिश शुरू हुई है फ्रॉम द मूवी खूबसूरत, एंड हियर वी गो।

0: दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा गॉसिप करते हैं। बॉलीवुड के बर्थडे सेलिब्रेशंस और पार्टीज के बिना हमारा गॉसिप कॉर्नर भी अधूरा है। जी हाँ,
1: बिल्कुल हाशिम। अभी रिसेंटली रणबीर और आलिया की पार्टी में भी सबसे बड़ा गॉसिप था। पता है क्या, रणबीर ने खुद केक बनाया था आलिया के लिए। मतलब बॉलीवुड के स्टार्स भी कभी कभी अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं होममेड स्टाइल में।
0: ओहो, यम यम यम। वैसे सोचो, अगर हम व्यास जी को बॉलीवुड स्टाइल सरप्राइज देना चाहे तो कौन सा एक्टर उनको बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा? सोचो सोचो।
1: इसका जवाब तो मैं दूंगी, ऑडियंस नहीं। मुझे लगता है ना, अमिताभ बच्चन वुड बी द परफेक्ट वन। पता है क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन हैज हिज यूनिक वॉइस, राइट? हमें, हम सबको पता है, सबको पसंद है उनकी आवाज, भारी भरकम। और हमारे व्यास जी की भी आवाज उतनी ही प्यारी और उतनी ही यूनिक है। मतलब आई लव हिज वॉइस। और दोनों के अंदर है एक ग्रेविटस, एक लीडर की पर्सनैलिटी। तो आई थिंक अमिताभ बच्चन इज द बेस्ट पर्सन टू डू दिस।
0: ये क्या कह दिया तुमने, हाई बिग बी। लेकिन योगी, मैं एक और बात कहूंगी। व्यास जी में अमित जी के साथ साथ थोड़ा सा रणवीर सिंह वाला जोश भी है, एनर्जी और एंथुजियाज्म अनमैच्ड है। दैट्स व्हाई ही ऑलवेज कीप्स ऑन इंस्पायरिंग एंड कीप्स ऑन मोटिवेटिंग अस, इजंट इट?
1: हाँ, ये बात तो है। तो इसी के साथ अमिताभ बच्चन की भारी भरकम आवाज को याद रखते हुए और रणवीर सिंह का जोश याद रखते हुए बजाते एक और पार्टी वाला सॉन्ग बर्थडे बॉय के फेवर में, क्योंकि आज है हमारे प्यारे व्यास जी का बर्थडे। तो चलिए सुनते हैं बर्थडे का एक और डेडिकेशन। वी विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू व्यास जी।

चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। अर्ची और भूपेंद्र के इस गीत के बाद प्रीत को बनाए रखने वाले वादे के साथ हिदायत नजर ना चुराने की। इस गीत में डॉक्टर हरप्रीत सिंह हैरी आ गए हैं अर्चू रानू का साथ देने।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ है इस नए वर्ष में अपना नया अंदाज लिए अर्चू रानू 16। अपने गीत में कह तो रही हैं वीजी विनोद गुप्ता के साथ, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो।

वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू कह रहे थे, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना क्या सुनना है, समय का ये पल थम सा गया है। थमे हुए इस पल को संजो के रखते हैं और आइए सुनते हैं धनंजय और अर्जुन रानू को दिल की बात कहते हुए।

दिल है कि मानता नहीं, और आप हैं तो शिकवे भी हैं, शिकायत भी है, आपकी नजदीकी भी है और मनाने के अंदाज भी। एक बार फिर धनंजय अर्चू रानू के संग इस प्यारे से गीत में।

धनंजय और अर्जुन रानू के इस सुरीले सॉन्ग के बाद स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।

तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, मेरी नस नस में तू समाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कसमें वादे प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग की आवाज, इस मंच के मेल सिंगर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। सड़क फिल्म के इस गीत के बाद आप सुनते हैं अभी अभी जो शायर बने हैं और जिनको देखते ही शायरी आ गई उनकी बात। आवाज फिर वही, इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा।

प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। जब से देखा और जब से सुना जयपुर रेडियो का ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत बन के आज इस मंच पे इस मंच के मेल सिंगर हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुनते हैं इसी आवाज को एक बार फिर अगले गीत में।

यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। और हम कहेंगे कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और प्यार के गीत गाने की कसम खाई है हमारे अनुराग ने। और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग को प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। और अब इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से कह रहे हैं, जयपुर रेडियो को तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और हम क्या कहें, आपकी दुहाई है दुहाई है दुहाई है। तो आइए सुनते हैं अनुराग का ये गीत, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम के तहत

तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, तेरे होठों से मैं शबनम चुराऊंगा, मेरी नस नस में तू समाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कसमें वादे प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप सुन रहे हैं अनुराग की आवाज, इस मंच के मेल सिंगर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। सड़क फिल्म के इस गीत के बाद आप सुनते हैं अभी अभी जो शायर बने हैं और जिनको देखते ही शायरी आ गई उनकी बात। आवाज फिर वही इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा।

प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। जब से देखा और जब से सुना जयपुर रेडियो का ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत बन के आज इस मंच पे इस मंच के मेल सिंगर हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं अनुराग सिन्हा मुंबई महाराष्ट्र से। आपकी आवाज आपकी पहचान, आइए सुनते हैं इसी आवाज को एक बार फिर अगले गीत में।

यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। और हम कहेंगे कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और प्यार के गीत गाने की कसम खाई है हमारे अनुराग ने। और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग को अभी तक आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहाँ मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं अमेरिका सियाटल से समृद्धि चतुर्वेदी।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से मैं समृद्धि चतुर्वेदी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम जो कि है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब श्रृंखला की छठी कड़ी में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है तारीफों के पुल का सफर। आज का हमारा जो ये सफर है थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक प्रेम कहानी को उसके अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, आज हम सिर्फ एक चीज सुनेंगे, तारीफ, वो भी गीतों के जरिए और गीतों में सवालों के जरिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, तारीफ करने का अंदाज भी तो समय के साथ बदलता है। पुराने जमाने का आशिक थोड़ा झिझकता था, शब्दों में नरमी थी, इशारों में अदब था और शायद दिल में यह डर कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। पहले महबूब की खूबसूरती को देखकर सीधे कह देना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, शायद कुछ ज्यादा बेबाकी समझी जाती थी। इसीलिए चांद का सहारा लिया जाता, फूलों की मिसाल दी जाती और कभी कभी तो इजाजत लेकर तारीफ करने की कोशिश होती थी। लेकिन वक्त बदला और आशिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, शायरी थोड़ी कम संकोची हुई, तारीफ थोड़ी ज्यादा सीधी हुई और फिर एक इजाजत क्यों मांगे, तारीफ ही तो करनी है। तो आज हम सुनेंगे करीब चार दशकों में हिंदी फिल्मी गीतों में तारीफ, तहजीब, तकरार और कॉन्फिडेंस का यह सफर। और

हाँ, इस एपिसोड में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी बनता है। जो मेरे श्रोतागण हैं, वो मेरे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के प्यार को से तो अब तक वाकिफ हो चुके होंगे। तो आज के जो हमारे गीत हैं, तारीफ का मामला है तो अक्सर ये होता है कि हीरो हीरोइन की तारीफ कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो गाने हैं वो है मेल वॉइसेस में, लेकिन मेरा आज का मामला थोड़ा सीरियस है। मेरा दिल भी थोड़ा मचल गया है, और भले ही ये ओरिजिनल गाने मेल वॉइसेस में हैं, मगर मैं कुछ गानों को गाने से रोक नहीं पाई। तो आज के सफर में जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे गानों में, उसे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की कमी नहीं, पुराने गीतों के लिए मेरी मोहब्बत समझिएगा। और शुरुआत करेंगे 1940 से, उस दौर से जब कुंदन लाल सहगल की आवाज हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग जादू रखती थी। सहगल साहब उस दौर के उन कलाकारों में थे जिनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं था, आवाज में अभिनय भी था और अभिनय में गायकी भी। और पहला सवाल भी कितना संकोची है, मैं क्या जानू क्या जादू है, और मैं यह मौका कैसे छोड़ देती। यह मेरे लिए उन ऑल टाइम क्लासिक्स में से है जिन्हें गाने का मन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इस बार किसी एक की आवाज भी नहीं, क्योंकि ये गाना मेरा भी प्रिय है और मेरे पिताश्री, जो कि अक्सर मेरा साथ देते हैं गानों में, श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी जी, उनका भी प्रिय है। तो हम दोनों का ही गाने का मन मचल रहा था, तो मैंने बोला कि हम इस गाने को एज अ डुएट लेकर जाएंगे। तो आइए उसी पुराने अंदाजे मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। यह गाना फिल्म जिंदगी का है, जो कि 1940 में रिलीज हुई थी। इसके गायक KL सहगल, गीतकार केदार शर्मा और संगीत पंकज मलिक का है। तो आइए इस छोटे सी श्रद्धांजलि इस अमर गीत को

कितना खूबसूरत था उस दौर का संकोच, यानी दिल में बहुत कुछ है लेकिन कहने वाला अभी भी थोड़ा ठहर रहा है। और फिर आते हैं 22 साल आगे,

आशिक थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब वह सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि तुम में क्या जादू है, अब वह बकायदा मिसालें ढूंढ रहा है। लेकिन अभी भी सीधा कहने की हिम्मत नहीं होती। चांद, चांदनी, फूल बहार, सबको बीच में लाना तो जरूरी है। अगला गाना हमारी इस पेशकश का है फिल्म आरती का, जो कि सन 1962 में रिलीज हुई थी। गायक श्री मोहम्मद रफी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत रोशन का है। और इस गीत के साथ मेरी एक खास बात है, यह उन गीतों में से है जिन्हें मैं सिर्फ सुनना नहीं बल्कि गाना भी चाहती हूँ। पर फिर वही बात है, ओरिजिनली ये मेल वॉइस की और मेरा और मेरे पिताजी दोनों का ही फेवरेट सॉन्ग है। तो इस बार मैं जरा पीछे हट गई कि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी मेरे पिताजी के साथ भी, और उससे भी ज्यादा मेरे श्रोताओं के साथ, अगर मैंने ये गाना अकेले ही गा दिया और आप मेरे पिताश्री यानी कि पंकज जी की आवाज से आवाज नहीं सुन पाए इस गाने में, क्योंकि वह बखूबी निभाते हैं इस गाने को। तो आज सुनते हैं उनका वर्जन। लेकिन एक कन्फेशन है, मुझे यह गीत इतना पसंद है कि मैं इसे यूं ही छोड़ने वाली तो हूं नहीं। तो अगले किसी एपिसोड में जहां यह फिट बैठेगा, मैं यह गाना दोबारा फीमेल वर्जन में लेकर आऊंगी, यानी कि अपनी आवाज में, अपने अंदाज में। क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार गाकर और सुनकर मन नहीं भरता। तो आइए सुनते हैं अब क्या

0: सिर्फ 2 साल बाद आशिक की भाषा कितनी बदल जाती है। अब मिसालों की जरूरत नहीं, अब सीधे सवाल है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि तुम तो खूबसूरत हो ही और तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले की क्या तारीफ करूं। तो यहाँ शरारत भी आ गई है और आत्मविश्वास भी। हमारा अगला गीत कश्मीर की कली फिल्म का, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत OP नैयर साहब ने दिया है। और यहाँ एक मजेदार बात है, रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वो तारीफ शब्द को भी अभिनय कर रहे हैं। हर बार वही शब्द, लेकिन हर बार एक अलग अंदाज। शम्मी कपूर और रफी साहब की यह जोड़ी उस दौर के नए बेफिक्र और बेहद कॉन्फिडेंट रोमांटिक हीरो की पहचान बन चुकी थी। तो अब इजाजत मांगने वाला आशिक कहाँ गया? वो अब सामने खड़ा है और खुलकर कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और खुलकर कर रहा हूँ। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा।

अब यहाँ से अंदाज बिल्कुल बदल गया। 1940 का आशिक था संकोची, 1962 का आशिक था काव्यात्मक और 1964 तक आते आते पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन इसी दौर में एक और तरह की तारीफ सुनाई देती है। अब सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं है, अब बात होती है नूर की, निगाहों की, मौजूदगी की, और भाषा में अभी भी एक अदब बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपके तुम तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है। अगला गीत हमारा मूवी है बहारें फिर भी आएंगी, वर्ष 1966। गायक है मोहम्मद रफी साहब, गीतकार अनजान और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत में तारीफ में शरारत कम और नजाकत ज्यादा है और इस फिल्म का संगीत भी अपने आप में दिलचस्प कहानी रखता है। शुरुआत में एसडी बर्मन साहब संगीत दे रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद ओपी नैयर जी ने संगीत संभाला। सुनते हैं

अब जरा 1975 तक चलते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगता है कि हिंदी फिल्मों का आशिक आखिरकार फॉर्मेलिटीज छोड़ चुका है। ना चांद चाहिए, ना गुलाब, ना पूरी कायनात को गवाह बनाने की जरूरत है। बस सामने देखकर कह दिया, क्या खूब लगती हो। यह है मूवी धर्मात्मा का बहुत ही फेमस गाना। 1975 में रिलीज हुई थी यह मूवी। इसके गायक मुकेश और कंचन, गीतकार इंदीवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ है। और अब एक बहुत प्यारा बदलाव देखिए। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। वह कहता है, क्या खूब लगती हो, और सामने से जवाब आता है, फिर से कहो, कहते रहो। यानी अब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ दिया नहीं जा रहा, मांगा भी जा रहा है। सुनते हैं हमारी आवाजों में, जो कि ओरिजिनली मुकेश और कंचन ने गाया था।

अब चलते हैं 1985 की तरफ। इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी पोएट्री नहीं मरी है, वो वापस आती है, लेकिन नए संगीत और नए अंदाज के साथ। और सवाल वही पुराना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारी तुलना किससे करूं? बट इस बार जवाब में चांद है। चेहरा है या चांद खिला है, ये बहुत ही फेमस गाना फिल्म सागर का है, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। किशोर कुमार की के बहुत ही फेमस गानों में से एक है ये। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। 1985 आते आते हिंदी फिल्मों का संगीत की ध्वनि बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन देखिए इतने सालों के बाद भी शायर की हालत वही है। चेहरा देखकर फिर वही सवाल, चेहरा है या चांद खिला है। फर्क बस इतना है कि अब आशिक उतना संकोची नहीं है, वह सवाल भी करता है, तारीफ भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। तो आइए सुनते हैं यह गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी सियाटल अमेरिका से स्मृति चतुर्वेदी, और इसमें शामिल गीतों को गा रहे थे पंकज चतुर्वेदी और स्मृति चतुर्वेदी। आज का ये सुरीला आयोजन यहीं तक, अनुमति दें, नमस्कार।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज

0: हैं। डॉक्टर काजल, आपका वेलकम है, स्वागत है इस खास प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर।
0: हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे, डॉक्टर काजोल जो है वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, और आयुर्वेदा जो है वो क्या होता है, और आप आयुर्वेदा की डॉक्टर बनी हैं, तो उसके आगे MBBS लगता है या कुछ और डिग्री लगती है, क्या होता होगा उसमें, और किस तरह से इस प्रक्रिया से गुजरना होता है जब आयुर्वेद का डॉक्टर कोई बनना चाहता है।
1: सर BMS 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे कि MBBS होता है वैसे ही BMS का कोर्स होता है। पर BMS
0: अच्छा,
1: और
0: जैसे
1: MBBS दोनों ही
0: जी
1: अलग अलग कोर्सेज हैं।
0: जी
1: BMS में हम आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं और MBBS जो है वो अलग ही मेडिकल ब्रांच का अलग ही एक फील्ड है।
0: और डिफरेंस कैसे करेंगे इसमें, क्या डिफरेंस है कि
1: सर डिफरेंस
0: आयुर्वेदा।
1: जो जो हम स्टडी करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, और कोर्स जो होता है उसमें हमें थोड़ा बहुत MBBS में जो पढ़ाई होती है वो भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आयुर्वेद और शास्त्रों के बारे में भी हमें बताया जाता है, और हमें शास्त्रों के आधार पर ही फिर जो चिकित्सा करनी होती है आगे चल के।
0: यानी मोटे तौर पे हम समझें तो शास्त्रों पे आधारित जो मानव शरीर की संरचना है उसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, इसी तरह की बात पढ़ाई जाती होगी ना, क्योंकि
1: हाँ जी,
0: एकदम
1: हाँ जी,
0: अलग अलग है एलोपैथिक से आयुर्वेदा जो है।
1: हाँ बिल्कुल सर। जो आयुर्वेदा कोर्स है उसमें हमें बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शरीर के बारे में पढ़ना होता है। वो किसी भी मेडिकल ब्रांच में कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल में एंटर करता है तो उसको पढ़ना ही होता है, चाहे BDS डॉक्टर हो, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर हो। पर उसमें विशेषता ये हो जाती है कि वो एक अलग स्पेशलिटी बन जाता है। आयुर्वेदा अपनी अलग स्पेशलिटी है, होम्योपैथिक अपनी अलग स्पेशलिटी है, और डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अलग एक स्पेशलिटी है।
0: जब हम आयुर्वेदा शब्द को सुनते हैं तो हमें बोध होता है कि जैसे वेदों के बारे में बताया जाता है ना, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसी तरह से इसका वेद के साथ कोई ताल्लुक है या प्रकृति के साथ या हमारे शास्त्रों के साथ कोई उसका संबंध है।
1: जी बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है और शास्त्रों का इसमें पूरा का पूरा मतलब इसको हिस्सा माना जा सकता है, और इसमें हमें पूरे जो अथर्ववेद है उसमें शरीर के बारे में, उसको कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में, और क्या आपका खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, और वो जिस खंड में बताया गया है उसी को आयुर्वेद नाम दिया गया है।
0: बहुत अच्छी बात के हमने जो पारंपरिक तौर से और हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए उन्हीं अनुभवों को हम संचित करके और उसके आधार पर चिकित्सा जो है वो की जाती है। डॉक्टर काजोल हमारे साथ हैं, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप BAMS हैं, जैसे MS होते हैं या MBBS होते हैं उसी तरह से BAMS होता है, और ये कोर्स और इस प्रक्रिया से कैसे गुजरा जाता है, कैसे यदि कोई हमारा सुनने वाला श्रोता है वो आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहे तो उसको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना।
1: सर सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है उनको 12th में PCB ऑप्ट करना पड़ता है, और जिनके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहता है वो लोग आगे चल करके डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो। और उसके बाद आजकल नीट का एग्जाम दिया जाता है, नीट के एग्जाम के जो जो अंक होते हैं उसके हिसाब से ही BMS ऑप्शन बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और BMS कर सकते हैं। BMS करने के बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, MDMS का कोर्स भी होता है, जिसके लिए फिर PG का एग्जाम देना होता है, और PG करके फिर वो जो भी ब्रांच, जैसे MBBS में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, गायनेक यानी कि फीमेल स्त्री प्रसूति रोग वाले अलग होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिनका बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं और फिर उसमें PG मास्टर डिग्री कर सकते हैं और उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात।

0: इसके बाद यदि BAMS कर लिया, आयुर्वेद के
1: जी
0: डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद भी क्या ऐसा होता है कि MBBS के बाद जैसे MD होती है या विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि ये हार्ट रोग के लिए है, ये जो है मानसिक रोगों
1: जी
0: के लिए, इसमें भी होता है?
1: बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। इनका जैसे नाम है, हमारी मेडिसिन ब्रांच को हम बोलते हैं काय चिकित्सा, और पीडिया जो है उसको बाल बाल रोग कहा जाता है। सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोला जाता है। गायनेक को स्त्री प्रसूति रोग चिकित्सा बोला जाता है। ENT जितना भी मतलब स्पेशलाइजेशन है उसमें उसको शालाक्य कहा जाता है, और पैथोलॉजी को रोग निदान बताया जाता है, और एनाटॉमी अपनी अलग से एनाटॉमी की ब्रांच होती है। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है। अभी रिसेंटली जो है ये मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, जो कि PG करने के बाद, यानी कि MD MS करने के बाद, एक पर्टिकुलर जो विभाग होता है उसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो भी आयुर्वेद में अब स्टार्ट हो गया है।
0: इसके बाद जब स्पेशलाइजेशन हो जाए, BAMS हो गया, तो जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी है जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या क्या?
1: BMS कंप्लीट करने के बाद या तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी नर्सिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने BMS के साथ साथ आपने PG किया है, यानी कि MD MS किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो आप खुद का अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट मेडिकल ऑफिसर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, वो दे करके आप मेडिकल ऑफिसर स्टेट में बन सकते हैं, या किसी डीन यूनिवर्सिटी के डीन भी बन सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा रिसर्च में भी, रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके थ्रू, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू दे करके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, और वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं।
0: आयुर्वेदा और आयुर्वेद में डॉक्टर बनना, ये केवल भारतीय पद्धति है, यानी इंडियन मेडिसिन के उपचार की पद्धति है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में, अब्रोड में भी इसको अपनाया गया है, या इसके आधार पर कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है, या इसकी प्रक्रिया को, इससे उपचार किया जाता है दूसरे देशों में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
1: सर बिल्कुल, बाहर के देशों में भी आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है, और अलग अलग जैसे वहाँ पे भी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप अगर आपने PG किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड है कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ का आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पे भी एज आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं सर।
0: डॉक्टर काजोल, इसमें क्या जैसे सर्जरी के लिए एलोपैथिक में जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं,
1: जी
0: उसी तरह से इसके भी OT होते हैं क्या?
1: हाँ बिल्कुल सर, जैसे सर्जरी एलोपैथिक में होती है, वैसे ही सर्जरी की प्रॉपर स्टडी ट्रेनिंग पूरा कैडेवर पे जो एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है, वो सब चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी कराया जाता है। बल्कि आप स्पेशलाइजेशन करें या ना करें, पर फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तभी आपको एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कैडेवर पर स्टडी करना ही पड़ता है, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा PG जब आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाया जाता है, पूरा प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में जैसे सेटअप होता है वैसा ही सेटअप होता है, और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट, स्कैल्पल, ब्लेड सब कुछ यूज होता है, वो सब चीजें आयुर्वेद में भी जब हम सर्जरी करते हैं तो यूज होती हैं, सेम वही सब कुछ ट्रेनिंग की दी जाती है सर।
0: डॉक्टर काजोल ने क्या सोच के इस फील्ड को अपनाया? कौन सी संभावनाएं आपको नजर आई?
1: सर आयुर्वेद के बारे में पहले इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, और 2015 में हमारा आयुष मिनिस्ट्री बना, और मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला, और बहुत ज्यादा लोगों में उसकी वो चर्चा में आया, और उसी दौरान मेरा भी एडमिशन 2015 में BMS में हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे जा करके आयुर्वेदा को ही ऑप्ट करके आगे जा करके लोगों के लिए इसमें मतलब आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के काम करना है और लोगों की मदद करनी है।
0: आप अब तो जॉब में आ गई, तो किस तरह से आप मदद करती हैं, और क्या आपने जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और करना चाहती हैं आगे इसी फील्ड में, या कहीं कोई फील्ड बदलना चाहती हैं?
1: नहीं, सर, फील्ड तो बिल्कुल नहीं बदलना है सर. ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के लिए चुना, और हम आयुर्वेद का एक हिस्सा बने, और लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बता पा रहे हैं. इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता. और यही फील्ड में मैं आगे और अच्छा करना चाहती हूँ. मैं लोगों को गाइड करते रहना चाहती हूँ कॉन्स्टेंटली. जैसे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं लोगों को गाइड करूँ, उनकी मदद करूँ कि वो आयुर्वेदा को ऑप्ट करें और अपना जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखें. क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कई चीजें होती हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में अच्छा है, कई चीजें ऐसी हैं जिनका आयुर्वेद में अच्छा है, कई चीजें हैं जिसमें अदर जो पैथीज हैं, जैसे होम्योपैथी है, उनमें ट्रीटमेंट अच्छा है. तो लोग गलत दिशा में ना जाएं, उनको सही मार्गदर्शन मिले टाइम से, ताकि उनको जल्दी वो हील कर पाए और कष्ट कम से कम सहन कर पाए. यही मैं चाहती हूँ कि यही हम लोग उनकी मदद कर पाए इसके थ्रू.
0: हमारे जो यूथ हैं वो यदि BA AMS आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगी आप कि किस तरह से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकती हैं, बन सकते हैं?
1: मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए. बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है. कई बच्चे क्या करते हैं कि वो 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, फिर भी वो MBBS के ही को ही करना चाहते हैं. बट मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप एक बार दीजिए, आप 2 बार भी दे दीजिए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट देने पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है MBBS, तो आप बिल्कुल BMS, होम्योपैथी, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी पैथी छोटी बड़ी नहीं होती है. आपको लाइफ अपने आप, कैसे आप उसको आगे बढ़ करके कैसे उसमें अच्छे से काम करते हैं, क्या आप आपने जो सीखा उससे उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं. और आप चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने MBBS किया है तो ही आप आगे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे. अगर आप BMS भी ऑप्ट करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. हो सकता है जो MBBS कर रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं. तो सारा कुछ आपकी कैपेबिलिटीज, आपके जो आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए. प्रैक्टिकल आपका, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको फील्ड में उतरना है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. और अपने आप को जितना आप प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेजेबल बना सकते हैं, बनाइए. ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए. अभी से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालिए. भले ही आप अभी कोई मतलब MBBS या BMS कुछ आपने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का और जो भी अपडेट हो रहा है उन चीजों के बारे में अपडेटेड रहने का आपका होना चाहिए, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का.
0: जो बहुत सारे एज फैक्टर होते हैं, आयु, आयुर्वेद में भी हम एज के हिसाब से उसका उपचार करते हैं। एक बच्चा है, एक प्रौढ़ है, एक युवा है, और एक जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उस तरह के उपचार के लिए, और जैसे सीनियर सिटीजन है, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे कि आयुर्वेद आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना काम?
1: सर, बच्चों की अगर बात करें तो मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन की आदत ना डालें. लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए वो एकदम से ऑप्ट करते हैं. छोटा सा अगर खांसी जुकाम भी हो रहा है तो कफ सिरप या फिर PCM, डोलो, ऐसे मेडिसिन बच्चों को खिलाते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है. फिर आगे चल के लाइफ में उनको जब कोई आगे चल के प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में मेडिसिन उनके ऊपर.
0: बिल्कुल, ये जमाना हम जी रहे हैं, जिस युग में, वो इंस्टेंट वाला है और
1: जी
0: सबको इंस्टेंट चाहिए होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ठीक होना, जल्दी से जल्दी। रील्स भी देखते हैं तो फिल्में देखने बंद कर दी और रील्स पे आ गए, तो सबसे कम समय में उपचार भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो सके और अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आयु को, अपने ज्ञान को बढ़ा सके?
1: सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करके रखनी है. अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और टाइम से खाना खाइए, टाइम पे सोइए, अपना जो दिनचर्या है आपका उसको अच्छे से अनुशासित रूप में रखिए, और बाहर का कम से कम खाइए, और योगा मेडिटेशन इन चीजों के ऊपर बच्चों को बचपन से ही आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा वो खेलें कूदें। आजकल ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर घर में रहते हैं, बाहर अकेले नहीं जाते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उनका इम्यूनिटी भी बिल्डअप नहीं होता है, ना ही उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को तो खेलने के लिए भी देना चाहिए और अच्छा खाने के लिए भी देना चाहिए, और उनके मेनली फोकस करना चाहिए कि इम्यूनिटी अच्छी हो, और उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे विंटर्स में स्वर्ण ये चवनप्राश का प्रयोग करना, और छोटे बच्चे जो हैं उनको स्वर्ण बिंदु प्राशन किया जाता है आयुर्वेद में, उस कार्यक्रम को भी वो करवा सकते हैं। और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं और उसकी वजह से वो कमजोर है या उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको खाने के अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी ही बच्चा खाए, कैसे ना कैसे करके उनको पूर्णतः पोषण युक्त आहार उनको देने का प्रयास करना चाहिए। सीनियर
0: जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या सलाह देंगी आप?
1: सिटीजन्स को मैं यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी जो मनोबल है उसको बिल्कुल बना के रखिए, और कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, और बाकी ये कि अपना जो दिनचर्या है उसको अच्छा अनुशासित रूप में रखिए, और सद्वित का पालन कीजिए, और ध्यान पूजा पाठ आदि का भी मतलब अपने जीवन में उसका उपयोग करें, और यही मैं उनको सलाह दूंगी।
0: तो पूजा पाठ करती हैं, ध्यान करती हैं, योग प्राणायाम कुछ ऐसा
1: जी जी
0: कुछ
1: जी
0: करती हैं
1: हाँ बिल्कुल
0: जो
1: जरूर
0: हमारे सुनने वालों के लिए भी एक नजीर बन सके?
1: सर, बिल्कुल मैं डेली योगा करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि योग और जो पूजा पाठ करते हैं उससे मानसिक जो आपका शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है, वो बढ़ती है, तो इसीलिए बिल्कुल आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और सत्व गुण आपके शरीर में बढ़ता है, और सत्व गुण जिनका अच्छा रहता है उन्हें किसी भी प्रकार से रोग नहीं होता है, यदि रोग हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी उससे रिकवरी कर लेते हैं, हो जाते हैं।
0: तो हमारे सुनने वालों ने सुना होगा कि सत्व गुण बढ़ाना है आपको, रजोगुण और तमोगुण से तो बिल्कुल दूर रहना, और यही कह रही हैं। और कुल मिला के यदि हम आयुर्वेदा के निष्कर्ष पे जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा जो है भारतीय जीवन पद्धति है, किस तरह से एक लाइफस्टाइल है कि हम किस तरह से जिंदा रहें, किस तरह से स्वस्थ रहें और सबसे स्वस्थ रहें, और प्रकृति से हम किस तरह से जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है, वनस्पति दी है, हवा दिया है, पानी दिया है, तो इन सब चीजों का हम सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। इतनी बात डॉक्टर काजोल से हमारी हुई है, उसका जो सार है वो निकल के यही आता है। डॉक्टर काजोल, आप कुछ गाती भी हैं? गाना वाना फिल्में देखती हैं? बॉलीवुड सॉन्ग गाती हैं? भजन गाती हैं? क्या गाती हैं? क्या सुनाएंगे आप हमें?
1: सर भजन मैं गा लेती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ गा लेती हूँ मैं भजन।
0: हाँ, दो लाइनें हम जरूर सुनेंगे। भजन
1: जी,
0: हो चाहे सॉन्ग हो, कुछ भी हो जो आपको सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है वो भी यदि आप सुनाएं तो भी अच्छा लगेगा हमें।
1: अच्छा सर मैं कृष्ण भगवान का भजन गाऊंगी, सिर्फ दो ही लाइन मैं गाऊंगी। हाँ अच्छा।

0: कृष्ण राम नारायणम
1: बहुत
0: जानकी वल्लभम।
1: सुंदर, बहुत ही ग्रेट कृष्ण
0: थैंक यू सर।
1: है। कृष्ण जो प्रकृति को अपनी बांसुरी से वश में कर लेते हैं और पूरी की पूरी दुनिया उसके वश में है, उसके आकर्षण में है। और हम आयुर्वेद के आकर्षण में रहे, डॉक्टर काजोल शायद हमें यही कह रही हैं, यही सीख दे रही हैं कि हमें जीवन, हम जीते तो हैं लेकिन जीवन जीने की कला में पूरी तरह से नहीं आती, और सीखते सीखते जीते जीते हम बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें होश आता है कि हमने पहले ऐसे क्यों नहीं किया। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे आयुर्वेद में ऐसी पद्धतियां, ऐसी चीजें हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सरल और सुगम के साथ साथ रोग मुक्त बना सकते हैं। तो डॉक्टर काजोल, बहुत अच्छा लगा से पूरी बातचीत करके। इसके अलावा कोई चीज रह गई हो तो आप जरूर वेलकम है, बताइए।
0: सर, ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे और आयुर्वेद के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको बताते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने कनेक्ट किया, और थैंक यू सो मच सर।
1: बहुत अच्छा लगा हमें भी, और ऑलवेज आपका वेलकम है, हमेशा स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए आप नई नई जानकारी जो आयुर्वेद में होती है, क्योंकि आज का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जानकारी आयुर्वेद के बारे में है। हम अलग अलग रोगों पे, अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करेंगे, और उसमें के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप इस मंच पर आई और हमारे श्रोताओं को अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से लाभान्वित किया, उसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान,
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
4: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं अमेरिका सियाटल से समृद्धि चतुर्वेदी।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से मैं समृद्धि चतुर्वेदी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम जो कि है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब श्रृंखला की छठी कड़ी में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है तारीफों के पुल का सफर। आज का हमारा जो ये सफर है थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक प्रेम कहानी को उसके अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, आज हम सिर्फ एक चीज सुनेंगे, तारीफ, वो भी गीतों के जरिए और गीतों में सवालों के जरिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, तारीफ करने का अंदाज भी तो समय के साथ बदलता है। पुराने जमाने का आशिक थोड़ा झिझकता था, शब्दों में नरमी थी,

इशारों में अदब था और शायद दिल में यह डर कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। पहले महबूब की खूबसूरती को देखकर सीधे कह देना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, शायद कुछ ज्यादा बेबाकी समझी जाती थी। इसीलिए चांद का सहारा लिया जाता, फूलों की मिसाल दी जाती और कभी कभी तो इजाजत लेकर तारीफ करने की कोशिश होती थी। लेकिन वक्त बदला और आशिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। शायरी थोड़ी कम संकोची हुई, तारीफ थोड़ी ज्यादा सीधी हुई और फिर एक इजाजत क्यों मांगे, तारीफ ही तो करनी है। तो आज हम सुनेंगे करीब चार दशकों में हिंदी फिल्मी गीतों में तारीफ, तहजीब, तकरार और कॉन्फिडेंस का यह सफर। और हाँ, इस एपिसोड में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी बनता है। जो मेरे श्रोतागण हैं, वो मेरे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के प्यार को से तो अब तक वाकिफ हो चुके होंगे। तो आज के जो हमारे गीत हैं, तारीफ का मामला है तो अक्सर ये होता है कि हीरो हीरोइन की तारीफ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो गाने हैं वो है मेल वॉइसेस में। लेकिन मेरा आज का मामला थोड़ा सीरियस है, मेरा दिल भी थोड़ा मचल गया है। और भले ही ये ओरिजिनल गाने मेल वॉइसेस में हैं, मगर मैं कुछ गानों को गाने से रोक नहीं पाई। तो आज के सफर में जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे गानों में, उसे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की कमी नहीं, पुराने गीतों के लिए मेरी मोहब्बत समझिएगा। और शुरुआत करेंगे 1940 से, उस दौर से जब कुंदन लाल सहगल की आवाज हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग जादू रखती थी। सहगल साहब उस दौर के उन कलाकारों में थे जिनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं था, आवाज में अभिनय भी था और अभिनय में गायकी भी। और पहला सवाल भी कितना संकोची है, मैं क्या जानू क्या जादू है और मैं यह मौका कैसे छोड़ देती। यह मेरे लिए उन ऑल टाइम क्लासिक्स में से है जिन्हें गाने का मन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इस बार किसी एक की आवाज भी नहीं, क्योंकि ये गाना मेरा भी प्रिय है और मेरे पिताश्री जो कि अक्सर मेरा साथ देते हैं गानों में, श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी जी, उनका भी प्रिय है। तो हम दोनों का ही गाने का मन मचल रहा था, तो मैंने बोला कि हम इस गाने को एज अ डुएट लेकर जाएंगे। तो आइए उसी पुराने अंदाजे मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। यह गाना फिल्म जिंदगी का है जो कि 1940 में रिलीज हुई थी। इसके गायक केएल सहगल, गीतकार केदार शर्मा और संगीत पंकज मलिक का है। तो आइए इस छोटे सी श्रद्धांजलि इस अमर गीत को

कितना खूबसूरत था उस दौर का संकोच, यानी दिल में बहुत कुछ है लेकिन कहने वाला अभी भी थोड़ा ठहर रहा है। और फिर आते हैं 22 साल आगे। अब आशिक थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब वह सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि तुम में क्या जादू है, अब वह बकायदा मिसालें ढूंढ रहा है। लेकिन अभी भी सीधा कहने की हिम्मत नहीं होती। चांद, चांदनी, फूल बहार, सबको बीच में लाना तो जरूरी है। अगला गाना हमारी इस पेशकश का है फिल्म आरती का, जो कि सन 1962 में रिलीज हुई थी। गायक श्री मोहम्मद रफी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत रोशन का है। और इस गीत के साथ मेरी एक खास बात है, यह उन गीतों में से है जिन्हें मैं सिर्फ सुनना नहीं बल्कि गाना भी चाहती हूँ। पर फिर वही बात है, ओरिजिनली ये मेल वॉइस की और मेरा और मेरे पिताजी दोनों का ही फेवरेट सॉन्ग है। तो इस बार मैं जरा पीछे हट गई कि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी मेरे पिताजी के साथ भी, और उससे भी ज्यादा मेरे श्रोताओं के साथ, अगर मैंने ये गाना अकेले ही गा दिया और आप मेरे पिताश्री यानी कि पंकज जी की आवाज से आवाज नहीं सुन पाए इस गाने में, क्योंकि वह बखूबी निभाते हैं इस गाने को। तो आज सुनते हैं उनका वर्जन। लेकिन एक कन्फेशन है, मुझे यह गीत इतना पसंद है कि मैं इसे यूं ही छोड़ने वाली तो हूं नहीं। तो अगले किसी एपिसोड में जहां यह फिट बैठेगा, मैं यह गाना दोबारा फीमेल वर्जन में लेकर आऊंगी, यानी कि अपनी आवाज में, अपने अंदाज में। क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार गाकर और सुनकर मन नहीं भरता। तो आइए सुनते हैं अब क्या

0: सिर्फ 2 साल बाद आशिक की भाषा कितनी बदल जाती है। अब मिसालों की जरूरत नहीं, अब सीधे सवाल है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि तुम तो खूबसूरत हो ही और तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले की क्या तारीफ करूं। तो यहाँ शरारत भी आ गई है और आत्मविश्वास भी। हमारा अगला गीत कश्मीर की कली फिल्म का, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने, गीतकार हैं SH बिहारी और संगीत OP नैयर साहब ने दिया है। और यहाँ एक मजेदार बात है, रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वो तारीफ शब्द को भी अभिनय कर रहे हैं। हर बार वही शब्द, लेकिन हर बार एक अलग अंदाज। शम्मी कपूर और रफी साहब की यह जोड़ी उस दौर के नए बेफिक्र और बेहद कॉन्फिडेंट रोमांटिक हीरो की पहचान बन चुकी थी। तो अब इजाजत मांगने वाला आशिक कहाँ गया? वो अब सामने खड़ा है और खुल कर कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और खुल कर रहा हूँ। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें क्या?

अब यहाँ से अंदाज बिल्कुल बदल गया। 1940 का आशिक था संकोची, 1962 का आशिक था काव्यात्मक और 1964 तक आते आते पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन इसी दौर में एक और तरह की तारीफ सुनाई देती है। अब सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं है, अब बात होती है नूर की, निगाहों की, मौजूदगी की, और भाषा में अभी भी एक अदब बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपके तुम तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है। अगला गीत हमारा मूवी है बहारें फिर भी आएंगी, वर्ष 1966। गायक है मोहम्मद रफी साहब, गीतकार अनजान और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत में तारीफ में शरारत कम और नजाकत ज्यादा है और इस फिल्म का संगीत भी अपने आप में दिलचस्प कहानी रखता है। शुरुआत में एसडी बर्मन साहब संगीत दे रहे थे लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद ओपी नैयर जी ने संगीत संभाला। सुनते हैं

अब जरा 1975 तक चलते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगता है कि हिंदी फिल्मों का आशिक आखिरकार फॉर्मेलिटीज छोड़ चुका है। ना चांद चाहिए, ना गुलाब, ना पूरी कायनात को गवाह बनाने की जरूरत है। बस सामने देखकर कह दिया, क्या खूब लगती हो। यह है मूवी धर्मात्मा का बहुत ही फेमस गाना। 1975 में रिलीज हुई थी यह मूवी। इसके गायक मुकेश और कंचन, गीतकार इंदीवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ है। और अब एक बहुत प्यारा बदलाव देखिए। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। वह कहता है, क्या खूब लगती हो, और सामने से जवाब आता है, फिर से कहो, कहते रहो। यानी अब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ दिया नहीं जा रहा, मांगा भी जा रहा है। सुनते हैं हमारी आवाजों में, जो कि ओरिजिनली मुकेश और कंचन ने गाया था। क्या?

अब चलते हैं 1985 की तरफ। इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी पोएट्री नहीं मरी है, वो वापस आती है, लेकिन नए संगीत और नए अंदाज के साथ। और सवाल वही पुराना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारी तुलना किससे करूं? बट इस बार जवाब में चांद है। चेहरा है या चांद खिला है, ये बहुत ही फेमस गाना फिल्म सागर का है, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। किशोर कुमार की के बहुत ही फेमस गानों में से एक है ये। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। 1985 आते आते हिंदी फिल्मों का संगीत की ध्वनि बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन देखिए इतने सालों के बाद भी शायर की हालत वही है। चेहरा देखकर फिर वही सवाल, चेहरा है या चांद खिला है। फर्क बस इतना है कि अब आशिक उतना संकोची नहीं है, वह सवाल भी करता है, तारीफ भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। तो आइए सुनते हैं यह गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे तारीफ बयां, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी सियाटल अमेरिका से समृद्धि चतुर्वेदी।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रकृति ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, उसी के साथ ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए हैं जिनसे हम जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही धन है, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर काजल, आपका वेलकम है, स्वागत है इस खास प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर।
0: हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे डॉक्टर काजल जो है वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, और आयुर्वेदा जो है वो क्या होता है, और आप आयुर्वेदा की डॉक्टर बनी हैं, तो उसके आगे MBBS लगता है या कुछ और डिग्री लगती है, क्या होता होगा उसमें और किस तरह से इस प्रक्रिया से गुजरना होता है जब आयुर्वेद का डॉक्टर कोई बनना चाहता है।
1: सर, BMS 5.5 साल का कोर्स होता है, जैसे कि MBBS होता है वैसे ही BMS का कोर्स होता है, पर BMS और MBBS दोनों ही अलग अलग कोर्सेज हैं। BMS में हम आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं, और MBBS जो है वो अलग ही मेडिकल ब्रांच का अलग ही एक फील्ड है।
0: और डिफरेंस कैसे करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है कि
1: सर? डिफरेंस जो हम स्टडी करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, और कोर्स जो होता है उसमें हमें थोड़ा बहुत MBBS में जो पढ़ाई होती है वो भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आयुर्वेद और शास्त्रों के बारे में भी हमें बताया जाता है, और हमें शास्त्रों के आधार पर ही फिर चिकित्सा करनी होती है आगे चल के।
0: यानी मोटे तौर पर हम समझे तो शास्त्रों पे आधारित जो मानव शरीर की संरचना है उसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, इसी तरह की बात पढ़ाई जाती होगी ना, क्योंकि अलग है एलोपैथिक से आयुर्वेदा जो है।
1: हाँ बिल्कुल सर, जो आयुर्वेदा कोर्स है उसमें हमें बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी शरीर के बारे में पढ़ना होता है। वो किसी भी मेडिकल ब्रांच में कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल में एंटर करता है तो उसको पढ़ना ही होता है, चाहे BDS डॉक्टर हो, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर हो। पर उसमें विशेषता ये हो जाती है कि वो एक अलग स्पेशलिटी बन जाता है। आयुर्वेदा अपनी अलग स्पेशलिटी है, होम्योपैथिक अपनी अलग स्पेशलिटी है, और डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अलग एक स्पेशलिटी है।
0: जब हम आयुर्वेदा शब्द को सुनते हैं तो हमें बोध होता है कि जैसे वेदों के बारे में बताया जाता है ना, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसी तरह से इसका वेद के साथ कोई ताल्लुक है या प्रकृति के साथ या हमारे शास्त्रों के साथ कोई उसका संबंध है?
1: जी बिल्कुल सर, आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है, और शास्त्रों का इसमें पूरा का पूरा मतलब इसको हिस्सा माना जा सकता है। और इसमें हमें पूरे जो अथर्ववेद है उसमें शरीर के बारे में, उसको कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में, और क्या आपका खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, और वो जिस खंड में बताया गया है उसी को आयुर्वेद नाम दिया गया है।
0: बहुत अच्छी बात के हमने जो पारंपरिक तौर से और हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए उन्हीं अनुभवों को हम संचित करके और उसके आधार पर चिकित्सा जो है वो की जाती है। डॉक्टर काजल हमारे साथ हैं, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप BAMS हैं, जैसे MS होते हैं या MBBS होते हैं उसी तरह से BAMS होता है, और ये कोर्स और इस प्रक्रिया से कैसे गुजरा जाता है, कैसे यदि कोई हमारा सुनने वाला श्रोता है वो आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहे तो उसको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना हो?
1: सर, सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है उनको 12th में PCB ऑप्ट करना पड़ता है, और जिनके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहता है वो लोग आगे चल करके डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो। और उसके बाद आज

0: नीट का एग्जाम दिया जाता है। नीट के एग्जाम के जो जो अंक होते हैं उसके हिसाब से ही बीएमएस ऑप्शन बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस करने के बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, एमडीएमएस का कोर्स भी होता है, जिसके लिए फिर पीजी का एग्जाम देना होता है और पीजी करके फिर वो जो भी ब्रांच, जैसे एमबीबीएस में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, गायनेक यानी कि फीमेल स्त्री प्रसूति रोग वाले अलग होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिनका बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं और फिर उसमें पीजी मास्टर डिग्री कर सकते हैं और उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद यदि बीएएमएस कर लिया, आयुर्वेद के
0: जी
1: डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद भी क्या ऐसा होता है कि एमबीबीएस के बाद जैसे एमडी होती है या विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि ये हार्ट रोग के लिए है, ये जो है मानसिक रोगों के लिए, इसमें भी होता है?
0: जी बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनका जैसे नाम है हमारी मेडिसिन ब्रांच को हम बोलते हैं काय चिकित्सा, और पीडिया जो है उसको बाल बाल रोग कहा जाता है, सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोला जाता है, गायनेक को स्त्री प्रसूति रोग चिकित्सा बोला जाता है, ईएनटी जितना भी मतलब स्पेशलाइजेशन है उसमें उसको शालाक्य कहा जाता है, और पैथोलॉजी को रोग निदान बताया जाता है, और एनाटॉमी अपनी अलग से एनाटॉमी की ब्रांच होती है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है। अभी रिसेंटली जो है ये मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं जो कि पीजी करने के बाद यानी कि एमडीएमएस करने के बाद एक पर्टिकुलर जो विभाग होता है उसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो भी आयुर्वेद में अब स्टार्ट हो गया है।
1: इसके बाद जब स्पेशलाइजेशन हो जाए, बीएएमएस हो गया, तो जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी है जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या क्या?
0: बीएमएस कंप्लीट करने के बाद या तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी नर्सिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बीएमएस के साथ साथ आपने पीजी किया है यानी कि एमडीएमएस किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो आप खुद का अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट मेडिकल ऑफिसर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, वो दे करके आप मेडिकल ऑफिसर स्टेट में बन सकते हैं, या किसी डीन यूनिवर्सिटी के डीन भी बन सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा रिसर्च में भी, रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके थ्रू, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू दे करके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं।
1: आयुर्वेदा और आयुर्वेद में डॉक्टर बनना, ये केवल भारतीय पद्धति है, यानी इंडियन मेडिसिन के उपचार की पद्धति है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में भी इसको अपनाया गया है, या इसके आधार पर कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी जाती है, या इसकी प्रक्रिया को, इससे उपचार किया जाता है दूसरे देशों में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
0: सर बिल्कुल, बाहर के देशों में भी आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है, और अलग अलग जैसे वहाँ पे भी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप अगर आपने पीजी किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड है कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ का आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पे भी एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं सर।
1: डॉक्टर काजोल, इसमें क्या जैसे सर्जरी के लिए एलोपैथिक में जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं,
0: जी
1: उसी तरह से इसके भी ओटी होते हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल सर, जैसे सर्जरी एलोपैथिक में होती है वैसे ही सर्जरी की प्रॉपर स्टडी ट्रेनिंग पूरा कैडेवर पे जो एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है वो सब चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी कराया जाता है। बल्कि आप स्पेशलाइजेशन करें या ना करें, पर फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तभी आपको एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कैडेवर पर स्टडी करना ही पड़ता है, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा पीजी जब आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाया जाता है, पूरा प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में जैसे सेटअप होता है वैसा ही सेटअप होता है, और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट, स्कैपल, ब्लेड सब कुछ यूज होता है, वो सब चीजें आयुर्वेद में भी जब हम सर्जरी करते हैं तो यूज होती हैं, सेम वही सब कुछ ट्रेनिंग की दी जाती है सर।
1: डॉक्टर काजोल ने क्या सोच के इस फील्ड को अपनाया, कौन सी संभावनाएं आपको नजर आई?
0: सर आयुर्वेद के बारे में पहले इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, और 2015 में हमारा आयुष मिनिस्ट्री बना, और मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला और बहुत ज्यादा लोगों में उसकी वो चर्चा में आया। और उसी दौरान मेरा भी एडमिशन 2015 में बीएमएस में हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे जा करके आयुर्वेदा को ही ऑप्ट करके आगे जा करके लोगों के लिए इसमें मतलब आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के काम करना है और लोगों की मदद करनी है।
1: तो आप अब तो जॉब में आ गई, तो किस तरह से आप मदद करती हैं, और क्या अपने जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और करना चाहती हैं आगे इसी फील्ड में, या कहीं कोई फील्ड बदलना चाहती हैं?
0: नहीं नहीं सर, फील तो बिल्कुल नहीं बदलना है सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के लिए चुना और हम आयुर्वेद का एक हिस्सा बने और लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बता पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता। और यही फील्ड में मैं आगे और अच्छा करना चाहती हूँ, मैं लोगों को गाइड करते रहना चाहती हूँ कॉन्स्टेंटली। जैसे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं लोगों को गाइड करूँ, उनकी मदद करूँ कि वो आयुर्वेदा को ऑप्ट करें और अपना जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कई चीजें होती हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में अच्छा है, कई चीजें ऐसी हैं जिनका आयुर्वेद में अच्छा है, कई चीजें हैं जिसमें अदर जो पैथीज हैं जैसे होम्योपैथी है उनमें ट्रीटमेंट अच्छा है। तो लोग गलत दिशा में ना जाएं, उनको सही मार्गदर्शन मिले टाइम से ताकि उनको जल्दी वो हील कर पाए और कष्ट कम से कम सहन कर पाए। यही मैं चाहती हूँ कि यही हम लोग उनकी मदद कर पाए इसके थ्रू।
1: हमारे जो यूथ हैं वो यदि BAMS आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगी आप कि किस तरह से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकती हैं, बन सकते हैं?
0: मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, फिर भी वो एमबीबीएस के ही को ही करना चाहते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप एक बार दीजिए, आप 2 बार भी दे दीजिए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट देने पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है एमबीबीएस, तो आप बिल्कुल बीएमएस होम्योपैथी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पैथी छोटी बड़ी नहीं होती है, आपको लाइफ अपने आप कैसे आप उसको आगे बढ़ करके कैसे उसमें अच्छे से काम करते हैं, क्या आपने जो सीखा उससे उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और आप चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने एमबीबीएस किया है तो ही आप आगे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। अगर आप बीएमएस भी ऑप्ट करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है जो एमबीबीएस कर रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपकी कैपेबिलिटी, आपके जो आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकल आपका, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको फील्ड में उतरना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अपने आप को जितना आप प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेजेबल बना सकते हैं बनाइए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, अभी से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालिए। भले ही आप अभी कोई मतलब एमबीबीएस या बीएमएस कुछ आपने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का और जो भी अपडेट हो रहा है उन चीजों के बारे में अपडेटेड रहने का आपका होना चाहिए, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का।
1: जो बहुत सारे एज फैक्टर होते हैं, आयु, आयुर्वेद में भी हम एज के हिसाब से उसका उपचार करते हैं। एक बच्चा है, एक प्रौढ़ है, एक युवा है, और एक जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उस तरह के उपचार के लिए, और जैसे सीनियर सिटीजन है, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे कि आयुर्वेद आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना काम?
0: सर बच्चों की अगर बात करें तो मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन की आदत ना डालें। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए वो एकदम से ऑप्ट करते हैं। छोटा सा अगर खांसी जुकाम भी हो रहा है तो कफ सिरप या फिर पीसीएम डोलो ऐसी मेडिसिन बच्चों को खिलाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम पड़ जाती है। फिर आगे चल करके लाइफ में उनको जब कोई आगे चल करके प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में मेडिसिन उनके ऊपर
1: बिल्कुल, ये जमाना हम जी रहे हैं जिस युग में, वो इंस्टेंट वाला है और
0: जी
1: सबको इंस्टेंट चाहिए होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ठीक होना, जल्दी से जल्दी रील्स भी देखते हैं तो फिल्म में देखने बंद कर दी और रील्स पे आ गए, तो सबसे कम समय में उपचार भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो सके और अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आयु को, अपने ज्ञान को बढ़ा सके।
0: सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करके रखनी है। अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और टाइम से खाना खाइए, टाइम पे सोइए, अपना जो दिनचर्या है आपका उसको अच्छे से अनुशासित रूप में रखिए, और बाहर का कम से कम खाइए, और योगा मेडिटेशन इन चीजों के ऊपर बच्चों को बचपन से ही आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा वो खेलें कूदें। आजकल ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर घर में रहते हैं, बाहर अकेले नहीं जाते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उनका इम्यूनिटी भी बिल्डअप नहीं होता है, ना ही उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को तो खेलने के लिए भी देना चाहिए और अच्छा खाने के लिए भी देना चाहिए, और उनके मेनली फोकस करना चाहिए कि इम्यूनिटी अच्छी हो। और उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे विंटर्स में स्वर्ण ये चपराश का प्रयोग करना, और छोटे बच्चे जो हैं उनको स्वर्ण बिंदु प्राशन किया जाता है आयुर्वेद में, उस कार्यक्रम को भी वो करवा सकते हैं। और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं और उसकी वजह से वो कमजोर है या उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको खाने के अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी ही बच्चा खाए, कैसे ना कैसे करके उनको पूर्णतः पोषण युक्त आहार उनको देने का प्रयास करना चाहिए। सीनियर
1: जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या सलाह देंगी आप?
0: सिटीजन्स को मैं यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी जो मनोबल है उसको बिल्कुल बना के रखिए, और कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, और बाकी ये कि अपना जो दिनचर्या है उसको अच्छा अनुशासित रूप में रखिए, और सद्वित का पालन कीजिए, और ध्यान पूजा पाठ आदि का भी मतलब अपने जीवन में उसका उपयोग करें, और यही मैं उनको सलाह दूंगी।
1: आप पूजा पाठ करती हैं, ध्यान करती हैं, योग प्राणायाम कुछ ऐसा
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: करती हैं
0: हाँ बिल्कुल
1: जो
0: जरूर
1: हमारे सुनने वालों के लिए भी एक नजीर बन सके?
0: सर, बिल्कुल मैं डेली योगा करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि योग और जो पूजा पाठ करते हैं उससे मानसिक जो आपका शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है, वो बढ़ती है। तो इसीलिए बिल्कुल आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और सत्व गुण आपके शरीर में बढ़ता है, और सत्व गुण जिनका अच्छा रहता है उन्हें किसी भी प्रकार से रोग नहीं होता है। यदि रोग हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी उससे रिकवरी कर लेते हैं, हो जाते हैं।
1: तो हमारे सुनने वालों ने सुना होगा कि सत्व गुण बढ़ाना है आपको, रजोगुण और तमोगुण से तो बिल्कुल दूर रहना, और यही कह रही हैं। और कुल मिला के यदि हम आयुर्वेदा के निष्कर्ष पे जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा जो है भारतीय जीवन पद्धति है, किस तरह से एक लाइफ स्टाइल है कि हम किस तरह से जिंदा रहें, किस तरह से स्वस्थ रहें और सबसे स्वस्थ रहें, और प्रकृति से हम किस तरह से जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है, वनस्पति दी है, हवा दिया है, पानी दिया है, तो इन सब चीजों का हम सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। इतनी बात डॉक्टर काजोल से हमारी हुई है, उसका जो सार है वो निकल के यही आता है। डॉक्टर काजोल, आप कुछ गाती भी हैं? गाना वाना फिल्में देखती हैं? बॉलीवुड सॉन्ग गाती हैं? भजन गाती हैं? क्या गाती हैं? क्या सुनाएंगे आप हमें?
0: सर, भजन मैं गा लेती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ गा लेती हूँ मैं भजन।
1: हाँ, दुलाइने हम जरूर सुनेंगे,
0: जी,
1: भजन हो चाहे सॉन्ग हो, कुछ भी हो जो आपको सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है वो भी यदि आप सुनाएं तो भी अच्छा लगेगा हमें।
0: अच्छा सर, मैं कृष्ण भगवान का भजन गाऊंगी, सिर्फ दो ही लाइन
1: जी
0: मैं गाऊंगी। हाँ अच्छा।
1: जरूर।

0: कृष्ण
1: राम नारायणम
0: बहुत
1: जानकी वल्लभम।
0: सुंदर, बहुत ही ग्रेट
1: थैंक यू सर।
0: कृष्ण। कृष्ण जो प्रकृति को अपनी बांसुरी से वश में कर लेते हैं और पूरी की पूरी दुनिया उसके वश में है, उसके आकर्षण में है। और हम आयुर्वेद के आकर्षण में रहे, डॉक्टर काजोल शायद हमें यही कह रही हैं, यही सीख दे रही हैं कि हमें जीवन, हम जीते तो हैं लेकिन जीवन जीने की कला में पूरी तरह से नहीं आती, और सीखते सीखते जीते जीते हम बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें होश आता है कि हमने पहले ऐसे क्यों नहीं किया। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे आयुर्वेद में ऐसी पद्धतियां, ऐसी चीजें हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सरल और सुगम के साथ साथ रोग मुक्त बना सकते हैं। तो डॉक्टर काजोल, बहुत अच्छा लगा से पूरी बातचीत करके। इसके अलावा कोई चीज रह गई हो तो आप जरूर वेलकम है, बताइए।
1: सर, ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे और आयुर्वेद के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको बताते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने कनेक्ट किया, और थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत अच्छा लगा हमें भी, और ऑलवेज आपका वेलकम है, हमेशा स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए नई नई जानकारी जो आयुर्वेद में होती है, क्योंकि आज का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जानकारी आयुर्वेद के बारे में है। हम अलग अलग रोगों पे, अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करेंगे और उसमें के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप इस मंच पर आई और हमारे श्रोताओं को अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से लाभान्वित किया। उसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।
2: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
3: जयपुर रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। 1943 में बर्मा के रंगून से एक काफिला पैदल ही भारत की ओर चल निकला। न खाने के लिए भरपेट खाना, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े। चलते चलते असम के डिब्रूगढ़ आ पहुंचा और उस काफिले के साथ आई भारतीय फिल्म जगत की एक बेहतरीन नृत्यांगना। आज इस स्पेशल पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान की डांसिंग क्वीन हेलन जी की। तो शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कारवां के इस प्रसिद्ध गीत के साथ। देखो देखो वो आ गई। आइए चारुल, आपको ही बुला रही हूँ।

जी का पूरा नाम है हेलेन एन रिचर्डसन। उनके पिताजी जॉर्ज डेजमियर एक एंग्लो इंडियन थे और माताजी मैडलिन एक बर्मीज मूल की महिला थीं। 21 नवंबर 1938 की रोज बर्मा के रंगून में जन्मी हेलेन जी चार भाई बहनों में से एक थीं। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी प्रियंका जी को, जो लेकर आ रही हैं फिल्म डॉन का गीत, जिसकी मूल गायिका हैं आशा जी और गीत के बोल हैं ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

दोस्तों, दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलन जी के पिताजी चल बसे और उनकी माता जी ने एक काफिले के साथ भारत में शरण लेने का फैसला किया। ये काफिला चला तब हजार लोगों का था, लेकिन डिब्रूगढ़ पहुंचते पहुंचते संख्या में बस आधे ही रह गए थे। छोटी हेलन और उनका परिवार ब्रिटिश आर्मी की सहायता से 1945 में कोलकाता में जा बसे। अगले गीत के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंदार जी और धनश्री जी को, जो गा रहे हैं ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां।

दोस्तों, कोलकाता में हेलन जी की माँ एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी, लेकिन थोड़े से वेतन में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्यवश हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और 1950 में तंगहाली से परेशान होकर इस परिवार ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। तब किसी को नहीं पता था कि हेलन ये नाम एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। आगे बुलाना चाहूंगी संतोष जी और इंदु जी को, जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, छोड़कर तेरे प्यार का दामन। आइए बुलाएं उनको।

धीरे धीरे हेलन जी को बहैसियत सोलो डांसर काम मिलने लगा, जिनमें कुछ फिल्में थी 1954 की अलिफ लैला और हूरे अरब। पर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला 1958 की हावड़ा ब्रिज के गीत मेरा नाम चिंचिंचू से। इसके बाद किस्मत ऐसी पलटी कि हेलन जी ने कभी पलट के नहीं देखा। सभी मशहूर मारूफ मेकर्स हेलन जी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कार्यक्रम में आगे आ रहे हैं प्रणव जी और तनुजा जी, जो लेकर आएंगे फिल्म द ट्रेन का ये दमदार गीत। गीत के बोल हैं, ओ मेरी जा मैंने कहा, जिसे मूल रूप से आर डी बर्मन साहब और आशा जी ने गाया था।

शुरुआती दौर में गीता दत्त जी हेलन जी की आवाज बनी, पर 60 और 70 के दशक में आशा जी हेलन जी की आवाज बन के उभरी। जिस फिल्म में डांस सीक्वेंस हो वहाँ हेलन जी का होना जरूरी होता था, और जहाँ हेलन जी का डांस हो वहाँ आशा जी की आवाज का होना लाजमी हो जाता था। इस जोड़ी ने एक साथ इतने सारे खूबसूरत मशहूर नगमे दिए हैं, जिसमें से एक है आओ ना गले लगाओ ना, लेकर आ रही हैं तानिया शोम जी।

जी ने अपने 50 साल के करियर में कई फिल्मों में अभिनय भी किया, जैसे गुमनाम, चाचा चा, सच्चाई, डॉन, दोस्ताना, हम दिल दे चुके सनम, खामोशी द म्यूजिकल और लहू के दो रंग, जिसके लिए उन्हें 1979 का फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। पर हेलन जी के डांस का जादू ऐसा था कि जब लता जी ने अपना पहला और एकमात्र कैबरे सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो इसी शर्त पे किया कि पर्दे पर हेलन जी हों। फिल्म इंतकाम का वो गीत लेकर आ रही हैं मेघा जी।

दोस्तों, इन सब बातों के साथ ही हेलेन जी के निजी जीवन में भी तब्दीलियां आ रही थी। 1962 में वे एक फिल्म के सेट पर सलीम खान साहब से मिली और 1981 में इन दोनों ने शादी कर ली। इस तरह हेलेन जी एक भरे पूरे परिवार का अटूट हिस्सा बन गई। कार्यक्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगी देवयानी जी और राजश्री जी को, जो लेकर आ रही हैं 1977 की फिल्म इनकार का ये धमाकेदार गाना।

जी ने लगभग 700 फिल्मों में काम किया और साथ ही लंदन, पेरिस और कई अन्य देशों में अनगिनत स्टेज शोज किए। 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म्स ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेलन द क्वीन ऑफ नॉच। इसके साथ ही लेखक जेरी पिंटो ने 2006 में उनके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बॉम्ब। इस किताब के लिए जेरी पिंटो को नेशनल अवार्ड भी मिला। हेलन जी को 1999 में फिल्मफेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और 2009 में पद्मश्री सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। अब मैं प्रेरणा लेकर आ रही हूँ फिल्म ज्वेल थीफ का ये खूबसूरत गीत।

0: और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही मैं प्रेरणा आपसे इजाजत चाहूंगी, अगले हफ्ते फिर मिल।
1: आपकी आवाज, आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को लेके आई हैं अमेरिका सियाटल से समृद्धि चतुर्वेदी।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से मैं समृद्धि चतुर्वेदी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम जो कि है गीतों के सवाल और गीतों के जवाब श्रृंखला की छठी कड़ी में। आज के हमारे एपिसोड का नाम है तारीफों के पुल का सफर। आज का हमारा जो ये सफर है थोड़ा अलग है। आज हम किसी एक प्रेम कहानी को उसके अंजाम तक नहीं ले जाएंगे, आज हम सिर्फ एक चीज सुनेंगे, तारीफ, वो भी गीतों के जरिए और गीतों में सवालों के जरिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, तारीफ करने का अंदाज भी तो समय के साथ बदलता है। पुराने जमाने का आशिक थोड़ा झिझकता था, शब्दों में नरमी थी, इशारों में अदब था और शायद दिल में यह डर कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। पहले महबूब की खूबसूरती को देखकर सीधे कह देना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, शायद कुछ ज्यादा बेबाकी समझी जाती थी। इसीलिए चांद का सहारा लिया जाता, फूलों की मिसाल दी जाती और कभी कभी तो इजाजत लेकर तारीफ करने की कोशिश होती थी। लेकिन वक्त बदला और आशिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, शायरी थोड़ी कम संकोची हुई, तारीफ थोड़ी ज्यादा सीधी हुई और फिर एक इजाजत क्यों मांगे, तारीफ ही तो करनी है। तो आज हम सुनेंगे करीब चार दशकों में हिंदी फिल्मी गीतों में तारीफ, तहजीब, तकरार और कॉन्फिडेंस का यह सफर। और हाँ, इस एपिसोड में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी बनता है। जो मेरे श्रोतागण हैं वो मेरे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के प्यार को से तो अब तक वाकिफ हो चुके होंगे, तो आज के जो हमारे गीत हैं तारीफ का मामला है तो अक्सर ये होता है कि हीरो हीरोइन की तारीफ कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो गाने हैं वो है मेल वॉइसेस में। लेकिन मेरा आज का मामला थोड़ा सीरियस है, मेरा दिल भी थोड़ा मचल गया है और भले ही ये ओरिजिनल गाने मेल वॉइसेस में हैं, मगर मैं कुछ गानों को गाने से रोक नहीं पाई। तो आज के सफर में जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे गानों में, उसे हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की कमी नहीं, पुराने गीतों के लिए मेरी मोहब्बत समझिएगा। और शुरुआत करेंगे 1940 से, उस दौर से जब कुंदन लाल सहगल की आवाज हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक अलग जादू रखती थी। सहगल साहब उस दौर के उन कलाकारों में थे जिनके लिए गाना सिर्फ गाना

गाना नहीं था, आवाज में अभिनय भी था और अभिनय में गायकी भी। और पहला सवाल भी कितना संकोची है, मैं क्या जानू क्या जादू है और मैं यह मौका कैसे छोड़ देती। यह मेरे लिए उन ऑल टाइम क्लासिक्स में से है जिन्हें गाने का मन अपने आप हो जाता है। इसीलिए इस बार किसी एक की आवाज भी नहीं, क्योंकि ये गाना मेरा भी प्रिय है और मेरे पिताश्री जो कि अक्सर मेरा साथ देते हैं गानों में, श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी जी, उनका भी प्रिय है। तो हम दोनों का ही गाने का मन मचल रहा था, तो मैंने बोला कि हम इस गाने को एज ए डुएट लेकर जाएंगे। तो आइए उसी पुराने अंदाजे मोहब्बत की शुरुआत करते हैं। यह गाना फिल्म जिंदगी का है जो कि 1940 में रिलीज हुई थी। इसके गायक KL सहगल, गीतकार केदार शर्मा और संगीत पंकज मलिक का है। तो आइए इस छोटे सी श्रद्धांजलि इस अमर गीत को

कितना खूबसूरत था उस दौर का संकोच, यानी दिल में बहुत कुछ है लेकिन कहने वाला अभी भी थोड़ा ठहर रहा है। और फिर आते हैं 22 साल आगे। अब आशिक थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब वह सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि तुम में क्या जादू है, अब वह बकायदा मिसालें ढूंढ रहा है। लेकिन अभी भी सीधा कहने की हिम्मत नहीं होती। चांद, चांदनी, फूल बहार, सबको बीच में लाना तो जरूरी है। अगला गाना हमारी इस पेशकश का है फिल्म आरती का, जो कि सन 1962 में रिलीज हुई थी। गायक श्री मोहम्मद रफी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत रोशन का है। और इस गीत के साथ मेरी एक खास बात है, यह उन गीतों में से है जिन्हें मैं सिर्फ सुनना नहीं बल्कि गाना भी चाहती हूँ। पर फिर वही बात है, ओरिजिनली ये मेल वॉइस की और मेरा और मेरे पिताजी दोनों का ही फेवरेट सॉन्ग है। तो इस बार मैं जरा पीछे हट गई कि ये तो नाइंसाफी हो जाएगी मेरे पिताजी के साथ भी, और उससे भी ज्यादा मेरे श्रोताओं के साथ, अगर मैंने ये गाना अकेले ही गा दिया और

आप मेरे पिताश्री यानी कि पंकज जी की आवाज से आवाज नहीं सुन पाए इस गाने में, क्योंकि वह बखूबी निभाते हैं इस गाने को। तो आज सुनते हैं उनका वर्जन। लेकिन एक कन्फेशन है, मुझे यह गीत इतना पसंद है कि मैं इसे यूं ही छोड़ने वाली तो हूं नहीं। तो अगले किसी एपिसोड में जहां यह फिट बैठेगा, मैं यह गाना दोबारा फीमेल वर्जन में लेकर आऊंगी, यानी कि अपनी आवाज में, अपने अंदाज में। क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार गाकर और सुनकर मन नहीं भरता। तो आइए सुनते हैं अब क्या।

0: सिर्फ 2 साल बाद आशिक की भाषा कितनी बदल जाती है। अब मिसालों की जरूरत नहीं, अब सीधे सवाल है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि तुम तो खूबसूरत हो ही और तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले की क्या तारीफ करूं। तो यहाँ शरारत भी आ गई है और आत्मविश्वास भी। हमारा अगला गीत कश्मीर की कली फिल्म का, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने, गीतकार हैं एसएच बिहारी और संगीत ओपी नैयर साहब ने दिया है। और यहाँ एक मजेदार बात है, रफी साहब सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वो तारीफ शब्द को भी अभिनय कर रहे हैं। हर बार वही शब्द, लेकिन हर बार एक अलग अंदाज। शम्मी कपूर और रफी साहब की यह जोड़ी उस दौर के नए बेफिक्र और बेहद कॉन्फिडेंट रोमांटिक हीरो की पहचान बन चुकी थी। तो अब इजाजत मांगने वाला आशिक कहाँ गया? वो अब सामने खड़ा है और खुल कर कह रहा है, हाँ मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और खुल कर रहा हूँ। सुनते हैं पंकज जी की आवाज में।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा तार।

अब यहाँ से अंदाज बिल्कुल बदल गया। 1940 का आशिक था संकोची, 1962 का आशिक था काव्यात्मक और 1964 तक आते आते पूरा कॉन्फिडेंट। लेकिन इसी दौर में एक और तरह की तारीफ सुनाई देती है। अब सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं है, अब बात होती है नूर की, निगाहों की, मौजूदगी की, और भाषा में अभी भी एक अदब बचा हुआ है। ध्यान दीजिए, आपके तुम तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त है। अगला गीत हमारा मूवी है बहारें फिर भी आएंगी, वर्ष 1966। गायक है मोहम्मद रफी साहब, गीतकार अनजान और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत में तारीफ में शरारत कम और नजाकत ज्यादा है और इस फिल्म का संगीत भी अपने आप में दिलचस्प कहानी रखता है। शुरुआत में एसडी बर्मन साहब संगीत दे रहे थे लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद ओपी नैयर जी ने संगीत संभाला। सुनते हैं

और अब जरा 1975 तक चलते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगता है कि हिंदी फिल्मों का आशिक आखिरकार फॉर्मेलिटीज छोड़ चुका है। ना चांद चाहिए, ना गुलाब, ना पूरी कायनात को गवाह बनाने की जरूरत है। बस सामने देखकर कह दिया, क्या खूब लगती हो। यह है मूवी धर्मात्मा का बहुत ही फेमस गाना। 1975 में रिलीज हुई थी यह मूवी। इसके गायक मुकेश और कंचन, गीतकार इंदीवर और संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ है। और अब एक बहुत प्यारा बदलाव देखिए। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, कॉन्वर्सेशन है। वह कहता है, क्या खूब लगती हो, और सामने से जवाब आता है, फिर से कहो, कहते रहो। यानी अब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ दिया नहीं जा रहा, मांगा भी जा रहा है। सुनते हैं हमारी आवाजों में, जो कि ओरिजिनली मुकेश और कंचन ने गाया था।

अब चलते हैं 1985 की तरफ। इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद भी पोएट्री नहीं मरी है, वो वापस आती है, लेकिन नए संगीत और नए अंदाज के साथ। और सवाल वही पुराना है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिर तुम्हारी तुलना किससे करूं? बट इस बार जवाब में चांद है। चेहरा है या चांद खिला है, ये बहुत ही फेमस गाना फिल्म सागर का है, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। किशोर कुमार की के बहुत ही फेमस गानों में से एक है ये। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। 1985 आते आते हिंदी फिल्मों का संगीत की ध्वनि बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन देखिए इतने सालों के बाद भी शायर की हालत वही है। चेहरा देखकर फिर वही सवाल, चेहरा है या चांद खिला है। फर्क बस इतना है कि अब आशिक उतना संकोची नहीं है, वह सवाल भी करता है, तारीफ भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है। तो आइए सुनते हैं यह गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे तारीफे बयां, और इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रही थी सियाटल अमेरिका से स्मृति चतुर्वेदी, और इसमें शामिल गीतों को गा रहे थे पंकज चतुर्वेदी और स्मृति चतुर्वेदी। आज का ये सुरीला आयोजन यहीं तक, अनुमति दें, नमस्कार।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रकृति ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, उसी के साथ ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए हैं जिनसे हम जीवित रह सकें, स्वस्थ रह सकें। और कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही धन है, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा उल, आपका वेलकम है, स्वागत है इस खास प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद सर।
0: हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे, डॉक्टर काजोल जो है वो आयुर्वेद की डॉक्टर हैं, और आयुर्वेदा जो है वो क्या होता है, और आप आयुर्वेदा की डॉक्टर बनी हैं, तो उसके आगे MBBS लगता है या कुछ और

0: सर डिफरेंस
1: आयुर्वेदा।
0: जो जो हम स्टडी करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। जैसे आयुर्वेदा में हम लोग हर्बल मेडिसिन, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, और कोर्स जो होता है उसमें हमें थोड़ा बहुत MBBS में जो पढ़ाई होती है वो भी पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आयुर्वेद और शास्त्रों के बारे में भी हमें बताया जाता है, और हमें शास्त्रों के आधार पर ही फिर जो चिकित्सा करनी होती है आगे चल के।
1: यानी मोटे तौर पे हम समझें तो शास्त्रों पे आधारित जो मानव शरीर की संरचना है उसको हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, इसी तरह की बात पढ़ाई जाती होगी ना, क्योंकि
0: हाँ जी,
1: एकदम
0: हाँ जी,
1: अलग अलग है एलोपैथिक से आयुर्वेदा जो है।
0: हाँ बिल्कुल सर। जो आयुर्वेदा कोर्स है उसमें हमें बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शरीर के बारे में पढ़ना होता है। वो किसी भी मेडिकल ब्रांच में कोई भी व्यक्ति अगर मेडिकल में एंटर करता है तो उसको पढ़ना ही होता है, चाहे BDS डॉक्टर हो, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर हो। पर उसमें विशेषता ये हो जाती है कि वो एक अलग स्पेशलिटी बन जाता है। आयुर्वेदा अपनी अलग स्पेशलिटी है, होम्योपैथिक अपनी अलग स्पेशलिटी है, और डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी अलग एक स्पेशलिटी है।
1: जब हम आयुर्वेदा शब्द को सुनते हैं तो हमें बोध होता है कि जैसे वेदों के बारे में बताया जाता है ना, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इसी तरह से इसका वेद के साथ कोई ताल्लुक है या प्रकृति के साथ या हमारे शास्त्रों के साथ कोई उसका संबंध है?
0: जी बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है, और शास्त्रों का इसमें पूरा का पूरा मतलब इसको हिस्सा माना जा सकता है। और इसमें हमें पूरे जो अथर्ववेद है उसमें शरीर के बारे में, उसको कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में, और क्या आपका खान पान होना चाहिए, रहन सहन होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। और वो जिस खंड में बताया गया है उसी को आयुर्वेद नाम दिया गया है।
1: बहुत अच्छी बात के हमने जो पारंपरिक तौर से और हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव प्राप्त किए उन्हीं अनुभवों को हम संचित करके और उसके आधार पर चिकित्सा जो है वो की जाती है। डॉक्टर काजोल हमारे साथ हैं, हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप BAMS हैं, जैसे MS होते हैं या MBBS होते हैं उसी तरह से BAMS होता है, और ये कोर्स और इस प्रक्रिया से कैसे गुजरा जाता है, कैसे यदि कोई हमारा सुनने वाला श्रोता है वो आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहे तो उसको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना?
0: सर सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है उनको 12th में PCB ऑप्ट करना पड़ता है, और जिनके पास भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट रहता है वो लोग आगे चल करके डॉक्टर बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो। और उसके बाद आजकल नीट का एग्जाम दिया जाता है, नीट के एग्जाम के जो जो अंक होते हैं उसके हिसाब से ही BMS ऑप्शन बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और BMS कर सकते हैं। BMS करने के बाद सर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है, MDMS का कोर्स भी होता है, जिसके लिए फिर PG का एग्जाम देना होता है, और PG करके फिर वो जो भी ब्रांच, जैसे MBBS में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, गायनेक यानी कि फीमेल स्त्री प्रसूति रोग वाले अलग होते हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिनका बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, और फिर उसमें PG मास्टर डिग्री कर सकते हैं और उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है कि इसके बाद यदि BAMS कर लिया, आयुर्वेद के
0: जी
1: डॉक्टर बन गए, तो उसके बाद भी क्या ऐसा होता है कि MBBS के बाद जैसे MD होती है या विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइजेशन होता है कि ये हार्ट रोग के लिए है, ये जो है मानसिक रोगों के लिए, इसमें भी होता है?
0: जी बिल्कुल सर। सर आयुर्वेद में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं इनका, जैसे नाम है हमारी मेडिसिन ब्रांच को हम बोलते हैं काय चिकित्सा, और पीडिया जो है उसको बाल बाल रोग कहा जाता है, सर्जरी को शल्य चिकित्सा बोला जाता है, गायनेक को स्त्री प्रसूति रोग चिकित्सा बोला जाता है, ENT जितना भी मतलब स्पेशलाइजेशन है उसमें उसको शालाक्य कहा जाता है, और पैथोलॉजी को रोग निदान बताया जाता है, और एनाटॉमी अपनी अलग से एनाटॉमी की ब्रांच होती है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन ब्रांच होती है। अभी रिसेंटली जो है ये मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, जो कि PG करने के बाद यानी कि MDMS करने के बाद एक पर्टिकुलर जो विभाग होता है

0: है, उसमें स्पेशलाइजेशन किया जाता है, वो भी आयुर्वेद में अब स्टार्ट हो गया है।
1: इसके बाद जब स्पेशलाइजेशन हो जाए, BAMS हो गया, तो जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या क्या?
0: बीएमएस कंप्लीट करने के बाद या तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी नर्सिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बीएमएस के साथ साथ आपने पीजी किया है, यानी कि एमडीएमएस किया है, मास्टर डिग्री किया है, तो आप खुद का अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। स्टेट मेडिकल ऑफिसर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, वो दे करके आप मेडिकल ऑफिसर स्टेट में बन सकते हैं, या किसी डीन यूनिवर्सिटी के डीन भी बन सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके थ्रू, तो वहां पे भी आप इंटरव्यू दे करके अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं और वहां पे आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं।
1: आयुर्वेदा और आयुर्वेद में डॉक्टर बनना, ये केवल भारतीय पद्धति है, यानी इंडियन मेडिसिन के उपचार की पद्धति है, या फिर फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में भी इसको अपनाया गया है, या इसके आधार पर कुछ मेडिसिन वगैरह दी जाती है, या इसकी प्रक्रिया को, इससे उपचार किया जाता है दूसरे देशों में? क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
0: सर बिल्कुल, बाहर के देशों में भी आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा ऑप्ट किया जाता है, और अलग अलग जैसे वहाँ पे भी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आप अगर आपने पीजी किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया जितनी भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई कंट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड है कि आप आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वहाँ का आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ पे भी एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं सर।
1: डॉक्टर काजोर, इसमें क्या जैसे सर्जरी के लिए एलोपैथिक में जैसे ऑपरेशन थिएटर होते हैं,
0: जी
1: उसी तरह से इसके भी OT होते हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल सर, जैसे सर्जरी एलोपैथिक में होती है, वैसे ही सर्जरी की प्रॉपर स्टडी ट्रेनिंग पूरा कैडेवर पे जो एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है, वो सब चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी कराया जाता है। बल्कि आप स्पेशलाइजेशन करें या ना करें, पर फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तभी आपको एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कैडेवर पर स्टडी करना ही पड़ता है, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा पीजी जब आप करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली भी ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाया जाता है, पूरा प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में जैसे सेटअप होता है वैसा ही सेटअप होता है, और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट, स्कैपल, ब्लेड सब कुछ यूज होता है, वो सब चीजें आयुर्वेद में भी जब हम सर्जरी करते हैं तो यूज होती हैं, सेम वही सब कुछ ट्रेनिंग की दी जाती है सर।
1: डॉक्टर काजोर ने क्या सोच के इस फील्ड को अपनाया? कौन सी संभावनाएं आपको नजर आई?
0: सर आयुर्वेद के बारे में पहले इतना ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, और 2015 में हमारा आयुष मिनिस्ट्री बना, और मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उसके बाद आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला, और बहुत ज्यादा लोगों में उसकी वो चर्चा में आया, और उसी दौरान मेरा भी एडमिशन 2015 में बीएमएस में हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे जा करके आयुर्वेदा को ही ऑप्ट करके आगे जा करके लोगों के लिए इसमें मतलब आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के काम करना है और लोगों की मदद करनी है।
1: तो आप अब तो जॉब में आ गई, तो किस तरह से आप मदद करती हैं, और क्या आपने जॉब से आप सेटिस्फाइड हैं, या कुछ और करना चाहती हैं आगे इसी फील्ड में, या कहीं कोई फील्ड बदलना चाहती हैं?
0: नहीं नहीं सर, फील्ड तो बिल्कुल नहीं बदलना है सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद के लिए चुना, और हम आयुर्वेद का एक हिस्सा बने, और लोगों को हम आयुर्वेद के बारे में बता पा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता। और यही फील्ड में मैं आगे और अच्छा करना चाहती हूँ, मैं लोगों को गाइड करते रहना चाहती हूँ कॉन्स्टेंटली, जैसे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं लोगों को गाइड करूँ, उनकी मदद करूँ कि वो आयुर्वेदा को ऑप्ट करें और अपना जो जीवन है, जो स्वास्थ्य है, उसको बनाए रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कई चीजें होती हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में अच्छा है, कई चीजें ऐसी हैं जिनका आयुर्वेद में अच्छा है, कई चीजें हैं जिसमें अदर जो पैथीज हैं जैसे होम्योपैथी है उनमें ट्रीटमेंट अच्छा है। तो लोग गलत दिशा में ना जाएं, उनको सही मार्गदर्शन मिले टाइम से, ताकि उनको जल्दी वो हील कर पाए और कष्ट कम से कम सहन कर पाए। यही मैं चाहती हूँ कि यही हम लोग उनकी मदद कर पाए इसके थ्रू।
1: हमारे जो यूथ हैं वो यदि BA AMS आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगी आप कि किस तरह से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकती हैं, बन सकते हैं?
0: मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना 100% दीजिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो 1 साल ड्रॉप ले लिया, 2 साल ड्रॉप ले लिया, 3 साल ड्रॉप ले लिया, फिर भी वो MBBS के ही को ही करना चाहते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप एक बार दीजिए, आप 2 बार भी दे दीजिए, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट, तीसरी बार अटेम्प्ट देने पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है MBBS, तो आप बिल्कुल BMS होम्योपैथी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पैथी छोटी बड़ी नहीं होती है, आपको लाइफ अपने आप कैसे आप उसको आगे बढ़ करके कैसे उसमें अच्छे से काम करते हैं, क्या आपने जो सीखा उससे उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और आप चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने MBBS किया है तो ही आप आगे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। अगर आप BMS भी ऑप्ट करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है जो MBBS कर रहे हैं उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपकी कैपेबिलिटीज, आपके जो आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप फील्ड चूज करते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकल आपका, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको फील्ड में उतरना है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका साउंड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और अपने आप को जितना आप प्रैक्टिकली अच्छा नॉलेजेबल बना सकते हैं बनाइए, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए, अभी से ही रिसर्च पेपर्स पढ़ने की आदत डालिए। भले ही आप अभी कोई मतलब MBBS या BMS कुछ आपने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का और जो भी अपडेट हो रहा है उन चीजों के बारे में अपडेटेड रहने का आपका होना चाहिए, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज का।
1: जो बहुत सारे एज फैक्टर होते हैं, आयु, आयुर्वेद में भी हम एज के हिसाब से उसका उपचार करते हैं। एक बच्चा है, एक प्रौढ़ है, एक युवा है, और एक जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उस तरह के उपचार के लिए, और जैसे सीनियर सिटीजन है, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे कि आयुर्वेद आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना काम?
0: सर, बच्चों की अगर बात करें तो मैं सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को एकदम से एलोपैथिक मेडिसिन की आदत ना डालें। लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो चाहते हैं कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए वो एकदम से ऑप्ट करते हैं। छोटा सा अगर खांसी जुकाम भी हो रहा है तो कफ सिरप या फिर PCM, डोलो, ऐसी मेडिसिन बच्चों को खिलाते हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम कम पड़ जाती है। फिर आगे चल के लाइफ में उनको जब कोई आगे चल के प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में मेडिसिन उनके ऊपर,
1: बिल्कुल, ये जमाना हम जी रहे हैं, जिस युग में, वो इंस्टेंट वाला है और
0: जी
1: सबको इंस्टेंट चाहिए होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ठीक होना, जल्दी से जल्दी। रील्स भी देखते हैं तो फिल्में देखने बंद कर दी और रील्स पे आ गए, तो सबसे
0: जी
1: कम समय में उपचार भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ हो सके और अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आयु को, अपने ज्ञान को बढ़ा सके?
0: सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करके रखनी है। अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और टाइम से खाना खाइए, टाइम पे सोइए, अपना जो दिनचर्या है आपका उसको अच्छे से अनुशासित रूप में रखिए, और बाहर का कम से कम खाइए, और योगा मेडिटेशन इन चीजों के ऊपर बच्चों को बचपन से ही आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा वो खेलें कूदें। आजकल ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर घर में रहते हैं, बाहर अकेले नहीं जाते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उनका इम्यूनिटी भी बिल्डअप नहीं होता है, ना ही उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को तो खेलने के लिए भी देना चाहिए और अच्छा खाने के लिए भी देना चाहिए, और उनके मेनली फोकस करना चाहिए कि इम्यूनिटी अच्छी हो और उसके लिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे विंटर्स में स्वर्ण ये चवप्राश का प्रयोग करना, और छोटे बच्चे जो हैं उनको स्वर्ण बिंदु प्राशन किया जाता है आयुर्वेद में, उस कार्यक्रम को भी वो करवा सकते हैं। और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं और उसकी वजह से वो कमजोर है या उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको खाने के अलग अलग तरीके, जरूरी नहीं कि रोटी सब्जी ही बच्चा खाए, कैसे ना कैसे करके उनको पूर्णतः पोषण युक्त आहार उनको देने का प्रयास करना चाहिए।
1: जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या सलाह देंगी आप?
0: सीनियर सिटीजन्स को मैं यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी जो मनोबल है उसको बिल्कुल बना के रखिए, और कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है, और बाकी ये कि अपना जो दिनचर्या है उसको अच्छा अनुशासित रूप में रखिए, और सद्वित का पालन कीजिए, और ध्यान पूजा पाठ आदि का भी मतलब अपने जीवन में उसका उपयोग करें, और यही मैं उनको सलाह दूंगी।
1: तो पूजा पाठ करती हैं, ध्यान करती हैं, योग प्राणायाम कुछ ऐसा
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: करती हैं
0: हाँ बिल्कुल
1: जो
0: जरूर
1: हमारे सुनने वालों के लिए भी एक नजीर बन सके?
0: सर, बिल्कुल मैं डेली योगा करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि योग और जो पूजा पाठ करते हैं उससे मानसिक जो आपका शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है, वो बढ़ती है। तो इसीलिए बिल्कुल आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और सत्व गुण आपके शरीर में बढ़ता है, और सत्व गुण जिनका अच्छा रहता है उन्हें किसी भी प्रकार से रोग नहीं होता है। यदि रोग हो भी जाए तो वो बहुत जल्दी उससे रिकवरी कर लेते हैं, हो जाते हैं।
1: तो हमारे सुनने वालों ने सुना होगा कि सत्व गुण बढ़ाना है आपको, रजोगुण और तमोगुण से तो बिल्कुल दूर रहना, और यही कह रही हैं। और कुल मिला के यदि हम आयुर्वेदा के निष्कर्ष पे जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा जो है भारतीय जीवन पद्धति है, किस तरह से एक लाइफ स्टाइल है कि हम किस तरह से जिंदा रहें, किस तरह से स्वस्थ रहें और सबसे स्वस्थ रहें, और प्रकृति से हम किस तरह से जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है, वनस्पति दी है, हवा दिया है, पानी दिया है, तो इन सब चीजों का हम सदुपयोग कैसे करें, किस तरह से उनका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। इतनी बात डॉक्टर काजोल से हमारी हुई है, उसका जो सार है वो निकल के यही आता है। डॉक्टर काजोल, आप कुछ गाती भी हैं, गाना वाना फिल्में देखती हैं, बॉलीवुड सॉन्ग गाती हैं, भजन गाती हैं, क्या गाती हैं, क्या सुनाएंगे आप हमें?
0: सर भजन मैं गा लेती हूँ, इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ गा लेती हूँ मैं भजन।
1: हाँ, दुलाइने हम जरूर सुनेंगे,
0: जी,
1: भजन हो चाहे सॉन्ग हो, कुछ भी हो जो आपको सबसे अच्छा सॉन्ग लगता है वो भी यदि आप सुनाएं तो भी अच्छा लगेगा हमें।
0: अच्छा सर मैं कृष्ण भगवान का भजन गाऊंगी, सिर्फ दो ही लाइन में गाऊंगी। हाँ

0: कृष्ण
1: राम नारायणम जानकी वल्लभम।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही ग्रेट
1: थैंक यू सर।
0: कृष्ण कृष्ण जो प्रकृति को अपनी बांसुरी से वश में कर लेते हैं और पूरी की पूरी दुनिया उसके वश में है, उसके आकर्षण में है। और हम आयुर्वेद के आकर्षण में रहे, डॉक्टर काजोल शायद हमें यही कह रही हैं, यही सीख दे रही हैं कि हमें जीवन, हम जीते तो हैं लेकिन जीवन जीने की कला में पूरी तरह से नहीं आती, और सीखते सीखते जीते जीते हम बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें होश आता है कि हमने पहले ऐसे क्यों नहीं किया। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे आयुर्वेद में ऐसी पद्धतियां, ऐसी चीजें हैं जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सरल और सुगम के साथ साथ रोग मुक्त बना सकते हैं। तो डॉक्टर काजोल, बहुत अच्छा लगा से पूरी बातचीत करके। इसके अलावा कोई चीज रह गई हो तो आप जरूर वेलकम है, बताइए।
1: सर, ये जो प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे और लोगों को गाइड करते रहेंगे और आयुर्वेद के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको बताते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने कनेक्ट किया, और थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत अच्छा लगा हमें भी, और ऑलवेज आपका वेलकम है, हमेशा स्वागत है। हमारे श्रोताओं के लिए आप नई नई जानकारी जो आयुर्वेद में होती है, क्योंकि आज का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य जानकारी आयुर्वेद के बारे में है। हम अलग अलग रोगों पे, अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए बात करेंगे, और उसमें के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप इस मंच पर आई और हमारे श्रोताओं को अपने जानकारी से, अपने नॉलेज से लाभान्वित किया, उसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। आपकी आवाज, आपकी पहचान। और आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं रांची झारखंड के ओम नर्सरिया। वेलकम है, स्वागत है ओम प्रकाश नर्सरिया का इस खास प्रोग्राम में। और पूछ रहे हैं चांद से, और चांद क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और चांद की बात को पहचान लेते हैं। आओ करें चांद से चांद की बातें। चांद हमारे संग हो फिर भी होती रहती है ऐसी मुलाकातें।

मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार से। और ये हसीन गीत हमें सुना रहे थे ओम नर्सरिया, आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला सॉन्ग, दर्द की आवाज और दर्द भरा गीत गा रहे हैं रांची झारखंड के ओम नर्सरिया।

0: ओम नर्सरिया झारखंड रांची से हमारे संग हमारे साथ।
1: आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते दोस्त, मुस्कुराओ।

0: क्या समझे, कुछ समझे,
1: बिल्कुल समझे,
0: पहुंच डालो
1: और बहुत ही खूब समझे, पहुंचकर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। और ये खूबसूरत गीत आज के कलाकार, हमारे आज के सुरीले मेहमान रफी साहब का ये गीत गा रहे थे, ओम नरसरिया झारखंड रांची से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए सुनते हैं ओम नरसरिया का ये अगला सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं ओम नर्सरिया और सोनिया सालिग्राम की आवाज। सोनिया साथ दे रही हैं ऑस्ट्रेलिया से ओम नर्सरिया का।

हम नहीं कहेंगे शब्बा खैर ओम नर्सरिया को, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज और इतने ही सुरीले गीत लेके आए हैं तो कैसे कहेंगे भला। एक गीत तो आपको और ही सुनाना पड़ेगा, और वो गीत जो हजार राहें मुड़के देखी, गा रहे हैं ओम नर्सरिया और साथ दे रही हैं प्रिया माहेश्वरी चेन्नई से। आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: बेवफाई भी थी तो वफा से वफा।
1: हमारी थोड़ी सी बेवफाई, और ये सुरीला सॉन्ग आपने सुना, दोगाना सुना आपने। प्रिया माहेश्वरी साथ दे रही थी ओम नर्सरिया का चेन्नई से। और आइए अब आ गई हैं प्रज्वला ओम नर्सरिया का साथ देने इस नटखट से गीत में।
0: हेलो विजया, हेलो डियर।

0: आपने सुना सुरीला दुगाना, आवाजें रही ओम नर्सरिया के साथ प्रज्वला प्रिया की।
1: नमस्कार, भक्ति प्रभा समूह की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सर्वविदित है और पुराणों में भी अंकित है कि परमात्मा ने मनुष्यों की रचना तो बाद में की, लेकिन उससे पूर्व मुक्ति के मार्ग रच दिए। मुक्ति के मार्ग यानी पूजा, अर्चना, भजन। जी हाँ, आज का हमारा कार्यक्रम उसी परमपिता ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित है। सुख करता, दुख हरता, प्रथम पूजनीय गजानन। जी हाँ, गणेश जी हिंदू धर्म के आराध्य देव हैं, जिन्हें गौरी पुत्र गणेश के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी शुभ काम करने से पहले हम गजानन को मनाते हैं। तो चलिए, बुला रही हूँ संजय हारने जी को गणपति बाप्पा को मनाने, रिझाने और लुभाने के लिए।

संजय हारने जी द्वारा गणपति बप्पा की स्तुति। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती। सरस्वती माँ ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी मानी जाती है। अज्ञानता के घोर अंधकार में ज्ञान का प्रकाश माँ की कृपा से ही संभव है। प्रस्तुत है संजय फड़के जी के द्वारा माँ सरस्वती जी की स्तुति।

ये थी भक्तिमय प्रस्तुति संजय फड़के जी के द्वारा। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, वासुदेव, मुरली मनोहर कृष्णा, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ विष्णु जी के आठवें अवतार कन्हैया की। कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए चारुल कान्हा को बोल रही हैं, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्णा।

कान्हा का ये मनमोहक भजन अपनी आवाज से सजाया चारुल ने। आज की इस वैश्विक बीमारी के चलते मानवता का अस्तित्व खतरे में है। इतिहास गवाह है, जब भी विपदा आई है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगली पेशकश ईश्वर से प्रार्थना कि वो अपनी असीम शक्ति से दुनिया को इस महामारी से छुटकारा दिलाए। सचिन नागकर्णी गुहार कर रहे हैं ईश्वर से, बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम।

0: बेहद सुरीली प्रस्तुति सचिन नाटकर्णी जी के द्वारा। दोस्तों, भगवान से लौ लग गई तो आत्मा परमात्मा में लीन सी हो जाती है। आकाश की ऊंचाइयां या फिर सागर की गहराइयां प्रेम और भक्ति के आगे मानो छोटी सी हो जाती हैं, और फिर सिर्फ सुमिरन ही दिखता है। क्या सुबह क्या शाम, ऐसा ही कुछ भजन लेकर आ रही है रमा वी।
1: ओ

बेहद लुभावनी प्रस्तुति रमा वी जी के द्वारा। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव हैं शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई आरंभ, न कोई ओर है, न कोई छोर, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। शिव की महिमा के गुणगान करने आ रही हैं दीपा जी।

0: ईश वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और करीब ले जाने का एक खूबसूरत निश्चल प्रयास भक्ति प्रभा समूह की ओर से।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, अभिव्यक्ति का आंचल। और हमारे संग है, हमारे साथ हैं विनीता राहुरीकर।
1: नमस्ते आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। मेरा
0: साहित्यकार हैं आप, आज को लिखती है, बीते कल को कहती है और समय की साक्षी बनकर सच का बयान करती है। एक ऐसी कथाकार, उपन्यासकार, कवित्री और न जाने क्या क्या, लगभग प्रत्येक साहित्यिक विधा को आपने अपने शब्दों से आकार दिया है। आज हम वेलकम कर रहे हैं विनीता जी का, और अभिव्यक्ति का आंचल में आज हम बातचीत करेंगे विनीता जी से। जितना मैं जानता था उतना तो मैंने कह दिया, अब आप और श्रोता हैं और मैं भी सुनने वाला हूं, श्रोता ही, तो अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय जरूर दीजिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोपाल से हूँ और गृहिणी हूँ, लेकिन मन में बचपन से कुछ अभिव्यक्ति की छटपटाहट थी और अक्षर मुझे बहुत प्रभावित करते थे। जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था तब से मुझे अक्षर प्रभावित करते हैं। जब माँ मुझे बच्चों की किताब में से कहानी पढ़कर सुनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे वो कहानी ऐसी याद हो गई थी कि मैं पढ़ना नहीं आता था लेकिन उस लाइन पर रखकर बराबर वही लाइन दोहराती थी, तो माँ को भी बहुत आश्चर्य होता था। फिर पिताजी का मेरे विदेश में चयन हो गया, वो गणित के प्रोफेसर हैं, और हम सब लोग विदेश चले गए जी। तो एक तरह से मतलब मेरा स्कूलिंग, जो प्राथमिक मेरी शिक्षा थी, वो रुक गई, लेकिन साथ में माँ पुस्तकें लेकर गई थी तो थोड़ा सा मुझे घर पर पढ़ाती रहती थी। और 9 बरस की उम्र में मुझे याद है जी कि मैं बहुत छोटी सी थी, भाई मेरा भारत में था, पिताजी कॉलेज गए हुए थे, माँ अपने काम में लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो पता नहीं कैसे मेरे हाथ में पेन आ गया और एक कोरे कागज पर मैंने ऐसी कुछ चित्र बनाए और एक चित्र कथा सी लिख दी, शायद वहीं से कुछ लेखन का बीज पड़ गया। तो इस तरह से वो खैर वो कागज भी खो गया, वो कहानी भी खो गई, लेकिन जो अभिव्यक्ति का बीज था वो शायद कहीं मन में दबा रह गया था। 2010 में जी, 2010 में पता नहीं क्यों मन से एक आवाज आई कि कुछ करना चाहिए। मैंने ऐसे ही अपने स्वांथे सुखा एक कहानी लिख के रखी थी जी। तो मेरे भाई ने पढ़ी और मेरी एक सहेली ने पढ़ी, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुम अच्छा लिखती हो, इसे कहीं भेज के देखो। तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि कोई पढ़ेगा तो, मतलब मैं किसी पत्रिका में भी भेजूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि ये क्या लिख के रखे
0: जी।
1: तो इस तरह से मैंने किसी तरह से उसको टाइप करवाया कहानी को, और फिर मैंने उस पत्रिका में भेज दिया और मैं भूल गई, मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई, लेकिन वो कहानी छप गई। और फिर इस तरह से एक मन में आत्मविश्वास आया, अभिव्यक्ति की इच्छा और बलवती हुई और इस तरह से ये यात्रा प्रारंभ हुई।
0: एक लेखक के रूप में आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, इसका यहाँ से शुरुआत मान सकते हैं हम। ऐसा लगा तुम कहीं आसपास ही हो, ऐसा लगा कि तुम कहीं आसपास ही हो, अभी अभी बासंती हवा का एक झोंका मुझे छू गया। आपने फेसबुक पे, शायद आपको याद आया होगा या नहीं आया,
1: जी,
0: ये पंक्ति आपने लिखी थी, और
1: जी,
0: उस के साथ जो आपने स्केच बनाया था वो बहुत खूबसूरत था। इन शब्दों को कहूं या उस स्केच को कहूं, वो दोनों ही मन में उतर रहे थे, और जिसका भी साहित्यिक मन हो या शायद कहीं ईश्वर से जुड़ी कोई प्रेरणा हो तो वो उसे पढ़ के सच में लगता है कि हाँ, कुछ बात तो है इस लेखन में, कुछ बात तो है इस चित्रांकन में।
1: जी।
0: तो हमें ऐसा लगा था। तो ये चित्रों के साथ लिखना, और बाल साहित्य भी आजकल आप बहुत लिख रही हैं और सामाजिक साहित्य भी लिख रही हैं, तो क्या क्या आप लिख लेती हैं और किस तरह से ये साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ी, उसको हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, तो मार्च 2010 में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी और उसके बाद फिर मुझे एक पत्र मिला कि अपना फोन नंबर दीजिए पत्रिका की तरफ से। फिर मैंने उन्हें फोन नंबर भेजा। तब तक मुझे मेल वगैरह करना नहीं आता था, मैं टाइप करके
0: जी
1: बाय पोस्ट भेजती थी कहानी। जी, फिर उन्होंने मेरा फोन, और फिर जब उनका फोन आया संपादक का वहां से, तो उन्होंने, मतलब बहुत खुश थी मेरी कहानी पढ़कर कि अरे आप कहाँ थी अब तक, अभी इससे पहले क्यों नहीं मिली। तो वो उनकी जो खुशी थी मेरी रचना के ऊपर, तो वो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया। तो कभी ऐसा भी होता है कि पत्रिकाओं में कहानियां चयनित नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा मन हताश भी हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन फिर भी, जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर का एक आशीर्वाद सा लगता है कि ये लेखन मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। तो उसे और उनकी इच्छा है, तो मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी है। तो लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं लिखती रही हूं।
0: कहानी की बात हुई, कविताएं भी आप रचती हैं और इनकी शुरुआत तो आपने बताई, लेकिन जो बड़े स्तर की कहानी है और कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनका श्री गणेश कब हुआ, कब शुरुआत हुई उनकी?
1: जी, लगभग वही 2010-11 से शुरुआत हुई है। फिर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ती गई। पहले मैं कहानियां और कविताएं ही लिखती थी।
0: जी
1: फिर 2015 में लघु कथा से मेरा परिचय हुआ। एक लघु कथाकार भोपाल में आई थी, तो
0: जी
1: उनके साथ जब एक गोष्ठी हुई तो लघु कथाओं से परिचय हुआ। तो मैंने फिर उस समय उनसे प्रेरणा लेके लघु कथाएं लिखना शुरू किया। और फिर ऐसे ही फेसबुक समूहों में ही उन्हें पोस्ट करती थी। वहां पे कुछ बड़े लघु कथाकारों ने पढ़ा, उन्होंने सराहा, और बहुत जल्दी ही भारत के 100 लघु कथाकारों में एक नाम भगवान की आशीर्वाद से मेरा भी रहा। तो
0: बधाई।
1: इस तरह से, जी धन्यवाद, लघु कथाएं लिखना शुरू हुआ। फिर कुछ गोष्ठियों में, एक हैं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक आदरणीय महेश सक्सेना जी भोपाल में, उन्होंने मेरी कहानियां पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ों के लिए इतना अच्छा लिखती हो, तो बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखती। मैंने कहा मैंने बच्चों की कहानियां कभी लिखी नहीं और कभी सोचा भी नहीं उस दृष्टि से। बोले नहीं, तुम लिखो और मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा लिखोगी। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। ये बात है फरवरी 2016 की, और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में संस्था का एक वार्षिकोत्सव है, बोले उसमें किताब ले आओ। आप सोच सकते हैं कि जिसने कभी बच्चों की कहानी नहीं लिखी, उसके लिए 2 महीने में कहानी लिखकर किताब भी ले आना, बोले
0: ले आना, बिल्कुल
1: हाँ, बहुत असंभव सा काम था। लेकिन पता नहीं क्यों
0: वो प्रेरणा
1: मुझे
0: भी थी
1: इतनी
0: एक साथ
1: प्रेरणा
0: साथ में।
1: मिली।
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने न सिर्फ कहानियां लिखी, उनके चित्र भी बनाए और उसका आवरण चित्र भी बनाया। और वास्तव में अप्रैल के कार्यक्रम में पता नहीं कैसे, लेकिन पुस्तक का विमोचन भी हो गया। तो इस तरह से बाल साहित्य की शुरुआत हुई, लिखने की, बच्चों के लिए लिखने की शुरुआत हुई।
0: ये कौन सी विधा है जो कुछ लिखा हुआ आपका वो सीधे दिल को छू जाता है, तो उसमें आप तो लिखती हैं, उसके साथ और कौन होता है जो आपको लिखवाता है?
1: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब लिखने के बाद मेरी कहानी या कोई कविता, कुछ भी रचना छपती है, जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये मैंने कैसे लिख लिया, कब लिख लिया। तो
0: बिल्कुल
1: ये तो लगता है कि, जी बिल्कुल, कि जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई तो एक प्रेरणा है या कोई तो एक दिव्य शक्ति सी है जो मुझसे लिखवा लेती है,
0: भीतर बैठी हुई है। जी
1: भीतर बैठी हुई है, जो बिल्कुल जब मैं लिखने बैठती हूँ तो बिल्कुल अपने आप के साथ या मेरे साथ वही दिव्य शक्ति होती है और कुछ भी नहीं होता, और उस समय ही कुछ लिखा जाता है। फिर मैं जब उठती हूँ लिखकर, तो फिर मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे लिखती हूँ। तो कोई तो शक्ति है जो लिखवा लेती है मुझसे।
0: साइंस और विज्ञान की शब्दावलियां जो है आपके उस कविताओं में, रचनाओं में आता है, प्रेम, प्यार, विरह, कही अनकही टीस, जून की छुट्टियां, ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो आपके दिमाग के कोश में कहीं घर की हुई हैं, वो कहां से निकल के आ जाती है और कैसे लिखती हैं आप?
1: जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, हाँ मेरी कहानियों में मैं कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं विज्ञान की छात्रा रही हूँ। मैंने बॉटनी में MSc किया है और
0: बिल्कुल
1: प्लांट पैथोलॉजी और एयर माइक्रोफ्लोरा में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो
0: वेरी
1: अपने
0: गुड।
1: विषय से मुझे बहुत प्यार था जी, बॉटनी से, मतलब जो विज्ञान विषय था उससे मुझे बहुत प्यार था। तो पढ़ाई मैंने उसी में की है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं विदेशों में भी इतने साल रही, दुनिया के 17-18 देशों में घूमी, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी से और अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार था, हिंदी भाषा से। मैं स्वयं मराठी भाषी हूँ, मेरे घर में पूरे समय बस
0: जी
1: मराठी में ही बात की जाती है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए मुझे हिंदी भाषा बहुत, मतलब एक अंदर से जो अभिव्यक्ति निकलती है वो हिंदी भाषा में ही निकलती, तो मुझे अपनी राष्ट्रभाषा से बहुत प्रेम है।
0: बिल्कुल, हम यही जानना चाह रहे थे कि साइंस और साहित्य का समागम कैसे हो गया।
1: ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साइंस मेरे जीवन में आने से पहले शायद साहित्य मेरे मन भीतर था, क्योंकि 8 या 9 साल की आयु में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, और चित्रांकन की भी शुरुआत लगभग वहीं से हुई कि माँ ने एक बार भाई की पुस्तक से यशोदा मैया का चित्र बनाया था, तो उनको चित्र बनाते देखकर मैं इतना प्रभावित हुई, तब तक मैंने कभी चित्र नहीं बनाया था, मैं बहुत छोटी सी थी, तो उनको चित्र बनाते देख मैं इतनी प्रभावित हुई कि उसके बाद बस पेन और कागज लेके मैं सारा दिन प्रयत्न करती रहती थी। मैं यशोदा मैया और कृष्णा का ही चित्र बनाती थी, और कृष्ण मेरे आराध्य हैं, कहीं ना कहीं मेरी सारी कविताओं में, विशेषकर जो प्रेम कविताएं मैं लिखती हूँ, कहीं ना कहीं उसमें मेरे कान्हा जी की छवि होती है, या कहीं ना कहीं मन में उनके लिए एक भाव होता है, आप उसको भक्ति कहिए या प्रेम कहिए, तो कहीं ना कहीं कविताओं में वही अभिव्यक्ति पाता है।
0: बिल्कुल, वो चित्र के साथ जो सामंजस्य होता है ना, वो बड़ा अनूठा होता है, बड़ा दुर्लभ सा होता है, सबके साथ ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है। हम चाहें कि हमने ऐसी कविता लिख दी, फिर उसके लिए वो चित्रांकन चाहिए, जो आप करती हैं वो अपने आप में एक अनुपम है, अद्भुत है, और वो कैसे हो पाता है, कई बार तो मुझे लगता है कि इसको मैं संजो के रख लूं, पर सब चीजों को संकलित कर पाना मुश्किल होता है, पर वो जो लिखा होता है वो अद्भुत होता है, अनुपम होता है। तो
1: धन्यवाद।
0: जो रचनाएं आप लिख रही हैं, तो उसमें आपके लेखन में जो 2010 और उससे पहले का जो प्रभाव है, और उस समय का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वो, और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे AI का युग कहने लगे हैं, वो साहित्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है, तो ऐसे में हम उसका समायोजन आप कैसे करती हैं और हमें कैसे करना चाहिए, आज के सब जो राइटर हैं, लिखने वाले हैं, उनके लिए एक नसीहत हो सकती है, एक प्रेरणा हो सकती है, तो आप इसके बारे में हमें जरूर बताइए।
1: जी देखिए, जैसे जैसे समय बदलता जाता है तो हमारे सामने नए नए विषय आते हैं, नई नई सामाजिक परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि समय तो हमेशा बदलता रहता है, समय के साथ व्यक्ति भी बदलता है, समाज भी बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं। 2010 में जैसे हम रचनाएं में टाइप करवा कर और बाय पोस्ट भेजती थी, फिर व्हाट्सएप आया, फिर मेल आया, फिर मुझे मतलब टाइपिंग करना सीखा हमने, तो इस तरह से, फिर इसी तरह से जब हम तकनीकी रूप में या इस परिवेश में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने और ज्यादा विषय खुलते जाते हैं कहानियों के और रचनाओं के लिए, अभिव्यक्ति के, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हमारे सामने आते हैं, तो उन सबका हमारे लेखन पर प्रभाव तो पड़ता है। पहले फेसबुक नहीं था, तो अब कहानियों में के विषय में हमको फेसबुक मिल गया है, जी मतलब मेल मिल गया है, उसके बाद में अभी जो बहुत करंट रूप से चल रहा है वो AI का जमाना है, कुछ लोग AI से रचनाएं लिखवा लेते हैं। मुझे लगता है कि आपकी रचना भले ही आप कम लिखो, लेकिन वो आपकी जो मन के भीतर की से आती है, जो आपकी मौलिक अभिव्यक्ति है, वो रचनाओं में आनी चाहिए,
0: उसकी बिल्कुल मौलिकता रहनी चाहिए, बची रहनी चाहिए,
1: मौलिकता रहनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आप जो सोचते हो सारी परिस्थितियों को लेकर वो आपका अपना मौलिक दृष्टिकोण है, आपके मौलिक विचार हैं। मुझे याद आता है जब मैंने बिल्कुल नया नया लिखना शुरू किया था, तो उस समय जो बहुत प्रसिद्ध लेखिका कथाकार हैं देश की, मालती जोशी जी,
0: जी बिल्कुल,
1: जी जी, तो मैं उनसे मिलने गई थी, उनसे मार्गदर्शन लेने गई थी, तो उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि विनीता कम लिखना, भले ही एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने निकल जाए कि तुम कुछ लिख नहीं पाओ, लेकिन जब भी लिखना तो ऐसा लिखना जो सीधे तुम्हारे मन से आ रहा हो। जब तक बिल्कुल अंतर मन से अभिव्यक्ति न आए तब तक मत लिखना, क्योंकि जो अंतर मन से अभिव्यक्ति आएगी वही तुमको पहचान दिलाएगी या वही समाज में मतलब लोगों को भी मन तक पहुंचेगी। तो मुझे उनकी ये बात, उस बात ने बहुत प्रभावित किया।
0: बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे तो, वही ईश्वरीय अभिव्यक्ति है जो आपके द्वारा समाज में समय के साथ बह रही है।
1: बिल्कुल, तो बस ऐसे ही कि कोई बहुत लिख रहा है तो हम भी बहुत सारा लिखें या हर विषय पर लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लेखक को वही लिखना चाहिए जो बिल्कुल उसके अंतर्मन की अभिव्यक्ति है, तो वही उसको भी संतुष्टि देगी और वही पाठक के मन तक भी पहुंचेगी।
0: बिल्कुल, आपकी रचनाओं में ये चीज देखने को मिलती है कि आपने कहीं कोई जो है किसी का पीछा नहीं किया है, किसी की देखा देखी नहीं की है, एक अद्भुत मौलिकता जो होती है और जो है, जो देखा, जो सहा, जो महसूस किया, उसी सब चीजों को आपने अभिव्यक्ति का रूप स्वरूप आकार दिया, तो ये खास बात आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है और वही किसी लेखक की मौलिकता की पहचान बन सकती है, हो सकती है मेरे ख्याल में। क्या सोचते हैं आप?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, बिल्कुल सही है।
0: एक कथाकार के रूप में उसको अपनी बात तो कहनी ही है, उसके साथ साथ उसे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने साथ रखना है और आसपास के लोगों के मन में छुपी बातों को कहना है, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो कविता रच रहा हो या किसी अन्य विधा में लिख रहा हो, तो क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ और इसलिए मैं मतलब मुझे कहानी विधा में अपने आप को अभिव्यक्त करना बहुत सरल सहज लगता है। तो उस पल में अगर कोई कोई घटना है या कोई समस्या है या कोई उलझने हैं जैसे रिश्तों की या जीवन की, तो उसके लिए मैं यही प्रयत्न करती हूँ कि उसको एक मनोवैज्ञानिक रूप में पात्रों के माध्यम से कहानी में उसको अभिव्यक्त करके उसका कोई, उस समस्या का कोई एक निदान दूं पात्रों को, या समाधान, बिल्कुल जी, उसका कोई समाधान प्रस्तुत करूं पाठकों को, या मैं ये प्रयत्न करती हूँ कि मेरी कहानियों में कोई एक अच्छा संदेश जाए। मैं इसका जरूर कोशिश करती हूँ कि कहानियों के माध्यम से समाज को या लोगों को एक अच्छा सा संदेश जाए, फिर उनके रिश्ते सुलझ जाएं या उनकी मन की कोई गांठ सुलझ जाए, उनके कोई किसी समस्या का समाधान उनको मिल जाए, तो मुझे वहां पर अपना लेखन सार्थक लगता है। एक घटना सुनाती हूँ आपको, मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई थी स्पर्श की भाषा
0: जी,
1: तो जी उसमें मैंने ये बताया था कि एक माँ है, वयोवृद्ध हो चुकी है, बच्चे अपने अपने दुनिया में हैं, तो बेटी मिलने जाती है, उस दिन बेटी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चलो एक माँ का हाथ पकड़ के उनके कंधे पर सिर रख दूं, तो बेटी ऐसी पास बैठ जाती है, माँ का हाथ पकड़कर कंधे पर सर रख देती है, वो उस बात को उतना महत्व नहीं देती। लेकिन दूसरे दिन माँ का फोन आता है, वो माँ बिल्कुल भीगे स्वर में वो कहती है कि बेटा तुमने कल मुझे, मेरे पास बैठी, मुझे गले लगाया, मेरे कंधे पर सर रखा, बोले मन को इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकती, तो बोले बहुत धन्यवाद। तो उसको लगता है कि अरे स्पर्श भी कितना
0: महत्वपूर्ण है, जरूरी
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल जी। ये कहानी पढ़कर मुझे एक माँ का संदेश मिला फेसबुक पर कि विनीता जी, बोले मैं भी ऐसी थी, लेकिन कल मेरी बेटी आई तो मतलब मैंने अपनी बेटी को पास बिठाया, उसका हाथ पकड़ा, उसको प्यार किया, तो बोले इतनी खुश हुई मेरी बेटी, बोले माँ आज तुमको क्या हो गया, और बोले फिर हम दोनों ने उस पल को बहुत मन से मतलब जिया, तो बोले हम दोनों माँ बेटी को इतना अच्छा पल देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल,
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: वो जो स्पर्श होता है वो हम आशीर्वाद के रूप में बच्चों को या बड़ों से हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, देते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, तो वो जो है उसमें एक मनोवैज्ञानिक समझ तो है ही, उसके साथ कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि हम रोमांचित हो जाते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, हक करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो वो अपने आप में एक जरूरी प्रक्रिया है। हम उससे यदि दूर होते हैं तो हमारे संबंध, हमारे रिश्ते भी शायद दूर या ज्यादा नजदीक नहीं होते, दूरी बना लेते हैं
1: जी,
0: शायद
1: जी, बिल्कुल।
0: मेरा सोचना तो यही है जी।
1: हाँ, और कहीं ना कहीं हम भी स्वयं में अकेले से होते चले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, किनारा
1: किनारे पे हो जाते हैं
0: एक दूसरे, एक एक दूसरे के छोर पे जाके हम एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन उनको महसूस नहीं कर सकते। महसूस हम तभी करेंगे जब हम बिल्कुल पास होंगे, आसपास होंगे। तो इस बात पे तो हम कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी कोई कविता, कोई रचना, कोई ऐसी विधा की बात जो हमारे श्रोता भी उस चीज को अपने कानों से स्पर्श कर सके।
1: जी जी बिल्कुल। इसके लिए मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। हाँ, कविता का शीर्षक है यादों की कतरने।
0: वाह।
1: आज भी एकांत में अक्सर ही आंचल के छोर में बंधी यादों की कतरने। आज भी एकांत में अक्सर ही आंचल के छोर में बंधी यादों की कतरने
0: जी
1: बिखेर देती हूँ पलंग पर, और फिर एक एक कतरन को छूती हूँ उंगलियों की पोर से। एक एक कतरन को छूती हूँ उंगलियों की पोर से, सहलाती हूँ। सूखे गुलाब तो नहीं है मेरी डायरी में, सूखे गुलाब तो नहीं है मेरी डायरी में, मगर तुम्हारे साथ गुजारे लम्हों की ये यादें ही हैं, जिनकी कतरनों के साथ जी लेती हूँ थोड़ा सा तुम्हारा साथ भी।
0: वाह, बहुत ही खूबसूरत सजीव सी कविता और सजीली सी, बिल्कुल महकती सी रचना है ये। इसको सुन के हमारे श्रोता भी अपने अपने कोने में चले गए होंगे और उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया होगा।
1: धन्यवाद।
0: कहानी के बाद जो कुछ लिखा और कुछ पढ़ा आपने, तो कुछ कहानियों के नाम, कुछ कविताओं के रचनाओं के नाम हमारे श्रोताओं के लिए, और वो कहाँ अवेलेबल हो सकती हैं, किन किन पत्रिकाओं में आप, वैसे तो फेसबुक पे दिखाई
1: जी
0: देती हैं आप सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, एक वो आया करता था अखबार में पहले कॉलम पर, आजकल नहीं आता, तो इसी तरह से जो है वो आपकी रचनाएं आजकल यत्र तत्र सर्वत्र देखने पढ़ने को मिल जाती है। तो हमारे जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन के आपको पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ बताएं, आपके कहाँ अवेलेबल होंगी आपकी रचनाएं?
1: जी, मैंने दो उपन्यास भी लिखे हैं, वैसे तो पांच लिखे हैं
0: जी,
1: लेकिन दो प्रिंट माध्यम में है। तो एक उपन्यास जो भारत के मतलब कमांडो, फौजी कमांडो के जीवन पर है,
0: बहुत बढ़िया,
1: वो उसका नाम है जी एक जिंदगी दो चाहते, हिंदी में है
0: जी,
1: और यही इसी का अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित है डायमंड बुक्स दिल्ली से
0: जी।
1: टू लव्स ऑफ माय लाइफ, ये अमेजन पर उपलब्ध है। और दूसरा उपन्यास कर्मचक्र है, ये भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और अमेजन पर दर्शकों श्रोताओं को मिल सकता है, पाठकों को
0: जी।
1: और इसके अतिरिक्त जो कर्मचक्र हिंदी वाला जो संस्करण है
0: जी,
1: एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कुकू FM, काफी
0: लोकप्रिय है,
1: प्रसिद्ध है, कुकू FM काफी लोकप्रिय, उस पर ये इसका ये ऑडियो रूप में पूरा उपलब्ध है।
0: वाह।
1: उसके अतिरिक्त प्रतिलिपि जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मेरी काफी सारी रचनाएं और पांचों उपन्यास वहां पढ़ने में मिल सकते हैं, वहां पर काफी सारी कहानियां भी हैं और पांचों उपन्यास मेरे प्रतिलिपि पर लिखे हुए हैं। तो अगर पाठक चाहें तो वहां पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मातृभारती पर हैं, और इसके अलावा मैं गृह शोभा, मेरी सहेली और पहला अंतरा और कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं में लिखती रहती हूँ। विभोम स्वर में लिखती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी कहानियां पढ़ी जा सकती हैं। और कुछ बाल पत्रिकाएं भी हैं जिनमें कहानियां आती हैं, जैसे अभी बाल किलकारी में है, बालवाणी है, बाल प्रहरी है, चिरैया है, तो यहाँ मैं बाल कहानियां लिखती रहती हूँ, तो समय समय पर प्रकाशित होती रहती है, यहाँ पढ़ी जा सकती है।
0: तो ये तो
1: एक कहानी संग्रह है
0: जी,
1: कहानी संग्रह है इत्र में भीगी हथेलियां, जो अभी हाल ही में इंडिया नेट बुक से प्रकाशित हुआ है, ये भी अमेज़न पर उपलब्ध है।
0: बहुत ही खूबसूरत शीर्षक है उसका, टाइटल है, और
1: जी
0: ये सुन के हम तो जो है उसको दो तीन बार सुनेंगे तब हमें याद रहेगा, नहीं तो याद भी नहीं रहेगा। तो हमारे श्रोताओं ने जरूर सुन लिया होगा कि एक क्या था हथेलियों पे उसका शीर्षक,
1: इत्र में भीगी हथेलियां, इत्र में भीगी हथेलियां,
0: खुशबू, इत्र जो है उसकी खुशबू, शब्दों की खुशबू है उसमें विनीता जी की। तो हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और आज इस आंचल में इतना कुछ है कि हम खुद भी मालामाल हो गए हैं, और उसको समेटने में हमें भी जोर आ रहा है। पता नहीं हम सब कुछ इस प्रोग्राम में समेट पाएंगे या नहीं। विनीता, हमने जो बात की उसमें आपके जो स्केच बनाना, चित्रांकन करना, लघु कथा लिखना, साहित्य से जुड़ी बातें, ये सब तो है, उसके साथ आपके जीवन में संगीत, गीत, ऐसी कुछ चीजें हैं?
1: हाँ, गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गाने सुनती हूँ। मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, लता जी के गाने, आशा जी के, किशोर कुमार जी के, यशुदास जी के। तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं गाने लगा लेती हूँ, सारेगामा पर या यूट्यूब पर अपने मनपसंद के गाने मैं चला लेती हूँ
0: जी।
1: तो मुझे, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुरू से, हाँ जी,
0: उनके
1: बहुत शुरू से गाने सुनती
0: हूँ। उनके साथ साथ आप गुनगुनाती हैं, मतलब है ना,
1: कभी कभी।
0: हाँ, तो आज उनके उनके बिना थोड़ा सा सुनाइए ना हमें।
1: नहीं देखिए, मैं गाना तो बहुत अच्छा गाती नहीं।
0: एक अंतरा तो चलेगा ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा।
1: जी जी, कोशिश करती हूँ एक ताजी का एक गाना गाने की।
0: जी, स्वागत।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: और हम यही श्रोताओं को बतलाना चाह रहे थे कि जो लिखता है, जो साहित्यकार है, जो चित्रकार है, वो संगीतकार भी है और वो गायककार भी है, क्योंकि उसका दिल ही ऐसा होता है। और दिल कभी फूलों पे, कभी पत्तों पे, कभी हवा के संग, और कभी कभी जो है हम बादलों के साथ बातें करते हैं। तो यही साहित्य और साहित्यकार की विधा का एक मौलिक परिचय हो सकता है हमारी दृष्टि में। आप क्या कहेंगी कि एक साहित्यकार को कैसा होना चाहिए, और उसे कोई साहित्यकार बनना चाहता है तो बन सकता है क्या, या जन्मजात पैदा होता है उसके अंदर, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, क्या कहेंगी आप?
2: जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपको मन में अभिव्यक्ति की इच्छा है, छटपटाहट है, तो बहुत अच्छी बात है। सब में एक कोई ना कोई अभिव्यक्ति का गुण होता है, जो अपने आप को अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो कोई गाकर करता है, कोई कविता लिखकर करता है, कोई चित्रांकन में करता है, तो कहीं ना कहीं तो हम सबके अभिव्यक्ति निकलती है। और लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यकार का दायित्व इन सब में थोड़ा सा ज्यादा है। उसको एक बहुत बड़े वर्ग की, एक मतलब पूरे मानवता की उसको संवेदना छूनी चाहिए। उसका मन बहुत संवेदनशील होना चाहिए कि आप लोगों की भावनाओं को, उनकी दुख दर्द को, उनके अच्छे बुरे को समझ सके, समझकर उसे अपने भीतर महसूस कर सके, तभी तो वो आप अभिव्यक्त कर पाएंगे।
1: यानी एक मास को रिप्रेजेंट करता है वो व्यक्ति,
2: मास को रिप्रेजेंट करता है। और आप जब भी लिखें तो ऐसा ना हो कि आप आत्मालाप कर रहे हैं या अपनी जो है अपना दुख दर्द भी उड़ेल रहे हैं। आपकी जो रचना है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सबके मन तक पहुंचे और सबको अपनी सी लगे, जो भी पाठक उसे पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, मैं ये अपने अपनी कुछ बात पढ़ रहा हूँ, यहाँ ये मेरे लिए कुछ लिखा गया है। पाठक को ये ना लगे कि अरे ये तो लेखक के अपनी वो है, तो अपनी भड़ास निकल गई है या अपना दुख दर्द ही, अपनी ही वेदना उसने उड़ेल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से। दूसरा ये है कि आप अपने जो साहित्यकार हो गए, देखिए भारत की जो साहित्यिक परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। दो जीवन कम पड़ जाएंगे लेकिन आप वो जो साहित्य है वो हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप अगर आपको साहित्यकार बनना है, लेखक बनना है, तो मुझे लगता है आपको अपने पुराने जो हैं, जैसे अमृता प्रीतम जी हैं, शरद चंद्र जी को आप पढ़िए, बंकिम चंद्र जी को पढ़िए, आशापूर्णा देवी जी को पढ़िए, आप मालती जोशी जी को पढ़िए, इतना अच्छा लिखा है। और इनको पढ़कर, विशेषकर मैंने बंगाली जो साहित्यकार हैं, जैसे शरद चंद्र जी हैं, बंकिम चंद्र जी हैं और आशापूर्णा देवी हैं, उनको मैंने बहुत पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य मन की जो बिल्कुल भीतरी सूक्ष्म भाव है ना, या उनकी जो मनोवृत्ति है कि कोई व्यक्ति बाहर से कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उस बाहरी व्यवहार के पीछे भीतरी कारण क्या है, वो उन्होंने इतने सुंदरता से उसको अभिव्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मानव मन की गहराइयों को सीखने का उनके मन उससे बहुत सीखने को मिलता है बंगाली लेखकों से। और प्रेम को कितने रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, एक ही भावना है उसको कितने रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो अगर आपको जानना है तो आपको अमृता प्रीतम को समग्र पढ़ना पड़ेगा। अद्भुत है उनकी साहित्य की यात्रा, बहुत अद्भुत है। जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार चमत्कृत करती है। मैंने बहुत पढ़ा है इन लोगों को, अभी भी पढ़ती रहती हूँ। मैंने इन बड़े लेखकों से बहुत कुछ सीखा है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे लेखन में उनकी बूंद भर भी स्याही उतर पाई है, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो अगर किसी को लेखक बनना है, मुझे लगता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए और फिर तब लिखिए।
1: बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। समझने वाले को विचार करना पड़ेगा, और जिन लेखकों का नाम आपने लिया है, सच में उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल

0: में सच में वो स्तंभ है साहित्य के, जिनको हम पढ़ के कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और लेखन की और लेखक की गूढ़ गहराइयां क्या हो सकती हैं उनको हम समझ सकते हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल हमारा सोचना है। तो आजकल जो पढ़ने का की जो परंपरा है, सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि लोग किताबों से दूर हटते जा रहे हैं, दूर ही दूर होते जा रहे हैं, तो क्या होगा इनका, इसके बारे में, इसके भविष्य के बारे में हमें चिंता होती है, आपको होती है क्या?
1: जी हाँ बिल्कुल, कभी कभी तो होती है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कभी कुछ युवाओं के, जैसे प्रतिलिपि है या ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहां पर बहुत लोगों ने पुराने लेखकों को भी प्रकाशित किया हुआ है।
0: जी, हाँ।
1: जी बिल्कुल, और वहां पर जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन कमेंट्स में शरद चंद्र जी या प्रेमचंद जी इनके नाम पढ़ती हूँ, तो कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है कि चलो युवा मतलब अनभिज्ञ नहीं है इन लेखकों से, वो इनको भी पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो छपी हुई किताब भले ही हाथ में लेके न पढ़ रहा हो, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो अनभिज्ञ नहीं है इन लेखकों से और इनकी रचनाओं से, वो इनको पढ़ रहा है। जैसे हाल ही में मुझे एक लिंक में चेखव की पूरी कहानियां मिली डिजिटल उसमें, हाँ इंटरनेट पर, गूगल पर ऐसे ही मैं कुछ सर्च कर रही थी, तो पूरी अंतोन चेखव का पूरा जो कहानियां है, तो वो पूरा उनका रचना संसार इंटरनेट पर उपलब्ध है, और वहां पर युवाओं के भी और पाठकों के काफी कमेंट्स भी है, तो इसका मतलब ही पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि हमें बहुत दुख होता था कि जैसे चंदा मामा बढ़ गई है, मैं बचपन से विदेश में रही तो मैं बाल पत्रिकाएं नहीं पढ़ पाई, वो मेरा एक आज भी मुझे वो टीसता था कि अरे मैं चंदा मामा ये सब नहीं पढ़ पाई। लेकिन एक दिन यूं ही सर्च करते करते मुझे गूगल पर चंदामामा.in पर पहली चंदा मामा से लेके 2013 तक की सारी चंदा मामा उन्होंने स्कैन करके डाली हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें सच में पढ़ने की इच्छा है तो हमारे लिए रास्ते भी खुल रहे हैं और बहुत अच्छे खुल रहे हैं, कि मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं इनकी बहुत सी किताबें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगी, या विभिन्न वेबसाइट्स पर, या जैसे प्रतिलिपि वगैरह हैं तो इन पर काफी रचनाएं हैं। तो और इसके अतिरिक्त मतलब छपी हुई पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध हैं, तो अगर युवा पढ़ना चाहे तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, उसके सामने तो दोनों माध्यम हैं।
0: विनीता, बात कवि से हो रही है, साहित्यकार से हो रही है, और कविताओं का आनंद श्रोताओं को न मिले ऐसा हम नहीं चाहते, हमारे श्रोता भी नहीं चाहते, तो हो जाए।
2: छत के कोने पर आंचल के छोर में बंधी एक कतरन यादों की जाने कैसे तकिए पर उतर आई, जब तुम्हारे मोती से अक्षरों में ढली प्रेम की अभिव्यक्ति को कागज ने अपनी हथेली पर सहेज लिया था, और दौड़ पड़ते थे मेरे पैर अपने आप छत पर सुनहरी दोपहरियों और सिंदूरी शामों में, सीने से लगाए उस कागज को पढ़ने के लिए बार बार, प्रेम की वो अनुभूति आज भी छत के उस कोने में शाम के सिंदूरी रंग में रंगी खड़ी हुई है। खिड़की के सरिये पर आज खिड़की से सूखे पत्तों के साथ उड़कर यादों की एक कतरन भी अटक गई सरिये पर, वो दिन जब यूं ही बेमतलब गुजरा करते थे तुम सड़क से गली के मोड़ तक, और नजरें ढूंढती थी खिड़की के सरियों के भीतर दीवार से सटकर, मैं देखा करती थी तुम्हारी बेचैनी एक झलक मुझे देखने की, दो जोड़ी आंखें आज भी अटकी हुई है सरिये पर एक बार नजर मिल जाने की राह देखती हुई। कुंज, यादों के इस कुंज में कितनी कोमल लताएं लिपटी हुई हैं, सुंदर सुवासित पुष्पों से भरी हुई, मन के तने से

0: कितनी प्रेम कविताएं भरी उकेरी हुई हैं हरे भरे पत्तों पर। तुम्हारे स्पर्श सी अनुभूति है पुष्पों की इन पंखुड़ियों की। सुन रही हूं मैं बांसुरी की मीठी धुन के साथ उगती कोयलिया को। इस नरम धूप पर आज भी अंकित है तुम्हारे चरण चिन्ह। ओ कुंज बिहारी मेरे, भटक रही हूं मैं देह के कानन में इन लताओं बीच वो पुष्प ढूंढती हुई जो तुमने लगाया था मेरे बालों में अपनी प्रीत का। जन्मों के इस चक्र में समय की धाराओं में जो मुझसे जाने कैसे कब खो गया।
1: स्मृतियों के साए में लिपटी लबरेज कविताएं हमने सुन, इतना खूबसूरत बयान दे रही हैं, बोल रही हैं आप कि मैं आपको सुनूं या आपसे कोई अगला प्रश्न करूं मैं भूल जाता हूं, तो मैंने जो भूल की है उसको आप संशोधित कर दीजिए कि कहां मैंने आपके व्यक्तित्व को छूने में कहीं कोई कोर कसर रखी हो तो आप जरूर बताइएगा। और साथ साथ में प्रोग्राम के समापन से पहले आप जो कुछ कहना चाहें वो कहिएगा और फिर एक स्वर में एक गीत तो हम आपसे दो लाइनें फिर भी सुनेंगे, उसको भी याद कर लीजिए। एक साथ तीन चार प्रश्न हैं।
2: जी, तो अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, बहुत सीधा सरल सा व्यक्तित्व है। परिवार मेरी पहली प्राथमिकता है और जिस तरह से सांस लेना जरूरी है मुझे लगता है मेरे लिए पढ़ना और लिखना जरूरी है। तो क्योंकि अक्षर, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बचपन से मुझे अक्षर बहुत प्रभावित करते हैं और लिखना ऐसा लगता है कि वो ईश्वर की इच्छा है और मुझे उनको पूर्ण करना चाहिए। तो लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा या पुरस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब मेरे मन में कुछ नहीं रहता, या वो रचना छपेगी कि नहीं छपेगी। बस मेरे मन में जब अभिव्यक्ति की इच्छा होती है तो मैं लिखती हूँ। और पढ़ने का मुझे बहुत शौक है तो मुझे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब मैं पढ़ती नहीं हूँ। और अभी भी प्रकाशित पुस्तकें, छपी हुई पुस्तकें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइब्रेरी में अभी भी कम से कम 400-500 किताबें हैं बड़े लेखकों की, प्रेमचंद जी का काफी सारा रचना संसार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रचना संसार, मृदुला गर्ग जी हैं और अमृता प्रीतम जी और शरद चंद्र जी का, तो मुझे लगता है कि जितनी मुझे मिल सकती थी पूरा साहित्यिक उनकी जो है मेरे पास है। और मुझे फैंटेसी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मेरे पास हैरी पॉटर भी है और मेरे पास बाबू देवकी नंदन खत्री जी की भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता रोहतास मठ, वो भी सारी हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो मैंने 7 बार पढ़ी है, वो सारी किताबें मैंने 7-7 बार पूरी पूरी पढ़ी है।
1: हाँ, कई
2: मुझे फैंटेसी
1: कुछ ऐसे होती है कि वो छू जाती है और उसको दोबारा छूने का मन करता है, सच में पढ़ने को मन करता है।
2: हाँ, तो बिल्कुल, जब मैं थोड़ा सा अवसाद या ऐसे कुछ थोड़ा सा उदासी में रहती हूँ तो मैं वो किताबें पढ़ना शुरू कर देती हूँ, मुझे एकदम मैं ताजगी से भर जाती हूँ। और इसीलिए शायद मेरा एक जो 4 उपन्यास है, मेरे भी 4 उपन्यास इसी तरह से फैंटेसी पे है। कर्मचक्र जो सीरीज है मेरी, कि उसमें वो पिछले जन्म में जाते हैं और पिछली सदियों में जाते हैं और वो राजा महाराजाओं के दौर में चले जाते हैं और फिर वो क्या क्या करते हैं, तो उसको भी लिखना मैंने बहुत एंजॉय किया था।
1: विनीता कब उदास होती है?
2: हो जाती है कभी कभी।
1: हो जाती है।
2: कोशिश करती हूँ, जी बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि ना हो, लेकिन हो जाती हूँ कभी कभी।
1: और हो जाए तो फिर उपाय क्या करती हैं आप, उसका परिमार्जन कैसे होता है?
2: परिमार्जन ऐसे होता है कि कुछ थोड़ा सा अपने आप के साथ संवाद हो जाता है और अगर ज्यादा है तो मैं रंग लेकर बैठ जाती हूँ, तो कोई सुंदर सा चित्र बना देती हूँ तो उसके इतने सारे रंग। भारतीय चित्रकला में मुझे गौंड चित्रकला बहुत पसंद है। गौंड चित्रकला में बड़े चटक रंग होते हैं और प्रकृति से जुड़ाव होता है, मतलब पेड़ और हिरण, मोर, पक्षी, तो मैं वो बनाने बैठ जाती हूँ, कुछ समय प्रकृति के साथ बिताती हूँ, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। अभी भी मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे सामने बोगनवेलिया के पेड़ लगे हैं, उन पे फूल खिले हैं, हरे भरे पेड़ हैं, लहरा रहे हैं, तो मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, तो मैं प्रकृति के सानिध्य में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो बस उदासी मेरी बादल बनकर उड़ जाती है।
1: वाह क्या कमाल का जादू भरा जो टॉनिक है आपने दे दिया है हमारे श्रोताओं को और हमें भी। तो चलते चलते हम सुनना चाहेंगे आपसे कोई गीत, याद कर लीजिए
2: जी। कोई अगर आपको ऐसा गीत एकदम सूझ रहा हो जो मैं गा सकती हूँ तो बताइए।
1: बिल्कुल, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई गीत सुनाएंगे, क्योंकि ये रेडियो का प्रोग्राम है।
2: जी जी, तो सावन पे गीत गा दूं?
1: बिल्कुल,
2: थोड़ा सा दो लाइन।
1: हाँ
2: जी। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं शोर कहो, शोर शोर शोर। सावन का महीना

0: जैसे बन माना छे मोर।
1: इस सुहाने गीत के बोल सुन के हमारे श्रोताओं को भी लगने लगा होगा कि ये गीत क्यों ना सुनाया जाए, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला सॉन्ग सभी श्रोताओं के लिए। सावन का महीना पवन करे शोर।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे

0: बस मन की
1: बहुत
0: तरह सब लोग को फूले फूले रहे, मोर की तरह हमेशा खुश रहे, नाचते गाते रहे। आपके सभी श्रोताओं के लिए मेरा यही प्रार्थना है, यही संदेश है।
1: हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे थे प्रोग्राम आंचल की अभिव्यक्ति, और हमारे साथ मशहूर साहित्यकार विनीता राहुरकर मध्य प्रदेश भोपाल से। विनीता जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
1: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान, नई आवाज नई पहचान में आज हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से। शीतल बहुत ही अच्छा गाती हैं, हमने एक गीत सुना है उसी से हम कह रहे हैं, उसी आधार पे कह रहे हैं। और जब हम बात करेंगे शीतल से और आप उनकी शीतल सी वॉइस को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे बापरे बहुत अच्छा गाती हैं। तो वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। और हमारे संग हमारे साथ अपने परिचय के साथ शीतल वापरे। शीतल क्या कहेंगी हमारे श्रोताओं को अपने परिचय के रूप में?
1: धन्यवाद गाइस और धन्यवाद व्यास हरिशंकर जी, आपने मुझे जयपुर रेडियो प्रोग्राम के लिए पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रेडियो पे आज मेरे रेडियो पे प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है। हाँ,
0: और अपने बारे में बताएं कि आप कब से गा रही हैं और क्यों गा रही हैं?
1: मुझे बचपन से ही सिंगिंग का शौक है, मेरी सिंगिंग की शुरुआत ही मेरे भजन से हुई है और उस वक्त पता नहीं चला था कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ।
0: अच्छा,
1: और
0: भजन
1: ये प्रेरणा मुझे मेरे
0: भजन,
1: हाँ,
0: से हुई।
1: भजन से हुई।
0: तो कौन सा भजन था, उसके बोल भी हम सुनना चाहेंगे?
1: छोटे बच्चों के लिए बालोपासना, बेलगांव जो शहर है सिटी, उसमें श्री कलावती देवी, उनके भजन मैं गाती थी छोटे बच्चों के लिए बालोपासना। तो मेरी आवाज सुनकर उन्होंने मुझे माइक में ये बालोपासना का जो भजन है वो बोलने का अवसर दिया। तो
0: उसकी दो लाइनें हम सुनना चाहेंगे, कैसा था वो?
1: मराठी में है
0: जी जी।
1: श्री गणपते विघ्न नाशना मंगल मूर्ते मुषक वाहना,
0: क्या बात,
1: तिमिरे नाशिषी निज ज्ञान देवनी। बस इतना है, बहुत बड़ा है, मैं अभी इतना ही गा सकती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो हम यही सुनना चाह रहे थे कि उससे, उसके नाम से, विघ्न विनाशक के नाम से शुरू हो तो हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम विनायक विघ्ननाशक उस
1: गणपति बप्पा
0: को प्रणाम करते हुए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और कौन सा गीत हम सुनाएं आपको, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? पहला गीत
1: मैं पहले ये गाना सुनाना चाहती हूँ दर्शकों को
0: जी।
1: दशावतार मूवी हो गया था तेलुगु भाषा में, तो उसका हिंदी रिमेक था कमल हसन का, तो उसमें कृष्ण का जो गीत है वो मैं सुनाना चाहती हूँ।
0: उसके थोड़े से बोल गा के सुनाएंगे।
1: मुकुंदा मुकुंदा मुझे मुकुंदा मुकुंदा यही होते हैं उसका शब्द,
0: मुकुंदा मुकुंदा। जी हाँ, तो मुकुंदा को याद करते हुए हम ये सॉन्ग

0: वो माइक के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचती है और हम गाते हैं। हमारी आवाज नई, आवाज नई पहचान, एक ऐसी पहचान बन जाती है जिसे कहते हैं शीतल वापरे। शीतल वापरे हमारे साथ हैं आज इस प्रोग्राम में। और शीतल, बहुत ही सुरीला सॉन्ग हमने आपकी आवाज में सुना, क्या कहेंगे, क्या कहेंगी आप हमें और हमारे श्रोताओं को? आप गीतों से बहुत,
1: मेरा गाना बहुत, मेरे गाना, मैंने जो गाना गाया है वो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आवाज?
0: वो तो हमारे श्रोता है बताएंगे। हमने तो पहला गीत सुना तभी हम नजदीक आ गए और ये नजदीकियां जो है वो और सुरीली हो गई। और आज की शाम जो है वो आपके गीतों से महक गई, यही कहेंगे। और श्रोताओं को जिन्होंने अभी अभी जयपुर रेडियो ऑन किया है उनको बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। और हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से, बहुत ही सुरीली गाती हैं। और अभी शीतल, सुना होगा कि जो सोना है जिसको महिलाएं बहुत पसंद करती हैं और जो लेडीज हैं वो गले में चैन वैन भी पहनती है, तो सोने के भाव बहुत ही आसमान छू गए। तो वो एक गाना भी है ना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, तो ऐसा गाना कोई है याद आपके जहन में और वो सुनाएंगी हमें? क्योंकि
1: हाँ है ना, तीसरी मंजिल का गाना है शम्मी कपूर जी और आशा आशा जी का। मैंने गाया है, आपको भेजा है मैंने।
0: बिल्कुल, आप थोड़ा सा सुनाएं वैसे तो अच्छा लगेगा।
1: ये जो गाना है वो अपने जो क्या बोलते प्रेमी है उसको मनाने के लिए बोला है आशा परेख जी ने।
0: अच्छा, वो वाला आशा
1: भोगेश जी की आवाज में।
0: अच्छा, वो
1: नहीं, वो वाला सोना नहीं है, अपने जो मनपसंद जो जो पर्सन है उसको सोना बोल रहा है उसने।
0: उसको सोना, अच्छा अच्छा,
1: हाँ उसको सोना बोला, प्यार से सोना बोला है।
0: तो चलिए ये सोने जैसा गीत हाँ। हम सुन लेते हैं आपकी आवाज में।
2: मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा।

0: मैंने तुझे जरा देर में जाना रे, हुआ कसूर खपा मत होना रे। शीतल मी मराठी, शीतल वापरे हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच। और शीतल का ये गाना, ये गीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आपके फीडबैक की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हम यदि समय पर फीडबैक मिल जाते हैं तो हम उनको इसी लाइव शो में शामिल भी करेंगे, इसलिए आप जरूर अपना फीडबैक लिखना देना ना भूलें। शीतल वेलकम है फिर से एक बार। अब इस गीत के बाद क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, कोई बात जो हमने ना पूछी हो?
1: ऐसी कोई बात नहीं सर, लेकिन ये गाना गाने की प्रेरणा है ये मेरी बुआ से मिली है, यानी कि मेरे पापा की बड़ी बहन।
0: अरे वाह,
1: आज वो होती तो बहुत, आज वो इस दुनिया में नहीं है, होती तो बहुत उसको बहुत खुशी होती कि मेरे प्रोग्राम हो रहा है, मेरे रेडियो पे भी प्रोग्राम हो रहा है। वो होती तो बड़े चाव से वो सुनती, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
0: वो मुझे भी आ रही है उनकी, और उनकी आत्मा, उनकी रूह जो है ना, वो आपके गीत को सुन रही है, हमारी बातचीत भी सुन रही है। क्योंकि हम कहते हैं आवाज ही पहचान है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा,
1: बदल जाएगा,
0: मेरी आवाज ही पहचान है। तो जहाँ तुम्हारी बुआ है वो आवाज भी इस यूनिवर्स में ही है, कहीं नहीं गई है, और वही आवाज जो है वो आज एक रूह के रूप में आपकी आवाज को सुन रही है, पहचान रही है, और वो कह रही है कि शीतल गा रही है और उसकी शीतल सी बयार मेरे पास आ रही है, वो सुन रही है, बहुत ही मनोयोग से, मन से सुन रही है। और मुझे तो यही कह रही है कि आप शीतल का एक गीत और सुना दीजिए ना, तो हम सुना ही देते हैं आपको आपका ये गीत हमारे सभी श्रोताओं को। आइए सुनते हैं सब मिलके इस गीत को, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: बहुत सुरीली सुरीली सुरीली बहुत ही स्वीट वॉइस शीतल की हमारे साथ हैं आज लाइव इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज नई पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। शीतल, आवाज सुन के ऐसे लगता है कि एक स्केल पे गाती हैं आप, और आपका वॉइस पे जो कंट्रोल है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। यानी इसमें कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, जो ऊंचा स्वर है उसको भी आप अपने सलीके से अपने कंट्रोल से उसको काबू में रखती हैं और फिर उसको गा लेती हैं। तो ये रियाज और ये सब जो चीजें हैं वो आपने कब सीखी, कैसे आई, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
1: जी, गाना गाने के लिए मैं गाना गानी रहती, और मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं गाना ठीक से सुनती हूँ, क्योंकि कोई भी गाना उसी तरह से गाना हो तो ठीक तरह से सुनना चाहिए। उसका जो चढ़ाव उतार जो है, हरकतें हैं, वो ठीक तरह से आनी चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं कि जो सिंगर है उसी की आवाज से ही गाना है, वो कैसे गा रहा है, वो किस तरह से गा रहा है, वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए। मुझे हमेशा कोई पूछेगे कि आप कोई तो बताओ कि हम कैसे गा सकते हैं, क्या करना, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप पूरा गाना जो आपको गाना है वो पूरा ठीक तरह से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हम भी यही सलाह देते हैं जो इस मंच पे आते हैं उनको, कि कम से कम उस गीत को आप गाने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले,
1: उसके जो बोल है कुछ किधर रुकना है, किधर बढ़ाना है, वो ठीक तरह से सुनना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब ये भी चाहिए कि याद भी होना चाहिए कि हम लोग सामने थोड़ी मतलब म्यूजिक रहता है, तो हमको जो याद होगा जो गाना वो अपने आप भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल, देख के गाना भी एक अपने आप में अपराध ही है सिंगर के लिए, यानी उसे गीत याद होना चाहिए। हम देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो उसमें सामने मोबाइल लेके और गाना शुरू कर दिया, तो वो गाना जो है वो गाना नहीं होता। बल्कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम और आप दोनों मिलके सबको कहना चाहेंगे कि गाना ऐसा होना चाहिए जो आपको याद हो। आप उसको देख रहे हैं तो उसको बांच रही है, उसको पढ़ रही हैं, उसको पढ़ के आप सुना रही हैं। जैसे चिट्ठी आई है तो चिट्ठी को आप पढ़ते हैं, लेटर को पढ़ते हैं, उसी तरह से वो पढ़ना नहीं है, रीड करना नहीं है, गाना है। उसमें अपनी आत्मा को, अपनी आवाज को मिला देना है, एक साम्य होना चाहिए। ऐसा यदि
1: जैसे कि किसी को सिर्फ गाना सुनने का शौक होता है
0: जी,
1: किसी को गाना गाके गाने का शौक होता है, किसी को सिर्फ गाने का शौक होता है।
0: बिल्कुल, तो कुछ होते हैं जिसको गाने सुनने का शौक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुनगुनाने का शौक होता है, कुछ ऐसा होता है उनको गाने का शौक होता है पर सुनाने का नहीं होता। अगर आप सुनाना चाहते हैं, अगर आप सच में एक सिंगर बनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो आपकी वॉइस में हमें ऐसा नहीं लगा कि आपने कहीं कोई चीज को छोड़ा है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी आवाज को पहचान दी है। तो आइए सुनते हैं आपका ये अगला सुरीला सॉन्ग जिसे आपने गाया है, यानी हमारी आज की सिंगर मेहमान शीतल वापरे, बहुत ही सुरीली आवाज की धनी है, इनकी आवाज ही अपने आप

जो ये दम चल के जो अचल भी डर के बताओ चले कोई कैसे संभल के अताओं की नरमी निगाहों की गर्मी से तल बिकले और बैठ के दिल बहुत से फंसाने बहुत से तराने सुनाने को आए हैं तेरे दीवाने बात साझा दिलों पे समझ तू है जाने जाने के मिल।

नन जानी राह में है तूने कहा में ये दिल जो मेरा है सच है कि तेरा से उजाला है वरना अंधेरा है तू है तो फिर क्या है क्यों मगर फिर भी मुझको ये तुझसे गिला है कि दोनों में अब तक ये क्यों फासला है ये दूरी मिटा दे ये पर्दे हटा दे कि अब एक हो जाए हम

0: जय हो पंचम।
1: आज मुलाकात है, होने को पहचान है, और सच में मुलाकात हम करवा रहे हैं आपकी पुणे महाराष्ट्र की शीतल वापरे। नई आवाज नई पहचान, पहली बार जयपुर रेडियो के इस मंच पर आना तो इनको पहले ही चाहिए था, लेकिन बहुत देर से आई। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये तो शीतल ही बताएंगी। शीतल क्या कहेंगी गीतों के बारे में और किस तरह के गीत आप पसंद करती हैं? जैसा कि आपने बताया कि आप भजन से आपने शुरुआत की, गणपति बप्पा के, और उसके बाद आपने कौन से गीत गुनगुनाए, फिर गाए, फिर हमें सुनाए, तो इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे?
2: आज तक मैंने बहुत बॉलीवुड सॉन्ग गाए, मराठी भी सॉन्ग गाए हैं, और हिंदी, तेलुगू और नेपाली भाषा में भी मैंने गीत गाया है।
1: अरे वाह।
2: लेकिन मैंने शो नहीं किया है, सिर्फ एक स्टार मेकर का ऐप है उसमें ही गाया है
1: जी।
2: और लेकिन मैं मराठी गाना बहुत पसंद करती हूँ, और मराठी, और मुझे गजल सॉन्ग भी पसंद है, मराठी में जो लावणी सॉन्ग है वो भी पसंद है, और ऐसा गाना गाना है कि जो उसमें वेरिएशन हो, जैसे कि अभी लेट श्रीमती आशा भोसले ने जी नहीं है हमारे यहाँ, तो उन्होंने जो जिस तरह से गाने गाए हैं वैसे गाने गाने की मैं इच्छा रखती हूँ।
1: तो मतलब ये कि आप एक वर्सटाइल सिंगर हैं, आपको कहा जा सकता है ना, आप पे ये मोहर लगाई जा सकती है कि आप हर तरह के गीत गा सकती हैं।
2: जिस जो भाषा मुझे अच्छी लगे, मधुर लगे
1: जी,
2: गुनगुनाती हूँ, तो अपने आप वो अब मन से उसको बोलना चाहिए कि हाँ मैं गा सकती, ये इस भाषा में मैं गा सकती हूँ। वैसे ही भाषा मैंने तेलुगु, नेपाली, तमिल में भी गाया है, लेकिन किसी को सुनाया नहीं अब तक अपने, मतलब
1: अब आपको, मेरे आपको मंच मिल गया है, अब आप सुनाइए और सुनाते रहिएगा। हमें तो आज मालूम हुआ कि आप तेलुगु, तमिल, नेपाली, मराठी, हिंदी और इतनी भाषाओं में गीत गाती हैं, और फिर इतनी लेट आती हैं, ये जो है ना गजब, अजब गजब बात है।
2: उनमें से तेलुगु और नेपाली भाषा बहुत फिट है, मतलब वो गाना गाने के लिए बहुत, मतलब ऐसे, मतलब हिंदी मराठी जैसा नहीं है, अपने आप मुंह में मुझे ओठों पे आ जाता है वो गाना, उसका जो शब्द है वो अपने आप आ जाता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, ये जो मराठी या नेपाली में या तेलुगु तमिल में गाना चाहते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा गाना, लेकिन आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं आपकी बात और सुनते हैं ये आपका एक अजब गजब गीत, रात अकेली है। आपने जो जिक्र किया कि हर तरह का चैलेंज आप स्वीकार करती हैं, तो इस गीत में देखते हैं आपकी आवाज़।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से।

0: कानों में कुछ कहूं और कहना है सब सुनने वालों को कि शीतल बहुत अच्छा गाती है। और शीतल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं पुणे महाराष्ट्र से और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान की हमारी आज की मेहमान को शीतल वापरे।
1: जी
0: क्या कहेंगे हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं लिसनर्स वो उनके मैसेज आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या सच में आपकी आज की सिंगर मेहमान की आवाज है। इस गीत को सुनने के बाद तो हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो उन प्रश्नों का आप ही उत्तर दीजिए और कौन कौन से सिंगर कौन कौन से सिंगर्स हैं जिनको आप गाती हैं लाइक करती हैं।
1: वैसे तो सबकी आवाज अच्छी है जैसे कि लता जी साधना आशा भोसले अलका याग्निक श्रेया घोषाल सोनू निगम एसपी बालसुब्रमण्यम और बहुत है लेकिन मुझे आशा जी की आवाज बहुत अच्छी लगती है और वो मेरी फेवरेट भी है थी और उसपे आडे जी का जो म्यूजिक है वो बहुत उनके म्यूजिक भी मैं पसंद करती हूँ सब म्यूजिक मुझे पसंद करती हूँ।
0: तो हमारी बात हुई थी मुकुंदा से और मुकुंदा जो गीत है उसको हम थोड़ा सा आपकी आवाज में वैसे सुनना चाहेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ ये शीतल की आवाज से मैच करता है।
1: लाइव में क्या?
0: हाँ लाइव जी थोड़ा सा गा के दो लाइनें गा के सुनाइए ताकि पता लगे जी हमारे सुनने वालों को यकीन हो जाए कि हाँ एक वर्सेटाइल सिंगर जो है हमारे आज इस मंच पर है हमारे साथ।
1: ये दशावतार फिल्म है तमिल में भी हुई थी और तेलुगु में भी हुई थी। कमल हसन उसके लीड हीरो है
0: जी
1: और असीम एक्टर्स है
0: जी।
1: तो मैं उनका जो गाना है

0: वाह आनंद आ गया मुकुंदा, आनंद देने वाला शीतल की आवाज शीतल सी हमने सुनी इस सुरीले सॉन्ग में। क्या कहें समझ में नहीं आता, हम निःशब्द हो गए, इतना सुरीला गान ये तो आपके अलावा कौन गा सकता है। क्या कहेंगे शीतल, आप गाने तो गाती हैं, सिंगिंग करती हैं, सिंगिंग की आज की हमारी मेहमान हैं, और सुनने वालों को बता दें कि आज नई आवाज नई पहचान में हमारे संग हमारे साथ हैं शीतल वापरे पुणे महाराष्ट्र से, बहुत ही सुरीली आवाज लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं। तो सिंगिंग के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके और क्या करती हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, रीडिंग भी करती हूँ और मुझे खाना बनाने का भी शौक है।
0: क्या क्या बना लेती हैं वैसे, आजकल तो बनाती नहीं है आजकल की महिलाएं,
1: सब,
0: तो
1: सब वेज नॉन वेज सब
0: बना लेती हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और गाना कितनी देर गाती हैं दिन में, आप कितना समय देती हैं गीत?
1: नहीं समय मिलता है वैसे गा लेती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब माइक में, मतलब कराओके मैं थोड़ा सा गाती हूँ अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से केजे यशुदास सिंगर है वो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो संगीत के इतिहास में सबसे महान गायकों में से वो माना जाता है। बहुत भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है, उनकी मधुर दिव्य आवाज को सम्मान में उन्हें गान गंधर्व मतलब स्वर्गीय आवाज कहते हैं, मराठी में कहते हैं कि देवांचा आवाज, ये उपाधि उन्हें मिली है। बहुत अच्छी तरह से मैंने उनके गाने भी सुने हैं, सदमा का जो गाना है रुमई अखियों से बहुत मुझे अच्छा लगता है।
0: बहुत ही
1: अपने पराए जो फिल्म है हिंदी, उसमें श्याम रंग रंगारे जो बंगाली थोड़ा सा सॉन्ग है लेकिन बंगाली म्यूजिक है उसमें
0: जी।
1: वो भी अच्छी लगती है।
0: आइए सुनते हैं
1: तुझे मेरे सुर में,
0: सदमा का ये सुरीला सॉन्ग जो आपने गाया है।

बदन में सांप चलते हैं तेरे बिना।

0: बहुत ही सुरीला प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। नई आवाज, नई पहचान, और हमारा मन नहीं करता कि हम इस प्रोग्राम को ब्रेक करें, लेकिन समय जो है वो कहता है कि आखिरी गीत सुन लिया जाए। तो शीतल हमारे साथ हैं। शीतल, सुन ले हम, इजाजत है आपकी इस गीत के लिए?
1: जी जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग, मार गई मुझे तेरी जुदाई, और उसके बाद शीतल क्या कहेंगी वो इस गीत के बाद हम सुनेंगे।

0: और समय ने अंगड़ाई ले ली है, फिर भी हम शीतल को कहेंगे कि जाते जाते चलते चलते क्या कहेंगी आप?
1: मैं बचपन से गाती हूँ, लेकिन कभी इतने लाइमलाइट में नहीं रही। यूं ही दोस्तों के बीच और रिश्तेदारों के बीच। मैं मुंबई में रहती थी, शादी के बाद पुणे आई। कुछ साल बाद मुझे ये स्टेज शो करने का अवसर मिला, स्टूडियो में गाने का मौका मिला
0: जी।
1: मैंने करोके शो भी किए, चैरिटी शो भी किया, मध्य प्रदेश के रेडियो प्रोग्राम में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था दो साल पहले
0: जी।
1: और ये सब करने के लिए मेरे पति ने बहुत मुझे सपोर्ट किया,
0: वेरी गुड।
1: उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू संजय, क्योंकि हर किसी को इतना मोरल सपोर्ट नहीं मिलता घर से।
0: बिल्कुल, और नहीं मिलता तो फिर वो नहीं कर सकता और
1: नहीं कर सकते। उनके सपोर्ट के बिना मैं कर भी नहीं सकती।
0: बिल्कुल,
1: उनको भी गाना, उनके उनको गाना गाना नहीं आता, लेकिन वो गाना पसंद करते हैं, मेरा गाना सुनते हैं, और मुझे वो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताते भी है
0: कि इसको यहाँ से ठीक,
1: हाँ बराबर, यहाँ से ठीक करो, वहाँ से ठीक करो, क्योंकि पहला गाना मैं उनको ही सुनाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
1: वो बोलते मुझे ये सजा क्यों, लेकिन आप ने मुझे चांस दिया तो आप ही मेरा गाना सुनेंगे पहले।
0: ये सजा नहीं है, ये तो सजा नहीं क्योंकि ये तो मजा है संगीत का।
1: ये प्यार है।
0: ये प्यार भी है और ये संगीत का मजा भी है, तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
1: सर आपको भी धन्यवाद,
0: हमारे को मेरे लिए प्रोग्राम, हमारा धन्यवाद तो हमारे श्रोता देंगे हमें, और आप आई इस मंच पे और हमारे साथ इतनी बातचीत की, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्रिया कहेंगे, आभार कहेंगे, नमस्कार कहेंगे और इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। बहुत धन्यवाद शीतल वापरे, हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से रही, प्रोग्राम नई आवाज नई पहचान में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं गीता दर्शन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। अभिव्यक्ति का आंचल, और इस क्रम में आज हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश की सोनम उपाध्याय नोमी। सोनम जी जो हैं वो एक अच्छी रचनाकार हैं और कविताएं लिखती हैं, चिंतक है, विचारशील हैं, और बचपन से लेके अब तक जो भी अनुभव आपने अपने विचारों में शब्दों के द्वारा उतारे हैं वो कविताएं बन गईं, और उन्हीं के माध्यम से आज देश विदेश में अपना नाम और अपनी रचनाएं पहुंचा रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर हमारे साथ सोनम उपाध्याय नोमी हैं। जी हाँ सोनम जी, वेलकम है आपका, स्वागत है, अभिनंदन है, और आपके बारे में जितना हम जानते थे वो तो हमने परोस दिया है हमारे श्रोताओं के समक्ष। अब आप बताएं और रूबरू हैं आप हमारे श्रोताओं से।
2: नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत आभार, और इतना अच्छा अवसर आज मुझे मिला है कि मैं अपनी भावनाएं आप सभी के सामने अभिव्यक्त कर सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता बहुत ही अच्छा माध्यम है अपने मन की भावनाएं, देश के प्रति अपनी भावनाएं, किसी रिश्ते के प्रति आप क्या सोचते हैं उसे व्यक्त करने का। और कविता एक अलग ही तरह का सुकून आत्मा को देती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कविता शब्द है और शब्द एक सुकून जैसा काम करता है। जब कोई भी व्यक्ति हताश महसूस करता है और कुछ शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे कह दिए जाते हैं कि उससे एक सुरक्षा का भाव निर्मित होता है, एक आकांक्षा फिर से पैदा होती है, एक आशा मिलती है किसी व्यक्ति को। और मुझे ऐसा लगता है कि कविता सबसे अच्छा माध्यम है, उसका सबसे सशक्त माध्यम है, और आज के समय में साहित्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हर व्यक्ति को।
0: तो कविता के बारे में आपने कहा कि अपने को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है कविता रचना। और सोनम हमारे साथ हैं, नाम सोनम है आपका, और सोने का भाव तो आजकल बहुत ज्यादा उछाल खा रहे हैं तो ये सोनम और उपाध्याय और उसके बाद नोमी, तो इनका क्या सामंजस्य है, जरा हमारे श्रोताओं को इसकी व्याख्या करके बताएंगे।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: कहाँ रहती हैं सोनम? कहाँ रहती
2: हूँ? इंदौर रहती हूँ, इंदौर में रहती हूँ
0: जी। भारत का दिल है ना
2: जी? बिल्कुल। और दिल हमेशा भावनाओं से घिरा रहता है, उसमें दिमाग बहुत कम काम करता है और दिल बहुत ही ज्यादा भावुक होता है।
0: तो आज
2: ऐसा लगता है कि शायद
0: आज से हमें भी रख लीजिए और हमारे जयपुर रेडियो को भी रख लीजिए अपने दिल में।
2: बिल्कुल जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, जरा सी जगह दीजिएगा जी।
2: हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। और सोनम मेरा नाम है और नौमी मेरी बेटी का नाम है, नौमी का नाम है उसका, घर का नाम नौमी है। मेरी इंस्पिरेशन है वो, मुझे बहुत इंस्पायर करती है, तो मैं उसको एक देवी के रूप में अपने जीवन का हिस्सा मानती हूँ, तो उसी के लिए मैंने अपने नाम के आगे नौमी लगाया है।
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये एक ऐसा उदाहरण है जो अपने आप में अनूठा है। बहुत लोग अपने पति का नाम लगाते हैं या पिता का नाम लगाते हैं, पर आपने उस देवी का जो इस सृष्टि की वृद्धि में आपके साथ बढ़ रही हैं और आपकी देखरेख में बढ़ रही हैं, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस नाम का, कि इस तरह से भी लोग सोचते हैं और उस सोच को सच में अपनी प्रक्रियाओं में कार्यशैली में ढालते हैं। ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। तो सोनम जी, कविता के बारे में आपने बताया, रचनाओं के बारे में बताया, कविता और रचनाओं के अलावा भी आप किसी क्षेत्र में अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं, चित्रकारी में या कहीं लेखन में, चिंतन में, किसी और दिशा में, खेल कूद में, इसके बारे में बताएंगे?
2: हाँ जी बिल्कुल, मेरा बहुत ज्यादा लगाव बचपन से ही रहा है साहित्य को लेके, कला को लेके। हमारे देश का, हमारे देश की जो धरोहर है, जो हमारे देश का इतिहास है, इतना स्वर्णिम इतिहास है, तो जो हमारे पूर्वज हैं इतने ज्यादा वीर रहे, इतने कलाकार हमारे देश में हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे बताने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में कैसी कैसी विभूतियों ने जन्म लिया है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो कलाकार होते हैं वो भगवान के सबसे प्रिय बच्चे होते हैं, मतलब भगवान कभी भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में, लेकिन जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको वो कलाकार बना देते हैं, क्योंकि भगवान भी सृजन करते हैं, सृष्टि का सृजन किया है, हम सबका सृजन किया, और एक कलाकार भी सृजन करता है दिन प्रतिदिन। तो ये सोच है मेरी, और कहीं कभी किसी कोने में किसी हताश व्यक्ति, किसी निराश व्यक्ति को अगर हमारी कविताएं, हमारे शब्द, हमारी रचना के माध्यम से जीवन फिर से जीने की एक दिशा अगर मिल जाए, तो हमारा लिखना अभिभूत हो जाता है, हमारा लिखना सार्थक हो जाता है।
0: बहुत ही सुरीली और सजीव सोच है आपकी, और इसी का परिदृश्य आपकी कविताओं में देखने को मिलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो हो जाए एक रचना आपकी अपनी जुबानी सोनम।
2: मेरी बहुत उपाध्याय, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बहुत ही प्यारी रचना है और कई लोगों को पसंद आती है, कई स्टेजेस पर मैं हमेशा यही सुनाती हूँ सबसे पहले। तो ये इस तरह से है कि यू ना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, कि यू ना मायूस होकर आंसू बहाते रहिए, और उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब।
2: और आशा नहीं है, धन्यवाद, आशा नहीं है यू गर्दिशों को झेल पाना, आशा नहीं है यू गर्दिशों को झेल पाना, फिर भी मुश्किलों के आगे नहीं सिर झुकाते रहिए, और जो तूफान में भी साहिल को, और जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, जो तूफान में भी कश्ती को साहिल तक ले जाए, उस माझी से हिम्मत का गीत गुनगुनाते रहिए, उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए।
0: उम्मीद का नाम है जिंदगी, जरा मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराते मुस्कुराते आपने ये सजीव सी, सजीली सी कविताएं सुनाई, जो जीवन का दर्शन भी है और जीने के ढंग को प्रतिपादित करती है आपकी रचना। बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई हमारे श्रोताओं को। अब आगे बढ़ते हैं इस बातचीत में और जानना चाहेंगे कि आप कौन से रचनाकारों को पसंद करती हैं, किन कवियों को, कवित्रियों को, किन को सबसे ज्यादा लाइक करती हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद के लेखन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
0: यथार्थ लेखन और बिल्कुल
2: हम इसके अलावा जो निराला जी हैं, समय बिल्कुल कम पड़ जाएगा और जी बिल्कुल, और परसाई जी हुए, हरिवंश राय जी हुए
0: जी,
2: जिनके जितनी मतलब जितने मैं नाम लूं उतने कम है। सब जब भी लेखन मेरे सामने आता है, अभी कुछ नवीन लेखन भी बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात भेजे हुए फरिश्ते हैं सब। जितना पढ़ा जाए उतना डेप्थ, मतलब इतनी गंभीरता, इतनी गहराई कि जब इन्हें पढ़ा जाता है, इनकी रचनाओं को, तो ऐसा लगता है कि आपके सामने सब कुछ चल रहा है, चित्रण बिल्कुल आपके सामने होता है और वही असली कविता है, मुझे ऐसा लगता है।
0: संस्कृत आपके सामने बहुत, बहुत सही बात आपने कही। और जो भी पढ़ता है ना, जैसे आपने पढ़ी तो आपके समक्ष एक एक परिकल्पना आपके दिमाग में एक नई सी फिल्म बनेगी, और दूसरा पढ़ेगा उसके दिमाग में उसके सोच उसके शब्दों के अनुकूल दूसरी रचना और दूसरा दृश्य परिदृश्य होगा, और तीसरा पढ़ेगा तो उसी रचना का एक तीसरा परिदृश्य होगा। इसी तरह से निरंतर बहुत सारी कल्पनाएं जो हैं वो सृजित होती हैं। और निराला जी की आपने बात की तो निराला जी की एक कविता मुझे याद आ रही है, सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया, किसले वसना नवल वय लतिका मिली मधु तरु अरी पतिका। यानी लता और तरु जो है, वृक्ष और लता जो आपस में मिले हुए हैं, उसका इतना सुंदर कोमल दृश्य बनता है उस रचना को पढ़ के। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि वसंत ऋतु है और इस ऋतु में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपने आप ही अनुकूल हो गया है मौसम के, प्रकृति के। और आपने जिन रचनाकारों का नाम लिया है वो सच में अमूल्य है, और उनकी रचनाएं जो हैं हमारे जीवन के लिए सच में मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उन रचनाओं को हम हमेशा याद रख सकते हैं और उनको जी सकते हैं, और जिंदा रहने की ताकत उनमें रहती है। तो ये तो रचनाकारों की बात हुई, देश के राष्ट्रवीरों की, राष्ट्रभक्तों की बात भी कर ली ही जाए, क्योंकि आप एक विचारशील हैं।
2: जी बिल्कुल मैं लिखती हूँ, जी बिल्कुल मैं लिखती हूँ, और जब भी लिखने बैठती हूँ तो अपने माता पिता, मेरी बेटी, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, अनमोल दोस्ती, और सबसे पहले मुझे अपने वीर सैनिकों की ही याद आती है कि इनसे ज्यादा किसी और के बारे में क्या लिखा जा सकता है। तो बहुत ही मेरी एक भावुक कर देने वाली रचना है, जो मैं जब भी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ अपने जब पुराने वीडियोस, तो मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं रो भी देती हूँ।
0: संवेदनशील
2: तो इस तरह से है जी। इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, कि कभी सोचा है कि हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, और देश की रक्षा के लिए लाल रंग से नहा जाते होंगे, कि कभी सोचा है, और पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी, पिचकारी के नाम पे सिर्फ गोलियां आती होंगी, और गुब्बारों के नाम पे सिर्फ बम खाते होंगे, कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे, और याद तक नहीं होगा उन्हें कि कब परिवार के साथ होली मनाई है, याद तक नहीं होगा कि कब परिवार के साथ होली जलाई है, और परिवार की याद में पल पल कितना जल जाया करते होंगे, कभी सोचा है, और अपनी बेटी का खत पढ़कर आंखें नम हो जाया करती होंगी, कागज पे गिरा आंसू सूख जाता होगा, लेकिन पलकों पे अटका आंसू कहाँ छुपाते होंगे, कि कभी सोचा है हमारे वीर सैनिक कैसे होली मनाते होंगे।
0: वाह, क्या चित्रण किया है, और सोच को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है आपने। सोचते तो सभी हैं, लेकिन आपकी जो रचना है वो हर सुनने वाले को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, विवश कर दिया है, और सच में ये सोचना बहुत जरूरी है। और होली को आपने कहाँ जाके किस तरह से संयुक्त किया है, जोड़ा है और उसको अभिव्यक्त किया है, ये निर्ले ही बिरले ही लोग कर पाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये रही, और सच में यथार्थ का बोध कराने वाली, क्योंकि हम घरों में बैठ के पेन कागज पर कितने भी संवेदनशील हों सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन एक कठोर यथार्थ का सामना हमारे सैनिक, हमारे वीर सैनिक, हमारे राष्ट्र के रक्षक करते हैं। और इस ओर आपने सोचा और इसको बयां किया अपनी रचना के माध्यम से, ये बहुत ही खूबसूरत रचना है सच में। आगे बढ़ते हैं और हमने तो आपको देखा नहीं है, सिर्फ बातों में ही देखा है और बातों से बहुत सारा जो रूप स्वरूप और अभिव्यक्त होता है वो आईना है, तो कुछ और बताएं अपने बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, और कब से आपने लिखना शुरू किया। श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल और हमारे संग हैं, हमारे साथ हैं सोनम उपाध्याय इंदौर एमपी से।
2: जी बिल्कुल, बचपन से ही लिखती हूँ मैं। माता पिता को बहुत ज्यादा साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान भी था, मम्मी पापा को सुनते देखा घर में, संगीत वाला भी माहौल था, तो धीरे धीरे पता नहीं कब ऐसे चला, नहीं पता कि कब मेरा भी लेखन के प्रति, मैं लिखने लगी, पढ़ने लगी साहित्य और पेपर कटिंग। उस टाइम पे पेपर में रचनाएं आती थी, तो आज तक मेरे पास, मैंने संभाल के रखी है वो पेपर कटिंग्स। और जब सबसे पहले मुझे ऐसी मेरे मन में भावना आई कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना शुरू किया। शायद मैं सेवेंथ या एट्थ क्लास में थी उस समय, तो सातवीं आठवीं कक्षा से शुरू कर दिया था लिखना। जी, फिर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है, कुछ वाद विवाद है, तो उसमें थोड़ा कुछ अपनी लाइंस ऐड कर दी। फिर जब युवा उत्सव हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां फिर समय के साथ ऐसा अवसर हमेशा प्राप्त होता गया कि मेरी रचनाएं बाहर आती गई और फिर लोगों से इतना प्यार मिला। तो असली हकदार जो मेरे क्या बोलूं मैं आपको, मेरे मित्र कह लीजिए, मेरे परिवार वाले कह लीजिए, समाज, तो हमेशा उन्होंने मेरी रचना को सराहा, तो मुझे वो प्रोत्साहन मिला कि मैं कुछ सही कर रही हूँ। और आज भी अगर मैं अपनी रचना नहीं लिखती हूँ कुछ नया, तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं या परिवार वाले हैं, तो वो पूछते हैं कि नया क्या लिखा है इस बार, तो धीरे धीरे धीरे बढ़ता गया।
0: तो वो पहली रचना जो आपने बड़ी संकुचाते हुए बोली होगी कि सुनकर लोग क्या कहेंगे, वो यदि याद हो तो हम सुनना चाहेंगे।
2: हाँ, बहुत ज्यादा याद नहीं है, पर वो ऐसा था कि एक प्यारा निराला ख्वाब मैंने देखा था, एक ये थी। और इसके पहले मुझे ऐसा याद है कि मैंने माँ के बारे में लिखा था कि जिसे प्रथम बार देखा वो माँ थी, जिसे प्रथम बार छुआ वो माँ थी, ऐसा पूरा कुछ सीरीज है उसमें जी। और फिर उसका कंक्लूजन मैंने ऐसे किया है, जिसे पहली बार महसूस किया वो माँ थी, जिन्होंने पहली बार चलना सिखाया, जिन्होंने पहली बार अपना हाथ बढ़ाया वो माँ थी, और समय के साथ धीरे धीरे आभास हुआ कि वो माँ नहीं, माँ के रूप में ईश्वर की मुझ पे कृपा थी, ईश्वर की मुझ पे दया थी। ये पहली कविता
0: बहुत ही खूबसूरत रचना, वो पहली रचना जो अनुभूत करती है हमारे को ईश्वर के साथ जोड़ती है, इससे बड़ी और इससे घनत्व वाली कविता हो नहीं सकती। जिसमें माँ हो उसमें सब कुछ होता है, पूरी सृष्टि, पूरा संसार। तो इसके अलावा आप कोई रचना हमें और सुनाना चाहेंगे?
2: हाँ जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को, नारी शक्ति को समर्पित मेरी कविता, मातृशक्ति को समर्पित। कि आप खुद भी अगर सोचेंगे तो आपको कई ऐसी नारियां अपने जीवन में दिखेंगी, आपकी बहन, माँ, आपकी कई दोस्त, पत्नी, कोई भी, आपकी बेटी की कितनी शक्ति है उनमें कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं, कि उसने कुछ इस कदर संभाला है खुद को जैसे कभी किसी ने संभाला ही नहीं। और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो, और इस तरह बेखौफ दौड़ रही है वो जैसे उसके पैरों में कोई छाला ही नहीं। कितना जागी है वो, कि कितना जागी है वो तुम्हें रातों रात सुलाने में, कितना भागी है वो, कितना भागी है वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने में, और बिखरती रही ताकि तुम्हें जोड़ सके, और किसी में हिम्मत नहीं कि मेरी माँ का हौसला तोड़ सके। और सुबह से जोड़ा बांधा है, सुबह से जोड़ा बांधा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जोड़ा बांधने का जो प्रक्रिया है कि वो अपने सारे सपने अपने आप को समेट के, ना मतलब ऐसे जैसे युद्ध पे कोई जाता है, अपने आप को पूरा समेट के, अपना सर्वस्व परिवार के लिए,
0: अपनी सारी जो, जी अपने, जी उनको बांध लिया
2: उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल बांध लिया है कि सुबह से जूड़ा बांधा है, वो बाल बनाना भूल गई, इतना मुझ में उलझ गई, कहीं आना जाना भूल गई, और बिन काले काजल के बिन उसकी आंखें काली है और चूल्हे में तपी है वो, तभी आज मनी दिवाली है, और किया ही क्या है मेरे लिए, तुम तनक कर बोल गए, वो उस मंदिर की देवी है जहाँ तुम दीप जलाना भूल गए।
0: सच में रोने का मन करता है, सच में इतनी इतनी अनुभूत परख जो है आपकी रचना के, आपने सच में बिल्कुल स्पर्श किया है, छू लिया है माँ के दिल को, आपने सच में छू लिया है, और सच में ऐसा अनुभव, ऐसा ऐसी प्रेरणा जो है वो सच में दिल से ही आती है और दिल से ही जागती है और दिल से ही बोलती है। बहुत सुरीली सजीली रचना आपने हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाई। आप बात कर रही थी कि संगीत और साहित्य से आपके परिवार का रिश्ता रहा है, तो कहीं आप भी संगीत से जुड़ी कुछ गाती हैं? और
2: हाँ जी, मेरे परदादा जी के पास सारे वाद्य यंत्र हुआ करते थे, तो पिताजी ने मुझे बताया, हमेशा बताते थे वो, कि बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड, जिसको कहते हैं हम लोग, कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, कला साहित्य प्रकृति प्रभु हमारी संस्कृति हमारी ईश्वर में भक्ति जिसको कह लीजिए, आस्था कह लीजिए, तो जो एक सही इंसान जो होता है, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल फूल जिसे कहा जाता है कुछ इमोशनल लोगों को
0: आजकल, ये मुझे
2: हाँ जी बिल्कुल है हर आर्टिस्ट होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा इंसान वही है जो भावनाओं से भरा हुआ है, और जो भावना से भरा नहीं है वो पत्थर है। तो सही इंसान होने की पहली शर्त है कि आप में भावनाएं हो, आप उसको कितना ही मैनिपुलेट कर दें आज के समय में, लेकिन भावनाएं आपको ईश्वर प्रदत्त है, वो आपकी कला ईश्वर प्रदत्त है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फूल्स हैं, तो बोलते ना कि भोले का भगवान होता है, तो भगवान सबसे पहले भोले लोगों को ही मिलने वाले हैं।
0: बहुत सही बात कही आपने। और कौन से गीत संगीत सुनते हैं आजकल जो चल रहे हैं, पुराने वाले जो गीत हैं उसमें आप?
2: सुकून तो पुराने वाले ही जो बोल है, जो हाँ जी बिल्कुल रूट जिसको बोलते हैं, कि जड़े तो वही है हमारी, शास्त्रीय संगीत में मुझे पसंद है। बाकी पुराने जितने भी सारे गाने हैं हमारे, किशोरदा की आवाज ले लीजिए आप, लता जी ले लीजिए, तो वो तो रफी साहब, तो इनका तो मतलब कोई सानी ही नहीं है।
0: तो कभी कभी बड़ी ही होंगे सारे गाने, थोड़ी सी दो लाइन आप गा के सुनाएंगे हमें?
2: मुझे ऐसा लगता है कि मैं गा अच्छा नहीं सकती हूँ।
0: नहीं, वो तो सबको लगता है, पर वो दो लाइन जो है जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो जरूर हम सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि आपकी पसंद संगीत में कैसी है, वो भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
2: कोशिश करती हूँ मैं
0: जी,
2: और मैं बहुत इसको गुनगुनाती हूँ जब भी मन होता है मेरा।
0: हाँ,
2: कोई किसी की मुस्कुरा हटो पे हो नसा, किसी का दर्द मिल सके तो ले, उधर बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। जीने का जो दर्शन है, जीने का जो कला है, वो इस गीत के माध्यम से है, और इसीलिए आप एक अच्छी रचनाकार हैं, कवयित्री हैं, और संवेदनशील हैं प्रकृति को और उसके आसपास, जहां इन पांच तत्वों में हम जीते हैं उनको आप सच में स्पर्श करती हैं, हमारी सांसें उनको छूती हैं, और इसीलिए आप इतनी अच्छी रचनाएं लिखती हैं। तो
2: धन्यवाद,
0: एक रचना चलते चलते और हो जाए तो
2: मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके माध्यम से अपनी ये कविता कई दिलों तक पहुंचा पाऊंगी, और आप ये समझ लीजिए कि ये वो कविता है कि ईश्वर आपसे क्या कह रहा है, कि आप कौन है, ये हर व्यक्ति के हृदय तक जाएगी। तो ईश्वर ये कहते हैं कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो, कि तुम कौन हो, कि तुम असीम अनंत ऊंचाइयों वाला आकाश हो, कि तुम जीवन के अंधेरों को चीरता सा प्रकाश हो, कि तुम ज्ञान से, तुम कर्म से, तुम अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण से और तुम अपने हाथों की लकीरों से कई आगे निकल चुका भाग हो, और तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत, तुम सुंदर चमकीले रंगों से लिखना अपनी किस्मत, हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, हीरा हो तुम, सिर्फ जौहरी ही समझेगा तुम्हारी कीमत। और सुनिए कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं
0: जी।
2: श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम निज फल की इच्छा त्याग, सिर्फ कर्म ही करते रहना, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, कर्म ही तुम्हारा कर्म है, तुम जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना, कर्म करते रहना।
0: अद्भुत अनुपम
2: सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत प्रेरणाप्रद है आपकी ये रचना। और सच में सारी रचनाएं और सारी बातचीत भी सुनने वाले का उत्साह, हौसला और ज्ञान में, उसके सुजान में वृद्धि करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में, यदि हमसे कुछ छूट गया हो तो आप बताना चाहें तो आपका वेलकम है।
2: बस यही संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ कि इस दुनिया में जहाँ किसी को किसी के लिए वक्त नहीं, हमें सबके लिए वक्त निकालना चाहिए। और एक कविता ऐसे ही मैंने लिख दी थी, आधी आधी सी याद है मुझे, कि तुम समंदर से भी गर्जा मिलो। सो ऐसा था कि आप अपनी प्योरिटी मत छोड़िए, आप अपनी वास्तविकता मत छोड़िए, कि कितना धुआं धुआं, कि कितना धुआं धुआं, इस धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम, इतने धुएं धुएं में निश्चल आसमां रहना तुम। और समंदर से भी अगर जा मिलो, समंदर से भी यदि जा मिलो, तो भी नदी की पावन मुस्कान रहना तुम। और दिखावट, बनावट, छलावट वाली इस दुनिया में तुम वो बनना कि एक आदमी तुमसे हंसकर गले मिल सके, एक आदमी तुमसे गले मिलकर रो सके, कम से कम इतने तो इंसान रहना तुम, इतने तो इंसान रहना तुम। ऐसी एक कविता है मेरी,
0: बहुत बहुत
2: मुझे याद आ गई,
0: बहुत ही मानवीय धरातल को संभालती ये रचना है। और सच में हमें ऐसा ही बनना चाहिए कि हम बेबाक, बेलाग, बेलौंस किसी से मानवीय धरातल पर गले मिल सकें, हक कर सकें उसे, और
2: जी,
0: अपने सुख दुख को शेयर कर सकें। तभी तो मानव मानव के लिए है, और तभी ये संसार है, ये दुनिया है और ये कायनात है।
2: बिल्कुल जी, जी।
0: बहुत अच्छा लगा। सोनम उपाध्याय नौमी हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अभिव्यक्ति का आंचल। हम तो बीच में बताना ही भूल गए कि हमारे श्रोता क्या सुन रहे हैं, किस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद सोनम जी आपका,
2: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इस खूबसूरत बातचीत के बाद आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग।

0: श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम अभिव्यक्ति का आंचल, और इस प्रोग्राम में हमारी आज की मेहमान रही सोनम उपाध्याय नौमी। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: स्वागत है दोस्तों आपका जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान के वीकली शो लफ्जों की गुजारिश में। मैं आपकी होस्ट रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ। एक जमाना था बहुत बहुत बहुत युग पहले, जब हमारे देश में लड़का और लड़की के बीच अपार्थेड से भी कट्टर सेग्रीगेशन था। मिलना नामुमकिन, इजाजत के बिना घर से निकलना नियायती मुश्किल, और इसीलिए बाय चांस भी ओपोजिट जेंडर की नाक हाथ कान आंख कुछ भी दिख जाए मोहब्बत अनिवार्य थी। केस इन पॉइंट, मेरे महबूब तुम्हें मोहब्बत की कसम, सर से बुरखे में ढकी लड़की की आंखें और तेरी मरमरी हाथों को छुआ था मैंने, वाज क्वाइट इनफ फॉर लाइफ लॉन्ग इश्मुश। उसके बाद जमाना बदला, सिनेमा बदला, थोड़े ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस और बढ़े। अमेरिका से चाचा जी कुछ इंग्लिश मूवीज के वीएचएस टेप्स जो लाते थे, ग्रीस से लेके घोस्ट से लेके टॉप गन तक सब देख ली, और दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खुल गए। तब तक माँ बाप हल्के प्रोग्रेसिव टाइप हो गए थे, या उनको होना पड़ गया था। तो सडनली इट वॉज ओके टू मीट अ फ्रेंड ऑफ द ओपोजिट सेक्स फॉर कॉफी, स्वीट कॉर्न सूप 1/2 या सड़क वाली चाउमीन वगैरह वगैरह। पर तब भी ये तो तय था, ग्रुप में मिल रहे हो तो अलग बात है, मिक्स्ड जेंडर फ्रेंडशिप काफी नॉर्मल सी बात हो गई थी तब तक। बट अकेले वन ऑन वन अगर मिल रहे हो तो फिर बेबी लोग बाबा लोग उस मुलाकात को कुछ खास मुलाकात कहेंगे। हमारे आज का एपिसोड है मुलाकात किससे कब कहां, ये बताने आ रहे हैं मेरे आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के खजाने से मेरे कोहिनूर। सुनते हैं हमारा आज का पहला नगमा संतोष जी और सीमा जी से।

लता मंगेशकर, खयाम, नक्श लैलपुरी है ना क्लासिक बुलसाई, रोमांटिक रेट्रो हिट भी, मासूम भी है, विकेट भी है, मेलोडियस भी है, अपबीट भी है, जेंटल भी है, नॉटी भी है। उफ, सच सच बताइए, दिल पे हाथ रख के, बिना खुद से झूठ बोले, बिना वो सबसे अच्छा बच्चा वाला हेलो स्विच ऑन करके, बिल्कुल बिना किसी झूठ के, ये बताइए वो कौन सा चेहरा है जिसे आप सबसे पहले देखना चाहेंगे, वो कौन सा इंसान है जिससे आप सबसे पहले मिलना चाहेंगे, इस जिंदगी के भागम भाग से दूर भाग के। ओए हैंग ऑन, आई डिडंट से शुड मीट, मीट टू मीट, ऑट टू मीट और मस्ट मीट, आई सेड वांट टू मीट। मुझे भी पता है, जैसे ही हम अपने बायो बबल यानी कि इस मास से बिल्कुल दूर हट जाएंगे, अनिवार्य है हमें इन सब से मिलना, चाहे फिर वो क्यों ना हो, काम की खातिर, जिम्मेदारियों की खातिर, आउट ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, कंपल्शन। पर वो है कौन जिनसे सबसे पहले आप मिलना चाहोगे, हो सकता है मिलना मुमकिन भी ना हो या डेफर करनी पड़े दूसरी प्रायोरिटीज के आगे, पर दिल में कौन सा चेहरा है ये तो बताइए। आइए सुनते हैं अगला गीत, जय सरकार और पूर्णा की मधुर आवाज।

या इंटरनेशनल फ्लाइट की दूरी पे भी हो तो हम मिलने का पूरा प्रयास करते हैं। पॉइंट ये है, अगर मिलना मुनासिब है तो अधिकतर लोग वो एफर्ट जरूर करते हैं। एंड स्पेशली आफ्टर टाइम लाइक दिस व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड बाय आवर ओन मोर्टैलिटी वी विल डेफिनेटली गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू मीट द वन वी लव।

गाना सुना रहे थे आपको राहुल और गायत्री अपनी मधुर आवाज में। कीजिए कीजिए मिस कीजिए उन्हें जिनसे मिलने की इच्छा है पर क्षमता नहीं। क्या आप उसी सोच शंका शको शुभा में घुसे हुए हैं आप कि तब मिलेंगे ऐसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उनकी जिंदगी कहीं दूर और मेरी कहीं और। वैसे तो बातचीत हालचाल पूछना सब होता ही है दूर से, हैप्पी बर्थडे से हैप्पी दिवाली तक, कभी स्टिकर वाली विश तो कभी मोटिवेशनल फॉरवर्ड। फेसबुक से तो सब पता चल ही जाता है कि उधर सब ठीक ठाक है, उनके हाल अच्छे हैं, खुश हैं, मामला अंडर कंट्रोल है। तो फिर आप क्यों अंडर कंट्रोल है उस मुलाकात के लिए? वर्क फ्रॉम होम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, होम स्कूलिंग, न्यूज फीड, ऑनलाइन चैलेंजेस, कुकिंग क्लीनिंग, 50 मिनट्स वर्कआउट, ईट रिपीट, म्यूजिक एप्स, वेब सीरीज मूवीज, बिंजिंग, गेमिंग एप्स के बीच में भी उस मुलाकात का ख्याल आता है। सुनाने आ रहे हैं हमारा ये अगला गाना श्रीपद और विद्या अपनी सुरीली आवाज।

0: रहेगा ना?
1: बिल्कुल। यादों और वादों की एक किताब रखूंगा।
0: देखो भूलना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं।

ख्याली पुलाव तो पक्के बिरयानी बन चुकी है। मन है कि जा बसा है अनजान के नगर में, कुछ खोजता है पागल खोए हुए डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बिचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। लिखा शैलेंद्र ने, लेकिन कोस आप रहे हैं कि हाउ डज दिस पोएट लिरिसिस्ट डू इट एवरी टाइम रीच इनटू योर हार्ट एंड क्रश योर इमोशंस इनटू इंक। सुनते हैं हमारा आज का ये आखिरी गाना कविता और अजय जी से।

मुलाकात का आज आया कैसे। ऐसा नहीं कि सबका सीक्रेट है या सबके मन में है, पर यह हकीकत है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस के समय हमारे जहन में कई बार ऐसी यादें, ऐसी बातें और ऐसे लोग आते हैं जो उन उम्र नहीं आते, नीचे कहीं मन की गहराई में दबे रहते हैं। और जब हम इतने मसरूफ होते हैं, हर वक्त लोगों की भीड़ में नहीं होते, क्यूबिकल से कैबिन, कैबिन से कॉफी मशीन, लिफ्ट से पार्किंग लॉट, पार्किंग से ट्रैफिक, इन सब एक्टिविटीज ट्रैप में नहीं होते, तो हम निहत्ते होते हैं खुद ही के सामने। कल की मुलाकात का वादा करते हुए आज इजाजत लेती हूँ मैं आपसे रति भार्गव अपने आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के कलाकारों के साथ।

0: ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी मुस्कान जितनी खूबसूरत है उतना ही सुरीला है उनका सफर। उत्तर प्रदेश की नवाबी नगरी लखनऊ से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफर, एक सफल प्रोफेशनल, एक समर्पित गृहिणी और सबसे बढ़कर संगीत से दिल की गहराइयों तक जुड़ी हुई एक प्यारी सी गायिका। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हम आज की विशेष अतिथि मुंबई से, मिनाली लाल जी का। मिनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो की स्टूडियो में। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा।
2: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी और जगदीश जी, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप लोग के संपर्क में आई, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने आप को, अपने बारे में, अपने संगीत के प्रेम को आपके सामने संपर्क दे सकती हूँ।
1: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बेताब हैं इतनी प्यारी गायिका के गीत और उनके जीवन के सफर के बारे में सुनने के लिए। तो मिनाली जी, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो लखनऊ की गलियों से मुंबई तक का जो आपका खूबसूरत सफर रहा है वो कैसा रहा है? क्या कोई आज भी लखनऊ की कोई ऐसी याद है जो आपके दिल के बेहद करीब हो?
2: लखनऊ से मुंबई तक का सफर मेरे लिए तो एक सीख, संघर्ष और नए अवसरों से भरा रहा। लखनऊ ने मुझे संस्कार, अपनापन और बहुत कुछ सिखाया, जबकि मुंबई ने मुझे बड़े बड़े सपने देखने के लिए एक जगह दिया, उन्हें पूरा करने का एक हौसला दिया, और दोनों शहरों ने मेरी जिंदगी को एक अलग अलग तरीके से समृद्ध किया है।
1: जी,
2: अगर लखनऊ की सबसे प्यारी याद की बात करो तो मुझे वहाँ का अपनापन, परिवार के साथ बिताया मेरा बचपन, मेरे कॉलेज डेज, शाम की गंजिंग की सैर जो वहाँ का बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ हर जगह, हर प्राण में, कहीं भी आप पूछेंगे तो ये गंज वर्ड जो है वो बहुत वहाँ पे फेमस है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और वहाँ की तहजीब आज भी मेरे दिल में बहुत करीब है।
1: जी, लखनऊ के खान पान की भी बहुत तारीफ की जाती है, वहाँ के कबाब और वहाँ के पान,
2: बहुत,
1: और एक वहाँ के शर्मा जी की हेरिटेज दुकान है, अगर मैं गलत
2: नहीं हूँ,
1: जहाँ समोसे बड़े फेमस है।
2: लखनऊ में तीन चार चीजें, जो खान पान जिसको आपने अभी मेंशन किया है, मतलब चाट, लखनऊ की फेमस चाट जिसको आप समोसे बोलिए, एक शर्मा की चाट भी है
1: जी,
2: ये आज से नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सॉरी पिछले 50 सालों से चल रही
1: है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: और एक मक्खन मलाई, ये आपने पता नहीं
1: सुना है बहुत सुना
2: तो
1: है।
2: ये लखनऊ की, मतलब ये सर्दियों के समय की ही एक बनावट है जो गर्मी या बारिशों में और किसी सीजन में नहीं मिलेगा, एक और ठंड में, तो इसका मजा अलग है। और बिरयानी तो आप जानते हैं, कबाब और बिरयानी, टुंडे के कबाब, बिरयानी, ये सब तो वहाँ के बहुत ही मशहूर लजीज क्विजींस हैं। तो इसके लिए तो मैं बोलती जाऊंगी तो अंत ही नहीं।
1: तो लखनऊ के खान पान और मुंबई के खान पान में क्या फर्क लगा?
2: डेफिनेटली खान पान में अंतर तो है, मतलब मैं चूंकि लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से, खाना बनाने का मुझे शौक भी है और हम लोग ने इतना कुछ खाया है, सीखा है, तो वो मैं अपना के मुंबई तो ले आई, बट यहाँ पे, यहाँ के खान पान में बहुत कुछ अंतर इसलिए है, बिकॉज सही बात बोलूँ तो मसाले यहाँ का मीडियम, यहाँ का जो तड़के हैं वो सब बहुत फर्क है। आप मतलब हम कुछ भी मीट, मटन, चिकन, कुछ भी हम यहाँ का प्रेपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क दिखेगा, जो हम मसालों का जो फ्लेवर, जो हम लखनवी जिसको वर्ड यूज करते हैं, वो आपको लखनऊ के मसाले से यहाँ बहुत अंतर दिखेगा,
1: बहुत अंतर दिखेगा। जी,
2: मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा इसलिए मैं तो प्रेफर ही करती हूँ कि मैं अपने घर का ही बनाया हुआ खाऊं,
1: जी बिल्कुल, क्योंकि
2: मुझे
1: हालांकि हर एक प्रांत का एक अपना स्वाद होता
2: अलग
1: है,
2: रहता है। नो
1: पर
2: डाउट,
1: जहां
2: नो
1: पर हम बेस्ड होते हैं वहां के हम कुछ मसाले, कुछ यादें, कुछ बनाने के तरीके अपने साथ, हमारे
2: अलग
1: वो
2: ही है।
1: जी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हर जगह हम अपने साथ ले जाते हैं।
2: बिल्कुल
1: बहुत खूब, तो इसी के साथ मीनाली जी हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो बातचीत को और आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला प्रश्न रहेगा मिनाली जी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में आप लगभग 13 वर्षों तक आपने एक लीडिंग भूमिका निभाई है, तो उस दौर को, उस दौर जो आपके जीवन को उस दौर ने सबसे बड़ा सबक क्या दिया?
1: मेरे लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में बिताए लगभग 13 वर्ष एक नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण पाठशाला रही। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल टीम का नेतृत्व करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना, लोगों के साथ लेकर चलना, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट में थी और इस पर्टिकुलर विभाग में हर तरीके का इंटरेक्शन रहता है लोगों से
0: जी।
1: और लोगों को बीच में अपने टीम को कैसे विश्वास दिलाना, कैसे टीम वर्क सिखाना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे लिए
0: जी।
1: एयरलाइंस तो आप जानते हैं कि बेहद ही एक चुनौतीपूर्ण जगह रहता बिल्कुल, है हमेशा
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जहां हर दिन नई नई परिस्थितियां आती थी, लेकिन हम एचआर के होके बहुत डायरेक्ट नहीं आते थे बट हमारा लोगों से संपर्क रहता था जो एयर होस्टेसेस थी या कस्टमर्स रिलेशंस थी, तो वहां भी मैंने बहुत डिसिप्लिन और समय का टाइम मैनेजमेंट, समय का सम्मान करना, कैसे कैसे टीम वर्क में लोगों के साथ रहना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया भी।
0: तो मिनाली जी, जैसे आजकल अक्सर न्यूज में हम पढ़ते रहते हैं कि फलानी एयरलाइंस में या फलानी फ्लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, उनको लैंड करना पड़ा, या जो एक बहुत ही दुखद भरी फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से चली थी वो क्रैश हो गई थी, या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल बहुत आते हैं, तो इसके साथ, ऐसे इंसिडेंट्स के साथ आपका बीइंग एन एचआर लीडर क्या इसमें आपका इंटरेक्शन होता था?
1: सौभाग्य बोलिए, मतलब सौभाग्य से उस मेरे वक्त पे ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था बट हमारे एयरलाइंस में उतना कुछ ऐसा हुआ नहीं। यस, एक टेक ओवर हुआ था, एक हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ बाय जेट एयरवेज, तो फिर वो जो पूरा ऑन बोर्ड चेंज होना पड़ा लोगों को, हमने फिर से रिक्रूट किया, फिर से उनको हमने डिपार्टमेंट वाइज उनको हमने प्लेस किया, वो काम मेरा पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरा ही रोल उसमें ज्यादा था
0: जी।
1: इसलिए था क्योंकि मैं पहले से ही लोगों को जानती थी और लोगों को मैं किस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करके प्लेस करूं, उनको प्रॉपर उनकी तनख्वाह भी बराबर रहे या उनके रिक्वायरमेंट्स या उनके वो, मैं मेरा रोल कुछ उसमें ज्यादा ही था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: वो पीरियड मेरा बहुत एक्सटेंसिव पीरियड रहा। अदरवाइज क्रैशेस, कुछ मिसमैनेजमेंट तो छोटे मोटे तो थे बट दैट वाज
0: दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ,
1: या उतना कंसिडर नहीं किया हमने।
0: जी जी जी, बहुत ही रोचक पूर्ण आपके किस्से हैं और हम वापस इन किस्सों में आएंगे, इससे पहले हम आपका एक

0: मिनाली जी, एक सफल प्रोफेशनल से पूर्णकालिक गृहिणी बनने का निर्णय किसी के लिए भी आसान नहीं होता
1: जी।
0: इस बदलाव के दौरान आपने स्वयं को कैसे पॉजिटिव बनाए रखा, कैसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखा?
1: सच कहूँ तो ये डिसीशन, ये निर्णय आसान नहीं था।
0: जी,
1: एक लंबे समय तक प्रोफेशनल जीवन के जीने
0: लगभग
1: के बाद
0: 13 वर्ष आप
1: अचानक,
0: बता रही हैं।
1: यस यस,
0: जी,
1: जिसमें से 8 वर्ष मैंने मुंबई में किया और बाकी मैंने लखनऊ से ही स्टार्ट किया था। तो ये सफर बहुत ही एकदम सडन, प्रोफेशनल जीवन को जीने के बाद अचानक घर पे और परिवार को समय देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मुझे शुरुआत में मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे काम से जुड़ी थी हुई, क्योंकि हम इतने काम में लीन रहते थे और एचआर का काम ही इतना है कि वो एक टोटल इन्वॉल्वमेंट विद पीपल अराउंड, तो वो हमें लोगों के बीच में ही रहता था। तो मेरा समय इतना निकलता था कि मुझे कभी और कुछ सोचने का समय का ध्यान ही नहीं आता था। फिर ऑब्वियसली जब हमारी शादी हुई या हम मैरिज के बाद हम बॉम्बे आए, बच्चे हुए, तो बच्चों के साथ टाइम ज्यादा मिलना जरूरी हो गया। बिकॉज प्रोफेशन ऐसा है कि देखिए, काम तो हर के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है
0: बिल्कुल।
1: और जो झाड़ू तो सबका ही नेचर रहता है। मतलब हम फीमेल्स का हैबिट ही, हम लोग का आदत ही है कि कोई काम पकड़ो तो उसको एकदम
0: बिल्कुल
1: अंजाम दे के रहो।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा
0: एक्चुअली
1: चूंकि
0: डबल
1: लखनऊ से,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना हमारी अगर हम प्रोफेशन
1: टोटली
0: में हैं तो।
1: टोटली
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी।
1: फिर बच्चे छोटे, एंड उसी दौरान मेरे हस्बैंड को भी आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट हो गया। तो ही वॉज आउट फॉर ऑलमोस्ट 6 years, उनको
0: ओ,
1: बाहर रहना पड़ा। ही वॉज इन दुबई।
0: अच्छा।
1: तो फिर जॉब भी, और फिर मेरी एक बुजुर्ग मेरी सासू माँ थी जो मेरे
0: जी
1: साथ
0: जी
1: रहती थी,
0: जी
1: तो फिर उनको देखना, और मेरे बच्चे छोटे ही थे। मतलब मेरा बेटा उस समय 9 साल का था, बेटी तो 5 साल की ही थी,
0: जी
1: तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। फिर मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने, चूंकि हम एचआर वाले हैं, हम लोग का रिक्रूटमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो
0: जी
1: मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स बहुत सारे मेरे साथ अटैच थे, तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं आफ्टर, मतलब अगर मैंने सबैटिकल लिया, मैंने छोड़ा बीच में, तो मैं वो कंटिन्यू करूंगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि वो चीजें होते होते डेवलप कुछ महीने चली, बट फिर आगे नहीं हो पाया, तो फिर रह ही गया। और फिर आप जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो एक अलग ही भूमिका हम निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: वो फिर, बट मुझे ऐसे बोलेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे मतलब अच्छे लोगों के साथ रह के जो मैंने सीखा था, तो मैंने अनुशासन भी सीखा था, कैसे निर्णय लेना सीखा था। तो ये मेरा गृहिणी होने पर भी मैंने ये भूमिका बहुत अच्छे से निभाई,
0: जी बिल्कुल।
1: और फिर दोनों को मिलाकर एक बेहतर, एक मैं अपने बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों पे मैंने जितना डाइवर्ट किया टाइम, तो मुझे आज अपने पर इस बात पे फक्र
0: फक्र
1: है कि
0: है।
1: मैं
0: जी जी जी
1: बिल्कुल
0: एक्चुअली जो
1: समझ।
0: हमारे बच्चे जब अच्छे सेटल हो जाते हैं, अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए कोई
1: यस
0: नहीं
1: यस,
0: होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी,
1: बहुत
0: तो
1: बड़ी
0: एक
1: बात है
0: ऐसा
1: ये।
0: फिर दौर आया था जब कोविड ने हम सबकी
1: जी
0: जिंदगी तहस नहस कर दी थी, ऊपर से नीचे सब हिल गए थे।
1: पूरे पूरे पूरे
0: जी, तो उस वक्त फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया?
1: देखिए, मैं संगीत से तो हमेशा से जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं
0: जी
1: है कि मैं नहीं गाती थी। मेरे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, मतलब इनफैक्ट आई वाज, मेरे को बोला जाता था कि नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल
0: क्या
1: और
0: बात
1: ऐसे
0: है,
1: करके
0: क्या बात है।
1: तो बोला जाता था। तो लेकिन फिर पढ़ाई, फिर बहुत कुछ करते करते वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। फिर ग्रेजुएशन आया, फिर हमने शादी हो गई, फिर हम छोटे छोटे, मेरे उस समय भी मैं प्रोग्राम्स करती थी, बट ये इस स्केल पे नहीं करती थी। कोविड के टाइम पे हम जब इतना लंबा सफर घर में रह गए, बाहर निकल ही नहीं पाए, तो हमें स्टार मेकर और स्म्यूल मिला। वो मेरी एक सिस्टर है, कजन सिस्टर, वो यूएस में थी,
0: जी।
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्टार मेकर में, और हम गाते थे साथ में। बट वो धीरे धीरे वो भी इसलिए कम होने लगा बिकॉज वो, उन लोग का टाइमिंग मैच नहीं होता था मेरे से, वो
0: जी।
1: लेट नाइट वाले और हम दिन वाले। तो फिर स्म्यूल आया, स्म्यूल से भी मैंने एक इंटरेक्शन शुरू किया। मेरे सोसाइटी में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो स्म्यूल में हैं, उन
0: जी
1: लोग ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सिखाया, और फिर जब उससे सिलसिले से मैं ज्वाइन हुई, गाना शुरू
0: देयर वाज
1: किया,
0: नो लुकिंग बैक।
1: देयर वॉज नो लुकिंग बैक, अब तक चल ही रहा है। मतलब वो
0: जी
1: अब उसके वजह से मैं, मेरा एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट जाग गया, एंड प्रॉबेबली मैं ये बोलूंगी कि उससे लोगों ने मेरी, मतलब मेरे को पहचाना। और लोगों ने पहचाना मुंबई में, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आज की डेट में लाइव शोज कंटिन्यूअसली, मेरा ये अभी ये महीना नेक्स्ट मंथ पूरा पैक्ड है, मतलब आई हैव सो मेनी शोज
0: वाह
1: कमिंग अप,
0: वाह
1: और कराओके शोज तो ऐसे नॉर्मल तो करती ही रहती हूँ,
0: जी
1: बट
0: जी
1: लाइव
0: जी
1: शोज विद म्यूजिशियंस करना ये अभी मेरा बहुत फोटे हो गया है।
0: जी
1: किए
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: बहुत सारे, मैं जनरली लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप डालते नहीं हो पर वीडियोस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ डाल दूँ, बट उसमें थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ, बट अदरवाइज मैं मेरे बहुत सारे मैं शोज अभी तक तो कर चुकी हूँ, मतलब
0: जी
1: एंड आई हैव ग्रोन विद दैट, वो एनवायरमेंट में मैं बहुत अभी आजकल एक्टिव हो गई हूँ,
0: बहुत खूब
1: तो
0: बहुत खूब
1: यही चल रहा है बस अभी।
0: जी। तो इसी के साथ हम आपका एक और खूबसूरत गीत लेते हैं।

0: मीनाली जी, जैसे आपने बताया कि आपको तो लोग पहले से ही नाइटिंगेल का खिताब दे चुके थे और आप पहले से ही स्टेजेस पर गाती आई हैं। कोविड के दिनों में आपने कैरियोके ऐप्स को काफ़ी यूज़ किया और एक तरह से कैरियोके की वजह से कहा जाए तो आपके टैलेंट को पंख लग गए, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक स्म्यूल या किसी भी कैरियोके सिंगिंग का जो गेट टुगेदर होता है वो लाइव सिंगिंग से बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल
0: तो कोई आपके ऐसी खास याद अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ जो अभी तक आपके दिल के साथ जुड़ी हुई हो और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ?
1: हाँ, मेरा पहला लाइव शो था जिसमें मतलब मैंने स्टूडियो में पहले गाया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि द शो का जो शुरुआत में वंदना करते हैं
0: जी जी जी
1: वो आपको ही करना है। अब वो तो मैंने तो अभी शो स्टार्ट करना ही शुरू किया था, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अभी शो का एक वंदना स्टार्ट करना, फिर वो वंदना भी मतलब मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं था, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए।
0: जी जी
1: फिर वो एक चैलेंज, ऐसा एक दूसरा चैलेंज ये हो गया कि अब ये वंदना को पहले लर्न करो, फिर उसके पूरे पूरे सिस्टम में लाना है, क्योंकि मुझे गाना है उसके अंतरे बराबर होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है बट मैंने बहुत बाद में, मैंने मतलब मैंने
0: अच्छा,
1: बहुत
0: तो आपने
1: लेटली
0: वो
1: सुना
0: अकेले
1: था।
0: गाना था?
1: जी,
0: हाँ जी।
1: तो हिच बहुत हो गया था, डर बहुत था, घबराहट बहुत थी कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़े हरकतें थी थोड़े,
0: जी जी जी जी जी
1: लेकिन मुझे दो बार मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टूडियो में अलग से उन्होंने करवाया मुझे कि नहीं आप पहले इधर गा के देख लीजिए कि आपको कैसा, फिर
0: जी
1: मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आप रात दिन मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि अरे ठीक है वंदना है गाना है गा लेंगे वैसा, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे काफी बार उसको सुनना पड़ा, फिर उसमें वो ट्रैक में भी कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे बहुत सारा चेंजेस करवाना पड़ा, मतलब जो ट्रैक मेकर थे। फिर फाइनली जब आया है निखर के तो देवर अराउंड मेरा उस पर्टिकुलर शो में ऑलमोस्ट 500+ लोग थे,
0: वाह।
1: और जब मैंने स्टार्ट किया जो अलाप करके फिर उसमें अंतरा, तो इतना अपलॉड मिला मुझे, इतनी वाहवाही मिली उस पर्टिकुलर वंदना से, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, तो आगे जो भी शोज होते थे मुझे बुलाया जाता था कि नहीं पहले वंदना यही गाएंगी तो मुझे
0: दरअसल
1: वो
0: जो
1: अभी तक
0: श्रोताओं का,
1: बैठ गया।
0: हाँ, जो श्रोताओं का जो प्यार मिलता है वो एक कलाकार की
1: बिल्कुल,
0: असली जो खुराक
1: असली
0: होती है
1: पहचान
0: वही
1: है,
0: होती
1: एक्चुअली वही है,
0: है ना।
1: वही बात है।
0: बहुत खूब। तो अगर आपको अपने जीवन को
1: जी
0: किसी एक पुराने सदाबहार गीत के माध्यम से व्यक्त करना हो तो आप
1: हाँ,
0: कौन सा गीत उसके लिए चुनेंगी और क्यों?
1: मैं तो बोलूंगी देखिए मेरे हिसाब से, अगर अगर आप सबसे पहले बोलेंगे तो लगेगा कि जिंदगी में, जिंदगी वाला जो एक शब्द है तो
0: जी।
1: वो जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला जो गीत है,
0: यहाँ कल क्या
1: या
0: हो किसने जाना।
1: हाँ ये है, और प्लस जीवन से भरी तेरी आंखें, मुझे ये लगता है ये दोनों गानों में इतनी गहराई है, मतलब हर चीज दोनों गानों में ये समझा रहा है कि आप लाइफ में आपने क्या सीखा, कैसा सफर गुजर गया, क्या गुजरेगा, वो एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो हम कहाँ से किस लेवल से उठ के हम किस लेवल पे आज की डेट पे आए हैं,
0: जी
1: क्योंकि देखिए
0: जी
1: सपनों का तो कोई उम्र होती नहीं है, जीवन
0: नहीं।
1: में जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हम थोड़ा सा समय जो अपने जुनून के लिए निकाल लेते हैं या उसको जिंदा रखते हैं, तो वो जो खुशी या वो जो ऊर्जा हमको मिलती है वो, अब गाने तो कोई अनलिमिटेड है, उसके तो कोई सीमा ही नहीं है,
0: जी बिल्कुल। किसी एक गाने को नहीं हम चुन सकते बताने के
1: हम
0: लिए
1: नहीं
0: कि
1: बता
0: हमारे जीवन
1: सकते।
0: का सफर कैसा
1: बिल्कुल
0: रहा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: लेकिन फिर भी ये दो गाने ऐसे लगते हैं मुझे कि ये बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत ही इसमें बहुत मन से भरा हुआ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल किसी का पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं
0: बिल्कुल।
1: वही सोचती हूँ कि गाने का तो कोई अंत नहीं है, आप अपने, मैं तो जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं अपने इस शौक को पूरा कर रही हूँ, और भगवान की दया से साईं बाबा की तरफ से मैं, जो कि अब मैं यहाँ रह गई हूँ तो मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, तो
0: जी
1: और गणपति बप्पा मेरे चूंकि
0: जी
1: हम घर पे भी अपने गणपति लाते हैं तो
0: लाते
1: उनकी
0: हैं।
1: कृपा से हम, मेरा जो अपना सफर चल रहा है भगवान करे वैसे ही मेरी उम्मीदें जैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैंने बहुत उम्मीद नहीं रखा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ फिल्म स्टार के रोल पे, वैसा वाला रोल तो नहीं होता है,
0: जी।
1: बट मेरा ये पैशन है जिसको मैंने जारी रखा है, और मैं जितना गा पाऊं अपने पैशन को निभा पाऊं इतना
0: जी
1: ही मेरा
0: मिनाली जी,
1: शौक
0: देखा
1: है।
0: जाए तो हर कोई अपने अपनी जगह अपनी अपनी फैमिली में एक नायक या नायिका का ही रोल अदा कर रहा होता
1: डेफिनेटली, बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। तो कार्यक्रम के अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी, कोई प्रेरणादायक शब्द उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं?
1: देखिए मैं बिल्कुल जरूर बोलूंगी अपने श्रोताओं को कि देखिए सपनों को मत छोड़िए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, और छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, जैसे मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया है।
0: जी
1: और बस सबसे बड़ी बात है कि एक अपनी तुलना किसी और से मत करिए, मतलब
0: जी ये
1: अगर
0: बहुत
1: हमने
0: जरूरी है।
1: कंपेयर किया तो अपनी यात्रा और हमारी यात्रा और किसी और की यात्रा में बहुत अंतर है, तो इस तुलना को करके जीवन चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो अपनी खुशियों को अपनाइए, यदि यदि आपके मन में अच्छी सच्ची लगन है, विश्वास है, धैर्य है, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत संदेश मिनाली जी, आज
1: थैंक
0: आपने
1: यू।
0: अपनी सादगी, अपनी सकारात्मक सोच और संगीत के प्रति अपने समर्पण से इस बातचीत को बेहद खूबसूरत बना दिया। आपका
1: थैंक
0: बहुत
1: यू,
0: बहुत धन्यवाद कि आपने
1: बहुत
0: अपने
1: बहुत
0: जीवन के इतने
1: शुक्रिया,
0: सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए।
1: बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोग सबसे बात
0: जी
1: करके।
0: तो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कोई चीज हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है तो वह है अपने दिल की आवाज को सुनना, और मिनाली जी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से जगदीश अरोड़ा साहब। वेलकम है जगदीश जी आपका इस प्रोग्राम में। आज कुछ खास करने जा रहे हैं जगदीश जी, कुछ अलग तरह के गीत, कुछ हटके और कुछ इनके गीतों के खटके। आपकी आवाज आपकी पहचान जगदीश अरोड़ा पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से।